हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उससे करीब हैं और हमारे इस बराह रास इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज सब कर रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद न हो। फिर देखो वो मौत की जान कनी हक लेकर आ पहुंची, ये वही चीज है जिससे तू भागता था, और फिर सूर

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

0: करो। सामने किराम ये अमल पूरे घर के माहौल को बदल देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज न तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह है और न खाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल हो तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने किराम जरा सोच कर देखिए, हम कितनी बार अपने घरों में बेसुकूनी, गुस्सा, झगड़े या अजीब बेबरकती महसूस करते हैं और कभी कभी हम बड़े बड़े असबाब तलाश करते हैं, हालांकि बरकत का दरवाजा तो उन छोटी सुन्नतों में छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहना गोया ये ऐलान है कि ए अल्लाह, ये घर तेरे नाम से आबाद है। अस्सलामु अलैकुम कहना गोया घर वालों के लिए दुआ है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो, सुकून हो। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदोस, नाम ही काफ़ी है। हसन अल हैदोस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अल सद यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम को ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अल सद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफीज दिलाने में मदद की। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूं यानी कतर स्टार्स लीग के बारे में, बल्कि बाहर के जो AFC चैंपियंस लीग मैचेस होते हैं, AFC चैंपियंस लीग के विनर भी रहे और इसके साथ साथ कई ऐसे एमएफ कप टाइटल्स भी उन्होंने हासिल किए विथ अल सद क्लब। और बहुत लॉयल फुटबॉलर रहे हैं एंड कोई क्लब चेंज नहीं किया इस दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि क्लब चेंज कर लेते हैं फुटबॉलर्स, लेकिन हसन अल हैदोस हैज बीन अ परमानेंट फिक्स्चर ऑफ अल सद फुटबॉल क्लब सिंस

0: the time he started with the Al Sadd Football Academy. नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर हसन अल हैदोस ने कतर को 2019 एएफसी एशियन कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली दफा था जब कतर ने एशिया कप का टाइटल जीता और ये कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। टूर्नामेंट में उनकी लीडरशिप और अटैकिंग फुटबॉल ने पूरी एशिया में कतर का नाम रोशन किया और इसके बाद 3 साल के बाद 2019 के बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी कतर की कप्तानी की, जो अरब दुनिया का पहला वर्ल्ड कप था। मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर कतर, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर हसन अल हैदोस। और ये भी बता दूं कि कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे सक्सेसफुल और नंबर ऑफ मैचेस खेलने वाले अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं हसन अल हैदोस, सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले फॉर कतर। हसन अपनी स्पीड, पासिंग और गेम कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन नए फुटबॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है और कतर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल कतर नेशनल टीम से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुलाया गया, वापस बुलाया गया, क्योंकि कतर टीम नीडेड हसन अल हैदोस। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जहाँ कतर विल ओपन द कैंपेन ऑन 13 जून इन USA, मेक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है एंड कतर का पहला गेम है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में। सो हो सकता है कि इस मैच में हम हसन अल हैदोस को दोबारा हम देखें एंड दोबारा सक्सेसफुली वी कैन सी द कतर नेशनल टीम। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हसन अल हैदोस कतर की कप्तानी करेगा और इसके साथ साथ 13 जून को जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, उसमें ही विल लीड विद अप्लॉम। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे। हमारे जिस्म और दिमाग की जरूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोजाना 7 से 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 घंटा या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज़।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामिन किराम, हक को छुपाना अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा बात है। जो लोग ये रविश इख्तियार करें वो रहमत इलाही से दूर हो जाते हैं और अल्लाह की मखलूक की बददुआ भी लेते हैं। इस्लाम ही ऐसा दीन रहमत है जहां लोगों के लिए सलाह व फलाह की राहें हर वक्त खुली रहती हैं, जहां बिशारतें और खुशखबरियां हैं, दुनिया व आखिरत की भलाइयां हैं, लाजवाल और अबदी खुशियों का पैगाम है। लेकिन ये किन के लिए इरशाद होता है? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ। लोगों, दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसत जमीन और आसमानों जैसी है और वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। तो सामिन किराम, आज जिस आयत से हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वो सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा की 159 रकम आयत है। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

0: दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
3: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Right guys, a very very good morning and welcome to this show called Summer Mornings. मैं हूं शनाज़ी, हम दोनों आपके साथ हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 6:01.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं भी यहां पे मौजूद हूं. मुझे लग रहा है कि आज भी मेरी आवाज थोड़ी कम हुई है.
2: हाँ जी हाँ जी, अपनी आवाज़ बढ़ा लेते
1: जी, तो हम दोनों की ही चेक कर लेते हैं. हाँ जी, नाज़िया की बिल्कुल परफेक्ट है और मेरा ख्याल है मेरी भी बिल्कुल सही जा रही होगी. तो आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे.
2: बिल्कुल, और आज है वीकेंड. तो वीकेंड की अपनी अलग ही वाइब होती है, अलग ही माहौल होता है, अलग ही प्लानिंग होती है फॉर दोस जिनका वीकेंड होता है आज. आई मीन टू से कल उनकी छुट्टी होती है, और बाकी जो लोग बाद में लेटर ऑन कभी उन्हें बीच में मिलती है तो उनके लिए एकदम अलग बात है. और वो जो छुट्टी लेते ही नहीं, दिन रात अपनी फैमिली के लिए काम करे, तो आप सुपर हीरोज हैं. आपकी तो गिनती ही नहीं है, मतलब आप एकदम सुपर से भी ऊपर वाले हैं. तो यस, हम आपको भी सल्यूट करते हैं. और फिलहाल आज हमने जो टॉपिक रखा है उस पर एकदम से जंप करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ कनेक्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं. तो आप हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107. यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये आप हमें बताइए. या फिर डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 4434377.
1: राइट जी, और आज के शो में क्या कुछ होने वाला है तो ये भी हम आपको बताएंगे. हम हर रोज़ की तरह आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या होगा.
2: ऑल राइट, सो आज भी हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं और कुछ हमारा टॉपिक है जो हमेशा ही होता है. और आज हमने वीकेंड को देखते सोचते हुए सोचा कि वीकेंड के हवाले से ही आपसे बात की जाए, क्योंकि समर्स में ना वीकेंड एक्टिविटीज़ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है. मैं भी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि विंटर्स में तो आपके पास भरपूर ऑप्शंस हैं. या तो इंडोर एक्टिविटीज़ आप करते हैं, आउटडोर की भी है, लेकिन अभी समर्स में आउटडोर वाले ऑप्शंस तो पूरी तरह से कट ही हो जाते हैं,
1: तक कम हो जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जुनूनी, जो कि मतलब ना समर्स में भी जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी जाते हैं और बाहर घूमने फिरने भी जाते हैं. उनको होता नहीं मॉल्स में, नहीं भाई, एसी वेसी में नहीं, हमें तो नेचुरल हवा चाहिए और नेचुरली हमने घूमना फिरना है.
2: एंड यू वोंट बिलीव, मैंने देखा फ्राइडेज की मॉर्निंग्स में अभी तो अच्छी खासी गर्मी हो ही जाती है, बट कितने सारे लोग हैं जो सुबह सुबह मैच खेल रहे होते हैं.
1: एग्जैक्टली,
2: और कितनी गर्मी, मैं सोच ही रही होती हूँ कि अरे इतनी गर्मी में लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं.
1: पर
2: देखो उनका पैशन है जो उन्हें ड्राइव करके लेके जाता है वहां तक. तो बस हमें आज आपसे पूछना यही है कि समर्स में आपकी वीकेंड एक्टिविटीज क्या रहती है. क्या आपको अच्छा लगता है कि मॉल्स जाए, वहां पे टाइम स्पेंड करें, विंडो शॉपिंग करें, या एक्चुअल में शॉपिंग करें, या व्हाट्सएवर. या फिर आप उस तरह के शख्स हैं जिन्हें बीचेस पसंद है, वाटर पार्क्स पसंद है, वहाँ जाना अच्छा लगता है और इस तरह से आप समर की जो हीट है उसे बीट कर लेते हैं. या फिर आप उस तरह के शख्स हैं जिसे लगता है कि वीकेंड्स इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, अपने दोस्तों से मिलना, उनके घर जाना, या उन्हें अपने घर पर बुलाना, या कुछ और किसी तीसरे के घर जाना, व्हाट्सएवर. तो बस आज यही हल्का फुल्का सा हमने सवाल रखा है वीकेंड के हवाले से. आपका जो है वीकेंड प्लान समर्स में किस तरह का होता है, कहाँ जाना आप प्रेफर ज्यादा करते हैं और क्यों करते हैं, बस आप हमें ये बताइए.
1: जी बिल्कुल, और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कॉल्स का. आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. उसके साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज भी कर सकते हैं 6662107. तो आप जल्दी से हमसे जुड़ जाइए क्योंकि टाइम बड़ा कम है, फिर हमने आगे भी मूव करना है. तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी. हर जी नाजिया, मतलब हम एक दूसरे से ही शुरू कर लेते हैं, तब तक लोग आते हैं. लोग आ गए.
2: ओके, हेलो
1: जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
1: वबरकात. खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत. आप बताएं कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: सुबह नूर जी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो नूर भाई, आप हमको ये बताइए कि समर्स में आपकी वीकेंड एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं. क्या आपको मॉल जाना अच्छा लगता है, या आज भी आप उस तरह के शख्स हैं जो पार्क वगैरह लेट नाइट जाते हैं, इंजॉय करते हैं, बीचेस आपको पसंद आते हैं, एक्साइट करते हैं, या फ्रेंड्स के घर जाना और हैंग आउट करना, या फिर कोई और एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है समर्स में?
3: मैं तो मॉल में जाता हूँ, ठीक है, शॉपिंग करने के तौर पर. और
1: अच्छा, हर वीकेंड आप शॉपिंग कर रहे हैं?
3: सुनिए ना, मैं जाता हूँ मॉल में, ऐसे मॉल जाना मुझे बहुत पसंद है, कुछ करना, कुछ लेना, कुछ खरीदना, कुछ देना. पर मेरा उसमें एक चीज ये है कि जब मैं नया मॉडल कपड़ा देखता हूँ, फेर के फोटो खींच के निकाल के वही पे रख देता.
2: ये भी सही है
1: हाँ, मतलब
2: लो फोटो लो खींची
1: तो रख दिया ओके
2: आपको भी तसल्ली हो गई कि आपके पास आ गया और आया भी नहीं
1: सही तो ये पहन पहन के तो नहीं आप तस्वीरें लेते गई ये बताएं और फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी होती होगी हर हफ्ते नए नए कपड़े
3: खरीदते हो
1: देखा मैं सही पहुंची थी
2: ये चल रहा है
3: पता चला एक फ्रेंड मेरा रूम में है बोलते कपड़ा देखा
1: मतलब दोस्तों को भी चैन नहीं होता ना मतलब कभी बंदा अपनी दिल की खुशी भी पूरी ना करे हद होती है
2: दोस्त ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये लाया तो कभी ना कभी मैं ले लूंगा इसे पहनने के लिए
3: इस प्रोग्राम में
1: जी जी
2: हाँ जी हाँ जी जी आज मेरा लास्ट जी जी जी मेरा मतलब है अभी वेकेशंस पे जा रही हूँ और आज इंशाल्लाह बस
3: मैं आपकी एक दो शायरी मिस करता हूँ आपके ऊपर
1: हाँ जी बिल्कुल
3: बताइए जिनको छाओं को घटा मांगेंगे कंधे से अपना दुपट्टा मत रखने देना जिस काम के लिए आप जा रहे हैं अल्लाह ताला से मुझे दुआ मांगेंगे
1: वाह बहुत आला
2: जबरदस्त
3: टॉपिक था
1: जी जी टॉपिक आज हमारा बस यही था हाँ हाँ यही था
3: थैंक यू जी
2: जी जी
3: नाजिया जी को जिस जिसने देखा चुमा आपने उसकी आंखें अब नाजिया जी खुद आपके सामने में बैठा है तो आप कैसे चुमो भी अपनी आंखें
1: अच्छा मेरा नाम क्या ले रहे हैं मैं समझ नहीं रही
3: नाजिया जी है ना आप
1: हाँ नहीं मैं नाजिया नहीं
2: नाजिया तो मैं हूँ
1: नाजिया तो
2: ये महवेश अच्छा ये
3: मैं तो नाम भूल जाता
2: नाजिया जी कहते
1: हैं आपको समा या पता नहीं क्या कह रहे हैं मैं वही सोच रही हूं
2: महवेश इनका नाम है और आप नाम मिस कर रहे हैं बट थैंक यू सो मच इतनी अच्छी और इंस्टेंट शायरी जो आपने बनाई है उसके लिए
1: थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका
2: ये पूरी जर्नी मेरे साथ जाएगी
1: एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया जी थैंक यू
2: सो मच
1: थैंक यू अल्लाह हाफिज़ राइट जी तो हमारे साथ नूर थे और कपड़े पहन पहन के पोस्ट करते हैं
2: मॉल्स में जाना वैसे ये आइडिया अच्छा है
1: मैंने देखा ये मैंने देखा था लोग करते भी हैं ये
2: अच्छा
1: हाँ सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए लोग बहुत सारे लोग ये करते हैं
2: हाँ नहीं खरीद भी नहीं रहे पेन के
1: तस्वीरें अपलोड हो रही
2: है अच्छा
1: अच्छा जी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी एक आई और फिर ड्रॉप हो गई अगर आप अभी कॉल करना चाहते हैं तो अभी कीजिए वरना फिर हम 10 मिनट के बाद वापस आते हैं तो फिर आप हमें कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर हम आपकी कॉल्स भी लेंगे आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे नाजी ने आज बहुत ही आसान सा सवाल किया आपसे वीकेंड के हवाले से कि आप लोग क्या प्रेफर करते हैं मॉल्स में जाना इंडोर या फिर आप आउटडोर एक्टिविटी जैसे बीचेस क्रिकेट खेलना या फिर आप वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें बताइएगा कॉल भी कीजिएगा मैसेज भी कीजिएगा और आप सब लोगों को हैप्पी हैप्पी हैप्पी वीकेंड थोड़ी ही देर में वापस आते हैं
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया और आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
5: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं इरशादे खुदावंदी है वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर

0: हे लिसनर्स वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश एंड आरजे नाजी और हम दोनों यहां स्टूडियो से मौजूद हैं. और मौसम का आपको हालचाल बताते चलें तो आज जो है वो और थोड़ा सा टेंपरेचर बढ़ गया है. 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज मतलब अभी इस वक्त है और 44 तक जाएगा. 44 तक जाने वाला है आज. मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता. और इसके साथ ही साथ भाई आपको ये भी बताते चलें कि आज थोड़ी सी एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कह रहे हैं स्लाइटली पोअर है और ह्यूमिडिटी 23% है.
1: चलिए तो फिर भी मैं कहती हूँ कि अभी भी शाम का जो मौसम है ना वो ठीक
0: है, काफी तक बेहतर
1: है.
0: मुझे लगता है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना यहाँ पे तो उस वक्त गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, वरना अदरवाइज शामें सही चल रही हैं. मतलब थोड़ी सी गर्म हवा है लेकिन वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए आज का हमारा जो सवाल है वो यही है कि समर्स में आप अपने वीकेंड एक्टिविटीज अगर प्लान करते हैं तो आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली. आपको क्या पसंद है, क्या आपको लगता है कि मॉल जाना आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है समर्स में, या बीचेस, या वाटर पार्क्स, या फिर दोस्तों के घर जाना, या फिर कोई और आउटडोर एक्टिविटी जो आप पर्टिकुलरली समर्स में खेलते करते हैं, तो वो आज आप हमारे साथ सिंपली आप शेयर कर सकते हैं. नंबर्स हैं 666-22107 या फिर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77.
0: तो देखते हैं कि भाई थोड़ी देर में आपकी कॉल आ जाती है तो आपकी कॉल लेते हैं. जल्द से जल्द कॉल कीजिए, जितना आप जल्दी कॉल करेंगे तो उतना अच्छा हो जाएगा, हम आपसे इजीली बात कर सकेंगे. अच्छा जी, तौफीक का मैसेज. और तौफीक ने मुझे लगता है, नहीं मुझे लग रहा था कि इन्होंने सुबह सुबह अंडे पराठे भेज दिए होंगे, लेकिन इन्होंने तो सुबह खैर की एक पिक्चर भेजी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम अल वकरा. मुझे और तुम्हें दोनों को कहा इन्होंने अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: राइट. और इसके साथ ही रमेश यादव आ गए हैं. और रमेश यादव कहते हैं, क्या ये कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम नाजिया जी एंड मावज जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. दो कप चाय विद जैम बटर.
1: अच्छा ये भी होता है कि समर्स में मैंने देखा लोगों के ब्रेकफास्ट जो है वो भी चेंज हो जाते हैं.
0: हाँ हाँ हाँ.
1: अब मतलब विंटर्स में तो आप बहुत सारा पराठे भी खा लेते हैं, या कुछ लोग सुबह सुबह उठ के निहारी भी खा रहे होते हैं, या और भी उनका कुछ हैवी होता है, तो वो सारी हैवी हैवी चीज़ें जो है ना वो मॉर्निंग्स में हो जाती हैं. बट व्हेन कम्स टू समर तो सबका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आप देखिए तो बहुत लाइट हो जाता है.
0: नहीं जाता थोड़ा, मतलब एक होता है कि गर्मी की वजह से ना आपसे उतनी ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती हैं और फ़र्क पड़ता है. लेकिन खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कल हम जो रिपीट डे की बात कर रहे थे तो मेरा तो एक ही सिलसिला है. मैं एक ही चीज़, मतलब ऑफिस आना है और ये सुबह का वक्त है. नहीं सत्तू तो खैर अभी दो दिन से शुरू किया है. वो तो अभी दो दिन से शुरू हुआ है. ओट्स, हमेशा से मैं ओट्स ही का नाश्ता करती हूँ वीक डेज में. मतलब अभी तो नहीं किया लेकिन जाके भी मैं ओट्स ही खाऊंगी. तो यही
1: इतने दिन ओट्स खा खा के बोरिंग नहीं लगता?
0: नहीं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता. मैं आदी हुई हूँ, बल्कि मुझसे नहीं खाया जाता. मैं हाँ वीकेंड पे मतलब जो ना वो फ्राई अंडा खा लिया, कभी कभी ऑमलेट बना लिया, कभी कुछ.
1: अच्छा ओट्स की इतनी प्यारी बात है कि मैं कुछ नहीं तो 3-4 बार बड़े बड़े जार्स लेके आ चुकी हूँ लेकिन एक बार भी मैं नहीं खा पाई.
0: हैरत की बात है, इतना मुझे भी का टेस्ट होता
1: है. मुझे भी समझ में नहीं आता कि लोग इतना शौक से क्यों खाते हैं. या तो ये साइकोलॉजी बनाओ कि दिस इज रियली अ फैंसी ब्रेकफास्ट, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट
0: की बात नहीं है
1: तो आप खा पाओ.
0: सीरियसली मतलब जो है ना वो एक लाइट, जैसे तुम कह रही हो ना समर में तो थोड़ा सा एक लाइट आपको फील करवाता है, मतलब बहुत हैवी नहीं लगता. और दूसरी चीज ये कि फायदा भी होता है, तो जब फायदा भी है सब कुछ है तो फिर क्यों नहीं. और फिर मुझे तो टेस्ट भी अच्छा लगता है. और
1: अच्छा तुम्हें तो सारी चीजें जो बदमजा है वो सारी तुमको मजे की
0: जैसे सत्तू भी है तो मुझे इस तरह की जो चीजें हैं उनका टेस्ट अच्छा लगता है.
1: देख रहे हैं आप, देख रहे हैं दोस्तों कितना पसंद है, जिसमें टेस्ट नहीं है उसी में
0: उसमें टेस्ट नहीं है. वो तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत टेस्ट है उसमें.
1: मैंने तो समझ
0: वो होता है ना सूंधा सौंधा जिसे कहते हैं, वो वाला टेस्ट है.
1: सत्तू के बाद ओट्स आ गए, ओट्स के बाद आई रिमेम्बर यू सेइंग कि कच्ची हल्दी मैं खाती हूँ.
0: नहीं ओट्स तो जो है ना मुझे खाते हुए कोई 12-14 साल हो चुके होंगे. मतलब इतने अरसे से मैं यही नाश्ता करती हूँ वीकडेज पे. और अंडा,
1: सवाल हो सकता है दोस्तों कि आप

0: लेकिन अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगती है, मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब कल अमिताभ बच्चन बने हुए थे, आज अब किसी स्टाइल में आए हैं,
1: अग्निपथ वाले स्टाइल में शुरू
2: नहीं मैं मतलब है कि अगर अगर आपने इस तरह कहा तो फिर मुझे आगे तो ओम प्रकाश बनना पड़ेगा। तो काम आते कभी है
0: गुड भाई,
1: टैलेंट रियली।
2: अच्छा माशाल्लाह, बात यह है कि जब तक मेरी कॉल आप लोगों ने पिक करके होल्ड पे की हुई थी तब तक मैं बाजार से अपने लिए भी ओट्स लेने चला गया।
0: ओए होए होए बना के वैसे आपने तो, आप खाते हैं कि नहीं खाते बताएं?
2: यस बहुत शौक से खाता हूं, अगर उसके अंदर आप मजीद इंग्रेडिएंट्स डालें, मतलब इस तरह अगर मैं ओट्स पसंद करता हूं जिसमें नट्स भी शामिल हो।
0: हां मैं नट्स में भी डालता
2: हूं, हो गया हां बादाम और स्ट्रॉबेरी भी
1: स्वीट होता है करके
0: मैं डालती हूँ। बेसिकली बादाम अगर वो है, वॉलनट है तो वॉलनट डाल दिए, और फिर मैं स्वीटनेस के लिए क्योंकि मुझे चीनी पसंद नहीं है, तो मैं पता है मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, तो मैं पीनट बटर डालती हूँ, हल्का सा स्वीट होता है।
1: क्या ही बनता
2: और ये पूरी नहीं नहीं बहुत ये हेल्थी फूड है बहुत कि नॉर्मल लोग खाते हैं। और रही बात आपने कहा कि 13-14 साल से जो ब्रेकफास्ट करते हैं, देखिए ये मेरा तो वो बॉयल अंडे हो या ऑमलेट हो या हाफ फ्राई हो उसके बगैर ब्रेकफास्ट होते नहीं है, कुछ भी हो
1: जब एग होना चाहिए
2: ब्रेकफास्ट, एग मस्ट है वो।
0: हाँ हाँ नहीं मैं भी बॉयल अंडा खाती हूँ विद ओट्स खाती हूँ भाई, मैं बहुत हेल्दी चल रही हूँ, बहुत हेल्दी चल रही हूँ। आजिया की आंखें खुल गई हैं पूरी
1: पड़ी की पड़ी रही। अच्छा मैं बॉयल एग खाती हूँ लेकिन सिर्फ व्हाइट खाती हूँ, उसका येलो नहीं खाती।
0: नहीं मैं तो पूरा खाती हूँ,
1: मेरे साथ अलग ही प्रॉब्लम है जीवी जी, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं खाती हूँ हेल्दी, कुछ भी नहीं खाती हूँ, ये मेरा है।
2: माशाल्लाह मैंने वैसे हेल्थी मतलब देखिए आप ये देखिए किसी भी चीज में ज्यादती जब आप करते हैं और मतलब जिस तरह अंडा है उसकी सफेदी है या उसमें वो जो उसकी जर्दी है, अल्लाह पाक ने अगर उसको बनाया है तो उसके फवायद भी है, फायदे भी है। लेकिन ज्यादती किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की, वो नुकसानदेह है। अगर आप उसको मतलब बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से और जितने लिमिट में खाएंगे तो वो नुकसान नहीं, वो फायदे देगी आपको, वो जरूरत है आपकी, वो मस्ट।
0: सही बिल्कुल,
2: तो
0: बिल्कुल सही।
2: रही बात आपके सवाल की तरफ आता हूँ तो वो माशाल्लाह आपने सवाल तो बड़ा हल्का फुल्का किया लेकिन पूरा कतर आपने घुमा दिया।
1: तो
2: बेसिकली मुझे पसंद है, हाँ मेरी एक्टिविटीज मतलब बहुत ज्यादा जब गर्मी हो तो फिर हम मॉल्स में चले जाते हैं तो फेस्टिवल्स लगे रहते हैं, लेकिन आजकल का जो मौसम है आई लव टू गो बीचेस, मतलब शाम को 4:30-5 बजे बीच पे जाए आप वहाँ पर फैमिली के साथ अपना साइड पे टेंट लगाया है, जिस तरह मतलब हम आजकल 2 हफ्ते से तकरीबन होमस्टे ही जा रहे हैं वो लगा के, हाँ वहाँ पर शाम को 6 बजे आप चले जाइए और रात को 12-1 बजे बड़ी ठंडी हवा रहती है क्लाइमेट और दुनिया ऐसे आपको लगेगी आप सोच नहीं सकते कितनी खलकत है, यानी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती आपको।
0: हाँ ऐसे ही।
1: अच्छा नाइस, हम लोग तो समझ में सोचते हैं कि अरे तो बाहर बैठना और ये सब करना तो बहुत चैलेंजिंग होगा, बट आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मौसम रहता है।
2: नहीं चैलेंजेस तब तक है जब तक आप किसी काम को करते नहीं है, जब आप करते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है वो करते हुए, मजा लेते हैं आप उसका।
1: सही
0: ऐसे ही
2: मतलब वो तो घर में है ना, कहीं बाहर जाएंगे तो यार ह्यूमिड बहुत है, पसीना आएगा, गर्मी बहुत है, लेकिन अब जब आप चले जाते हैं ना तो आपको आप उस चीज को क्योंकि सारा जहन आपका जहन वो आपको इंडिकेशन करता रहता है उस वक्त,
0: ये बात सही
2: आप सोच क्या रहे।
0: बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी मतलब जो ना देखें यहाँ पे पहले भी तो लोग बगैर एसी के और इन सब चीजों के रहते थे ना इसी जगह पे, तो वो भी सर्वाइव करते थे, जिंदा भी रहते थे, हेल्दी रहते थे। तो हम लोगों ने जितना ज्यादा अपने आप को ना बिल्कुल बाउंड कर दिया है, नहीं इसी इसी में रहना है, हमें बिल्कुल पसीने नहीं आने चाहिए, तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेही हो रहा है। पहले एक मतलब आपको आना चाहिए पसीना, अगर मौसम ऐसा है तो आना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कतर ने जो कतर को मतलब एक शाहकार तामीर किया है, हमने उस कतर को देखा हुआ है जिस वक्त यहाँ पर मतलब पंखे भी नहीं हुआ करते थे, और मतलब जब क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ मैंने इसको बनते हुए देखा अपनी आंखों के सामने।
1: अच्छा अच्छा आप यही आपकी पैदाइश है कतर की?
2: मेरी पैदाइश यहाँ की है, मतलब है कि आप ये देखिए कि एयरपोर्ट के पास खड़े हो कि आपको सिर्फ शेरटन होटल नजर आता था बस, और माशाल्लाह अब तो सारी चीजें ढक गई है, इतना कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, इतना कुछ बन गया है उससे बाहर, इतनी मेहनत और जितनी खूबसूरती इन्होंने दी है।
0: बेशक
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सही।

0: इसके साथ ही नादिया जी आपने वेकेशन पे जाना है तो वो एक लाइन में यही कह सकता हूँ कि ये आप समझिए कि महवेश जी की जानिब से आपको है जाने महवेश को दे
1: सही बात है। तो मैं अब संडे से ना काफी एक कंधों पे बोझ है और मैं नर्वस भी फील कर रही हूँ कि कैसे होगा। अभी बड़ा मजा आ रहा था इन चार दिनों में, अफसोस हो रहा है कि मतलब इस वक्त में हमें छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए था। हम किसी के आगे पीछे चले जाते अगर हमें पता होता है कि इस वक्त में हमें दोनों को साथ शो मिलना है।
2: राइट,
0: लेकिन एक और बात कहूँ महवेश जी, यहाँ पर एक और बात कहूँगा मैं
1: जी।
0: वो ये कि महवेश जी जिस वक्त ये नादिया जी छुट्टी पे जाएंगी ना, तो इनकी जो कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे ये बैठी हैं, आपको फील हुआ होगा कि ना होके भी आपके साथ बैठी हैं और इनको भी वैसे ही फील होगा।
1: और बात है?
0: मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल।
2: अच्छा।
0: और उसके अंदर फिर जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, क्योंकि आपने वहाँ पर दो लोगों को कवर करना है, एक नाज़िया जी को कवर करना है, एक महवेश को कवर करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कुछ अरसे के बाद नाज़िया के कंधों पे यही वाली जिम्मेदारी होगी।
2: फिर मैं यहाँ पे तो मैं अज्यूम करूंगी कि महवेश यहाँ बैठी है। हाँ, ये लेकिन वाकई हम दोनों ने कभी, हमने ये सोचा नहीं था कि हम साथ में करेंगे और फिर हम साथ में कर ही नहीं पाए एक तरीके से।
1: हाँ, exactly.
2: दोनों ने बैक टू बैक छुट्टियां प्लान कर रखी हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए इंशाल्लाह फिर आगे कभी ना कभी।
1: इंशाल्लाह
2: बिल्कुल
1: सोलो पर्सन हूँ मैं, मतलब प्रेफर करती हूँ कि मैं सोलो शोज करूँ, लेकिन इन चार दिनों में मजा आ रहा है,
2: मजा आया। लेकिन मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैंने हमेशा डबल डीजे ही किया, मतलब हम सोलो, और मुझे शायद एक्सपीरियंस है हर किसी के साथ करने का। कोई ऐसा नहीं है, शायद आई थिंक कबीर के साथ मैंने नहीं किया, बस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी मैंने सबके साथ शोज किए।
1: कबीर के साथ मैंने भी नहीं किया।
2: हाँ, तो शायद हम दोनों ने कबीर के साथ नहीं किया, बाकी आई थिंक
1: रिकॉर्डेड किया है कबीर के साथ शायरी वाला।
2: अच्छा, नहीं मैंने रिकॉर्डेड भी कुछ नहीं किया,
1: लेकिन मैंने
2: कबीर और मेरा कभी कोई शो साथ में नहीं था, बट अदरवाइज मैंने सारे आरजेस के साथ किया है। तो मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं सबके साथ जो हूँ,
1: सही है।
2: ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस काकी के साथ भी किया मैंने।
1: हाँ जी,
2: जिनके साथ सबने रिफ्यूज किया उनके साथ मैंने किया।
1: बिल्कुल जी, और उनको भगा भी दिया है अपने।
2: वो खुद ही चली गई अपनी हरकतों से, तो कोई क्या कर सकता है।
1: चलिए जी, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं 4434377 और 6621107 पे, लेकिन अभी हम आते हैं एक ब्रेक के बाद।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेथराज ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया और आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: Right guys, welcome back. A very good morning. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। महविश और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 6:39 ऑन द क्लॉक और आज हमने वीकेंड को फुल ऑन तरीके से इंजॉय करना है और एक तरफ हमने ब्रेकफास्ट भी जो है वो भी ओपन कर दिया है क्योंकि महविश ने जैसे मुझे बताया 12-13 साल से ओट्स खा रही हूँ एंड खा ही रही हूँ इसके अलावा मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइज हुई हूँ। कोई और भी ऐसा बंदा है जो एक ब्रेकफास्ट 10-12 साल से मतलब उसका वही कंटिन्यू चल रहा है?
4: मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों में, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अंडा ब्रेड खाते हैं,
3: मतलब हर रोज
4: हर रोज अंडा ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग रात का बचा हुआ वैसे खाना भी खाते हैं बहुत सारी।
3: जब ये मुझे शुरू में पता चला था ना,
4: अच्छा एक्साइट करता
3: था मुझे, अच्छा लगता
4: मुझे जब ये शुरू में पता चला था, जब मैं मॉर्निंग शो ही करती थी तो होता था लोगों से पूछना कि भाई क्या नाश्ता किया, तो लोग बोलते थे कि रात का खाना, तो वो मेरे लिए बहुत अजीब बात होती है क्योंकि मुझसे रात का खाना मैं नहीं खा सकती।
3: मतलब खाने में हल्का होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह बहुत ज्यादा कोर में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ सब्जी रोटी अगर है तो ये तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही है।
4: ससुराल में मेरी सास और नंदे हाँ। वो लोग भी जो ना रात का बचा हुआ खाना खाते थे, इवन हाँ। रात की बची हुई रोटी भी खाते
3: इवन मैं खुद आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे अच्छा। रात की रोटी बहुत अच्छी लगती है, हल्का सा उस पे घी लगा के हल्का सा उसको okay. वो कर लिया और
4: अच्छा मैं रस खा लूंगी चाय से, लेकिन मैं रात का बचा
3: अच्छा मैं मीठा नहीं खा पाती सुबह सुबह।
4: अच्छा मुझे अच्छा ये है कि मैं थोड़ा सा मीठा प्रेफर करती हूं, हल्का फुल्का।
3: हां जो लोग सुबह सुबह मीठा प्रेफर करते हैं उनको कुछ चाहिए होता है मीठे में, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा सकती मॉर्निंग्स में, तो बिल्कुल नहीं खा सकती। शायद मैं लेट आफ्टरनून खा लूं थोड़ा बहुत कुछ, तो मुझे कुछ चाहिए कुछ वैसा कुछ अलग से नाश्ता।
4: सही, तो बहुत सारे लोग होंगे जो रात के खाने वाले होंगे, तो आप लोग भी जरूर आइए।
3: रात के खाना मुझे भी पसंद है, इवन मुझे पसंद है कि रात की जो रोटी है अगर वो आपकी बच गई है तो वो मैं एक्स्ट्रा बनवाती हूँ स्पेशली, मेरे लिए बचनी
4: चाहिए। वीकेंड पे ये करते हैं कि रोटी जो है वो खास तौर पे अगर कोई बाहर वाली तंदूर वाली और इस तरह की हो ना, तो फिर आप उसको फ्राई करके खाएं, ओए होए होए
3: उसका
4: एक अलग ही मजा है। और मुझे इससे हमेशा याद आ जाते हैं अपने फूफो की घर की शादियाँ, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे ना मतलब होता था कि एक तो माशाल्लाह से अच्छे खासे बच्चे थे दोनों ही फूफियों के, और वो रोटियां बचती थी तो सुबह नाश्ते में सब लोग मतलब यही नाश्ता होता था, यही इसके अलावा नहीं।
3: कुछ लोगों का नाश्ता मैंने देखा है कि वो रोटी एंड चाय खा रहे होते हैं,
4: हाँ
3: डिप कर करके।
4: हाँ तो मैं भी तो ये तो डिप ही करके तो खाते हैं, और कैसे खाते हैं आप, कैसे खाती हैं ये थोड़ी देर में बताती हैं आप कैसे खाती हैं भाई।
3: नहीं मैं तो चाय में डिप करके नहीं खाती, रोटी अलग चाय अलग।
4: ये कैसे खा रही हैं आप?
3: मैं सब्जी से खा रही हूँ, रोटी चाय अलग सिप कर रही हूँ।
4: रोटी हो गई सब कुछ मैं तो डिप करके खा सकती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताऊँ, आप मतलब हैरान हो जाएंगी। जब शादी से पहले मतलब हमारे घर पे वो आए और पकौड़े बनवाए ना, मतलब कुछ अचानक हुआ था तो अम्मी ने कहा पकौड़े बनवाते, पकौड़े और कुछ और चीजें थी, तो अदनान ने पकौड़े डिप करके खाए चाय से, और सब हम लोग अच्छा मजे की बात, शादी भी नहीं हुई है तो बंदा जज भी कर सकते हैं किस किस्म की मखलूक है भाई।
3: कोई ऐसा भी है जो बिस्किट डिप कर, नहीं बिस्किट तो खैर खाते हैं, कोई ऐसा शख्स है जिसने एप्पल डिप करके खाया? मैंने देखा एप्पल कटा हुआ चाय में डिप करके,
4: कौन है ये
3: भाई है हमारे कुछ
4: मेरा मेरा बेटा मेरा बेटा वो भी मतलब छोटा वाला, वो भी पापा को देखे देखे ना हर चीज डिप करके खाने की कर रहा होता है, तो उसने भी मेरा ख्याल एप्पल भी ट्राई कर लिया होगा कि एप्पल डिप करके कैसा लगता है।
3: और कुछ लोग बिस्किट इतने डाई हार्ट वो है, ये तो मेरे अपने कजन्स में ही है, अगर हाँ। चाय नहीं है तो वो पानी में डिप कर करके बिस्किट खा रहे
4: होते हैं, इतना नहीं है हाल। लेकिन अच्छा मैं ना जब भी मतलब बिस्किट्स या रस्क वगैरह हम लोग मतलब खा रहे होते थे, रोटी खा रहे हैं कुछ भी डिप करके, तो हमारी अम्मी क्योंकि वो नफासत पसंद खातून थी तो वो यूं इतने ना मुंह बना बना के देख रही होती, तो हमने तो कभी अच्छा मेरे अम्मी पापा दोनों जो है ना वो कभी भी डिप करके नहीं खाते थे, अलग से बिस्किट खाया फिर चाय पी,
3: मेरा भी अलग से खाया चाय पी। जैसे
4: भाई हमें तो डिप करके ही खाना है, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा, हम देसी हैं, हम इस मामले में बहुत देसी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
4: जी फैजान, क्या हाल चाल है आपके?
5: जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है?
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी अटेंडेंस लगाई है और बस अभी पार्किंग में जा रहा हूँ, गाड़ी लगाने लगा हूँ।
4: गुड गुड,
5: ऑफिस आया।
4: नाइस, ये अच्छा है, पहले आप अटेंडेंस लगा देते हैं फिर आप पार्किंग में जाते हैं। गुड
5: जी, वो ऐसी है ना अटेंडेंस हमारी एक्चुअली दो जगह पे है, एक है मेन उस पर डोर पे और एक है ऑफिस में, तो ऑफिस
4: फिर खतरनाक है,
5: आराम से कॉल करके आपको थोड़ा अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट सुन के अटेंडेंस लगा लेता हूँ।
4: चलें गुड, जबरदस्त, ये अच्छी बात है।
3: आज का हमारा सवाल ये है कि समर्स में आपकी जो वीकेंड एक्टिविटीज हैं वो क्या रहती हैं, क्या आपको अच्छा लगता है कि मॉल जाएं, या बीचेस आप पसंद करते हैं, वाटर पार्क्स आप इंजॉय करते हैं, या फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करना पसंद करते हैं, या कोई स्पोर्ट है जिसे आप पर्टिकुलरली समर्स में खेलना पसंद करते हैं, या कोई और चीज़ जो आपको एक्साइट करती है, वो आज हम पूछ रहे हैं।
5: बीच पे जाने का प्लान होता है, वैसे इसके अलावा आउटडोर तो इंसान जा ही नहीं सकता। और फिर ग्रोसरीज के लिए मॉल जाते हैं या थोड़ी विंडो शॉपिंग के लिए, तो यही दो चीजें हैं।
3: सो इट्स लाइक
5: अलावा मुझे वो एक बात भी याद आ गई, वो एक इंडिया का था आदमी, उसने ना वीडियो में वो कहा था चाय बिस्किट वाली बात से, तो चाय बिस्किट से ना एक हमें लेसन मिलता है। कजी क्या लेसन मिलता है? तो कहा किसी में इतना नहीं घुलते मिलते कि इंसान टूट जाता है।
4: टूट जाए
3: वैसे ये सही बात है, सच है,
4: बात सही।
3: आप भी वो शख्स हैं जो घुलते मिलते, मेरा मतलब है आप
4: चाय में डिप करते हैं या नहीं करते हैं?
3: डिप करना पसंद है कि नहीं है?
5: जी मैं जब छोटा था उस टाइम पे इंट्रोवर्ट था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ बैठते हैं तो आप यकीन करें दोस्ती हो जाती है फौरन लोगों से।
3: हमने क्या सवाल
4: पूछा? हम कह रहे अच्छा मैं सब अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि ओके मतलब चाय में डिप करके जो खाता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। मैं ये समझी नहीं भाई, हम चाय में डिप करने का पूछ रहे हैं।
5: और एक और बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की के सामी तौर पर अगर कॉलर कॉल नहीं भी करता, आप दोनों खवातीन है माशाल्लाह आपका शो होता जा रहा है कम्प्लीट।
4: हमें अपने हम आपस में काफी है,
5: कर लेते हैं।
4: मजे है।
5: जी
4: तो फैजान हमने ये पूछा था कि चाय में डिप करके खाते हैं कि नहीं
3: बिस्किट्स?
5: जी वो पाकिस्तान में कहते हैं कि मतलब ना एक वो जुगत बनी हुई है, मजाक वाली बात बनी हुई है कि जो चाय में बिस्किट डाल के खाता है ना ये पुलिस वाला है, तो ऐसे कहते हैं पुलिस वाले जब भी देखते हैं ना हम, तो वो चाय में डाल के खाते हैं।
4: अच्छा।
5: वैसे मैंने मतलब छोटे से ट्राई किया था, तो एक थे वो जब मैं टीचर था, मेरी हार्टिन मर्ची 19 साल का होऊंगा मैं या 18 साल का, तो जो थे ना वो रिटायर्ड एयरफोर्स के थे प्रिंसिपल हमारे, उन्होंने सारी जिंदगी सऊदी में गुजारे थे और वो प्रिंसिपल थे स्कूल के।
4: अच्छा।
5: तो मैं ना खाने लगा था उस तरह, फिर उन्होंने मुझे रोक दिया, कहते हैं कि मतलब आपने ट्राई करना है कि ऐसे कभी भी नहीं खाना।
4: अच्छा तो मेरी अम्मी वाले अब कुछ हाल होगा उनका। चले जी फैजान थैंक यू आपकी कॉल के लिए, और आप बड़े ही कुछ मतलब अलग निकले। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी,
3: थैंक यू सो मच,
4: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी तो फैजान हमारे साथ है, और फैजान जो है मॉल्स में जाते हैं और उसके अलावा बीचेस पे जाते हैं कभी कभी।
3: मॉल्स मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग कह रहे हैं समर्स में, और कुछ लोग जो है ना वॉकिंग के लिए मॉल्स में जाते हैं।
4: वॉकिंग के लिए मॉल्स में, गुड,
3: ये भी है क्योंकि बाहर नहीं कर सकते, पसीना आएगा। तो मैंने कहा भाई पसीना तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट आपकी कुछ कैलोरीज बर्न हो, आपको भी सेटिस्फेक्शन।
4: सरवर भाई तो नहीं है?
3: नहीं, सरवर भाई कहते हैं हम
4: कुर्सी पे बैठ के वॉक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे
6: हैं? मैं मेराज बात कर रहा हूँ।
4: मेराज
6: अली।
3: मेराज अली, ओके। कैसे हैं आप? कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग?
6: अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग तो सुबह में 3:30 बजे हो जाती है मेरी।
4: वाओ जबरदस्त,
3: इतनी
4: जबरदस्त।
6: नस्ला फान बोल के एरिया है, वहाँ काम करता हूँ मैं, किरण ऑपरेटर हूँ।
4: अच्छा अच्छा, गुड, जबरदस्त,
3: गुड, सही।
6: सुबह सुबह कंपनी का खाना रहता है।
3: ओके, क्या देती है आपको कंपनी खाने में? चलो इनसे कुछ
6: सुबह सुबह मैं ज्यादातर तो चाय खाता हूँ, चाय पीता हूँ। और
3: चाय पीते भी हो, चाय खाते भी हैं?
6: मैं खाली पीता हूँ।
4: अच्छा, ओके।
3: सिर्फ चाय,
6: ब्रेड, जाम, चाय,
4: अच्छा,
6: ऐसा ही रूटीन चलते रहते।
4: जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो ये चलता है आपका?
3: ज्यादातर लोग सुबह मीठा पसंद करते हैं, देखो जैम है या कुछ भी मीठी चीज सुबह चल रही है।
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे।
3: ओके, सही है।
6: हाँ, जैम तो पसंद रहता है, बचपन से खाने का वो रहता है ना आदत।
4: सही से चले, अच्छी बात है, जबरदस्त भाई।
3: तो ये ऐसा ब्रेकफास्ट है जो आप मतलब 8-10 साल से कंटिन्यूसली यही कर रहे हैं? यही कर रहे हैं?
6: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है,
3: ऐसा
6: मैं 4 दिन खा के बोर हो जाता हूँ।
3: हाँ देखो, ये आए मेरा टाइप के, 2-3-4 दिन एक सी चीज खाई फिर लगता है कि आप चेंज चाहिए, कुछ ना कुछ अलग चाहिए।
6: पहले अंडे चल रहे थे 2-3 दिन।
4: अच्छा,
6: उसके बाद में फिर मैं बोर हो गया,
4: बोर
6: फिर बोला मेरा चाहिए। चाय ब्रेड चाय ब्रेड तीन चार दिन ये चलता है, फिर उसके बाद में सुबह सुबह खाए नहीं जाता उतना।
4: सही, 4 बजे। हाँ 4 बजे कौन खाया, हम तो बगैर खाए आ रहे हैं इसी वजह से।
6: हम 4 बजे अगर के नहीं खाएंगे तो इधर आके फिर 11 बजे तक भूखे ही रहना पड़ेगा।
4: अच्छा बीच में आप तो लंबा टाइम है आपका, सही हो गया। और भाई महाराज भाई आप ये बताएं कि भाई जब समर्स होती हैं तो उसमें मॉल्स में जाते हैं या फिर आप कहीं समंदर वगैरह की सैर को निकल जाते हैं?
6: जैसे इंडिया में मैं हैदराबाद में रहता हूँ।
3: अच्छा,
6: वहाँ पर हमारे पास गंडी पेट वगैरह ऐसा है जैसा पानी के जगह पे।
4: अच्छा,
6: वहाँ जाके मच्छी पकड़ना।
4: ओके,
6: ऐसा ऐसा
4: सही।
6: और बड़े बड़े नहरे रहते है ना, वहाँ पर जाके बैठना।
4: सही, और यहाँ क्या करते हैं?
3: घर पे बैठना।
6: यहाँ पर तो दिन भर धूप में ही रहते हैं।
3: और रात में थोड़ी धूप होती है। अरे रात में थोड़ी धूप होती है?
6: नहीं रात में तो नहीं होती है। एक बार मैं परसों फ्राइडे ऐसे ही जाते हम लोग ग्रैंड मॉल इधर से बस।
4: अच्छा, मॉल पे जाते हैं। सही हो गया, मॉल जाते
6: हैं। तो मैं 2 हफ्ते ऐसा ही नहीं गया धूप को देख के, मतलब बहुत ज्यादा धूप है। फिर वहाँ जाने के बाद 44 डिग्री चल रहा है उधर।
4: हाँ
6: सही। बस में से उतर के खाली मॉल के अंदर घुसे थे कि हालत खराब हो जाता।
4: सही सही। चले जी महाराज भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज,
3: गुड मॉर्निंग।
4: अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं फिर हम चलते हैं ब्रेक पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग,
3: वेरी गुड मॉर्निंग। बात कर रहे हैं मेरे साथ
7: जी, उसामा बात कर रहा हूँ
4: जी।
7: उसामा जी, आपका शो आज बीच से स्टार्ट किया, मुझे समझ नहीं आ रही है चाय बिस्किट का सवाल है कि ये समर और विंटर का सवाल है।
4: नहीं आज हमारे बहुत सारे सवालों बीच में ही हो जाते हैं। बेसिकली आज जो सवाल किया है नाजिया ने वो ये है कि समर में आप क्या प्रेफर करते हैं, इनडोर मॉल्स वगैरह पे जाना या फिर बीचेस, आउटडोर कोई एक्टिविटी?
7: दोनों ही चलते हैं, इवनिंग में बीचेस पे चल जाते हैं, लेकिन मैं रोड ट्रिप्स को प्रेफर करता हूँ।
4: किसको प्रेफर करते हैं?
7: रोड ट्रिप्स।
4: ओके,
3: अच्छा इवनिंग्स में या मॉर्निंग्स में?
7: नहीं मॉर्निंग में,
4: मतलब लॉन्ग ड्राइव, राइट?
7: लॉन्ग ड्राइव, बट
3: फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर सोलो ड्राइव रहती है आपकी?
7: फैमिली के साथ, अकेले
3: फैमिली के साथ।
4: हां हां, सही सही,
7: फैमिली के साथ।
4: सही सही,
7: बात कर रही थी अभी नाश्ते की, के वो भाई से जब बात अभी हो रही थी कि नाश्ते में बदल बदल के खाना पसंद है, वो वाकई वो चीज मुझे भी आती है कि कुछ 2 दिन बाद बोर हो जाते हैं।
3: देखा कितने लोग निकल रहे हैं,
4: बोर हो जाते हैं, मैं तो बोर नहीं होती।
7: ये बात मैं कह रही हूं। पहले मैं और मेरी मिसेज थे ना जब, तो उस वक्त हम लोग बस डेली एक ही रूटीन थी, तो बहुत अरसा हो गया था हम लोग ना पाकिस्तानी पराठे खाना छोड़ दिए थे। फिर हमारी जब मदर आई, फिर बहुत अरसे बाद हम लोगों ने उनके हाथ के पराठे खाए,
4: जबरदस्त।
7: हमने उसको जोर दे दिया, पकड़ लिया कि लब आप लोग बस इसी को खाना है, इसी को खाना है। लेकिन आप इंसानी फितरत है ना, ह्यूमन नेचर है कि इंसान कुछ अच्छे बाद उससे भी बोर हो जाता है अपनी पसंदीदा चीज से भी।
4: सही।
7: तो अभी भी सेम चीज है कि आप कुछ टाइम के बाद बोर हो जाते हैं।
4: सही सही, चले तो ये वाला सिलसिला आपका
3: नाइस
4: ठीक हो गया।
3: चलिए अच्छा, आप भी आप कम से कम मेरे जैसे हैं जो एक जैसा ब्रेकफास्ट हर रोज नहीं कर सकते, कुछ अलग नहीं, चाहिए नहीं, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, भले ही से कोई भी हल्का फुल्का चेंज हो, बट चेंज होना चाहिए।
7: चाय में चेंज नहीं होना चाहिए,
4: बाकी सब चेंज होना चाहिए। ओके जी, ओके, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा आपकी कॉल का। थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।
3: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
4: राइट जी, तो ज्यादातर लोग ऐसे आ रहे हैं। अच्छा मेरे साथ ना मामला क्या है नाजिया, मैं तो बोरी नहीं होती, मैं किसी भी चीज से बोर नहीं होती।
3: Are you serious?
4: Seriously?
3: एक ही टाइप की चीज देख देख के।
4: हाँ हाँ, देख देख के, खा खा के,
3: मुझे देख देख के तो
4: पहन पहन के। नहीं मैं किसी चीज से सीरियसली बोर नहीं होती, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि बोरियत हो जाती है और ये वो, मेरे अंदर शायद वो वाला मामला ही नहीं है। मतलब
3: तो मुझे ये बताओ बोरियत बनी क्यों है?
4: अगर लोग मुझे
3: कहाँ पे,
4: मुझे वाकई बोरियत
3: लाइफ में कहीं तो इस्तेमाल होगा इस वर्ड का,
4: नहीं होता। मैं कभी मतलब मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बोरियत नहीं होती। तो मुझे ये हैरत हो रही होती है जब लोग बोल रहे होते हैं ना बोर हो गए, तो बच्चे बहुत बोल रहे होते हैं आजकल के बच्चों का। अच्छा इन लोगों के पास क्या है कि इनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर वक्त लगे रहते हैं फिर भी बोर हो रहे हैं। और मेरे साथ ये मामला है कि कुछ नहीं, जब हमारे बचपन में हर वक्त का नहीं था, मैं तो टीवी भी बड़ा मखसूस टाइम के लिए होता था उस वक्त, लेकिन मुझे कभी भी बोरियत नहीं होती, मैं अपनी कंपनी में भी इंजॉय करती हूँ। नो बोरियत इन जिंदगी।
3: चलो अकेलापन मतलब थोड़ा आइसोलेशन तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी पसंद करती हूँ कि मी अपना मी टाइम है और अपनी स्पेस है और अपना आप रिलैक्स करें एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे खाना है या जैसे कपड़े हैं या कुछ चीजें हैं जो लगातार आप एक जैसा करते रहो,
4: मुझे नहीं पड़ता सीरियसली। मतलब
3: कितना मैक्सिमम जा सकते हो, मैक्सिमम 10 डेज जा सकते हो?
4: मतलब आप कपड़ों की बात करो, आप खाने की बात करो।
3: अच्छा इमेजिन अ फूड, तुमको रोज रोज मैं अगर डेली सोचो बिरयानी देती रहूं,
4: बिरयानी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बिरयानी कोई मतलब हल्की फुल्की चीज हो, दाल चावल हो तो शायद मैं रोज खा लूं,
3: एक ही तरह की दाल एक ही तरह की
4: खा लूंगी,
3: रोज
4: खा लूंगी, सीरियसली खा लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं उस तरह की हूँ कि मुझे मेरी बहुत ज्यादा ना वो नहीं है, डिमांड्स नहीं है, वो वाला मामला है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा ख्वाहिशात नहीं है मेरी, मेरे साथ ये वाला मामला है। मैं बड़ी मुख्तसर सी उसमें जो है ना, कपड़े भी मैं रोज पहन सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही वाले पहन लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाना भी रोजाना वही वाला खा सकती हूँ, अच्छी जगह हो अच्छी स्पेस हो सेम की सेम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही जगह पे जाना हो आना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा ही है
3: होगा, हमें उम्मीद है ऐसा ही
4: होगा।
3: वैसे यहाँ तो ये बात तो सच है कि महविश में जिस तरह से यू नो सोच अलग है, फिर मैं कहूँगी तुम्हारी जो है वो चॉइसेस अलग है, जो हम सब लोगों की नहीं होती, वो एक चॉइस एक बहुत ही अलग सी यूनिक सी चॉइस होती है महविश की, जो हमेशा ही देखते हैं। और हाँ, मैंने देखा जितना तुम सिंपल सिंपल रहना, सिंपल चीजों में खुश होना एंड ऑल दैट, वो चीज दैट मेक्स यू यूनिक, ये अच्छी बात
4: है,
3: इंसान में ऐसा होना चाहिए।
4: हाँ एग्जैक्टली, मतलब मुझे ख्वाहिश ना हो दुनिया और ये और वो मेरा मतलब मामला नहीं है, शुरू से नहीं है। शुरू से मतलब जो है ना, मैं बड़े इजीली बहुत आराम से अपने स्पेस में अपने उसमें
3: और एक जैसी चीजों में रह सकती हूं, खुश रहता है,
4: ये है
3: अल्हम्दुलिल्लाह। उसे बोरियत नहीं हो रही, उसे किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट नहीं है,
4: आराम
3: से अपने कंफर्ट जोन में सुकून की जिंदगी गुजार।
4: पहले मैं सोचती थी कि मैं कितनी बोरिंग हूँ, लोगों को लगता होगा, लेकिन अब मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि लगता है तो लगता हो,
3: क्या फर्क पड़ता है,
4: क्या फर्क पड़ता है,
3: हम अपने लिए तो इंटरेस्टिंग है, सही बात है।
4: तो चलें हम इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे।
3: जरूर प्लीज, आज हम जो सवाल कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा सोच के रखिए, हमें बताइए कि समर में आपकी जो वीकेंड एक्टिविटीज हैं वो क्या रहती हैं, कौन कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं, कुछ अलग सा करता है कोई बंदा, वो भी हम सुनना चाहेंगे वीकेंड में। तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए अपनी एक्टिविटीज 6622107 पर, कॉल कर सकते हैं 4434377 पर।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
8: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
9: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
2: द रिक्वेस्ट शो
9: हर शाम 4-5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
10: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें, ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।

0: Alright guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं शनाजिया. हम दोनों आपके साथ हैं 7:07 ऑन द क्लॉक. और आज है 4th of June. तो ये भी बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से डेज और नेशनल इंटरनेशनल डेज जो है वो पर्टिकुलरली इस दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डे है एंड दिस इज कॉल्ड नेशनल चीज डे. चीज लवर.
1: मैं भी
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज खाना. और इस दिन को पर्टिकुलरली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ये फूड जो है, चीज़ जो है, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एंड ना सिर्फ बच्चों में पॉपुलर है बल्कि अडल्ट्स में भी बहुत पॉपुलर
1: है. मतलब बहुत मज़े का टेस्ट होता है. मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होती.
0: मुझे तो खैर बहुत पसंद है. और एक चीज़ और, यहाँ पर पूरी दुनिया में हजारों किस्म की जो है वो चीज़, उनके मतलब इतने ऑप्शंस, इतनी वैरायटीज हैं. और हर तरीके का चीज हर किसी को जो है वो एक्साइट करता ही करता है. तो इस दिन को पर्टिकुलरली नेशनल चीज डे आज सेलिब्रेट किया जाता है. अच्छा, अगर आप जो है वो पेट लवर हैं और खास करके अगर आपके पास कैट्स हैं आपके घर में, किटन है, तो आज का दिन उन्हीं के लिए है. मतलब इट्स अ नेशनल हग योर पेट कैट डे. तो ये दिन भी होती है.
1: ये मैं रिलेट नहीं कर सकती बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती.
0: बहुत डरती हूँ. ठीक है, आज मैं अपनी जगह किटन को हग करूंगी.
1: तुम्हारे पास है?
0: हाँ, मेरे पास है.
1: सीरियसली?
0: मेरे पास है नहीं, पता है, इत्तेफाक से वो
1: बाहर से आती है.
0: छोड़ गई छोटा सा किटन.
1: अच्छा, और वो बेचारा बाहर से आता है या घर पे ही रहता है?
0: नहीं, वो मेरे घर पीछे बैकयार्ड में मुझे आवाज आई, तो मैंने अपने जो हाउस बॉय से मैंने बोला, मैंने कोई कुछ तो कोई रो रहा है, कोई आवाज सी आ रही है, ये किटन है क्या? तो वो बेचारा गया घुस घुसा के, उसने देखा तो कहता है हाँ मैम, ये तो किटन है इसमें पीछे. फिर तब से हमने उसको पालना शुरू कर दिया. अभी तो बड़ी कैट हो गई. तो इस तरह से आज हग करेंगे. एंड लाइक वो मेरे साथ

0: नेशनल सेफ डे.
1: सेफ डे किसको सेफ करना है?
0: ये बेसिकली ये दिन लोगों को सेफ्टी और प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो कैसे
1: गाइड करने के लिए,
0: वो उसके लिए दिया जाता है. अच्छा, उसके बाद है शॉपिंग कार्ट डे.
1: शॉपिंग कार्ट डे,
0: वाह. इस दिन शॉपिंग कार्ट की इन्वेंशन को याद किया जाता है.
1: हाँ.
0: और कुछ लोग जो है वो भरपूर तरीके से आज कार्ट से शॉपिंग भी कर रहे होते हैं.
1: वाओ,
0: तो ये दिन
1: है. क्या बात है.
0: तो मतलब कह सकते हैं कि 4th जून जो है इस दिन एक्साइटिंग डेज है. कुछ ऐसे डेज है जो डायरेक्टली आपके साथ वन टू वन आप कनेक्ट होते हो. और इसमें जैसे हमने पेट्स की बताई कि पेट से किस तरह से प्यार करना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है. छोटी छोटी चीजों से किस तरह से आप जो है उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं और होपफुल हो सकते हैं, तो वो भी आज के दिन के हवाले से कुछ खास है.
1: जबरदस्त. और अच्छा, मैसेज है हमारे पास. और ये मैसेज किसने किया? मैं हमेशा कहती हूँ नाम लिख दिया करें, GSK. और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग नाज़िया जी एंड महवेश जी.
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: विशिंग नाज़िया जी अ वेरी हैप्पी जर्नी इन एडवांस.
0: थैंक यू सो मच.
1: इन समर वी प्रेफर टू गो टू इनडोर स्विमिंग पूल्स विद फैमिली. We listen to your program online at home with our family and we enjoy your daily topics and conversations. Thank you for bringing positive vibes in the morning. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इंडिया से मैसेज किया है.
0: Is it?
1: क्योंकि इन्होंने कहा ना ऑनलाइन सुनते हैं और नंबर भी इनका वहीं का है. और नाज़िया जी के लिए सत्तू की तस्वीरें आ गई हैं. और भी हम मैसेजेस शामिल करते हैं आपके, लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं तो उनकी कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम
2: जी, कैसे हैं आप लोग?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से. आप कैसे हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक. मैं एक्चुअली मेरा नाम शाहिद है. मैं बांग्लादेश में काम कर रहा हूँ. तो आप लोग का स्टूडियो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ.
1: स्टूडियो के फैन है? हमारे नहीं है, स्टूडियो के फैन है डायरेक्टली.
0: रेडियो स्टेशन के फैन है.
1: अच्छा अच्छा.
2: मैं जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद आपका स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ. और एक बात है, मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात करना इतना ज्यादा आता नहीं.
1: आप तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं,
0: बहुत ही अच्छी उर्दू बोल रहे हैं. ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको नहीं आती है. वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? आपका ताल्लुक
1: बांग्लादेश
0: से है. अच्छा अच्छा. तो बांग्ला में कुछ बोलिए, हमारे स्टेशन की तारीफ कीजिए कुछ.
2: अभी बताओ.
0: हाँ हाँ, अभी बता दीजिए, हम सुन लें कैसे कहते हैं आप बांग्ला में, तारीफ कैसे होती
2: है.
0: भालो भाषी मतलब बहुत अच्छा. कुछ तो बहुत ही अच्छा है. ओके, थैंक यू.
1: स्वीट मतलब वो है ये लैंग्वेज.
0: बंगाली खैर है भी, खैर इसमें मिठास तो है ही. अच्छा,
2: मैं बहुत कोशिश करते उर्दू सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उर्दू बात करना.
1: माशाल्लाह,
2: बहुत अच्छा लगता है.
1: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका नाम एक दफा फिर बताएं.
0: शाहिद.
1: चले दी. अच्छा ये बताएं भाई कि आप समर में, गर्मियों में आप कहाँ जाते हैं, बीचेस पे या फिर मॉल्स में?
2: एक्चुअली मुझे मॉल इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बस जरूरत के लिए जाता हूँ. और कभी कभार अगर टाइम मिलेगा तो बीच में जाना या स्विमिंग पूल में जाना, ये शावर करना, ये मुझे बहुत पसंद
1: है. अच्छा लगता
2: है, इतना
1: सही हो गया, सही हो गया. चलें जी, गुड, जबरदस्त. तो आप मतलब स्विमिंग पूल पे जाना प्रेफर करते
0: हैं? That's nice. ये अच्छी बात है कि आपको जो आर्टिफिशियल दुनिया उतनी एक्साइट नहीं करती और आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं.
1: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस आपकी पर्सनालिटी को भी बता रही होती है.
1: हाँ,
0: so that's true. Thank you so much.
1: Thank you, thank you आपकी कॉल के लिए.
0: और आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं.
1: हाँ, और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर, काफी देर से ये भी ट्राई कर रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम
1: अस्सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग.
3: अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल से इनको ड्रॉप करते हुए आपको आप लोगों को सुन रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता
1: है. बहुत बहुत शुक्रिया.
3: अच्छी केमिस्ट्री बन गई है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई.
1: केमिस्ट्री हमारी मतलब ऑफ ईयर तो हमेशा से ही अच्छी है, लेकिन ये कि ऑन ईयर भी बन गई है.
0: और आई थिंक हम मेरे ऑफिस में जो सबसे अच्छी दोस्ती है वो सिर्फ महवेश से.
1: ऐसे ही
3: है. आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड।

0: जी ये भी ऐसे अच्छा है, मतलब अभी हम ये भी मैं अच्छा लोगों को बता दूं, बहुत सारे कबीर के फैंस हैं कि जो चाह रहे हैं मतलब सुबह में कबीर क्यों नहीं है, तो आप लोग बेफिक्र हैं, हम लोग अगस्त तक आपके साथ हैं, उसके बाद हो सकता है फिर कबीर आपके साथ हो।
1: बिल्कुल, यहाँ पे चेंज तो होता ही रहता है और शायद इस तरह से मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है सबको, एक थोड़ा सा चेंज हुआ जी।
2: तो दिनों के हिसाब से अभी बात हो रही थी, तो आपने कैट लवर्स की और कैट पेट्स की बात की, तो ऐसे घर में तो नहीं है, हमारे भी बैकयार्ड में एक फीमेल कैट है, और फीमेल है तो उनके फीमेल वक्त ऑप्शन आते ही रहते हैं।
0: सही है।
2: तो आजकल उनके माशाल्लाह से तीन किचन, मेरे बच्चों को ना बहुत उनकी लाइफ साइकिल देखना अच्छा लगता है, तो उन्होंने बाकायदा नाम भी रखे होते हैं किचन के, और ना उन्होंने ये भी बताना होता है कि अभी ये जो है ना इन्फेंट है, आईज ओपन हो गई है, आप चलना शुरू कर दिया है, अब मामा ये टीनेजर हो गया है, वो पूरा एक लाइफ साइकिल का बता रहे थे। हम लोग ये कहते हैं मतलब सुबह दूध डाल दिया, थोड़ा सा डाइल्यूट किया हुआ दूध डाल दिया, और दूसरा ये की यहाँ पे आपको पता है कि चिकन जो मिलता है ना वो स्किन ऑन होता है, तो स्किन उतार के आराम से उसको बैकयार्ड स्टार्ट कर देती।
0: सही सही, गुड।
2: बोन्स है लेफ्ट ओवर, हाँ वो कच्चे में ही डालना होती है, जो लेफ्ट ओवर बोन्स है स्पेशली चिकन की, वो बहुत कम से खा लेती है, तो बस ये हम उन लोगों को पेट फूड देते हैं। दूसरा ये कि बैकयार्ड गार्डन है, वो उनका वॉशरूम भी है, तो वो खुद ही पलते रहते हैं, और उनके वक्त किचन जाते रहते हैं, जो आपको पता है बहुत यूज लगते हैं, तो बच्चे उनसे खेलते हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल काम ही होता है कि आपने उनको मानूस करना खुद से, उनकी मॉम उनसे मानूस करती है, लेकिन उन बच्चों को मानूस करना, लेकिन इसके बाद वो भागने लगते हैं ना बड़ों से, तो उनको मानूस करना अपने से एक मजे का भी काम है। You know, I have friends we know how to communicate with them. तो मैं हमेशा से ना समाज के बारे में उन्होंने चुनौती की बात सुनी, या हम लोग ना एनिमल बर्ड से या बर्ड से ना इंटरेक्शन की बात सुनते हैं पुरानी इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद देम इन देयर ओन वे, इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग टू देम।
1: बिल्कुल। अब मैं भी जो अपनी कैट के साथ, पहले तो किटन थी अभी तो कैट हो गई, तो मुझे समझ में आता है इसको क्या चाहिए, पता नहीं कैसे आता है, बट मुझे समझ में आता है कि अभी ये भूखे, अभी इसको प्यास लग रही है, अभी ये सिर्फ पैम्पर करने आई है, अभी ये सिर्फ हम लोग के साथ ऐसे मिलने जुलने आई, समझ में आता है, पता नहीं कैसे आता है, बट अब वो बोल रही है, अब उसके आँख से उसके जेस्चर से आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको कुछ तो चाहिए।
2: देखो हम उनको अपना लेफ्ट ओवर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, समटाइम्स मिल्क डाल दिया, तो आप यकीन करें नहीं, मैं उसको खाना डालती हूँ, और खाना डाल के मैं किचन डोर बंद करने लगती हूँ, क्योंकि बैकयार्ड में और किचन डोर बैकयार्ड में खुलता है, तो उससे उसका जो थैंक यू फैक्टर होता है ना, मैं अपने बच्चे ताकि इसका थैंक यू नहीं थे कि अपनी आंखें ऐसे नरमी से बंद कर। आपने भी नोट किया होगा कैट का ये होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: इतनी प्यारे अंदाज से वो कम्युनिकेट करती हैं, और जब उसको भूख लगी होती है और कुछ मतलब ज्यादा डेस्परेट होती है, तो वो जो किचन डोर है ना जाली का, उससे आके अपने पंजे से टैप टैप भी करती है।
1: और वाकई ये फैक्ट है, जैसे मेरे किचन में, किचन के पीछे बैकयार्ड है, तो वहीं से हमारा आना जाना होता है, तो जब कुक आती है और वो खाना वाना बना रही होती है, तो कभी भी ये कैट नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैं किचन में आ जाऊंगी, इसको स्मेल है क्या है, और फिर वो आवाज देना, म्याओ म्याओ करना शुरू कर देती है, तो वो मुझे हमेशा कहती है कि मैम आपके आते ही इसको कैसे पता चल जाता है, मैंने कहा कुछ तो खास है, ये तो स्मेल है उनकी, या तो कुछ तो है ऐसी पार है उन्हें कि उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ। और मेरे तो बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं इतने कैट फूड खरीदती हूँ, उसके सारे अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे खरीदते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आप हमें तो वेजिटेबल्स खिला रही होती हैं, कैट के लिए रोज चिकन आता है, ये रोज चिकन खाती
0: है। ये सही है।
1: इतना इनोसेंटली कह रहे हैं ये तो रोज चिकन, इसको क्यों नहीं आप वेज खिलाती हैं कुछ।

0: तो बस ऐसे ही है।
1: और मुनीबा ये बताएं कि आप समर में कहाँ प्रेफर करती हैं, आप मॉल्स में जाना चाहती हैं या फिर बीचेस पे?
2: देखिए मॉल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने बुलाए होते हैं, लेकिन दो सर कमर्शियल
0: प्लेस
2: जो देते हैं, जो कामनेस, जो ब्यूटी नीचे में है, जो जो जाके वहाँ ताजगी का आपकी आपकी उसको एहसास होता है, वो गर्मी से थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है नेचुरल तरीके से, तो मजबूरन मॉल का रुख करना पड़ता है। मॉल्स में आप काम से जाते हो या गर्मी है, बाहर है, घर में हमेशा हम बाउंड नहीं रह सकते, तो चलो वो कूल प्लेसेस है, वहाँ पे बच्चे फूड कोर्ट में एंजॉय कर लेते हैं, आप विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। मेनली तो ये होता है कि आप चल जाते हैं ना, तो मॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट आई थिंक दोज आर कमर्शियल प्लेसेस, वहाँ आप जरूरत से जाते हैं या मजबूरी से जाते हैं। मेरे जैसे बंदों को तो नेचर लविंग, नेचर नेचुरल चीजें ही पसंद है। आप यकीन कीजिए कि कॉर्निश से या फिर आप दोहा पोर्ट इतनी अच्छी स्पॉट है, वहाँ पे वॉक, या फिर आप ये कह लें कि किसी पार्क में जाकर आप वॉक करते हैं, जैसे इतनी अच्छी अच्छी लेक है, इवन जो है ना वॉटरफॉल भी है यहाँ एस्पायर में, तो इन जगहों पे जाकर जो मजा आता है ना, वो आप मॉल्स में कुछ लोग होंगे तो जिनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई विल प्रेफर नेचुरल सीनरी एंड नेचुरल प्लेसेस।
0: नाइस, गुड गुड गुड चॉइस, अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ जाती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कुछ नॉलेज गेन करने का भी मौका है और वो कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं उस जगह से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों को बल्कि कह रही होती हूँ।
0: और आई वाज रियली लुकिंग कि किसी ने नहीं कहा कि हम वीकेंड्स में म्यूजियम्स जाते हैं या प्लान करते हैं म्यूजियम जाना।
2: मैं म्यूजियम,
0: अच्छा ओके,
2: मतलब म्यूजियम्स आर आवर ऑलवेज यू नो फेवरेट टू गो प्लेसेस।
0: अच्छा,
2: मतलब कुछ महीनों के बाद बहुत सारे म्यूजियम दोबारा हम लोग देखे होते हैं, क्योंकि मैं जो बड़ा बेटा ना वो बचपन से उसको डायनासोर बड़े पसंद थे, जिसका मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट उनको 14 बर्थडे था माशाल्लाह, तो मतलब बचपन से ही उसको डायनासोर से, और जब वो इतना एक्साइटेड हो गया ना जब हमने वो जो एक वो म्यूजियम था उसमें जाके ना कुछ फॉसिल्स वगैरह भी हमें डायनासोर से रिलेटेड मिले, कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ अरबिक कल्चर और ये सब चीजें, और जब ये दरबेसाई में भी ये सब चीजें जब डिस्प्ले होती हैं, तो आप जो है ना म्यूजियम के थ्रू जो चीजें आप देखते हैं, जो आप पास की झलक आपको मिलती है, जो वहाँ के पुराने बर्तनों में, और जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में आप देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने ज्वेलरी की कितनी जबरदस्त ड्रेसेस की कलेक्शन रखी हुई है, तो वो चीजें देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हाल की तमाम तर डेवलपमेंट के साथ, इतनी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन के साथ माजी की झलक देख रहे हैं म्यूजियम में खड़े हुए।
0: राइट, बिल्कुल
2: अमेजिंग।
0: नाइस नाइस, थैंक यू सो मच मुनीबा, बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपसे बात करके, और थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा। एंजॉय योर वीकेंड एंड हैव अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टुडे।
1: थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिएगा,
0: बाय।
1: राइट, तो हमारे साथ मुनीबा थी और इसके साथ ही नाजे कुछ न्यूज वगैरह शामिल करनी
0: है। हाँ जी हाँ जी, तो अभी कर दें? अच्छा चलिए कर देते हैं,
1: हाँ हम कर देते हैं, फिर हम ब्रेक पे चलते हैं।
0: ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो है वो अनाउंस किया है कि कतर बाइसिकल मास्टर प्लान उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया, जैसे कल था वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो बस उसी मौके पर इसे लॉन्च किया गया है। और ये प्लान जो है वो साइकिलिंग और माइक्रो मोबिलिटी जैसे स्कूटर्स हैं, जो ई स्कूटर्स हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए किया गया, ताकि सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए, फैसिलिटीज बेहतर हों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा सस्टेनेबल और कनेक्टेड बने। देखिए जो नया प्लान है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ कतर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, शहरी तरक्की को जहन में रखते हुए इस तरह के ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट किया जाए जो सस्टेनेबल हो, इफ़िशेंट हो और बहुत ज़्यादा हसल बसल भी ना हो। तो यहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल के साथ बाइसिकल को कनेक्ट किया है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्लान की जो तैयारी, उसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने 1500 से ज़्यादा बाइक रूट्स के जरिए 5000 से ज़्यादा लोगों के साथ सर्वे भी किया और मल्टीपल मीटिंग्स और स्टडीज़ भी की गई। और रिपोर्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो बताऊँ 19% लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो प्रेफर करते हैं बाइसिकल से मूव करना। जो कि बहुत बड़ी बात है. वहीं से 1% ऐसे लोग निकले जिन्होंने एब्सोल्युटली डिनाई किया है कि उन्हें बाइसिकल चलाना या राइड करना बिल्कुल पसंद नहीं है. यहाँ पर प्लान जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि इस सिस्टम को, बाइसिकल मास्टर प्लान को, इस तरह से लॉन्च किया जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका हिस्सा बने. और प्लान का फोकस है कि लोग डेली ट्रैवल, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ के जरिए बाइसिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और नए माइक्रो मोबिलिटी डिवाइसेस को सेफ तरीके से रेगुलेट किया जाए. और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये प्लान जो है वो कतर के नेशनल विजन 2030 के गोल्स को भी सपोर्ट करता है, जिसमें कार्बन इमर्शन कम करना, हेल्थ इंप्रूव करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी शामिल है. तो चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में साइकिल से आया करेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर,
0: रात के 3:30 बजे
1: जरूर. अच्छा, यहाँ पे सफा का मैसेज है और सफा कहती है कि हम एनुअल लीव्स को प्रेफर करते हैं समर्स में.
0: अच्छा, ओके,
1: हम वो क्योंकि लीव पे है ना इस वक्त में. तो सफा ने कहा कि मैं भी, अच्छा सुबह भाई तुम कर क्या रही उठकर, मतलब लीव पे हो, सो आराम से सो.
0: बच्चों को या तो छोड़ के या
1: बच्चों का स्कूल चल रहा होगा इस वक्त में.
0: अब थर्सडे, आज क्यों नहीं, आज तो
1: हाँ एग्जाम्स हो रहे होंगे बल्कि. हाँ सही,
0: वरना तो ऐसे तो कोई क्यों ही सुबह सुबह निकलेगा,
1: सुबह सुबह क्यों ही निकलेगा.
0: खास करके जो वर्किंग होते हैं उनके लिए तो फिर सुबह ऐसा होता है कि अगर हमारे पास काम नहीं है, हमारी छुट्टी है, तो कम से कम
1: तो बस सो आराम से. चले जी, इंजॉय करें अपनी आप एनुअल लीव. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम नाज़िर जी, आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन नंबर भूल जाता हूँ. मोहम्मद बशीर, मैंने नंबर दे दिया इनको, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन नंबर भूल जाते हैं, तो बता दिया मैंने. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वी आर गुड. और ये फैज मंसूरी कहते हैं इसके साथ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मावस जी, कैसे हैं आप लोग. टुडे इज नेशनल नोटबुक डे एंड इंटरनेशनल टी डे. अलीना, अच्छा इन्होंने हमें आंटी कहा है. अलीना जो है वो छोटी सी

0: हाँ, नोटबुक डे एंड इंटरनेशनल टी डे.
1: इंटरनेशनल टी डे फॉर, आई एम नॉट रॉन्ग, तभी मुझे एकदम क्लिक किया. इट्स ऑन 21st में. चलिए हम भी इस ब्रेक में चेक करते हैं, आप भी क्रॉस चेक कीजिए एंड लेट अस नो कि हम सही हैं कि आप सही हैं.
0: क्या पता उनका टी डे रोज होता हो, चाय लवर हो वो.
1: ये बात है ना. चलिए

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website.

0: website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein.
2: Aaj hi raabta karein.
1: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call karein 4488-8806 par ya email karein marketing@qmc.qa.
3: Bas, bahut ho gaya routine. Need an escape. Ek mind-blowing adventure chahiye. To lock ho jao FM 107 ke saath. Kyunki aa gaya hai escape room. Escape room. The ultimate mind workout as pure fun. Fun. Yahan traffic nahi, tricky wordplay hai. Boring meetings nahi, brain-teasing riddles hai. Jahan contestants navigate karenge audio challenges around the clock. Ye hai aapka weekly escape into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
5: दोस्तों आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं कीप क्रॉसिंग क्लियर ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है ट्रैमवे लुक बोथ वेज ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है ट्रैम ओनली लेन ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
6: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया और आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
7: राइट आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश एंड आरजे नाजिया हम दोनों एक दफा फिर आ गए और हमारे साथ कॉलर है नाजिया
8: ओके
7: पहले हम कॉलर लें या फिर हम न्यूज़ शामिल कर लें
8: पहले आप आइए
9: अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम अस्सलाम
9: कैसे क्या हाल चाल है
7: खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आसिफ भाई
9: नाजिया जी
8: हाँ जी
9: कैसे हैं क्या हाल चाल महवीर जी
7: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह
9: महवीर जी मालूम है आपको मैं शाम में बहुत मिस करता हूँ भी
7: हैं
9: जी
7: तो सुबह भी सुना करें ना सुबह सुना करें
9: सुबह तो सुनता ही हूँ आपको मैं मगर शाम को मतलब शाम को अलग आपकी याद आती है
7: हाय हाय क्या बात है उफ
9: मैं बोलता हूँ महवीर जी आते तो थोड़ा एक घंटे का शो होता है थोड़ा पब्लिक आती है बातचीत करती है अच्छी अच्छी फैमिली बातें करती है पब्लिक चले जाती है फिर बाद में मगर अभी अभी तो कबीर भाई माशाल्लाह भाई कबीर भाई की तो बातें अलग है
7: चले तो फिर कबीर को आप शाम में सुने और मतलब आप लोग अच्छा ये होता होगा सुबह में कबीर को बैठ के मिस कर रहे हैं हाय कबीर हुआ करता था शाम में मुझे बैठ के मिस कर रहे
9: हैं बहन बताओ कबीर भाई का ना शो मॉर्निंग में एक भी मैं मिस नहीं करता हूँ एक भी मिस नहीं करता था मैं
7: तो हमें भी मिस ना करें भाई ताकि हमें शाम में याद ना करना पड़े
8: सही बात है
9: आपको तो मैं सुबह में मिस ही नहीं कर रहा सुबह में आपको मैं मतलब एक भी मिस
8: कर रहा सुबह तो मैं मिस ही नहीं कर रहा हूँ आपको भाई
7: मतलब शो कौन सा वाला शो मिस नहीं करे या मुझे मिस नहीं करे दोनों
9: अभी जैसा आपने कैट की बात कही थी मैं खाना बनाने जाती थी मतलब वो मैं
7: ये नाजिया बोल रही थी वो नाजिया थी भाई मेरा और कैट का दूर दूर का ताल्लुक नहीं है
8: हमारी तो यही प्रॉब्लम है वॉइस ही लोग नहीं समझ पा रहे
9: मैं नहीं वो इस्माइल भाई बोल रहे हो नाजिया जी और महवीर जी थोड़ा बाजू बाजू में बैठे ना थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठे अच्छा लगेगा
7: लो देखो इस्माइल भाई ये कह रहे हैं
8: इस्माइल भाई को तो वाकई मुझे लगता है ये वही इस्माइल भाई है जिनकी मैंने कभी एक हैदराबाद की एक मूवी देखी थी
7: हाँ
8: अंग्रेज उनकी याद दिलाते
7: ये इस्माइल भाई

0: बात करते हैं मुझे अपने इस्माइल भाई याद आ जाते हैं जो थोड़ी देर के बाद खबरें पढ़ने आएंगे
1: और नाज़ा जी एक आपको खबर देना है
2: दीजिए दीजिए
1: तुम भी जा रहे हो सफर हम भी जा रहे हैं सफर क्या बात है
2: क्या खबर है तो आप कब जा रहे हो मैं तो जा रही हूँ
1: नाज़ा जी एयरपोर्ट पे मिलिए फिर आप मुझे
0: ये तो बताएं भाई आप सेहरा बांध के जा रहे हैं या बगैर सेहरे के जा रहे हैं
2: अच्छा ये भी है
1: मगर इसका शब्द आपको जाने तो मैंने सब बात मत करो मुझे थोड़ा वो है
0: शर्म आ रही है दुख हो रहा है शर्म आ रही है
2: मुझे शर्म आ रही है
0: सही
1: बहुत दुख हो रहा है
0: इसका दुख भी हो रहा है
2: आपका
0: क्या हो रहा है
2: जो सिंगल वाला स्टेटस है वो हट रहा है ये दुख हो रहा है आपको
1: नहीं मैं अजीब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वही है
0: ये क्या बात है भाई अभी तक तो तड़प रहे थे आप कि हम मैरिड हो जाएं
2: अब तड़पे भी
1: हाँ हाँ शादी मेरी नहीं मेरे छोटे वाले भाई की शादी है मेरी शादी नेक्स्ट ईयर है एक
0: साल है ओके सही आप ऐसा करें आप सेहरा बांध के निकल लें आपके भाई मुझे तो नहीं पता मैं तो भूल गया था मुझे लगा 2000 अभी की बात हो रही है 26 की बात हो रही है
2: मेरी
0: होनी थी
2: 27 तक कैसे चला
0: चलो भाई शादी करवाओ
1: नहीं भाई मैं एक कॉमेडी बताता हूँ मैं अपने घर में फैमिली को फोन किया मैं बोला मम्मी मेरी टिकट विकट हो गई है मैं आ रहा हूँ घर पे तो बोले बहुत अच्छी बात है बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है तेरे छोटे वाले भाई की शादी है तू बोले नहीं अम्मी कोई बात नहीं मैं छोटे वाले भाई की शादी उसको साइड में कर दो उसकी जगह मैं बैठ जाता हूँ
2: अच्छा छोटा भाई उसकी पहले हो रही है और आपकी बाद में हो रही है ऐसा क्यों आपकी पहले होनी चाहिए आइडियली आप बड़े हैं
1: मैम एक्चुअली क्या है ना गल्फ कंट्री में काम करते करते मैंने अपनी ना मतलब वो बोलते ना एक सर के ऊपर मैंने वो ले लिया
0: जिम्मेदारियां
1: छोड़ दो वो मतलब वो थोड़ा अलग मैटर हो गया मगर अच्छा है कि मेरा भाई छोटा वाला भाई शादी कर रहा है कम उम्र में अच्छा जल्दी शादी कर रहा है
0: चले कोई बात नहीं एक साल की बात है ये अच्छा लगा कि भाई आपकी तय तो हो गई ना अभी तक तो हम दुआएं कर रहे थे आपने बताया भी नहीं थी कि कितनी गलत बात है
1: जाके इंशाल्लाह एंगेज करके आऊंगा इंशाल्लाह
0: चले बिल्कुल एंगेज करके आइए
1: लड़की को पकड़ के बांध के आऊंगा अपने हाथ में सही है जाने की जरूरत ही नहीं है
0: हाँ बिल्कुल लेकिन बस अगले साल जाके जल्दी से शादी भी कर दीजिएगा ठीक है
1: जी बिना और कुछ
0: और बस कुछ भी नहीं आपने एक ही दफा में इतना कुछ बता दिया
1: नहीं मेवला बहन कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं आप अगर दिल में कुछ है तो सवाल हो
0: हाँ हमारी नॉलेज बढ़ेगी पूछो पूछो नाज़िम
2: इतना खूबसूरत सवाल जो है हमारे पास अच्छा वैसे आज हमारा जो इतना बेहतरीन सवाल है उस पे आ जाते हैं समझ में आपकी वीकेंड एक्टिविटीज जो है वो क्या रहती हैं कि आप मॉल जाते हैं बीचेस जाना प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हैं उनके घर बैठकर या अपने घर उन्हें इनवाइट कर लेते हैं या कोई क्रिकेट है या कोई और स्पोर्ट है जिसे आप पर्टिकुलरली समर्स में एंजॉय करते हैं
1: देन हम लोग के वहाँ पर समर तो सबसे बड़ा होता है मतलब जैसा गर्मियों के सीजन में होता है जी जी हम लोग जाते हैं गोवा वगैरह
0: अच्छा
1: गोवा में आगे एंजॉय करते हैं और बरसात के मौसम में इंडिया में रुकते हैं हम लोग तो अभी बरसात का मौसम है तो मैं भी इंडिया में जा रहा हूँ बरसात के मजे लेने के लिए
2: कितनी अच्छी बात आसिफ भाई ने मैंने यहाँ पे समर वीकेंड एक्टिविटीज पूछी और गोवा ले गए मुझे सही किया आपने
1: अरे
2: मतलब ये वीकेंड्स पे क्या करते हैं यहाँ जब आप रहते हैं यही कतर में तो क्या करते हैं
1: अरे इधर तो कुछ नहीं इधर तो हम लोग मैडम लोग को लेके जाते हैं और कुछ नहीं और इधर हम लोग का कुछ वीकेंड वीकेंड नहीं है
2: अच्छा ओके आपका ऐसा वीकेंड नहीं जब आपकी एक दिन की छुट्टी होती होगी कभी होती है क्या
1: वो घर में सोता हूँ बिना आराम करके
2: अच्छा तब आप सोते हैं आराम करते हैं चलिए यही आपका वीकेंड है आराम करना घर पे रहना ठीक है ये अच्छा
0: चले गुड जबरदस्त भाई एंजॉय करते रहे
1: लगता है बहन आज का टॉपिक मेरे पल्ले नहीं पड़ा बहन लगता मैं गलत फोन कर दिया
0: फोन आपने सही किया कोई मसला नहीं है
2: हमें तो पता चला कि हम ही अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे आप भी कर रहे हैं
0: हाँ
2: ये तो
0: वो भी इंगेज करने जा रहे हैं आप
2: हाँ इंगेज करने जा रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा
1: बहन आप अभी लगता है मैं अभी 3-4-10 तारीख तक का तो मैं आपको मतलब अभी कॉल भी नहीं करूँगा सिर्फ सुनूंगा आप लोगों को मैं
0: क्यों भाई ऐसा क्यों
1: क्योंकि मैं खुद बिजी रहने वाला हूँ बहन अभी पैकिंग वगैरह में
2: इसलिए इतनी सारी आप अच्छा आपने शॉपिंग वगैरह सब कर ली मुझे लगा ये वीकेंड आप शॉपिंग करेंगे
1: जी बहन मतलब शॉपिंग वगैरह चालू है बस दुआ करो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी शॉपिंग खत्म हो जाए सर के ऊपर से बोझ आ जाए
0: होए होए होए
2: शॉपिंग तो एंजॉय की जो आप शॉपिंग भी कह रहे हैं कि बोझ है
0: खूब लगती है शॉपिंग हो रही है
2: मैं तो कितना खुश होती हूं मुझे कोई कहते कि जय नाजी
0: तुम हार है तो मतलब
2: नहीं मुझे तो बस कह दो शॉपिंग के चली जाओ मैं चली जाऊंगी
0: बिल्कुल
1: एक मेरी मैं छोटी सी बात करूंगा बहन जिस तरह फोन रख दूंगा क्योंकि ना

0: आप लोग शॉपिंग करोगे ना, आप लोग एंजॉय करोगे, हम लोग शॉपिंग करेंगे ना, हम लोग के दिल से पूछो कितना बड़ा हम लोग के ऊपर वो होता है, क्या बोलते हैं उसका,
1: बोझ
0: बोझ बोझ होता है,
2: क्या होता है,
0: ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, क्या क्या खरीदना है,
2: अरे कुछ कम कर लीजिए,
0: पूरी यही बात असल बात आपने अभी कही है कि फरमाइशें आ रही है, बस वहाँ से बैठे बैठे फरमाइशें हो रही
1: है,
2: अफसोस
1: चले कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और इंशाल्लाह बस एंगेज करके जरूर आइएगा, ठीक है,
2: ठीक है, पूछेंगे जब आप आएंगे, ठीक है, बताइएगा,
1: सही है, चले,
2: ठीक है,
1: ख्याल रखिएगा,
2: अल्लाह हाफिज़
1: तो हमारे साथ हमारे बड़े मजे के कॉलर और इसके साथ ही जल्दी जल्दी से कुछ मैसेजेस शामिल कर देते हैं, वो सोचते होंगे कि हमारी तरफ तो नजर ही नहीं है तो आपकी तरफ भी नजर है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा है किसने, अच्छा ये बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि ऊपर से भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कंदारा और कंदारा ने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, सलाम नाजिम मैम, माही मैम, हैप्पी वीकेंड, वेरी नाइस योर शो, सुरजीत है ये, और कहते हैं कि मैम मैं मॉल में जाना पसंद करता हूँ और मैं वीक में एक दिन अनियन का तड़का रेडी करके फिर उसको कुछ टाइम ठंडा करके योगर्ट डालकर उसको रोटी के साथ फिर राइस के साथ खाता हूँ, ठंडा होता है। अच्छा एक बार मैंने रेसिपी देखी है, कुछ रात में भिगोते हैं ना, क्या कहते हैं इसको,
2: क्या चीज भिगोते भाई, तो अनियन में और योगर्ट, ये तो रायता टाइप है,
1: ये नहीं मैंने देखा है, मैंने देखा है रात के चावल मटके के अंदर, रात में चावल हाँ, डालते हैं, पानी डालते हैं,
2: बहुत सारे स्लैब्स भी उसको सुबह सुबह
1: एग्जैक्टली मैंने देखा
2: है, क्या बोलते हैं, कुछ है ना,
1: हाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़े बहन एंड मावज बहन, फैजान भाई बहुत अच्छे शायर भाई भी हैं, अच्छा फैजान ने शायरी सुनाई थी क्या, कमालुद्दीन शेख के कह रहे हैं, अच्छा? फैजान ने तो नहीं शायरी सुनाई थी, मुझे लग रहा है पहले नूर ने सुनाई थी, हाँ अस्सलाम वालेकुम तलहा फ्रॉम अलखोर और समर्स में आई ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम इवेंट्स हैपनिंग इन कतर, अगर घर के दोस्तों का साथ हो तो चाय में डुबो के खा लेते हैं, अगर कहीं और हैं तो फिर अलग बात है, हाँ भाई मतलब वो तो मैं भी नहीं करती वो वाला मामला तो मेरा भी नहीं है कि मैं महफिलों में बैठ के बिस्किट डुबो डुबो के खा रही हूँ, घर पे ही खाते हैं चुप चुप आगे,
2: अब लेकिन अगर आदत है बंदे की तो ना चाहके भी दिल इतना आप इतना टेम्प्ट हो रहे होंगे,
1: हाँ चाय और बिस्किट दोनों साथ साथ
2: है, अब आपका दिल चाह रहा है मैं डिप तो कर लूं एक बार तो करके देखूं, तो फिर
1: ऐसे यार क्या मसला है, मतलब इसमें क्या ही मसला है, लोग जज करते हैं तो करते रहे,
2: अगला देख रहा है डपा डप डिप कर
1: यहाँ ऑफिस में तो सब बैठ के, तुम देखा नहीं है चाय मंगवा के सारे मतलब जो ना जब बिस्किट और चाय मिल जाए तो सारे मैं फाइजा सफा मेरा ख्याल सभी डिप करके खा रहे हो,
2: मैं ही हूं जो अलग से बिस्किट,
1: आप ही हैं, आप ही हैं, आप मेरी अम्मी की तरह हैं, पप्पा की तरह हैं, लेकिन बाकी सब लोग खाते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम आपके साथ एफएम 107 और शहजादा सलीम है, कॉल करो ना,
2: अच्छा हम से बोल रहे हैं
1: जी, ठीक
2: अच्छा ठीक है हम करते
1: अच्छा
2: हैं।
1: कॉल्स हमारे पास ना हो क्या रहा है शहजादा सलीम कि हम पहले कर लेते थे आपको लेकिन लाइन फ्री नहीं हो रही है, अगर फ्री हो तो हम कॉल करें ना, एक के बाद एक कॉल आ रही है, ये मसला हो रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
1: जी कौन बात कर रहे हैं,
3: उम्मीद है कि आप
2: जमाल जी लग रहे हैं,
1: जमाल कैसे हैं आप,
2: कहां थे आप,
3: अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएंगे, मैं तो हूँ यही कतर में, मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ,
2: पर आपकी ना कोई हमें कॉल आ रही, जब मैं आफ्टरनून में थी ना पता चल रहा था आपका कि आप हैं कि नहीं है, कहाँ होते थे इतने टाइम,
3: नहीं वो वसीम बरेली ने कहा नहीं था कि हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं, वसीम कुछ पता हो तो बताएं कि कहाँ जाते हैं,
1: मुशायरों में जाते होंगे आप है ना,
3: ना मैं कहीं नहीं जाता,
2: अदबी महफिलें,
1: अदबी महफिलें चल रही हैं,
2: ओके तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप खैरियत से, अच्छा चलिए
3: अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मतलब मेरे साथ किस सफर में ऐसा हुआ है मैम, तो इस खास करके ये जो मेरा सफर चल रहा है इस बार का उसमें ऐसा है कि 24 घंटे में तीन हिस्सा जो है ना वो काम करता हूँ मैं और एक ही हिस्सा है वो जो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए बचता है,
1: अच्छा
2: बहुत मेहनत कर रहे हैं
1: भाई,
2: इतना ज्यादा काम है
1: ये, मतलब ये एक हिस्सा जो है कितना है जिसमें आप सोते हैं,
3: 24 घंटे में 16 घंटा मेरा रेगुलर काम है,
1: 16 घंटे
3: कंटिन्यू
1: बचे 8
3: नॉन स्टॉप और उसके बाद जो बचता है 8 उसमें फिर यानी कंपनी से रूम तक की ट्रैवलिंग भी है और फिर नहाना धोना सब कुछ कपड़े वपड़े भी है फिर खा के फिर सो जाना,
2: मुझे लगता है मैं विश इन्हें सत्तू दो,
1: हाँ इनको तो चाहिए
2: 16 घंटे जो काम कर रहा
3: है, तो ये है कि और इत्तेफाक की बात देखिए ईद हो बकरा ईद हो जुमा का भी छुट्टी नहीं,

0: अरे ये तो हम भी रो रहे हैं इसमें क्या,
1: लेकिन बस
0: है?
1: हमारे वो वाले टाइमिंग
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, लंबे टाइम है
2: आपका, आप तो आप अगर रो रही है तो वो बचा नहीं है, भेजा है लेकिन मेरा
1: भेजा ऐसे ना बोले, ऑफिस वाले भी सुनते हैं प्लीज, इस तरह की बातें ना करें, भेजा नहीं बोले, भेजा नहीं बोले,
0: हमारे आंसू पानी और आपके आंसू आंसू, ये
1: क्या बात है,
2: कोई सोचा थे
1: अच्छा वो देखिए पता है क्या जमाल एक बात, अभी कल मैं देख रही थी किसी ने रील बनाई थी कि काम खत्म करके काम करने जा रही हूँ ताकि काम करके घर पे आके काम कर सकूं,
0: बताइए
1: सोचिए कितनी गहरी बात की है मैंने, समझ में आई आपके
0: वाकई सच्चाई है।
2: मैं अपनी बात वापस लेता हूँ,
1: है ना, आप 16 घंटे करते हैं ना, हम 18 घंटे करते हैं,
0: यही कहना चाहते
2: जी जी जी
0: बहुत ही अच्छा
2: ऐसा ही है, यह है कि मतलब इस बार ऐसे ही हो गया तो हमने कहा चलो अगर जिंदगी को यही मंजूर है तो थोड़ा
1: जमाल अब रोना भूल गए, जमाल कह रही मैं अब क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं इनके सामने,
0: अब ये सोच रहे हैं सत्तू किसको जाएगा, आधा इनको चाहे आधा मुझे,
2: मैं भी कहने जा रहा था कि मिल बांट के ही बेहतर हूँ,
1: हम सब लोगों को एक जितनी जरूरत है,
2: कड़ी अगर आप भी है तो
1: बिल्कुल।
2: एक चीज है इसको अगर मतलब खास करके मर्द हजरात ना बहुत कम नोटिस करते होंगे, लेकिन चीजों पे हकीकत में नोटिस करता हूँ, मैंने देखा है बहुत करीब से, बहुत ज्यादातर मतलब वो रहता हूँ ना मैं इन्वॉल्व रहता हूँ घर के मामले में, पता रहता है ये बात, और है भी सबको होना चाहिए कि ऐसा हम सोचते हैं कि यार क्या है, बना खा लिए, नहा धो लिए, झाड़ू वाड़ू मार लिए तो घर में आराम ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक काम है जो चंद फासलों से फिर है, चंद वक्त के बाद फिर है, चंद वक्त के बाद फिर है, ऐसे औरतों का घर में काम होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
2: नहीं कुछ तो है जिनके छोटे बच्चे होते हैं, मैंने उनको देखा है कि अपना जो हम काम कर रहे हैं ना तो हमको ये पता है कि यार हमको यही एक ही काम है और इसी सिलसिले पे काम खत्म करके फिर वापस आना है, लेकिन जिनके छोटे बच्चे होते हैं मैंने उनको देखा है कि अगर वो कहीं किचन में बिजी है और छोटा बच्चा रोना शुरू कर दिया तो एक साथ वो दो काम सर ऐसा दुखता है सुन के ही खाली, और जो फेस करते हैं उनका क्या हालात होते होंगे, तो वो चीज महसूस करना चाहिए किसी को, मैं तो करता हूँ
1: बिल्कुल,
2: हालांकि मेरे बच्चे छोटे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े बड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ ना बड़े बच्चे भी परेशान करते रहते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि मम्मी है वो किधर कोई उधर से, मम्मी है मम्मी वो
1: वो ना सर, ये महमूद साहब कहा करते थे शुरू में जब उस वक्त मेरे बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो होता था मुझे परेशानी हो रही होती थी कि मैं छोटे बच्चों को बिल्कुल छोटा सा था तो उसको डे केयर छोड़कर आती थी, तो कहते थे कि जैसे जैसे ना बच्चे बड़े होंगे मसले भी बड़े होंगे उनके साथ साथ, तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको, तो ये चीजें होती हैं बिल्कुल। चले जी जमाल बहुत बहुत शुक्रिया, बस हमें एक ब्रेक पे जाना है, फिर इंशाल्लाह हम आते हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जरूर कॉल करते
2: रहना, बहुत खुशी हुई आप लोगों को सुबह सुबह सुनकर,
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया,
2: मैं सुबह छोड़ के दूसरे टाइम कॉल भी नहीं कर पाता,
1: नहीं नहीं आप जरूर तो कॉल करते रहिएगा ठीक है
0: इंशाल्लाह,
2: हाँ नहीं मैं जरूर जरूर इंशाल्लाह आप लोगों के मतलब साथ जुड़े रहूंगा मैं,
1: चले जी गुड जबरदस्त, और ख्याल रखिएगा अपना, नींद पूरी करा करें
0: जब मिले मौका,
2: कर लेता हूँ मैं तो रास्ते में गाड़ी खड़ी करके
1: चले गुड है, चले जी थैंक यू जमाल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया
2: बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़
1: रही जी, तो इसके साथ ही हम मूव करें ना से,
0: हाँ जी
1: है ना,
0: हाँ अब बढ़ जाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं विश्वन आजी, हम दोनों आपके साथ हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 8:01 आ चुके हैं।
2: और टाइम कहाँ जा रहा है हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं चाह रही थी कि एक खबर जल्दी से हम शामिल कर देते हैं और मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे जो है ना, अभी 5 से लेके 9 जून के दरमियान हो रहा है दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में एक, मतलब आपके लिए क्या आया है, एग्जीबिशन है और

0: एग्जीबिशन में टॉप रीजनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे शिरकत करेंगे, जिसमें फैशन, लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है. और आप जा सकते हैं दोहा एग्जीबिशन सेंटर में, यहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं. इसके साथ ही दोहा प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे लिटिल मारमेड, और ये स्टेज प्रोडक्शन बेस्ड होगा जो कि हैंस क्रिस्टन एंडरसन की स्टोरी के ऊपर है, डिज्नी फिल्म्स और म्यूजिकल. एक तरह का जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये एक पूरा प्ले यहाँ पे पेश किया जाएगा. तो ये सिलसिला है, आप लोग जरूर जाइएगा, इंजॉय कीजिएगा अगर आपको मौका मिलता है. और अगर आप इंडोर ही जाना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं मॉल से, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है.
1: सही, बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो,
2: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या हाल चाल है भाई आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक.
2: मतलब बात आप दोनों ने तो गदर मचा दी है 107 पर. हाँ, हम मानेंगे नहीं दोनों के दोनों.
0: किस तरह?
2: मतलब मैं तो सोचा कि शायद आसिफ की शादी करवा के छोड़ेंगे, कहीं से रिश्ता पकड़ के लेकर ही आएंगे.
0: सीरियसली
1: हमारा बस चले तो हम तो वाकई यहाँ से करवा के उन्हें तब
0: अभी भी, लेकिन वो एंगेज करने जा रहे हैं.
1: एंगेज.
2: हाँ, मैं सबसे सुन रहा हूँ. बोला कि भाई चांस मिलेगा गरीब को भी, या फिर कुछ होगा, या मैं सीधे ऑफिस ही पहुंच जाऊंगा आज. मैंने कहा कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, मिल जाएगा तो बात.
0: अच्छा किया, नहीं अच्छा किया, बिल्कुल. अच्छा भाई ये बताएं पहले तो कि आप जो है वो समर में मॉल जाना पसंद करते हैं या फिर आप बीचेस पे जाते हैं?
2: या फिर
0: बीच पे जाते हैं?
2: अच्छा, मैं जो है मॉल्स को तो मैं पसंद नहीं करता हूँ. मॉल्स मुझे पिंजरे लगते हैं. मैं जो है खुली फिजा में, खुली हवा में जाना पसंद करता हूँ. तो बीच जो है प्रेफरेबल है, फर्स्ट प्रेफरेंस. और सेकंड प्रेफरेंस तो जो है मॉल, मतलब ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, टाइम पास वाली जगह लगती है मुझे. ऐसे फर्जी घूम रहे हैं इधर से उधर, पसंद नहीं है. कुछ लेना हो तो जाओ, वरना कोई नहीं.
1: फर्जी जगह घूम रही हूँ
0: ऐसे ही. और कोई सवाल था ना? से
2: मॉल वैसे तो यंगस्टर्स के लिए है, पर एक दूसरे को बस पसंद करो,
0: बस एक दूसरे को पसंद करो.
2: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है.
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: अब हम यहाँ के बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कैसा है सीन. या नहीं,
2: मैं जनरली बोल रहा हूँ.
0: हाँ सही,
2: कहीं कहीं का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, जरूरी नहीं है कि जैसे हर जगह अप्लाई हो. मैं एक जनरल अपना एक ओपिनियन लिया हूँ कि ऐसा होता है करके.
0: होता तो है, होता तो है, ये तो होता है.
2: फैमिली
0: और
2: बहुत सारी चीजें रहती है. तो मॉल्स भी बुरे नहीं है मेरे कहने का मतलब, बट मेरा अपना पर्सनल चॉइस जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है.
0: सही,
2: बीच वगैरह और पार्क्स हो गए या फिर थीम पार्क्स हो गए, तो वो उसमें थोड़ा सा जो है एंजॉय करना चाहता.
0: आप देखें सुबह से रात तक आप शॉपिंग के लिए छोड़ दें.
1: मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही के ही निकलूंगी.
0: हाँ
1: भले मेरी लिस्ट,
2: मतलब वैसे तो आप लोग के जो है डीएनए में ही शॉपिंग है ना मैडम जी, क्या करें.
0: सब लोगों की नहीं होती है.
2: अरे ये मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ है.
1: अरे हमारे पास है एक बहुत ही यूनिक. मैं विशेष इनको बिल्कुल पसंद नहीं. इनसे कोई कहेगा चलिए मॉल चलते हैं शॉपिंग करें, ये एकदम बिल्कुल डिसहार्टेंट हो जाते हैं. अरे नहीं,
0: नहीं मुझे मुझे सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खरीदूं. मुझे मतलब कोई
1: मुझे याद है, मुझे मुझे याद है हम दोनों एक बार मॉल में तीन लोग गए थे.
0: तीन लोग गए,
1: इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या एक्साइटेड हूं, क्या लूं, ये लूं, वो लूं.
0: दो लोग बहुत एक्साइटेड थे, एक मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं.
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा.
0: तो ऐसे ही है मेरा. और मैं पता क्या, मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं करती यूजली. मैं अपनी बहन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती हूँ उस मामले में. तो मैं उसको बोल देती हूँ कि मेरा देख लेना, मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या लेना है. तो मैं यही होता है मेरा. और मैं अब तो मतलब एक ज़माना हो गया कि मैं मतलब मॉल जाती हूँ लेकिन शॉपिंग के लिए नहीं, मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ जो कुछ भी मंगवाना है. तो ये सिलसिला
2: मैं वैसे तो आजकल ऑनलाइन तकरीबन हो गया है. जैसा कि जो लोग मॉल जाना पसंद नहीं करते हैं तो वो ऑनलाइन से मंगा लेते हैं.
0: मैं तो ऑनलाइन
2: लेकिन ये जो मॉल्स में शॉपिंग करना होता है ये भी एक कला है. ये भी एक
0: बिल्कुल
2: कहाँ से कितना ढूंढो, ये आसान बात नहीं है. ये मतलब जो शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं शायद
0: टैलेंटेड होते हैं भाई. बहुत टैलेंट होता है. मैं तो नर्वस हो जाती हूँ.
2: सॉरी ऑफर पकड़ पकड़ के लेंगे.
0: एग्जैक्टली
2: वो चल रहा है यहाँ, ये चल रहा है यहाँ, ऐसे हो रहा है.
1: मैं सब कर लेती हूँ इस मामले में.

0: मेरा दिमाग इतना तेज चलता है कि पूछे नहीं, सारी कैलकुलेशन में कर लेती हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ ये, सब सब
1: तो हाँ। मतलब कि ऑफर निकालने वाले भी थोड़ी देर के लिए सोचते होंगे कि यार ये
2: क्यों निकाली, ऐसे ही ऐसे
1: सबसे पहले हमारे स्टोर पे यही आएगी क्या क्या।
0: और कुछ कुछ तो लोग मुझे इतना पहचान के बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैम आइए प्लीज आइए, तो जानते हैं कुछ ना कुछ पक्का
2: ये तो लाजमी खरीद के जाएगी, हम इसको जो भी पकड़ाएंगे ले ही लेगी।
0: और एक लाइन और मुझे कहते हैं आपकी बड़ी यूनिक चॉइस है, वो है नहीं लेकिन मुझे पता है
2: मैम आप पे ही बहुत अच्छा लगेगा,
0: आपकी यूनिक है
2: आप जाओ समझ और जाके ना आपके मुंह पे जो सेल्समैन आके खड़ा होता है ना, तो हमारे हाथ से तो चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं, हमें फिर समझ में नहीं आता कि हमने कैसे शॉपिंग करनी है, मतलब क्या लेना है। और मैं हमेशा, मतलब मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अगर कभी चली गई हूँ तो उल्टी चीज ही खरीद के लेकर आती हूँ, जिसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, मतलब मुझे नहीं, मुझे घबराहट हो जाती है कि ये क्यों खड़ा हुआ है आगे सर।
0: और मुझे तुम्हारे कहने से याद आ रहा है कि बेचारा अगर वो सेल्स बॉय आके खड़ा होता है तो मेरे अगर कपड़े मैं उन पे रख के देख रही होती हूँ कि ये
2: सेल्स बॉय पे सीरियसली
0: सीरियसली
2: समझ सोच ले ये हालात,
0: और वो देख रहे हैं तो कहते हाँ मैडम देखिए ये हम पे हमारा कलर थोड़ा ऐसा है, आपका ऐसा है, आप पे और जचेगा और जचेगा।
1: तो मैं बोलता हूँ कि भाई जब ये जो है ये वाला केस में जो है भाई तुझ पे कैसे जचेगा, मैडम पे जच जाएगा फिर भी ठीक है, समझ नहीं आती है बात।
0: वो बेचारा यही बोल रहा होता है मैम आप पे और जचेगा,
2: यानी जज उस पे भी रहा है।
1: बट कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं अपने न्यू कमर जो होते हैं, अपकमिंग सेल्समैन जो सो कॉल्ड अभी मार्केट में न्यू ज्वाइन होते हैं, उनके साथ में डील करने में भी थोड़ा मजा आता है, क्योंकि आप लोग तो एक्सपीरियंस हो जाते हो तो थोड़ा खेल भी लेते हो, लड़की लोग आप लोग ये तो पता है मुझे।
2: आप, देख लो आपकी बात से मुझे निकाल दें इस बात से, मैं लड़की हुई नहीं इस मामले में। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, या तो मैं वो जो भी दे रहा होगा ना बेकार की चीज भी मैं लेकर आ जाऊंगी, ये होगा।
0: अरे भाई ये क्या है, वो नहीं
2: मुझे नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कोई सर पे आके खड़ा हो तो ये है चक्कर जी। तो ये सिलसिला है, तो तलहा कह रही हूँ सॉरी समद तो आपका ये नहीं, तलहा ने कॉल नहीं किया लेकिन अभी मैसेज पड़ा था ना थोड़ी देर पहले तो मेरे जहन में तलहा आ गया, राइट। तो ये आपका सिलसिला और हमारे साथ एक कॉलर और हैं और वो दिल ही दिल में हमें बहुत कुछ बोल रहे होंगे, तो हम चलते हैं उनकी तरफ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुल्करनैन जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बस, आई थिंक टुडे द लास्ट डे नाज़िया विल गोइंग टू वेकेशन।
2: आपकी आवाज में कितनी तकलीफ आई है इस बात से।
0: चलो हाय, कोई तो मिस कर रहा है मुझे,
3: तो आप जाके बताएंगी उसको वेद और श्रुति को आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, फोन जो ड्यूटी पे।
0: अगर मिल पाए, वो वैसे दूसरे ही स्टेट में होते हैं तो वो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब बहुत अच्छा खासा दूर, तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं और मैं यूपी से हूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरा किसी तरह से उनसे कोई कनेक्शन हो पाएगा।
3: आजकल तो चले ये तो वैसी मैंने एक वैसी बात कर दी, लेकिन तो शॉपिंग वगैरह ये सारा ये बातें मैं सुन रहा तो हो रही हैं। शॉपिंग के लिए सबसे पहले तो मैं भी साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है या मेरी एक्सपीरियंस है, दो जाएं, सिंगल ना जाएं, सिंगल को तो वो पजल कर लेते हैं और आपने बाकी जो चीज नहीं लेनी होती ना वो लेके आते हैं।
2: नहीं नहीं बात वो नहीं है, मुझे मतलब ना शॉपिंग मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे शॉपिंग करना पसंद ही नहीं है, ये एक अजीब चीज है, लेकिन ये
0: बहुत ही अजीब सी
2: है, लेकिन ऐसे ही
0: फीमेल और शॉपिंग नहीं पसंद
3: तो हर वक्त आपको जरूरत है, अभी समर आ रहा है शॉपिंग और इस चीज में भी हाँ फजूल में आप शॉपिंग ना करें, लेकिन जरूरत की चीजें तो
2: मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, मतलब मुझे जाके थोड़ा कंफ्यूजन होती है हमेशा से ही, तो
0: अच्छा,
2: मैं अब ये जब से मिल गया है ऑप्शन तो ऑनलाइन
0: अच्छा नहीं दिखेगा, जाके देखूंगी तो शायद दो तीन और अगली चीजें भी
2: देखूंगी। मैं ऑनलाइन बहुत अच्छी शॉपिंग करती हूँ नाज़िया, मतलब मैं इस मामले में ग्रोसरी हो चाहे कपड़े हो चाहे घर का सामान हो डेकोरेशन आइटम हो, मैं बहुत अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ।
0: अच्छा,
2: लेकिन वो ही मैं जब जाऊंगी ऑफलाइन होके तो फिर मैं खुद भी ऑफलाइन हो जाती हूँ।
3: नहीं नहीं आप सही कह रही है, कोई चीजें आपकी ऐसी होती हैं कि आप उन स्टोर का

0: चीज़ों का पता हो। इसमें मेरे बच्चे जो हैं वो काफ़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको पता है इस पैसे की स्टोर या इस ब्रांड में है। अदरवाइज़ आप जैसे पर्सनली फॉर माई सेल्फ, मैं कहीं भी जाऊँ जब तक मैं पहन के ना देखूं हर ब्रांड की फिटिंग जूता हो या ड्रेसेस हो,
1: सेम
0: वो आपको समझ आपको में नहीं ना, और या उनके मॉडल जब डिफरेंट होते हैं तो फिर हमें ये शायद बच्चे उनको अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि ये हमें कैसा दिख रहा है, फिटिंग कैसी है। फिर चले, यहाँ तो ये भी सहूलत है कि अगर आपकी कई जगह पे घर में आए हैं तो फिर वो रिटर्न भी कर लेते हैं, लेकिन एक हेडेक है। तो बहरहाल मैं कपड़े ये चीज़ें लेके जाऊँ तो मैं मिसेज को लेके जाता हूँ, क्योंकि उसको फिर मैं ट्रायल रूम में सामने ही वो भी ओके करती है, मतलब ओके हो गया।
1: वाह, तो चलिए फाइनली उन्हीं की पसंद है आपकी पसंद के साथ में, ये आप अच्छा करते हैं
0: तो उसमें ना बड़ा कंफर्टेबल। बाकी ये भी हेडेक है।
1: अच्छा, ऐसा भी कभी सिचुएशन आई है ज़ुल्कन एन जी जहाँ पर आपकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे तो यही लेना है, बट आपकी वाइफ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है?
0: ऐसी चीजें वैसे मुझे याद नहीं पड़ती, क्योंकि वो जज कर रही होती हैं या देख रही होती हैं, और तकरीबन इस चीजों में अब इतना अरसा हो गया कि मोर देन 20 इयर्स, तो अब हम लोग एक दूसरे को काफी मैच यानी समझ चुके हैं। हाँ, अगर कोई शुरू का वक्त होता तो और बात थी। उसको ब्लू कलर बहुत पसंद है, ये एक अलहदा बात है। मैंने कहा बस तुमने मुझे पेंट कर दो ब्लू में, बाकी
1: वही वाले ना मैन इन ब्लू, तो वो बिल्कुल
0: उनको ब्लू बहुत पसंद है और इस तरह है, तो उस शेड में मेरे पास शर्ट्स या कपड़े भी होंगे ना, आई थिंक 70-80% इसी शेड्स में होंगे। तो कभी कभी कहता हूँ प्लीज अल्लाह ने और भी रंग बनाए हैं, और भी चीजें बनाई हैं, थोड़ा उनकी तरफ भी तवज्जो कर लें। और बाकी वाकई समर सेल्स आ रही हैं कई जगहों पे, तो बड़ी अच्छी लगती हैं।
2: ये तुम्हारी तरह लग रहे हैं, इनका दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा, ना ये मॉल्स पे वैसे घूमने जा रहे हैं ना कुछ, इनको दिमाग शॉपिंग पे आ गया है।
0: आई हैव टू क्लोज दिस सब्जेक्ट। बाकी गर्मियों में गर्मी के दिन के हिसाब से ना आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन 40 प्लस की हवा चल रही थी इवन मगरिब के बाद भी, तो जब गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हों तो फिर बाहर आउटिंग जरा इतना कम्फर्टेबल नहीं लगती। तो बाकी नेचुरल और आउटिंग, और आउटिंग समर के अंदर सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन है मॉर्निंग या फिर मगरिब की जरा बात, लेट नाइट के बाद के बजाय इस वक्त, हाँ नेचर में आप बैठे हैं, खुली हवा, ऑफ कोर्स हम लोग एसी एनवायरनमेंट में हैं, और बाकी कोई मॉल इतने अच्छे हैं कि वहाँ जाना या किसी वक्त आप जैसे फेस्टिवल्स या ऐसी चीज़ें लगती हैं, तो अब बच्चे छोटे थे तो बड़ा इन्जॉय करते थे, अब बच्चे इसको इन्जॉय नहीं करते, मसला ये भी है। तो हम बच्चों के साथ जाते थे, बच्चे घूम रहे फिर रहे, तो उनका फन टाइम है, तो कहते हैं फैमिली के साथ आपकी ना प्रायोरिटी सेट हो जाती है, तो फिर हम वैसे ही घूम रहे होते हैं, जब वो कहें थक गए हैं कुछ खाना पीना या वापस चलें तो ठीक है वापस चलें।
1: नाइस। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे वीकेंड्स की एक्टिविटी है कि लाइक मूवी चले गए देखने? मैं सोच रही थी शायद कोई भूलेगा, समर्स में ज्यादातर लोग भी फर्जते हैं, मूवीज
2: इतनी ज्यादा आती नहीं है ना, अब इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, कम मूवीज अच्छी आती हैं।
1: अच्छा,
2: मे बी अब लोग ईदों पे जाते हैं वैसे, मतलब जैसे अभी हम भी ईद पे गए थे मूवी देखने के लिए।
1: हाँ, लेकिन कुछ लोगों को क्रेज है मूवीज का, वो हर तरह की देखते हैं, बट अभी तक कोई जुड़ा नहीं। मुझे ऐसा था कि शायद कोई भूलेगा बताएगा,
0: मूवीज ऑनलाइन भी लोग देख लेते हैं, ये भी एक फैसिलिटी मिल गई है, वरना इसमें कुछ अर्सा पहले वाकई जो मूवी लवर्स थे वो बगैदा प्लान करके और टुगेदर मिलके वो जाते थे मूवी देखने।
1: और ज़ुल्कन एन जी आज भी ना अगर आप किसी मूवी लवर से बात करें तो वो कहते हैं घर में देखने का मजा नहीं है, जो थिएटर में देखने का मजा है, जो वाकई डाई हार्ट वाले हैं,
0: बड़ी स्क्रीन या सिचुएशन,
1: वो एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट,
0: उनको एनवायरनमेंट या उस,
2: और मेरा ख्याल है ये इंडिया में ज्यादा होता होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे टिकट भी सस्ता है ना, मतलब लोग
0: बहुत अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पर, उनको ये ऑप्शन अवेलेबल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर या वहाँ सेटअप है।
2: अब जैसे हमारे मतलब पाकिस्तान में अम्मी लोग बताते हैं कि जब वो छोटे हुआ करते थे वो लोग भी, तो उस वक्त जो है वो सिनेमा कल्चर बहुत ज्यादा था, तो उन लोगों का होता था कि मतलब कहाँ घूमने फिरने की बड़ी जबरदस्त जगह होती थी कि कोई मूवी लगी हुई है वहीद मुराद की, मोहम्मद अली की, तो वो उधर मूवीज देखने जा रहे होते थे। लेकिन वो हम लोगों ने वो वाला कल्चर नहीं देखा, हमारे वक्त में तो पता नहीं कब से

0: पहले तबाह बर्बाद हो चुकी थी इंडस्ट्री हमारी, तो ये कि इस तरह का है। लेकिन इंडिया का मैं उस वक्त में सुनती थी कि लोग मतलब कुछ ना करें लेकिन मूवी जरूर देखते हैं।
1: हाँ। वो इरा चेंज हो गया है, और उस वक्त ना वो उसकी कामयाबी की जमानत ही यही थी कि जिसमें फैमिली और खवातीन जाके देखती थी, बोलेंगी कि ये तो अब हिट है। उसके बाद फिर वो कंडाता और वो दूसरी टाइप की आ गई, तो फिर एकदम दूर हो गए, तो फिर उसकी जो देखने वाले भी चेंज हो गए। और जैसे आप बता रही है ना, वही हशर हुआ जो आपने एक्सप्लेन कर दिया।
0: तो लेकिन अभी अभी एक आध मूवी बहुत अच्छी बीच में आई है, वो बहुत अरसे के बाद आती है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा रिवाइव करा है। अभी ज़ॉम्बी आई है, हम मैंने देखी जाके, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो
2: हाँ, नाम ही ऐसा है, ज़ॉम्बी के ऊपर।
0: हाँ, ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अच्छी मूवी थी।
2: मैं तो पहले ही
0: अच्छा मैं अगर कोई पाकिस्तानी मूवी आती है, क्योंकि हमारी मूवीज का हाल कब से ऐसा हुआ है, तो मैं जरा एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मैं जाके देखती हूँ। अच्छा। अगर थोड़ी सी मुझे मुनासिब लग रही होती है तो मैं देखती
2: मतलब
0: हूँ। तो
2: मैंने वगैरह पहले पढ़ के
0: मतलब अगर कास्ट अच्छी है, जैसे मैंने पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी, फैन ट्रबल देखी, पिछले साल उम्रो यार आई थी वो देखी, इस दफा ये देखी, ज़ॉम्बी देखी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई पाकिस्तानी मूवी लगी है तो अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए तो मैं जाती हूँ, और अच्छी निकलती है यूजली, अच्छी होती है।
2: ड्रामास तो खैर बहुत अच्छे हैं, वो मैं देखती हूँ। मूवी के तो मैं शौकीन हूँ भी नहीं, चाहे कहीं की भी कोई भी मूवी हो, तो आई एम नॉट अ पर्सन लाइक जो थिएटर में जाके 3 घंटा बैठे या 2 घंटा बैठे, चलो 1-1.5 घंटा टिक के बैठना, क्योंकि मैं टिक के नहीं बैठ सकती। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती टहलने की, और लोग कहते अरे अरे बैठिए आप भाई, हमको दिख नहीं रहा है पीछे, तो इतना डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट करती हूँ कि मैं इसलिए जाती ही नहीं।
0: लेकिन मैं हम जाते हैं, और काफी इंडियन मूवीज भी देखी है, इंग्लिश भी अच्छी देखी है, तो कभी मतलब अच्छी आती है तो वाकई मजा आता है आपको, मूवी का एक अलग एक्सपीरियंस है। वही फिर चीज आप घर पे आके देखो, आपको इतना मजा नहीं आएगा।
2: हाँ शायद ये इसीलिए लोग कहते भी हैं।
0: हाँ,
2: so nice.
1: तो एंटरटेनमेंट या इन चीज़ों को फैमिली के साथ देखने का भी मजा है, और जैसे ये मैविश कह रही हैं, ये यकीनन वो जो लोग बड़े पढ़े लिखे या एक चीज़ों को बड़ी मेहनत करके बनाते हैं ना, अब तो वो काफ़ी सही कह रही हैं कि अब जो कुछ आ रही हैं तो उनको जिनका जोक है। ऑफकोर्स मैं मूवी भी देखने वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, यानी फॉर एनी रीज़न
2: ये और मैं एक ही से
0: शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग
2: मूवी से कोई मतलब
1: पाकिस्तान में तो आज तक कभी नहीं। मैं जिंदगी में फॉर लाइफ एमिरेट्स में वन टाइम वो मुझे एक बंदे बस मूवी के लिए लेके था, मुझे याद नहीं है इन माय होल लाइफ ओनली सिंगल टाइम। मैं
0: पाकिस्तान में तो खैर हम लोगों ने भी नहीं देखी है, लेकिन मैंने फिर भी शादी के बाद पहली दफा हम सिनेमा गए थे मैं और हस्बैंड, तो मुझे तो खैर उस वक्त मतलब क्योंकि मूवीज़ का एक बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, और हमारे घर पे तो वैसे भी मूवीज़ क्या मतलब टीवी को ही इतना बुरा समझा जाता था, हमारे घर का माहौल इस किस्म का था, अम्मी पापा बिल्कुल ही बचपन में अपने गए हैं फिल्में देखने के लिए, लेकिन हम जब बड़े हुए तो सब खराब हो ख़त्म हो गया था ना। तो मेरे तो मतलब ये वाला था कि सिनेमा हम जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि अब नई नई आपकी शादी होती है ना, तो हम लोगों को तो बहुत अरसे तक कोई नहीं समझता था कि हम वाइफ हस्बैंड हैं, तो हाँ तो एक वैसे ही होता था कि लोग सोचेंगे यार पता नहीं कोई मतलब ऐसी लोग आ गए मूवी देखने के लिए, तो बड़ी ऑकवर्ड फीलिंग थी, लेकिन हमने अच्छी मूवी देखी थी, मुझे याद है वो थी एक बड़ी मशहूर गाड़ियों वाली एक मूवी बड़ी मशहूर हुई थी कुछ वो थी, मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा नाम बताऊंगी मैं
2: Indian.
0: तो वो इंडियन इंग्लिश मूवी थी, तो वो थी। फिर उसके बाद एक और हमने देखी थी, 2 दफा का इत्तफाक था, लेकिन फिर यहाँ आके मुझे मूवी देखना अच्छा लगने लगा। पाकिस्तान में थोड़ी सी थिंकिंग हमारी चेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आके हाँ फिर कभी कोई अच्छी आई है, जैसे बजरंगी भाईजान देखी थी हमने, और इस तरह की कुछ अच्छी मूवीज देखी है, मजा आता है।
2: सही।
1: ये क्वेश्चन कि आपका हस्बैंड वाइफ नहीं समझते थे, ये क्या बात है?
0: हाँ, क्योंकि हम लगते नहीं थे ना, हम लोग छोटे लगते थे और वो लोगों को ऐसा लगता था कि मतलब ये मतलब ये ऐसे ही कोई आपको पता है ना, फिर सब मूवी छोड़ के वो हमें देख रहे होते थे कि मतलब ये क्या चल रहा है भाई ये वाला सीन है। तो ये है,
1: अच्छा टाइम गुजरा। चले ओके जी,
0: चले जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी, बाय बाय। राइट, तो हमारे साथ हमारे कॉलर, और अब क्या करना है, ब्रेक?
2: मुझे लगता है महवेश अभी हमें छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, वापस आएंगे तो एक छोटी अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहाँ हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: सी लाइन बीच पर घूमने का ही मन करता है. अभी ईद पर दुकान नहा कर आया हूँ. और तस्वीर भी भेजी है
1: इन्होंने.
0: गुड, जबरदस्त. और उसके साथ ही वीडियो भी भेजी है किसी ने. हेलो नाजिया जी एंड योर पार्टनर, गुड मॉर्निंग मावज, और लिसनिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और कहते हैं कि इट्स हॉट, प्लीज आस्क योर लिसनर टू स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड कॉफी, स्पाइसी फूड, बट अडॉप्ट फ्रूट्स, लिक्विड बेस्ड फूड, फूड लाइक फ्रूट्स एंड मेलन, वाटर मेलन, ग्रेप्स वगैरह, और लीफी वेजिटेबल्स भी. और समर में आई प्रेफर टू रन एवरी डे टाइम, इट्स कॉल्ड हीट रन ट्रेनिंग. अब ये ही तो मसला है, नाम इनका क्या है, नाम देखना पड़ेगा, नाम भेज दिया करें. अश लिखा है, तो मिस कॉल नहीं यहाँ पे करें, कॉल आप हमें हमारे नंबर पे करें, जो कि क्या है,
1: हमारा नंबर है 4434377. इस नंबर पे हम आपकी कॉल्स ले सकते हैं.
0: राइट. और आसिफ कहते हैं वो आपसे मोहब्बत करती है कैट. अस्सलाम वालेकुम.
1: ओहो, दैट्स ट्रू. ये तो सच है, ये तो सच.
0: अच्छा, कैट ना पता है मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती है.
1: और आप भागती
0: हैं? मैं भागती हूँ. और मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ रही होती हैं. वो मोहब्बत बहुत करती हैं. ये मुझे सरवर भाई, अमीन भाई वो देख रहे होते हैं, किसी के पास नहीं जाएगी, मेरे पास ही आएगी. तो कहते हैं भाई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और हम क्या करें कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से. तो खैर, अयाज बलोच कहते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड वस्ती भाई. और देख लें भाई, वस्ती भाई कौन है? ये वही है जो उड़ के जाते हैं. अच्छा, और फिर वापस आते हैं.
1: ये जो कल बताया
0: कल
1: था,
0: जो बताया हाँ, था. और इसके साथ ही जी हमारे पास मिस कॉल एक और है, और मिस कॉल का अपना नाम मैं क्या ही पढूं. जसविंदर सिंह कहते हैं, मैडम जी कतर में स्कूल में छुट्टियां कब हो रही हैं?
1: अभी तो लास्ट जून से होगी भाई.
0: और कबीर भाई का शो में सुनाते थे शायरी, फैजान. हमें तो नहीं सुनाई. ये दूसरे वाले अच्छा. फैजान है. फैजान भी पता है आपको अलग अलग है. एक फैजान है जो हमेशा शायरी सुनाते हैं.
1: दो फैजान है.
0: वो फैजान नहीं आ रहे जो शायरी सुनाते
1: और
0: हैं.
1: और आसिफ भी दो तीन हो गए थे जब हम लोग शो कर रहे थे आफ्टरनून में. तो आसिफ 1, 2, 3. तो हमें भी
0: फैजान भी बल्कि तीन है.
1: हाँ, शायद फैजान है. दो तो मुझे याद पड़ता है, बट तीन नहीं मालूम.
0: तीसरे भी एक. अस्सलाम वालेकुम. आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा
1: नसीम जी. अल्लाह तेरा शुक्र है. आप प्लीज
0: प्लीज चुप रहे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह. गुड मॉर्निंग मावज जी एंड नाजिर जी, कैसे हैं आप दोनों? समर मॉर्निंग में वेलकम. और हम लोग यूजली हर साल समर हॉलीडेज में इंडिया छुट्टी पे जाते हैं. जब ना जाएं तब घर में ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. शाम में कभी मॉल्स में चले गए, कभी कजन्स की फैमिली के यहाँ, कभी मॉल्स में बच्चों की राइड्स होती हैं तो वो कराते हैं, और कुछ इवेंट्स भी अटेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मोहम्मद यूसुफ और कहते हैं नाजिया जी हैप्पी वेकेशन, हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी.
1: थैंक यू सो मच.
0: और खैर से जाके खैर से वापस आए. टेक केयर, एंजॉय वेकेशन.
1: थैंक यू
0: एंड श्योर वी विल मिस यू. गाड़ियों वाली मूवी. तो यही मैंने पहली मूवी थी, पता नहीं कौन सी दूसरी तीसरी आई थी इसकी, तो वो मैंने देखी थी पहली मूवी. लेकिन मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैं इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी ना. मैं नीचे देख रही थी. मैं चली तो गई थी हस्बैंड के कहने. मुझे बहुत ऑकवर्ड, मुझे ऐसा मतलब मुझे लग रहा था लोग मुझे ही देख रहे हैं, और चाहे देख रहे हो ना देख रहे हो, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था. तो ये है सिलसिला.
1: जब तुम चली ही गई
0: पहली दफा गए थे भाई और पप्पा से ना, जैसे मैं कह रही थी ना कल कबूतरबाज को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, तो हमारे पप्पा बहुत सारी चीजों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे.
1: मूवी देखते
0: तो वो मूवी देखना भी था. और इवन मतलब हम लोग जैसे होता था ना 90s में कि हम लोग घर पे मूवी मंगवाते थे और ये वो, तो हमारे घर पे मतलब हमेशा से VCRs वगैरह थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पप्पा कुवैत में थे तो वो तो होना ही था. लेकिन हमें अलाउ नहीं था मूवी देखना. मतलब हमारे घर पे जब रिश्तेदार आते थे वो लोग मंगवाते थे. अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कि हमने बहुत ही कोई तारीफ सुनी है और मामू के घर जाना नहीं हुआ तो हमने कोई मूवी मंगवा ली. मुझे याद है मंगवाई और वो वापस करनी ही थी कि उससे पहले ना वो घर पे आ जाता था. वापस ना करो, डिमांड पे चल रही होती थी ना, तो वो घर पे आ जाता था. घर पे आया है अब पप्पा ने ना, हम लोग मूवी, अच्छा फिल्म कौन सी, ओके ठीक. फिर हम मुझे बुलाया क्योंकि मैं ही बड़ी थी, सब तो छोटे थे, तो बुलाया और फिर उसके बाद मूवी वापस कर दी. तो पप्पा घर पे आके, अब हमारे घर पे लोग मूवीज वापस लेने आया करेंगे, ये हाल हो गया घर का. हमें ऐसा लगता था हमने
1: तो हम तो चाहते हैं कि हम ये रख लें घर पे ना वापस.
0: बहुत बुरी बात समझी जाती थी हमारे घर पे. पप्पा ऐसा समझते थे कि बहुत ही बदमाश टाइप लोग होते हैं जो घर पे मूवीज देखते हैं, उनके घर पे मूवी आती है. तो हमारे ये तो हालात थे घर के. तो अब उसमें हम
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि लोग कितनी अच्छी सोचते हैं, कितनी सिंपल सोच ही था.

0: ऐसे ही था, जबकि खुद जाते थे मतलब अपने पहले जमाने में गए हैं, लेकिन मैंने अपने अम्मी पापा को ना टीवी देखते देखा ही नहीं नाजिया। मतलब वो लोग ऐसे थे कि अगर आप बहुत कुछ तारीफें करके बिठा दो तो 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद सो जाते थे।
1: अच्छा मुझे भी कभी एक्साइट नहीं किया मूवी ने और ना मैंने देखा। मैं अपनी लाइफ में आई थिंक शायद
0: देखो मैं बता देता हूं, तुम्हें ना पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा।
1: मुझे पाबंदी तो नहीं थी,
0: हमारे यहाँ ये था कि मैं बता रही हूँ, कोई भी आता था कुवैत में भी इवन, मतलब लोग आते थे और हमारे घर पे मूवीज मूवी नाइट वगैरह होती थी कि देखनी है, क्योंकि उन लोगों के अपने घरों पे नहीं होता था, तो हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सही था, तो वो लोग आते थे हमारे घर पे देखने के लिए और हमें अलाउ नहीं था। तो हम क्या होता था कि मैं होमवर्क के बहाने टेबल के नीचे बैठ के, मैं बोलती थी होमवर्क कर रही, टेबल छोटी सी थी तो टेबल के नीचे बैठ के होमवर्क कर रही होती थी, लेकिन मैं फिल्म देख रही होती थी, मुझे इतना शौक था। और एक दो मूवीज थी हमारे घर पे, वो एक गाना है ना वो सावन का महीना पवन करे सोर, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी हमारे घर पे थी, वो हमारे घर पे पता नहीं कैसे थी, शायद पप्पा को वो कुछ पता नहीं कैसे।
1: अच्छा?
0: तो वो इतनी पुरानी फिल्म थी, यकीन करो मुझे उस फिल्म की कहानी याद नहीं है, मैं इतनी छोटी थी और वो फिल्म भी पता नहीं कब की थी, लेकिन ये एक मूवी कैसेट हमारे घर पे थी, मैं वही लगा लगा के देखा करती थी जब पप्पा नहीं होते थे घर पे। तो मुझे वो मतलब गाना याद हो गया था और फिल्म मुझे अभी भी कहानी नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मुझे याद नहीं हुई वो कहानी की थी क्या, लेकिन मैंने वो भी देखी है। मतलब एक क्रेज था, पप्पा देखने नहीं देते थे और मुझे बड़ा क्रेज था कि मूवी देखनी है। हाँ, फिर वो मुझे याद है कि फिर ना वो मैंने प्यार किया ही थी, तो वो एक कैसेट हमारे घर पे पता नहीं कैसे बच गई थी, कोई मतलब किसी ने मंगवाई थी कुछ था, वहाँ पे तो वो वापस करने का चक्कर नहीं होता था ना, वहाँ पे तो खरीद ही लेते थे, तो वो रह गई थी। तो मैंने कोई मतलब अपने बचपन में ही कोई 300 दफा देख ली होगी अभी तक मेरी फेवरेट है। तो हमारा ये मामला था, हम छुपके देखते थे, छुपके देखते थे और बार बार, शायद मुझे जब से ही रिपीट करने की आदत पड़ गई है,
1: शायद मुझे एक्साइट नहीं करती। पहले ज्यादातर जितनी भी मूवीज आती थी लव स्टोरीज थी, and I simply
0: I hate love stories.
1: मुझे कभी excited नहीं, और इसीलिए मैं शायद movies की तरफ कभी
0: नहीं। मुझे कहानियाँ अच्छी लगती हैं और कहानियाँ plus मतलब movies, dramas, कहानियाँ, novels, तो ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है।
1: अच्छा लगता है विजुअली देखना, मुझे पढ़ना ठीक लगता था,
0: पढ़ना देखना सब।
1: हाँ, लेकिन मुझे सस्पेंस हो ये सारी चीजें पढ़ने बहुत अच्छी है। अब देख नहीं सकती मैं, मैं मार धार लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं,
0: मैं भी नहीं देख सकती।
1: अगर मैं मूवीज आज अगर कोई घर पे भी देखती हूँ तो वो सिर्फ वो जो कॉमेडी मूवी हो और वो जो मैं पूरी सुन चुकी हूँ।
0: अच्छा,
1: जो एकदम अच्छी मूवी है, जो मुझे पूरा
0: आपका जौक ही नहीं है, आप रहने दे, आप शॉपिंग करें आप जाके। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, नाज़िया मैम कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक,
1: खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान गए जी?
0: जी नहीं, अभी एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, बताएं।
2: नदीम नज़ाकत
0: हम इतनी कम कॉल करते हैं, तो अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं पहचानेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
2: अच्छा अच्छा, और सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं शो सुनता रहता हूँ, लेकिन बस टाइमिंग ऐसी होती है ना कि आपको मैसेज नहीं कर पाता हूँ। बहुत देर से ट्राई कर रहा था शायद आपसे कॉल में बात हो जाए, तो इसी वजह से।
1: नाइस, चलिए अच्छा, फाइनली आपसे बात हो रही है।
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसका पूछ रही थी ना कि शॉपिंग करना कैसा लगता है या बीच में जाना कैसा लगता है, तो जाहिर सी बात सबको अच्छा ही लगता है,
0: लेकिन मुझे अच्छा ही लगता है।
2: मैं तो बकरा में रहता हूँ, खास बीच के ऊपर ही, तो जाहिर सी बात है टहलते हुए चले जाओ तो सामने बीच है, 10 मिनट भी नहीं लगती।
0: बकरा फैमिली बीच जाते हैं। गुड।
2: शॉपिंग करना तो बहुत ही जबरदस्त लगता है,
1: देखा कितने लोग निकल के आ रहे हैं मेरी तरह, जिन्हें शॉपिंग करना बहुत
2: शॉपिंग में भी आप यकीन मानिए, कसर से बता रहा हूँ कि आपको, मुझे अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए खरीदना सबसे अच्छा लगता है।
0: ओए होए होए। अच्छा, नाज़िया का अलग मामला है, नाज़िया को अपने लिए ही खरीदना अच्छा लगता है।
2: जी मुझे भी कपड़े और परफ्यूम तो सबसे बेस्ट है मेरे, और मैं तो जाहिर सी बात है मैम के साथ रहता हूँ, तो कभी लगुना मॉल तो कभी अजान मॉल तो कभी कौन सा मॉल, बस इसी उसमें फेस्टिवल्स वगैरह सब माशाल्लाह घूमता रहता हूँ मैं, तो जहाँ जो मिल गया वो ले लेता हूँ मैं। कल भी मैं एक जगह गया था, आपने शायद देखा होगा एड्स वगैरह में, वी परफ्यूम्स के नाम से एक ब्रांड है, तो वहां से मैं 4 परफ्यूम्स लेके आया सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, एक मेरा, 3 वाइफ की।
0: वाओ,
1: इनकी वाइफ

0: जबरदस्त
1: माशाल्लाह माशाल्लाह लकी कि उन्हें जाने उन वो भी जाती हैं वो भी शौकीन है शॉपिंग की खुद से जाके करना या फिर जो आप ले आते हैं बस
2: वो इंडिया में है जाहिर सी बात है वो भी शॉपिंग के लिए जाती हैं अभी हम लोग तो यूपी से बिलोंग करते हैं तो परसों मुझसे बोले कि
1: यूपी से कहां से हैं आप यूपी में कहां से
2: मैं रामपुर से
1: अरे तो आप हमारे बहुत आसपास से हुए क्या बात है मैं तो खैर मुरादाबाद बहुत टाइम रही हूँ मेरे अब्बा की वहाँ पोस्टिंग थी तो मैंने अपनी इनिशियली पढ़ाई वहीं पर की फिर खैर बाद में हम लोग शिफ्ट हुए अभी तो खैर अलीगढ़ में है लेकिन हाँ रामपुर बहुत आना जाना रहता रहा
2: अच्छा माशाल्लाह जी तो आइए फिर
1: शॉपिंग पे
2: अच्छा
1: सही है बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर कभी ना कभी
2: मैं आपसे एक बस बात शेयर करने जा रहा था कि अभी कुछ टाइम पहले डेढ़ दो साल पहले की बात है वो हमारे साले की शादी थी और साले की तो उनको कपड़े खरीदना थे तो मैंने कहा तुम नहीं खरीदो मैं खरीद के दूंगा तो बोले आप कैसे खरीदोगे मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ अभी कैसे तो आपने शायद देखा होगा सब्यसाची की जो आते हैं कपड़े और साज कलेक्शंस के आप यकीन मानिए रजीवा जी कि मैंने पता है कहाँ से खरीदे इंग्लैंड से कपड़े खरीदे थे और वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आए पाकिस्तान से दुबई आए और दुबई से दिल्ली गए और दिल्ली से रामपुर गए जितने की वो कपड़े नहीं थे
0: उतना ज्यादा तो नहीं गए तो डिलीवरी पड़ गया
1: अब मैं विश्व कोई मुझसे भी आगे
0: देख ले
1: पूरी वर्ल्ड टूर के बाद कपड़े लैंड करवाए
2: लेकिन माशाल्लाह वो कपड़े ऐसे थे कि उन्होंने पहने जब अपने भाई की शादी में तो माशाल्लाह सबसे अलग ही लग रही
0: ओए होए होए क्या बात है
1: ऐसा तो नहीं कि खुद ही कह रही कि देखो मैं कितनी अलग लग रही हूँ प्लीज देखो
2: नहीं
0: इंग्लैंड से लिए थे भाई तो अलग तो होंगे वो है जो चाहते हैं कि इनकी बीवी सबसे अलग लगे
2: जी लेकिन बच्चे भी वो अपने बच्चों को भी बहुत केयर करती है मैंने शायद आपको बताया भी था माशाल्लाह मेरे पांच बेटे हैं तो माशाल्लाह उनको कोई ना कोई डिमांड आती रहती है आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी कह रहे बाबा चॉकलेट चाहिए पलंग चीज चाहिए ये चाहिए और नारियल वाली चॉकलेट जरूर लेके आना
0: अच्छा चले गुड जबरदस्त जबरदस्त अच्छी बात
1: अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली की फरमाइश पूरी कर रहे हैं लेकिन अपनी फरमाइशों को साइड में मत रखिएगा
2: फैमिली के लिए पड़े यहाँ पर जितने भी मेरे मुझ जैसे भाई लोग यहाँ पर खतर में हैं वो सब अपनी फैमिली के लिए अपनी ख्वाहिशों को कम करते हैं लेकिन अपनी फैमिली की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वो लोग
0: सही बिल्कुल
1: मैं कहती हूँ इतनी ख्वाहिशें ना बढ़ जाए लोगों की फिर आपकी ख्वाहिश की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा
2: होती नहीं है परदेसियों की क्या ख्वाहिश होती है मैम आप बताए मुझे
1: क्यों नहीं होती है भाई मेरी तो भरपूर चल रही है इसलिए मैं परदेसी
2: आपसे अलग बात कर रहा हूँ
1: हाँ इन्होंने ऐसे बोला मैंने कहा मेरी तो चल
2: रही है वो ये होती है कि बस महीने में चली जाए और उनको भेज दी जाए उनकी वो खुश रहना चाहिए
0: मतलब जितने भी आदमी है ना तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई आप लोगों को सलाम है कि आप लोग वाकई मतलब हर बंदा अपनी ख्वाहिशात अपनी जरूरियात तक को पीछे डाल के अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा होता है तो ये आप ही लोग कर सकते हैं भाई और अल्लाह ताला ने इतना ज़र्फ जो है ना आप ही लोगों को दिया
2: है लड़कियां भी करती हैं माशाल्लाह मेरी बेबी है अब वो पांच बेटों को संभाल रही है पांचों को स्कूल भेजना ट्यूशन भेजना सितारा पढ़ने भेजना शायद बताया भी था माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा हाफिज कुरान ये सब उसी की मेहनत है ना
0: आप दोनों एक दूसरे को इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें थैंक यू बहुत अच्छा लगा नदीम साहब आपसे बात करके कॉल किया करें जल्दी जल्दी ताकि फिर हमें आपकी आवाज याद हो जाए ठीक है थैंक यू हैप्पी वीकेंड तो हम जल्दी से ना मैसेजेस खत्म कर दिए अभी नहीं हुई है और कह रहे हैं कि 30 मिनट से अस्मत आफरीदी कॉल करने की कोशिश करें कह रहे हैं लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि अब क्वेश्चन आ जाएगा और मुझे आवाज समझ में नहीं आती है मतलब वो जो शुरू
1: हो जाएगा आज हम लोग गेम नहीं रखेंगे
0: हम गेम नहीं खेल रहे
1: हैं आप कर लें
0: कभी सर स्टोरी भेज दीजिए
1: भेज
0: दी
1: साढ़े
0: आठ बजे आइए भेजनी और अस्सलामुअलैकुम और कह रहे हैं कि मैं कई दिन से कॉल कर रहा हूँ इन्होंने कुछ हिंदी में लिखा दिन से कॉल कर रहा हूँ पता नहीं कितने दिन से कॉल कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कॉल ही नहीं उठा रहे और आप लोग दूसरे कॉलर से बात करते हैं मुझसे कॉल नहीं करते मेरी कॉल काट देते हैं उसके बाद फिर आप मेरी कॉल
1: भाई आपकी हमारी दुश्मनी तो चल रही है

0: अच्छा पता है क्या, लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये लोग ना इनके अपने लोग होते हैं जो कॉल करते हैं, तो ये भी होता है
1: ये लोग हमें पैसे दे रहे
0: हैं। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग मैम, रविंदर सिंह सिद्धू यूएई और दुबई से मैसेज कर रहे हैं ये। और अच्छा। इसके साथ ही एक भाई को आई है बहुत सारी हसीस बात पे। चलें जी, मैं रैंडमली उठा के देखती हूँ किसकी कॉल है।
1: भाई इतनी कॉल्स आ रही है, उठाते हैं, सबकी उठाते ही नहीं है कि कौन हमें कर रहा है, जिसने नंबर्स
0: तो काट दी तो इनकी उठाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: वरहमतुल्लाह वबरकातहू। कौन बात करे?
2: खलील
0: पराचा भाई, क्या हाल है आपके?
1: कैसे आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं 3 घंटे से लगा हुआ हूँ कॉल मिलाने में।
0: उफ, उफ।
2: जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, जब से लगा हुआ हूँ।
1: ये बताइए, उंगली आपकी सूझ कर ले गई?
2: क्यों नहीं उठा रहे थे आप लोग मेरा फोन?
1: हमें पता तो चलना चाहिए कि खलील जी हमें कॉल कर रहे हैं, खड़ाक से उठाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये बताइए।
2: सीएलआई से और किससे?
0: नहीं, नंबर आते हैं ना, नाम थोड़ी आता है, हमें कैसे पता इतने सारे नंबर आते हैं?
1: याद थोड़ी होते
0: हो सकता
2: है। आप लोग सोचते हैं ये बोरिंग आदमी रोज आ जाता है, चलो इसका नंबर ये है, नोट करो और अंदर से नहीं अटेंड करना।
1: यकीन मानिए, हम एक भी नंबर नोट नहीं करते हैं, अनलेस कि कोई प्राइज या कुछ इस तरह का कुछ चल रहा है, कॉन्टेस्ट वगैरह, तभी नंबर नाम लिखा जाता है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करते।
2: मजाक कर रहा हूँ, आप लोग
1: तो सच्ची दिल पे लेकिन एक दो लोगों ने कहा
0: तो छुट्टियों में भी जा रही है, अब सोचें दिल पे ले लिया तो फिर
1: क्या लेके जा रही है,
0: क्या लेके जा रही है।
2: नहीं वाकई बहुत मिस करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी जो होती है कंपेयरिंग वगैरह,
0: माशाल्लाह। नहीं बस एक महीने के लिए जा रही है, फिर वापस आ जाएगी।
1: हाँ
0: बोल रहे थे आप तो नाजिया इतनी उदास हो गई थी, फिर मैंने जब कहा कि नहीं एक महीने के लिए जा रही है, तो नाजिया ने एक बकायदा रिलीफ का सांस लिया कि हाँ मैं वापस भी आऊंगी।
1: नहीं मैं एक महीने में उदास हूँ कि मैं सिर्फ एक महीने के लिए जा रही हूँ।
0: ओह
1: ये हाँ कह रही हूँ, लोग देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना जा रहे हैं, मैं अभी जस्ट देखा मैंने, मैं एक
0: महीने के लिए जा रही हूँ।
1: क्या कर सकते हैं, एक दिन अगला नहीं, सोचिए आप लाइफ
2: अच्छा है, एक महीने के लिए आदमी जाता है, फ्रेश होके आ जाता है।
0: जी जी
1: हाँ ये तो है, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी चाहिए काम से, जैसे आप थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे सके, थोड़ा लोगों को वक्त दे सके, फिर थोड़ा फ्रेश हो सके। हाँ वैसे ये बात सही है,
2: पाकिस्तान में रहके तो आदमी नहीं ब्रेक ले सकता, इतनी महंगाई हो गई है, हर आदमी यही सोचता है कहाँ जाएंगे छुट्टी लेके, इतनी महंगाई में।
0: सही बात है।
1: अच्छा मतलब लोकल भी घूमना मुश्किल है, जैसे वहीं पे पाकिस्तान
0: पेट्रोल वगैरह के इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं,
2: फिर उसमें
1: ये तो वाकई
0: बहुत ज्यादा हो गया।
1: तो सच है। तो चलिए यहाँ पे वीकेंड्स की बात कर लेते हैं। हाँ। कि वीकेंड्स में आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या करते हैं समर्स में, आपके वीकेंड्स क्या होते हैं जब छुट्टी होती है, तो कहाँ प्रेफर करते हैं? मॉल जाते हैं, बीचेस हैं, दोस्तों के साथ है, गेट टुगेदर, दोस्तों को बुलाते हैं आप, कुछ और?
2: गर्मी की वजह से कौन जाएगा, बहरहाल ये है कि बेगम के साथ मॉल चले जाते हैं, टाइम स्पेंड हो जाता है।
1: वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, एक सर्वे कहता है कि समर्स में सबसे ज्यादा बिक्री होती है, बिकॉज ऑफ द सॉलिड रीजन, यहाँ गल्फ का बता रही हूँ, क्योंकि लोग जो है ज्यादातर आउटिंग और वीकेंड्स मॉल्स में प्रेफर करते हैं, ना चाह के भी इम्पल्सिव बाइंग होती है। तो ये भी यहाँ पे एक कमाल का सर्वे है, तो देख लीजिए लोग ना चाहते
2: हुए यही लोग मॉल्स में ही होते हैं, इतना रश जो होता है वो यही इसी वजह से ही होता है।
1: बिल्कुल, इन सीज मतलब समर्स में अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा रश होगा, इतना रश होगा कई बार आपको ये लगेगा कि क्या यहाँ पे कुछ फ्री में मिल रहा है क्या, इतनी भीड़ है।
2: नहीं अमूमन ऐसा लोग आ रहे हैं, थर्सडे की नाइट में होता था रश, पर अब मैं देख रहा हूँ ज्यादातर ही रश होता है, ज्यादातर दिनों में रश ही होता है, यही
0: हर वक्त रश होता है भाई, हर वक्त। मतलब आप सुबह सुबह निकलो तो रश होता है, रोडों की बात कर रही हूँ अभी तो मैं, मॉल्स की नहीं, मतलब मैं सोच रही थी ये सारे लोग हर वक्त कहाँ जा रहे होते
1: हैं। ये कल मैं भी रात में सोच रही थी, हाँ? जब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके लौट रही थी, तो मैं अपने बेटे से कह रही थी हर वक्त लोग इतने ही निकले,
0: इतने ही लोग होते हैं
1: किसी भी टाइम चले।
0: एग्जैक्टली, मतलब रात को सोचो, रमजान के दिनों में मैं 3 बजे रिकॉर्डिंग करके निकली हूँ, कुछ दिनों रात को सहरी से जस्ट पहले, हाँ सहरी से जस्ट पहले, जब भी लोग थे, मतलब मैं तो थी, मेरी तो मजबूरी है रिकॉर्डिंग करनी है, स्टूडियो अवेलेबल नहीं होता, रात में आए हम, लेकिन ये लोग क्यों है बाहर, ये समझ में नहीं आ रहा।
1: अच्छा हमें सब दूसरे ही पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते, वो भी हम पे कर रहे होंगे, ये क्यों निकली हुई है रात, वही बात
0: बिल्कुल ऐसे ही है।

0: पर चलिए, अच्छा आपने बिल्कुल सही प्रैक्टिकल जवाब दिया कि मॉल से ही चले जाते हैं और यही होता है। और मैंने जैसे बताया भी कि समर्स में सेल भी बढ़ जाती है।
1: बेगम शॉपिंग कराती हैं तो टाइम इतना लग जाता है कि खुद बेजार हो जाता है आदमी, कहना भाई अब मैंने घर जाना है वापस।
0: इतनी शॉपिंग कराती बेजार हो जाता है
1: वो इतनी यानी चूजी क्या नहीं होती है खवातीन किस्म की एक चीज को आदमी तंग आ जाता है भाई
2: मैंने खवातीन किस्म की। खलील भाई आप जो है ना मतलब आप हर दफा आके
1: हंसाते हंसाते हो ना, बहुत चूजी है रियली, इतनी चूजी है मैं चलो
2: अच्छा चले भाई ऐसे हाल चाल है। चले जी बहुत अच्छा लगा खलील आपसे बात करके, हैप्पी वीकेंड, अपना बहुत बहुत, बहुत ख्याल रखिएगा और बीवी को ले जाएगा आदमी कहीं शॉपिंग पे, ठीक है?
1: नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मैं घर पे ही सही हूँ,
2: मैं घर पे ही सही हूँ।
1: नहीं भी वो बहुत बड़ी सजा है बेगम के साथ शॉपिंग।
2: चले जी हैप्पी वीकेंड, बस हमारे भी जाने का वक्त हो रहा है। थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच,
2: अल्लाह हाफिज। राइट जी, तो कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं लेकिन हम लोग नहीं ले पाएंगे।
0: हाँ, और हम एक छोटी अपडेट भी आपको देनी है जो कि हीट स्ट्रोक के हवाले से है, जो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि गर्मी बहुत है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, जब आपको एक तरह से गर्मी लग जाती है और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे सिम्टम्स अगर मैं बताऊँ आपको तो उसमें आपको इनिशियली जो है वो बुखार होगा, सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, आपको अनइजीनेस, बेहोशी हो सकती है, नौजिया है, वॉमिटिंग फील कर सकते हैं, रेड हो सकती है आपकी पूरी तरह से स्किन, पल्पिटेशन है, सांस तेज चलेगी, कई बार जो है इंसान की आंखें भी ब्लर हो जाती, मतलब उसे धुंधला दिखने लगता है, और कुछ केसेस में बहुत ही जो सीवियर केसेस है उसमें फिट्स भी पड़ते हैं। तो ये होता क्यों है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप गर्मी में बहुत लंबे टाइम के लिए हैं और आपने पानी वगैरह नहीं पिया है तो डायरेक्टली आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा, ऐसे में करना क्या है, करना ये है कि फौरन एक तो इमरजेंसी नंबर्स आपको पता ही है यहाँ पर, आपको फ़ौरन कॉल करना है। लेकिन जब तक आ रही है फर्स्ट एड मिले तब तक आप क्या कर सकते हैं, जो भी पेशेंट है जिसे हीट स्ट्रोक हुआ है, आपको समझ में आ रहा है ये सिम्टम्स हैं सारे, तो उन्हें आप किसी ठंडी जगह पर ले जाइए, मतलब एसी के सामने या आसपास, या अगर वो बाहर उन्हें हुआ है हीट स्ट्रोक, फेंट हो गए, गिर गए हैं, तो लेकर आइए। आप फिर उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे आप थोड़ा सा निकाल दीजिए जिससे उनकी बॉडी हल्का सा कूल डाउन हो। पानी पीने की पोजीशन में तो नहीं होंगे लेकिन स्पॉन्ज से आप उनके फेस पे, मुंह पे लगाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आइस पैक्स भी होते हैं और आई थिंक अब तो रखते भी हैं फर्स्ट एड किट में वगैरह, तो वो आप उनके आर्मपिट्स पे भी लगाओ। अच्छा। जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो और अगर वो होश में आ जाता है, बंदा फेंट नहीं है और होश में है, तो आप उन्हें ORS भी पिलाइए जिससे फौरन उनकी बॉडी जो डिहाइड्रेटेड है वो बेहतर हो जाए। डॉक्टर को आपको कॉल करना ही करना है, मतलब ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी सिचुएशन में जो है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया या डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया तो ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं और कई बार इतनी ज़्यादा सीवियरिटी आती है कि किसी की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज नॉट लाइक कॉमन। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं आसपास, किसी के दिख रहे हैं, कोई इस तरह से परेशान है, रेस्टलेस है, तो आपको उनका ख्याल करना है, हेल्प करना चाहिए।
2: बिल्कुल जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ वंडरफुल डे। और ये वेरी गुड मॉर्निंग राज ने हमें, इसके साथ ये फ्रोसन चकवा का भी मैसेज आया हुआ है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड कहते हैं मुझे और हैप्पी जर्नी तुम्हें।
0: थैंक यू।
2: और कहते हैं कि दबाव में हम भी सही से काम नहीं कर पाते हैं मैम, नाइस प्रोग्राम, नाइस बातों की स्टोरी। ओके, अच्छा स्टोरी अब बाद में बताती हूँ, पहले ये गुलाम रसूल हेयर, और ये कहते हैं कि वर्किंग एट मसाइद और वी आर वेरी मच केयर, टेक केयर रिगार्डिंग हीट स्ट्रेस,
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू टेक केयर, टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और आसपास जितने लोग हैं उनका भी।
2: एंड गुड मॉर्निंग कबीर जी, कबीर जी आप हमसे नाराज हैं, कविता हो गया, स्टोरी नहीं भेज रहे,
0: हमने भेजे हैं, हम बहुत ज्यादा
2: बताएं कि ये शाम में हो रही है स्टोरी की नहीं हो रही,
0: हाँ, हो क्यों नहीं,
2: तो फिर स्टोरी क्यों नहीं भेज रहे,
0: तो ये
2: सुबह में क्यों,
0: ये वो वाले लिसनर हैं जिन्हें सिर्फ मैसेज भेजना है, स्टोरी से भी कोई लेना देना,
2: ये
0: सुबह भी नहीं सुन रहे ना शाम,
2: क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कबीर के साथ धोखा हो रहा है। अगर मौका होता मैं कबीर को कॉल पे लेती फिर उसके बाद बात करती।
0: आप लाइव स्टोरी सुना दें,
2: लाइव स्टोरी सुना दें प्लीज,
0: क्योंकि लोग सुबह सुबह पूछते हैं स्टोरी।
2: हाँ
0: आई थिंक यही एक शख्स हैं जो हर रोज ये शायद मैसेज कर रहे हैं और ये बिल्कुल
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: सो रहे हैं।
2: चार पांच लोग होते हैं और वो रोज मैसेज करते हैं।

0: ईस्ट स्टोरी स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये था वो था
1: अच्छी भी थी तो भाई हम लोग की स्टोरी
0: कभी क्या चल रहा है ये मुझे सवाल है मेरा ये क्या चल रहा है भाई जवाब दो इस बात का उठे हुए हो कहीं पे हो तो जवाब दो ये क्या है भाई चले जी तो भाई इसके साथ हो गया है हमारे जाने का वक्त इंशाल्लाह ताला आप से मुलाकात मेरी होती है संडे को और नाज़िया आपकी कब मुलाकात होने वाली है
1: इंशाल्लाह मुलाकात होगी जुलाई में
0: डेट आप कंफर्म नहीं करी अभी भी कुछ कुछ आज
1: 19 ना कोई आज नहीं 19 जुलाई
0: 19 ऑफ जुलाई को आपकी जो है वो होगी नाज़िया से मुलाकात और 19 ऑफ जुलाई को मेरी रवानगी हो जाएगी
1: सेम उसी डे
0: मैं जा रही हूँ तो खैर मतलब जो है ना आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए इंशाल्लाह ताला अभी मैं संडे को आपसे मिलती हूँ
1: इंशाल्लाह
0: हैप्पी वीकेंड
1: हम दोनों की तरफ से अपना ख्याल रखिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
0: अल्लाह हाफिज़

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
4: माहिरीन की राय पर।
3: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
4: हेल्थ गाइड,
3: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
4: इलाज और एहतियात तक।
3: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
4: दिल से देसी।
3: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन

पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार

0: तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज न तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह है और न खाना, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल हो तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई, और अगर खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने किराम, जरा सोच कर देखिए, हम कितने बार अपने घरों में बेसुकूनी, गुस्सा, झगड़े या अजीब बेबरकती महसूस करते हैं, और कभी कभी हम बड़े बड़े असबाब तलाश करते हैं, हालांकि बरकत का दरवाजा तो उन छोटी सुन्नतों में छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहना गोया ये ऐलान है कि ए अल्लाह, ये घर तेरे नाम से आबाद है। अस्सलामु अलैकुम कहना गोया घर वालों के लिए दुआ है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो, सुकून हो। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदूस, नाम ही काफी है। हसन अल हैदूस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अलसद यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम को ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अलसद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफी दिलाने में मदद की। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूं, यानी कतर स्टार्स लीग के बारे में, बल्कि बाहर के जो AFC चैंपियंस लीग मैचेस होते हैं, AFC चैंपियंस लीग के विनर भी रहे और इसके साथ साथ कई ऐसे एमएफ कप टाइटल्स भी उन्होंने हासिल किए विद अलसद क्लब। और बहुत लॉयल फुटबॉलर रहे हैं, कोई क्लब चेंज नहीं किया इस दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि क्लब चेंज कर लेते हैं फुटबॉलर, लेकिन हसन अल हैदूस हैज़ बीन अ परमानेंट फिक्स्चर ऑफ अलसद फुटबॉल क्लब सिंस द टाइम ही स्टार्टेड विद द अलसद फुटबॉल एकेडमी। नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर हसन अल हैदूस ने कतर को 2019 AFC एशियन कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली दफ़ा था जब कतर ने एशिया कप का टाइटल जीता और ये कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। टूर्नामेंट में उनकी लीडरशिप और अटैकिंग फुटबॉल ने पूरी एशिया में कतर का नाम रोशन किया। और इसके बाद 3 साल के बाद 2019 के बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी कतर की कप्तानी की, जो अरब दुनिया का पहला वर्ल्ड कप था। मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर कतर, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर हसन अल हैदूस। और ये भी बता दूं कि कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे सक्सेसफुल और नंबर ऑफ मैचेस खेलने वाले अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं हसन अल हैदूस, सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले फॉर कतर। हसन अपनी स्पीड, पासिंग और गेम कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन नए फुटबॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है और कतर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल कतर नेशनल टीम से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुलाया गया, वापस बुलाया गया, क्योंकि कतर टीम नीडेड हसन अल हैदूस। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जहाँ कतर विल ओपन द कैंपेन ऑन 13 जून इन USA, मेक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है एंड कतर का पहला गेम है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में। सो हो सकता है कि इस मैच में हम हसन अल हैदूस को दोबारा हम देखें एंड दोबारा सक्सेसफुली वी कैन सी द कतर नेशनल टीम। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हसन अल

0: फैदूस कतर की कप्तानी करेगा और इसके साथ साथ 9-13 जून को जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड उसमें ही विल लीड विद अप्लॉम्ब। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि हाफ एन आवर या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज़।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये हदीस टू हैबिट। ये है एक नया शो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में हदीस को हैबिट के तौर पे ले सकते हैं, मतलब इसको आदत बना सकते हैं। यकीनी तौर पे हम सब लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको हम हमेशा ही

ये एहसास हो सकता है कि वो अहम है, appreciated है। आजकल अक्सर घरों में मसला सिर्फ बातों का नहीं, रवैयों का है। लोग एक दूसरों से नाराज कम और इमोशनली डिस्कनेक्टेड ज्यादा हैं। हम एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन नरमी से नहीं, सलाम तो करते हैं मगर मुस्कुरा कर नहीं। घर तो साथ होता है मगर दिल साथ नहीं होते, और इसीलिए आज की ये सुन्नत बहुत जरूरी है। एक और दिलचस्प बात, मुस्कुराहट सिर्फ सामने वाले पर असर नहीं डालती, खुद हम पर भी असर डालती है। जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके अंदर की कैफियत भी बदलने लगती है, दिल हल्का महसूस होता है, गुस्सा कम होता है, तनाव कम हो जाता है। यानी इस्लाम ने जो सुन्नत हमें 1400 साल पहले सिखाई, आज साइकोलॉजी और इमोशनल वेलनेस भी इसी की अहमियत बता रही है। लेकिन अफसोस यह है कि आज मुस्कुराना भी कंडीशन बेस्ड हो गया है। लोग सिर्फ उनके सामने मुस्कुराते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो, यहाँ पे सोशल मीडिया की पिक्चर्स के लिए। हालांकि सच्ची मुस्कुराहट तो वो है जो किसी थके हुए इंसान को राहत दे, किसी एंजस इंसान को सुकून दे, किसी लोनली इंसान को एहसास दिलाए कि दुनिया में अभी भी नरमी, खुश इखलाकी बाकी है। और याद रखिए, बाज लोग अपनी जिंदगी में खामोश जंगे लड़ रहे होते हैं, इतनी खामोश कि जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। हो सकता है आपकी एक अच्छी सी मुस्कुराहट उनके लिए एक उम्मीद बन जाए। इसीलिए आज के शो में हम सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं करेंगे बल्कि इसको एक हैबिट बनाने की बात करेंगे, एक ऐसी आदत जो हमारे घरों को बेहतर करेगी, हमारे ताल्लुकात को नरम करेगी और हमारी शख्सियत को खूबसूरत बना देगी। आज के पूरे शो के दौरान आप खुद से एक सवाल पूछते रहिएगा, क्या मेरी मौजूदगी लोगों के लिए सुकून बनती है या फिर स्ट्रेस? क्योंकि मोमिन जहां जाता है वहां आसानी, नरमी और रोशनी लेके जाता है, और कभी कभी वो रोशनी सिर्फ एक मुस्कुराहट से शुरू होती है। जी, मैं हूं मैविश और आप सुन रहे हैं हदीस टू हैबिट। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी अहदीस हैं इसको हम अपनी जिंदगी की फाउंडेशन बना सकते हैं। आज की हदीस, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। ये हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है और इसमें इस्लाम की वो खूबसूरती नजर आती है जो दीन को सिर्फ इबादात तक महदूद नहीं रखती बल्कि इंसान के रवैये, इखलाक और रोजमर्रा के अंदाज को भी इबादत बना देती है। जरा गौर कीजिए, हम आम तौर पर सदका किस चीज को समझते हैं? अमूमन पैसे देना, किसी गरीब की मदद करना और सबसे बढ़कर खाना खिलाना। हाँ, और यकीनन ये सब बहुत बड़ी नेकियां हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि इस्लाम में सिर्फ माल खर्च करना ही सदका नहीं बल्कि हर वो अमल सदका बन सकता है जिससे किसी दूसरे इंसान को खैर, सुकून या खुशी मिले। इसीलिए एक मुस्कुराहट जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई खर्च नहीं आता, उसे भी सदका कहा गया है। इस्लाम की कितनी खूबसूरत टीचिंग है। इस हदीस का एक बहुत गहरा पैगाम ये भी है कि अल्लाह ताला इंसान के दिल और नियत को देखते हैं। बाज़ औक़ात एक इंसान के पास देने के लिए माल नहीं होता लेकिन उसके पास अच्छा इखलाक होता है,

नरम हो। आज सोशल मीडिया ने भी हमारे रवैयों को काफी इफेक्ट किया है। लोग ऑनलाइन बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। हम इमोजीज बहुत भेजते हैं मगर घर वालों को मुस्कुराकर कम ही देखते हैं। कभी कभी एक बच्चा सिर्फ इस इंतजार में होता है कि उसके वालदेन उसे खुशी से देखेंगे, उससे मुस्कुरा के बात करेंगे। और कभी आपका लाइफ पार्टनर आपसे सिर्फ सॉफ्ट एक्सप्रेशन चाहता है। कभी वालदेन सिर्फ ये चाहते हैं कि औलाद मोहब्बत से बात करे। लेकिन हम इतने बिजी हो चुके हैं कि बेसिक काइंडनेस भी कम होती जा रही है। इसीलिए ये हदीस पहले से कई ज्यादा रेलेवेंट महसूस होती है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर नेकी एक्सपेंसिव नहीं होती, हर इबादत मुश्किल नहीं होती और हर सदका माल से ही नहीं होता। बाज़ औक़ात एक छोटी सी मुस्कुराहट अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो सकती है और शायद कयामत के दिन इंसान हैरान हो कि इतनी छोटी सी आदत ने उसके नामा अमाल में कितनी रोशनी डाल दी। इसीलिए आज के बाद जब भी आप मुस्कुराएं तो सिर्फ आदत के तौर पे नहीं बल्कि नीयत के साथ मुस्कुराएं, क्योंकि नीयत ही वो चीज है जो आम अमल को भी इबादत बना देती है। अब हम बात करते हैं कि हमने मुस्कुराना कहाँ खो दिया। ये तो हमारी फितरत का हिस्सा है ना, लेकिन अगर हम आज सच्चाई से अपने माशरे को देखें तो एक चीज बहुत वाज़े नजर आती है। लोग शायद पहले की निस्बत आज ज्यादा कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली ज्यादा डिस्टेंट हो गए। कम्युनिकेशन बढ़ गई है, कन्वर्जेशन कम हो गई है। आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए हैं लेकिन रिलेशंस कमजोर हो गए हैं और शायद इसीलिए आज लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी कम होती जा रही हैं। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो चेहरों पर एक गर्म जोशी होती थी। घर में दाखिल होते ही सलाम, मुस्कुरा के देखा, हाल पूछना, ये सब मामूल था। मोहल्ले वाले एक दूसरे को जानते थे, रिश्तों में सॉफ्टनेस थी। लेकिन आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन सामने आ जाती है, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इंसान दिन शुरू होने से पहले ही खुद को मेंटली टायर्ड महसूस करने लगता है। ऐसे में सबसे पहले गुम हुआ तो मुस्कुराहट। आज अक्सर लोग फिजिकली थके हुए कम हैं और इमोशनली एग्जॉस्टेड ज्यादा हैं। ऑफिस में जाएं तो लोग प्रेशर में होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं, घरों में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरवेल्म्ड हैं और नौजवान फ्यूचर के खौफ में। ऐसे माहौल में आहिस्ता आहिस्ता हम इमोशनली एक तरह से बिल्कुल ही थक चुके हैं और फिर यही होता है, सलाम भी एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, लहजे खुश्क हो जाते हैं, चेहरा संजीदा रहने लगता है और मुस्कुराहट बहुत ही रेयर हो जाती है। हालांकि हकीकत यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत ही सॉफ्टनेस, नरमी की होती है। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ बड़े सॉल्यूशन से ही हल होंगी, लेकिन बाज दफा छोटे छोटे रवैये जिंदगी को आसान बना देते हैं। मसलन घर में एक वालिद पूरा दिन काम करके जब वापस आता है वो थका हुआ होता है, स्ट्रेस्ड है, खामोश है। बच्चे उससे बात करना चाहते हैं लेकिन उसके चेहरे की सख्ती को देखकर करीब आने से घबराते हैं। अब अगर वही शख्स दरवाजा खोलकर थोड़ा सा मुस्कुराकर सलाम करे तो पूरे घर की एनर्जी बदल सकती है।

इमोशनली सख्त इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं रहता कि उनके एक्सप्रेशंस लोगों को हर्ट करें और फिर ताल्लुकात कमजोर होने लगते हैं। आज एंजाइटी, डिप्रेशन

रहमत बन सकता है। एक छोटी सी मुस्कुराहट शायद दुनिया ना बदले, लेकिन किसी एक इंसान का दिन जरूर बदल सकती है। और बाज़ औक़ात किसी का दिन बदलना ही बहुत बड़ी नेकी होती है। इस्लाम की खूबसूरती यह है, जिसकी बहुत सी तालीमात वो हैं जिन्हें इंसान पहले सिर्फ रूहानी तौर पर समझता है और बाद में दुनिया भी उनकी विजडम को डिस्कवर करती है। मुस्कुराने की सुन्नत भी इन्हीं खूबसूरत तालीमात में से एक है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, तो उस वक्त शायद लोगों ने इसे सिर्फ अच्छे अखलाक के तौर पे समझा। लेकिन आज इमोशनल वेलनेस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज भी हमें ये बताते हैं कि मुस्कुराना सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि इंसानी जहन, दिल और ताल्लुकात पर गहरा असर डालती है। आज की दुनिया में स्ट्रेस बहुत आम हो चुका है। लोग सुबह से लेके रात तक मुसलसल मेंटल प्रेशर में रहते हैं। किसी को फाइनेंशियल वरीज हैं, किसी को एकेडमिक प्रेशर, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं और किसी को फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है। ऐसे में इंसान का नर्वस सिस्टम मुसलसल टेंशन में रहता है, चेहरा सख्त हो जाता है, लहजा हैवी हो जाता है, पेशेंस कम होने लगता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इंसान का चेहरा सिर्फ अंदर की कैफियत जाहिर नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात अंदर की कैफियत को इन्फ्लुएंस भी करता है। यानी जब इंसान सॉफ्ट एक्सप्रेशन रखता है, मुस्कुराता है, तो उसका इमोशनल स्टेट भी बहुत हद तक काम होने लगता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बाज लोग जब मुसलसल गुस्से, इरिटेशन या फिर नेगेटिविटी में रहते हैं, तो उनके चेहरे पे एक परमानेंटली स्ट्रेस नजर आने लगता है। और कुछ लोग मुश्किलात के बावजूद नरम रहते हैं, उनके चेहरे पर सुकून महसूस होता है। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, अंदर की तरबियत भी होती है। इंसान के चेहरे के ऊपर जो ये मुस्कुराहट है ना, ये उसके इमोशनल इन्वायरमेंट को बदल सकती है। जरा इमेजिन करें, आप किसी जगह दाखिल होते हैं जहाँ हर शख्स संजीदा है, अनॉयड है और कोल्ड हो, तो आप खुद भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्कुरा कर वॉर्म स्माइल के साथ आपको ग्रीट करे, तो फौरन से ना मतलब थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। यही वजह है कि स्माइल सोशल कंफर्ट पैदा करती है। आज जहाँ लोग बहुत तन्हाई का शिकार हैं, वो लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ताल्लुकात में वो इमोशनल वॉर्मथ नहीं रही। लोग प्रैक्टिकल तो हैं, लेकिन जेंटल नहीं और इमोशनली बिजी हैं, अवेलेबल नहीं। इसलिए ये छोटे छोटे से सॉफ्ट जेस्टर्स बहुत अहम हो गए। लिसनर्स, ये हमारा आज का शो, जिसमें हमने बात की कि अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी। मैं आपको एक चैलेंज भी दे रही हूँ, 7 दिन के लिए स्माइल सुनना चैलेंज। जब भी कोई अच्छी बात आप सुनते हैं, तो सुन लेना आसान होता है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना असल चैलेंज होता है। तो आज हदीस टू हैबिट प्रोग्राम में आपका चैलेंज यह है कि इस हदीस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। आने वाले कम से कम 1 हफ्ते में आप ये स्माइल सुनना चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। छोटे छोटे कॉन्शियस स्टेप लें, जिसमें आप लोगों से मुस्कुरा के बात करें, किसी से भी। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, ऑफिस का कोई कोलीग भी हो सकता है, क्लासमेट, शॉपकीपर, कोई भी। लेकिन उससे अच्छे स्माइल करके सिंसियर वे में बात करें। और जब भी बात करें, कोई अगर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो, तो उसमें अपने आप को कंपोज करते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर, अगर डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है, तो इखलाक के साथ अगले बंदे को समझाएं। तो ये आपका इस हफ्ते का चैलेंज है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 हफ्ता अगर आपने इस तरह से गुजार लिया, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आप बहुत बेहतरी देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, लोगों का अपने साथ बदलता हुआ रवैया महसूस करेंगे और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये था

0: हमारा आज का शो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी सुन्नत एक और अच्छी सी हदीस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
4: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडियो की घड़ी में 11:02
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अंजी वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागत हम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी को। भाई जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। यौमुल खमीस, यौमुल खमीस, आईवा। तो भाई वैसी ही वाइब्स होनी चाहिए और वैसा ही इंतजाम भी। तो आगे आऊं मैं अब करने के लिए आपके वीकेंड का इंतजाम, जहां पर होंगी खूब सारी बातचीत और खूब सारे ख्यालात भी। आपकी बात रखी जाएगी, आपकी बात शेयर करी जाएगी, आपके एहसासात जाने जाएंगे और फिर एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बहुत कुछ होने वाला है सन एंड साउंड में। 11 बजे से सही 1 बजे तक हमारा आपका साथ रहने वाला है। और भाई आपकी बात तो होगी ही, क्योंकि यह आपका अपना प्रोग्राम है। करना बहुत आसान दो चीजें हैं, वो क्या क्या है वो भी बता देता हूं। तो भाई इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है सबसे पहले, और वो बहुत आसान है। कैसे? वो दो तरीके से होगा। आपने अब मुझे मैसेज भेजने 666-22-107-666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, और भी मुझसे करीबी बातचीत अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और वहीं हमें कॉल करने के लिए नंबर क्या है वो भी बता देता हूँ, 443-443-7777 इज द नंबर। इस पर आप कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।

तो भाई गर्मियां जो हैं पूरी तरीके से इस वक्त कतर में शुरू हो गई हैं, और गर्मियां जैसे ही आती हैं तो हमारे जहन में दो तीन चीजें सबसे पहले आती हैं कि एक तो इससे निजात कैसे पाई जाए, इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला जाए, और ऐसी कौन सी वो जगहें हैं जहां पर जाके हम इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी गर्मी से दूर हो सकते हैं और किसी तरीके से इससे थोड़े ही वक्त के लिए सही मगर किसी तरह से इससे निजात पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज तो होती है भाई मॉल्स, दूसरी चीज अगर आउटर पे रहना चाहते हैं तो होते हैं बीचेस, और हमारे कतर के बीचेस हैं भी बड़े खूबसूरत, क्यों भी ना हो भाई, अपने आप में इतने प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी कहना चाहिए वहाँ पे वाइब्स आती हैं, तो हम जाके वहाँ से कनेक्ट होते ही होते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ बीचेस जो हैं दुनिया में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं। अगर हम पर्शिया वगैरह के हिसाब से बात करें या इस तरफ से बात करें तो कोस्टल डेजर्ट एरियाज में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है, आम सी बात है, और यहाँ पानी भी गर्म फील ही होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइट सैंड बीचेस जो हैं अक्सर क्रश्ड कोरल्स और छोटे समुद्री मखलूक की वजह से बनती हैं, सिर्फ पत्थर से ही नहीं, और वो भी काफी पैरों वगैरह में छुपते हैं। बचपन से हम देखते आए किसी का पैर कट गया, सिप्पी कहते हैं ना सिप्पी, तो सिप्पी जब किसी तरीके से टूट जाती है और बारीक हो जाती है तो भाई वो बहुत खतरनाक भी हो जाती है। बहरहाल बीचेस सिर्फ फन के लिए नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ का घर भी है जहां टर्टल्स अपने अंडे देने के लिए भी वापस आते हैं हर साल। यहां पर मछलियां वगैरह उनकी ब्रीडिंग, टर्टल्स की ब्रीडिंग, भाई एक नहीं दो नहीं कितने सारे बीचेस हैं हमारे कतर में, बट मुझे जहां तक याद पड़ता है फुवेरेत में गालबन टर्टल्स की ब्रीडिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए एक्चुअली सही वर्ड ये है, उसको बंद भी किया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो यह तो हमारा कतर है, हर चीज का ख्याल यहां पर किया ही जाता है कोई भी मखलूक को। तो बहरहाल बीचेस के हवाले से अगर आप अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं तो भाई एहतियात की भी जरूरत आती है, और एहतियात यह है कि QMD ने हमें बताया है कि अगर आप किसी भी अगर आप बीच गोयर हैं और आप किसी भी बीच एक्टिविटी में मुब्तला हैं तो भाई बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है, काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो ये नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं ये बहुत तेज़ होती हैं, और जब तेज़ होती हैं तो ये पानी को लगाती हैं धक्का, और जब पानी को धक्का लगाती हैं तो बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो उठ जाती हैं, तो भाई वो ज़रा सा टेंशन का मामला हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, आपको अगर स्विमिंग वगैरह नहीं आती है तो ज़रा सा ख्याल की ज़रूरत है। कोने कोने पे ही रहिए, ज्यादा अंदर मत जाइए पानी के, अगर आप फिर भी हैं आसपास में सेफ जगहों पे जाइए जहां पर आपको पब्लिक दिख रही है, जो कहना चाहिए बनाई गई हैं डेजिग्नेटेड एरियाज हैं वहां पर मुख्तलिफ, तो ऐसी जगहों पे जाइए बिल्कुल सुनसान अकेले जाओ जाओ, मैं मना नहीं करता, एक्सप्लोर करना भी इसी का नाम है, और जिनको शौक होता है उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनमें से मैं भी एक हूँ, बट भाई जब कभी ऐसी चीज़ें हो रही हों कि कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं और टेम्परेचर वगैरह के हवाले से वेदर के हवाले से हमें बताया जा रहा है, तो भैया समझदारी इसी में ही है कि थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको ज़रा सा मद्देनज़र रखते हुए अपना काम जो है वो अंजाम दें और भाई ख्याल से काम करते भी रहें। तो भैया इतना ही समझा सकता था मैं, बाकी समझदार को इशारा काफी, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वही समझदार है भाई, आप समझ नहीं रहे और उसके बाद भी काम कर रहे हैं तो आप समझदार हैं, लोग कहते हैं कि ना समझे, बट एनी हाउ, तो भैया बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, और लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, बढ़ते हैं आगे, करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, वापस आने के बाद आपके मैसेजेस, आपकी कॉल और आज का मुद्दा भी छेड़ूंगा मैं। फिल्म के अंदर ये गाना ही काम का था बस। एंजॉय कीजिए सॉन्ग झूम बराबर झूम, सन एंड साउंड में सर्वर मिर्ज़ा आपके साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से दिल।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। हला हला हला वेलकम बैक हेलन बस सहलन भाई हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी को। यौम अल खमीस बिल्कुल यहां पर सरवर मिर्जा आपके लिए हाजिर खिदमत है और जहां पर बात हो रही है आपकी यहां पर कुछ आप लोगों के मैसेजेस भी बिल्कुल हमें एक बर्थडे का भी मैसेज आया वो भी हम पेश करेंगे। इसी के साथ मैंने सोचा कि जब तक याद दिला दूं कि अगर आपका कोई खास दिन है एनिवर्सरी है बर्थडे है तो ज़रूर आप हमें बताइए। एक घर से ऑलरेडी विश करने के लिए कहा गया है पूरी फैमिली एक साथ है तो उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आइए हालचाल जान लेते हैं कि आज वेदर क्या कह रहा है भाई।
1: वेदर का हाल 107 दिनाल
0: बेहतरीन है एकदम कहते हैं वीकेंड के हवाले से जो होना चाहिए वैसे ही है। अभी बज रहा है 11:22 और इसके साथ है साहब 42 डिग्री। ठीक है इसमें थोड़ा और बढ़ने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फील्स लाइक है 43 डिग्री। जाहिर बात है अगर आप एकदम धूप के नीचे हैं सनलाइट के नीचे हैं या गाड़ी आपकी वहां खड़ी हुई थी तो वो टेम्परेचर भी ज़्यादा दिखाएगी बट जो लिखत में है ब्लैक एंड वाइट में है इस वक्त 42 डिग्री बताया जा रहा है फील्स लाइक इज 43। और वहीं हवाओं की अगर बात करें तो 31 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। ह्यूमिडिटी 20% पर है और QMD ने हमें क्या कहा है ये कहा है साहब कि हम एक्सपीरियंस करेंगे फ्रेश टू स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो जुमा और सनीचर 5 जून 6 जून हमारे वीकेंड में रहेंगी तो हवाएं होने वाली हैं बेहतरीन। ठीक है उस हिसाब से गर्मी उतनी नहीं होगी हाँ मतलब होगी तो होगी भाई मगर हवाएं होंगी साथ में तो ये हमें डिपार्टमेंट ने बताया है। भारल डिपार्टमेंट ने हमने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये भी बताया है कि ये जो भारी हवाएं हैं तेज हवाएं हैं और ये डस्ट वगैरह भी गर्दो गुबार भी उड़ाएंगी या उड़ा सकती हैं जिसकी वजह से अगर धूल वगैरह उड़ी तो कहना चाहिए विजिबिलिटी में हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी में फर्क आ सकता है। और हम सभी को रेसिडेंट्स को भी और सब ड्राइवर्स को भी एडवाइस किया गया है कि भाई प्रिकॉशन जितने भी हैं उनको देखिए उनको एक्सरसाइज कीजिए और ख़ासतौर पे जब आप ड्राइव वगैरह कर रहे हों तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। साथ ही जैसे मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि हमें पूरे हफ्ते के लिए ही बताया था डिपार्टमेंट ने शुरू में ही तो अभी भी वही कहा गया है कि भाई मरीन वार्निंग्स जो हैं वो जारी हैं और इस पूरे ही पीरियड के दौरान तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हमें ड्राइव करते हुए हमारे साथ होते हैं और जो कहना चाहिए डिलीवरी वगैरह के लिए मशगूल होते हैं तो जब ऐसा कोई गर्दो गुबार आए या तेज़ हवा आए तो आप कोई एक सुकून की जगह आराम की जगह थोड़ी देर जाके अपना वक्त गुजार लिए पानी वगैरह पी लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा और आराम भी हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
0: हला हला हम हैं आपके साथ
2: जी।
0: ये तो म्यूजिक आपने लगा दी उस तरफ से आज
2: नहीं नहीं
0: ये काई की आवाज थी एकदम अभी ट्रेन निकली आपके बराबर से ज्यों करके
2: वो कंप्रेसर चल रहा है अंदर
0: क्या कहने इस कदर का चल रहा कमरे में लाके रख लिया क्या कंप्रेसर को टर्न करने के लिए
2: नहीं नहीं कंपनी के एक वो ऐसा रेस्टिंग रूम है
0: क्या कहने आज तो वीकेंड है। सलीम भाई कहाँ जा रहे हैं क्या मशगूलियत है कहाँ मनाएंगे
2: कहीं नहीं बस यही रहेंगे अब क्रिकेट होता था शाम को अब ये देखना है कल शाम को कितने अगर कोई होगा 4-5 बजे तो खेला जाएगा वरना तो फिर गर्मी इतनी है तो हाँ रेस्टिंग और खाना पीना अब बिरयानी और आइसक्रीम
0: क्या बात है तो भाई यही आज हमारा मुद्दा भी इसी के हवाले से क्योंकि वीकेंड भी है तो मैंने कहा इसी के ऊपर हल्की फुल्की बातचीत करी भी जाए। आप किस तरीके के मोड में चले जाते हैं क्या रिलैक्स मोड में चले जाते हैं या थोड़े और ज्यादा चार्ज हो जाते हैं जैसे ही वीकेंड आता है मतलब एडवेंचर के हवाले से रोड ट्रिप्स बीच वगैरह या आउटिंग प्लान करते हैं दोस्तों वगैरह के साथ या फिर घर पे बैठ के कहते हैं भैया सुकून से इस बार रिलैक्स करूंगा है जैसे कि आपने बताया कि आपने दोनों जगह

0: वक्त पैर रखा दोनों कश्ती में, कि अगर क्रिकेट होगा तो भर जाऊंगा, नहीं होगा तो बिरयानी खाऊंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
1: तो ये ऐसे है कि इसकी जो वीकेंड की जो फीलिंग है ना, जो खुशी, वो बुध के रोज से ही आना शुरू हो जाती है।
0: क्या बात है, कह रहे हो साथ है।
1: हाँ, फिर जुमा तो छुट्टी है, इसमें फिर ऑटोमेटिकली मतलब कुछ ना कुछ नए नए प्लानिंग वगैरह कुछ भी वो सेटअप होते रहते हैं। इसके अलावा या अगर अपना पर्सनल कुछ होता है तो फिर सेटअप हो जाता है कि फ्राइडे को ये करूंगा, ये करूंगा, फ्राइडे को ये करना है,
0: काम सारे रहते हैं।
1: हाँ जी जी, वो सेटअप कर लेते हैं उस हिसाब से। और फिर दूसरे जो दोस्तों से रहता है रास्ता इधर उधर, तो अगर मैच हुआ तो मैच से शाम का रहता है, 4 बजे के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो फिर वो मैच का प्रोग्राम हो जाता है, तो फिर उसी में जुमेरात है ना बिजी हो जाते हैं कि किस किस को उठाना है, कहाँ कहाँ से उठाना है, कहाँ मिलना है और कहाँ जाना है, तो उसी हिसाब से फिर सेटअप हो जाता है जुमेरात प्रोग्राम।
0: तो मतलब ये है कहने का कि माहौल को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके की सूरत हाल पेश आई, उसी तरीके से अपने आपको मैं ढाल लूंगा, ये कहना चाहते हैं शहजादा सलीम साहब। ऐसे ही है, क्या बात है भाई।
1: बाकी इंजॉय खुशी तो रहती ही है फ्राइडे की, क्या भाई और रहता है कि हफ्ते में एक ही दफा मिलता है, तो भरपूर इसका लुत्फ उठाया जाए, बेहतरीन अंदाज से लुत्फ उठाया जाए, वहाँ पी के और अच्छे से इंजॉय करके। लेकिन जहाँ शाम होती है फ्राइडे की, जब शाम हो जाती है ना एकदम टेंशन बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि सैटरडे हफ्ते का पहला दिन और वर्क स्टार्ट होता है, और बड़े संडे को ड्यूटी होती है, 2 दिन मिलता है,
0: जितनी खुशी होती है वो कहती है भैया अब अगले हफ्ते के लिए रख लो, फिलहाल अपनी तैयारी कर लो पूरे तरीके से, ऑफिस भी जाना है। तो चलिए भाई, कम से कम इतना तो टाइम मिलता ही है शहजादा सलीम साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड, खुश रहिए और खूब अच्छे से वीकेंड एंजॉय भी कीजिए, मैं तो कहूंगा। है क्या बात है भाई, सभी को विश करते हुए।
1: मैम जा रही है, उनको मैसेज दे देना कम से कम 10 दफा सुबह कॉल किया, मेरी कॉल
0: अच्छा कॉल नहीं मिली। नाजिया मैम को हैप्पी जर्नी कह दूंगा आपकी तरफ से।
1: हैप्पी जर्ना, और लास्ट में
0: हैप्पी जर्ना जर्ना
1: उनके लिए लास्ट उनके लिए एक मैसेज ये रहेगा, उनको आप ये जबानी बोलना कि शहजादा सलीम इज सेइंग Have a pleasant staying with us.
0: क्या बात है, अंग्रेजी में ही कह दूंगा इसी तरीके से पूरा। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, और जरूर आपका मैसेज पहुंचा दूंगा मैं। बहुत बहुत

करूंगा या करूंगी, या फिर मेरी तरह आप एडवेंचर पसंद करते हैं, बीच पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, आउटिंग प्लान करूंगा, ये मुख्तलिफ चीजें आपके हिस्से आती हैं या सुकून घर पे आपके हिस्से आता है, ये मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, बट जरूरी है कि ब्रेक ले लें इस वक्त, अजान सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद जो चर्चा है वो जारी रहेगी। और फिलहाल के लिए आप लोग के लिए खासम खास वीकेंड।

0: नचो सारे जी फाड़ के।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانہ زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے، بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی، بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
5: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور ود آر جے سرور. Don't miss it. Don't miss it.
6: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ.
7: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے
8: دیسی. آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا کے ساتھ، صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
9: ہیلو،
3: जी वेलकम बैक हेलन बस सहलन खुशांदी दौर भाई हैप्पी वीकेंड सभी को, खासम खास दिन आज आप सभी का और भाई मेरा भी अभी तक के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब आज बात कर रहे थे हम सन एंड साउंड पे कि भाई आप किन में से हैं, अपनी गिनती किस में रखते हैं, आप घर पर रिलैक्स होकर अपना टीवी वगैरह एंजॉय करते हैं वीकेंड पे, वीकेंड के दौरान, या फिर आप कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मैसेजेस, वैसे सबसे पहले जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी अर्ज किया था कि मुकुल की आज बर्थडे है और उनकी पूरी फैमिली स्नेहा और उनके पापा मम्मी और साथ में छोटी बहन सुंदस शायद, ये सब मिलके उनको विश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे प्यारे भाई खादिम साहब, सैयद खादिम हुसैन साहब ने कहा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू सर भाई, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में कैंसर जैसे मोजी मरज को शिकस्त देकर आज मेरा बड़ा बेटा सैयद जाहिद हुसैन 23 साल का हो गया है और दोस्तों और सब रिश्तेदारों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है और अपनी ज़िंदगी के 23वें साल में इस वक्त हैं और सालगिरह आज उनकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह लकुवत है लबिल्ला, और हम सभी की तरफ से भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपके घर वालों को भी, और उधर मुकुल की फैमिली और आप सबके लिए। हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एफएम 107 की खासम खास आज आप लोगों का दिन भी है, आप लोगों की फैमिलीज के लिए भी भाई बहुत बहुत बहुत मुबारक। मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा, ये विश जरूरी थी। अभी पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
3: अहलेन अहलेन, क्या हाल है और क्या बात है। अभी आप ही का मैसेजेस पढ़ के और हम आगे बढ़ रहे थे। खादिम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं इंशाल्लाह?
9: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सरवर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये स्टोरी और ये कहानी पूरी उनकी तो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा, बड़ा बेटा आज 23 साल का हो गया।
3: माशाल्लाह जाहिद, जाहिद हुसैन राइट,
9: सैयद जाहिद हुसैन,
3: अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे, खुशो खुर्रम रखे, नसीब अच्छे करे, आपकी आंखों की ठंडक बनाए उनको इंशाअल्लाह ताला।
9: आमीन सुम आमीन सुम आमीन। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सब वालिदैन को, तमाम सारे वालिदैन को ये खुशियां नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन,
3: आमीन।
9: और मैं सरवर भाई शॉर्टकट में एक उनकी ये जो आपको बताया ना कि बचपन में उसको कैंसर था, वो शॉर्टकट में बता 3 महीने के थे कि उनको कैंसर हो गया था, ट्यूमर हो गया था मैदे के अंदर। और फिर उनकी सर्जरी हुई थी, 1.5 किलो सर्जरी, ये ट्यूमर निकाला था। फिर 7 महीने बाद फिर दोबारा हो गया। फिर चलते चलते ऐसे 1.5 साल का जब हो गया तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बस इसको घर लेके जाओ, 20 दिन बाकी इसके, बस ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से, लोगों की दुआओं से, दोस्तों रिश्तेदारों की दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल के हो गए। सुभान
3: अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। बजाय इसके कि हम सैड हों, भावुक हों, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा, आज खासम खास दिन है, मगर ये कितना बड़ा कहना चाहिए, कितनी बड़ी सीख है हमारे दरमियान और हमारे सामने कि अल्लाह ताला दुआओं से वाकई देखिए तकदीर भी बदलते हैं। सुभान अल्लाह,
9: बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक सरवर भाई। इसमें मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि जो लखनऊ में एक बड़ा जामिया मस्जिद है वहां पे भी दुआएं इसके लिए हुई थी हर जुमे के खुतबे में, और हमारे एक सुपरवाइजर साहब थे वो उधर ही। बहरहाल लंबी कहानी है, लेकिन दुआओं से ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी 23वीं सालगिरह मना रहे।
3: क्या बात है, मबरूक मबरूक, अल्फ अल्फ मबरूक आपको,
9: अल्लाह इबारक।
3: माशाल्लाह
9: तमाम जितने भी लिसनर हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
3: ये वाली
9: हिम्मत
3: बात,
9: बिल्कुल किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है, और ये जितना मुश्किल था, जब डॉक्टर्स आपको खुद बोले आपके सामने कि आप ये बच्चा आप लेके जाओ और इसके 20 दिन बाकी है, आज
3: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भैया, अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, सेहतयाब रखे, और इसी तरीके से आगे ये परवान चढ़ते चले जाएं और खुश रहें अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात ये आपने, बहुत ये बड़प्पन है कि आप शेयर कर रहे हैं। लोग कुछ कभी किसी वजूहात की वजह से, शायद शर्मिंदगी की वजह से या दूसरी वजह से
8: शेयर नहीं करते, मगर ये कितनी अच्छी बात है, ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है भाई, ये तो हमें एक दूसरे को बता के एग्जाम्पल देना चाहिए, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है,
9: बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन हर साल में, ये मैंने पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने हर साल में उनके सालगिरह पे मैंने FM 107 पे शेयर की, और FM 107 के जितने भी लिसनर्स हैं सबने उनके लिए दुआएं भी की है,
8: अल्लाह ताला
9: मैं मुझे मालूम है। बहरहाल सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और कोई भी ऐसी मर्ज नहीं है जिसके लिए दवा जो है वो दुआ नहीं है।
8: सुभान अल्लाह भाई,
9: दुआ जो है, दुआ ये सबसे बड़ी दवा है, और सिर्फ दुआओं से अल्लाह पाक हर मर्ज को,
8: सही,
9: कैंसर जो आप सबको मालूम है कि कैंसर लाइलाज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
8: अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो कहूंगा कि खूब इंजॉय भी कीजिए, और इंशाल्लाह ताला अगर हो सके तो हमें दावत भी दीजिए, हम इंतजार में सोच रहे हैं।
9: सरवर भाई मैं वो नहीं हूँ कि आपको बोलूं कि आ जाओ और आ जाओ, जब आप आना चाहते हैं तो बस।
8: अरे मुझे पता, मैं तो छेड़ रहा हूँ खाते भाई, मैं तो छेड़ रहा हूँ। अच्छा ये तो बताते जाइए, जाते जाते अब वीकेंड आ ही गया है माशाल्लाह, इतनी अच्छी घर पे भी माहौल होगा, जाहिर बात है खुशखबरी है, तो किस तरीके का वीकेंड गुजार रहे हैं ये हफ्ते की अगर बात करें, घर पे रह के घर वालों से बातचीत और सारी, ऑब्वियसली आज तो जरा फोन पे और वीडियो कॉल पे ही रहेंगे आप मुझे लगता है, मगर आगे कोई ऐसी कुछ इंतजाम कर रखा है, तरतीब कर रखी है घूमने फिरने की, क्या कहते हैं, गर्मियां आ गई है कतर में, कुछ इसके हवाले से बताइए।
9: प्रोग्राम तो माशाल्लाह कतर में तो गर्मियों में भी घूमना अच्छा लगता है, कतर तो माशाल्लाह ऐसा है कि आप जिस जगह में भी जाओ, जैसे अगर सी लाइन बीच पे जाओ या दूसरे ऐसे बीच पे,
8: सही,
9: तो वो गर्मी महसूस नहीं होती फिर।
8: बिल्कुल यार, आपने मेरे दिल की बात रखी, यकीन जानिए सी लाइन ऐसी जगह है जहाँ मैं गर्मियों में जरूर जरूर जाता हूँ, और वहां जाके पता नहीं क्या है, खैर वहां पे कुछ उन्होंने प्राइवेट आउटलेट्स भी बना रखे हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे, मगर एक दो जगह ऐसी है बहुत ही नॉमिनल उनके चार्जेस हैं, और बड़ा ही सुकून भाई, दिन भर आप वहां पे मजे कीजिए और पानी के भी मजे लीजिए, और वो कवर्ड भी है बच्चों वगैरह के हवाले से, बहरहाल बड़ी जगह है
9: जी। और सरवर भाई ये अलहर्ज बीच में वो भी अच्छा है माशाल्लाह, छोटी गाड़ियां वहां पर बिल्कुल बीच के करीब जा सकती है, और सी लाइन जो है वो सबसे बेहतरीन है,
8: क्या बात,
9: वो फैमिली के लिए
8: भी अच्छा है, और सही,
9: हाँ बहुत अच्छी जगह है। दूसरी बात ये कि मैं तो पिछले 3 फ्राइडे को जुम्मे को वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, सी लाइन पे 2 बार गया,
8: और इधर अलहर्ज में भी, क्या कहने लगातार,
9: कल भी इंशाल्लाह शायद प्रोग्राम बने, जो साद अहमद है उसके बाबा जो है वो छोड़ते नहीं है, ऐसे बोलते चलो चलते हैं।
8: अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा समझ गया मैं, क्या बात है। तो फिर वो जो मैरिनेशन हो रहा है ना खादिम भाई, उसमें जरा 1.5-2 किलो जरा सा बढ़वा लीजिएगा मामला, इंशाल्लाह ताला हो सकता है, मैं भी उधर ही कहीं टकरा जाऊंगा
9: उसके लिए इंशाल्लाह एक दिन आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह आप बनाएंगे सब कुछ,
8: दावत पक्की कर ली मैंने अपनी, सब सुन रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही था कि आप खुश रहें और इंशाल्लाह ताला खूब खुशियां देखें फैमिली की। बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई देखा आपने किस तरीके से उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, ये कितना बड़ा एग्जांपल है खादिम भाई के घर में ही मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
10: क्या हाल है?
8: अहलन व सहलन, कहाँ थे भाई अरशद साहब?
10: अरे कहीं नहीं कबीर भाई, यही थे।
8: कबीर भाई तो सोरा शाम में आएगा, सबको पता है, अब ये नहीं मालूम कि अरशद भाई हैं या उवैस भाई हैं, सबको मैंने तो कंफ्यूज कर दिया। क्या बात है भाई, हैप्पी वीकेंड उवैस भाई, अहलन व सहलन, कैसे हैं, कैसी गुजरी अभी तक की सुबह और अभी तक का
10: दिन?
8: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का हर तरीके से शुक्र एहसान है, हम कतर में हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत हमारी जिंदगी के लिए और हमारे लिए क्या ही हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सर ये बताइए कि किस तरीके के जज्बात उमड़ते हैं वीकेंड आते आते, घर पे रहूंगा, रिलैक्स करूंगा, टीवी देखूंगा, बिरयानी पकाऊंगा, सो जाऊंगा, या फिर बाहर निकलूंगा और बारबेक्यू करूंगा, सरवर भाई को बुलाऊंगा, दावत दूंगा?
10: सर्वर भाई तो तुम घर पे भी बुला सकते हैं, कोई अच्छा, मुश्किल नहीं। अच्छा
11: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम और लोकेशन शेयर कर दिएगा, इंशाल्लाह मैं पहुंचता हूँ। बहरहाल बाहर का रहता है या घर का रहता है, क्या माहौल रहता है वीकेंड पे?
10: क्या हमारा तो घर ही का रहता है, ज्यादातर घर ही पे रह पाते हैं, बाहर बहुत कम ही जा पाते हैं,
11: बाहर बहुत कम ही जा पाते हैं। अच्छा बताइए वैसे भाई, कभी बीचेस वगैरह पे गए हैं कतर के अभी तक या नहीं?
10: हाँ गए हैं, कतारा गए हैं, लुसैल गए हैं।
11: अच्छा कतारा के बीच पे गए हैं, मैं बीच की बात कर रहा हूँ स्पेशली।
10: अच्छा नहीं तो वहाँ पे भी तो बीच नहीं?
11: हाँ, मतलब वैसा, बिल्कुल वैसा वाला बीच, समझ रहे हैं, एकदम जाके और कूद गए, पानी में डुबकी लगाई एकदम जाके। कतारा में लगा सकते
10: हैं, वो वाला नहीं है,
11: वो वाला नहीं है। तो वो वाला जाना चाहिए यार, एंजॉय कीजिए कतर में। माशाल्लाह तकरीबन कितने यार 14-15 तो बीच ऐसे हैं जहां पर आप बदल बदल के भी जाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा और गर्मियां पूरी गुजर जाएंगी खैर के साथ।
10: तो इस बार सुना तो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत।
11: अरे आप सुना नहीं, आप देख भी सकते हैं ऑनलाइन, वैसे सब जगह मौजूद है, मगर आप
10: छुट्टियों से जब लौटेंगे तब इंशाल्लाह जरूर जाएंगे
11: इंशाल्लाह ताला। और जब आपको टाइम मिले तो आप FM 107 की जितने भी सोशल मीडिया पे पेजेस हैं वहां पर जाइए, वो FM 107 को फॉलो कीजिए।
10: हाँ सरवर भाई, हाँ। ये बताएं अगर इंडिया गए तो कैसे रास्ता होएगा आपसे?
11: अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ। पहले तो बीचेस के हवाले से बताऊंगा आपको मैं, आप जब लिखेंगे FM 107 सुहाना सफर कतर, ठीक है, FM 107 सुहाना सफर कतर या सुहाना सफर कतर लिखेंगे तो आपको तमाम जगहों पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, टिकटॉक पे, सब जगह आपको FM 107 की जो पेज है वो आ जाएगी और आप उसके अंदर मुख्तलिफ बीचेस देखेंगे कतर पे, जहां पर सरवर मिर्जा और उनकी टीम जो है आपको खाना बनाना पकाना भी सिखा रही है और आपको कतर की मुख्तलिफ जगहें भी दिखा रही है माशाल्लाह से। तो ये भी आपको एक बात रही, आपको सारे बीचेस मिल जाएंगे सुहाना सफर कतर में, उसके 3 सीजन हुए हैं आज तक। और हमारे साथ मजीद ऑन एयर जुड़ने के लिए, ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.urduradio.qa, बहुत आसान है। आप एक काम ये भी करिएगा, मुझे मैसेज भेजिएगा तो मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, बट इट्स वेरी इजी, www.urduradio.qa, ठीक हो क्या? इसको आप एक बार खोल के देखिए और फिर इंशाल्लाह छुट्टी से जाने से पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको मजा आया या नहीं आया, नहीं आया तो पैसे वापस। बहुत ही जबरदस्त हमारा ये वेब एड्रेस है, मैंने आपको इसके सिलसिले से बता दिया है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं 24 घंटे सातों दिन। मजीद ये कि आप सारे प्रोग्राम्स वगैरह उसके अंदर देख सकते हैं, स्टेशन के हवाले से जितनी डिटेल्स है आपको सारी मिल जाती हैं, जितने आरजे हैं, कौन कौन से किस वक्त कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तमाम मालूम आपको वहां मिलती है। प्लस ये जो प्रोग्राम्स आपके मिस हो गए वो भी आप वहां पर समाप्त फरमा सकते हैं, 8, 10, 11 पिछले प्रोग्राम, वो आपको हर प्रोग्राम के नीचे आपको फाइल्स मिलती हैं जो पोस्टर है प्रोग्राम का, और उन फाइल्स को आप क्लिक करके पूरे पूरे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो ये भी सहूलत आपके लिए है इंशाल्लाह ताला, तभी के लिए
10: इंशाल्लाह।
11: तो चलिए साहब ये हो गया, तो अब आ ही गए हैं बार बार, कहां तशरीफ लाएंगे, 3 के दम में भी जरा सा दम भर देते हैं वैस भाई, जाते
10: एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट।
11: अच्छा
10: हेलो,
11: हाय,
10: आईवा,
11: हां
10: हां
11: आईवा,
10: जी बोलिए बोलिए,
11: क्या हो गया, क्या अर्जेंसी आ गई जो है रात के दिन?
10: अरे कुछ नहीं, काम से आए हैं सरवर भाई।
11: अच्छा चलिए, अल्लाह ताला आसानी करे, जल्दी से 3 का दम खेल लेते हैं फिर आपको जाने दूंगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है? चलिए तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल रेडी है,
10: बिल्कुल रेडी रेडी है।
11: अच्छा ये बताइए कि किताब पढ़ते हैं या पीते हैं?
10: पढ़ते हैं।
11: पैरों से चलते हैं या लिखते हैं?
10: पैरों से चलते हैं।
11: ऐसी क्या चीज है जो है तो खालिस आपकी लेकिन उसे सबसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं?
10: फिर आपने पूछा बड़ा टिपिकल सवाल, इतने दो इजी पूछे और ये वाला पूछ लिया।
11: हाँ ऐसी, अरे बहुत आसान है, ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा पूरी उम्र दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, है आपकी खालिस?
10: हमारी खालिस दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं बातें।
11: बातें तो सभी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और सोचिए। अच्छा अच्छा, एक आदमी बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद गया फिर भी बच गया, कैसे बताइए? बताओ, हवाई जहाज से कूद गया मगर बच गया, जरा सी छूट नहीं आई, एक खरोच नहीं आई,
10: तो वो भाई एयर नहीं होगा, जमीन पे होएगा
11: वो। क्या कहने, क्या कहने भाई, ये तो सही बता दिया यार आपने, बिल्कुल क्या बात है, आज पूरा एक हफ्ता लगा मगर सही जवाब तीन दे दिए आपने। वेरी गुड वेरी गुड।
10: जहाज के बारे में पूछा ना, उड़ते हुए जहाज के बारे में नहीं बोला।
11: यही है वो चीज जो समझनी है मेरे सवालों में। क्या बात है भाई, क्या बात है, चलिए साहब बहुत बढ़िया।
10: इसका जवाब बताइए, मेरी चीज कौन इस्तेमाल करता है?
11: नहीं, ये दूसरों से भी पूछूंगा ना अभी, जब कोई बता देगा तो सही है, वरना बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, अभी से ओपन कर दूंगा, मेरा एक सवाल खराब हो जाएगा ना, समझ रहे? चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एलन वसैलन, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड उवैस भाई, हैप्पी वीकेंड,
10: हैप्पी वीकेंड,
11: बाय। तो ये थे उवैस भाई, जिन्होंने आज पूरे एक हफ्ते की मेहनत लगन कोशिश के साथ साथ तीन सही जवाब दे ही दिए आखिर। तो अगर आप भी तीन का दम खेलना चाहते हैं हमारे साथ कतर का बेहतरीन गेम, तो जुड़ सकते हैं 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं, वरना आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप कॉल बैक करवाना चाहते हैं 1-666-22-107। और यहां पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल आ रही है, भाई मैं व्हाट्सएप नंबर की कॉल कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, कॉल करने के लिए नंबर 443-443-77 है। हेलो, सलाम वालेकुम। अरे किधर थे कैफ भाई, अहलन व सहलन, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उम्मीद कर रहा था कि अब आप नमाज वगैरह से फारिग हो गए होंगे और तशरीफ ला ही रहे होंगे, कैसा रहा आज का दिन?
12: एकदम बढ़िया
11: माशाल्लाह।
12: मैसेज नहीं पढ़ते हैं? मैसेज नहीं पढ़ते हैं?
11: मैसेज नहीं पढ़ते हैं यार, मैंने देखा नहीं यार। खैर मैं बता दूं सबको कि नसीम भाई हमारे साथ हैं और अभी आपके अब साथ रहते रहते मैसेज, असल में वक्त ही नहीं मिल पाया इतना, किधर है अच्छा साहब नसीम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ शायरी छोड़ी है यहाँ पर, तो वो पढ़ देता हूँ। कहते हैं, मेरी मुस्कुराहट को वो कोई और रंग दे रहे
12: बैठे।
11: दे बैठे, अच्छा दे बैठे। अब मेरा स्क्रीन असल में टूटा हुआ है मोबाइल का, तो इसलिए पढ़ने में जरा दिक्कत हो रही है, माजरत। तो मेरी मुस्कुराहट को वो कोई और रंग दे बैठे, मैं वजाहत देता रहा वो मुझे पीटते रहे। यार बड़ा ही पिटा हुआ चेहरा, क्या कहले भाई, कहते अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीम भाई बड़ा ही पिटा हुआ चेहरा लाए यार, क्या कहने, मेरी वजाहत। एक बार और मुकर्रर इरशाद नसीम साहब।
12: जी जी जी,
11: हां मुकर्रर इरशाद, अरे फरमा दिए, एक बार और पढ़ दिए मेरी, अरे शेर पढ़ दो एक बार और नसीम भाई, भूल गए क्या लिख के? अच्छा, मेरी मुस्कुराहट को वो कोई और रंग दे बैठे, मैं वजाहत देता रहा वो मुझे पीटते रहे। आए हाय हाय यार, ये तो मेरे ऊपर बैठ रहा है एकदम सेट यार। ये तो वाकई मेरे लिए कह दिया किसी ने, क्या ही कहने भाई, वाह वाह वाह वाह। तो नसीम भाई खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि वीकेंड आते ही किस मोड में चले जाते हैं, रिलैक्स मोड में या फिर घूमने फिरने के मोड में आ जाते हैं? क्या क्या,
12: हमारे तो वीकेंड नहीं है।
11: अच्छा यार, मतलब चलिए छुट्टी, ये तो हमारे ऊपर है कि हम नहीं ले रहे, मगर लेट से इट्स नॉट अबाउट
12: छुट्टी,
11: देखिए देखिए
12: छुट्टी आती है।
11: हाँ हाँ,
12: में
11: हाँ चलिए ठीक है, तो उसी के हवाले से जब छुट्टी आती है तो फिर क्या प्रेफर करते हैं ये बताइए? पार्टी शार्टी चलती है आप बैठे, तो पार्टी शार्टी घर पे ही होती है या फिर बाहर एंजॉय करा जाता है?
12: घर पे ही
11: चलती है पार्टी शार्टी, क्या बात है, क्या कहने, क्या ही कहने। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, तो पार्टी शार्टी करते हैं। चलिए तो तीन का दम के लिए रेडी नसीम भाई?
12: थोड़ा सा काम है।
11: नहीं खेलेंगे?
12: कॉल बैक करता हूँ फिर।
11: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है, बिजी हो गए तो कोई बात नहीं, डर के भाग रहे हैं तो फिर नहीं जाने देता।
12: हाँ
11: तो वापस जरूर आइएगा। ओके ओके ओके, टेक केयर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे हमारे साथ नसीम साहब यहाँ पर पार्टी चार्टी करते हुए, और चलिए तो अब एक जरूरी ब्रेक का टाइम है, वो पूरा अदा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: बजे साहब हम सबके 12 बल्कि 12 बज के सही 2 मिनट और यहाँ पर अब वक्त हुआ कि कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं जो अभी तक रह गए हैं। बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस, आइए शुरुआत करते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप, हैप्पी वीकेंड। कौन है हमारे साथ, जमीर भाई। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब। कहते हैं आओ सरूर भाई, ये मेरे ख्याल में सलाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा है इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग वेल, आपका ही वेट होता है सर जी। यार कैसे कर रहे हो यार, वेट मत करो, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। सर अभी तक वाउचर की कॉल नहीं रिसीव हुई, हमारा हिस्सा कहीं और चला गया क्या। कहते हैं यार क्यों नहीं हुई, ये क्या हो रहा है हमजा भाई। काफ़ी लोगों को वाउचर पहुँच भी गए हैं और कॉल आ भी गई है, बट फिर भी इंशाल्लाह ताला हम उनको रिमाइंड भी करा देंगे। तौफीक भाई हमारे साथ जुड़े, सरूर भाई अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तौफीक अलबाकरा से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं तौफीक भाई, खैरियत से इंशाल्लाह। ओके, बढ़ते हैं आगे और यूसुफ भाई आ गए हैं अब हमारे दरमियान। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरूर भाई, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम सन एंड साउंड, दिल से देसी। खूब सारे गुल दस्ते और दिल यहां पर सभी को वीकेंड विश कर रहे हैं। और कहते हैं आज की शायरी, अहलन व सहलन। कहते हैं मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। ओए होए होए होए, खुदा इस शहर को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। क्या कहने भाई, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। वो अब लाखों दिलों से खेलता है, मुझे पहचान ले इतना बहुत है। ओए होए होए होए होए, ये सब भाई क्या बात है। कहते हैं सरूर भाई वीकेंड पे स्पेशली हम लोग बाहर जाते हैं घर की कोई ग्रोसरी लेने, कोई मॉल कुछ शॉपिंग के लिए, और स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। बिल्कुल ठीक, ऐसा होना भी चाहिए यूसुफ भाई। तो चलिए मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा। पहले एक चैंपियन हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सबको बारी बारी चांस भी और सबकी बातें भी। हेलो सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम सरूर भाई, क्या
2: हाल है। अहलेन अहलेन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं, खैरियत से हैं।
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है आपकी।
2: बस अल्लाह का शुक्र है। मुदस्सिर भाई हमारे साथ,
3: आदिल भाई,
2: मुझे याद तो आ गया था कि आज तीसरे दिन लगातार बात हो रही है और आप बड़े ही मुश्किलों से खींचा है मैंने आपको अपने स्टेशन की तरफ, ये भी मुझे पता है। नाम ध्यान से अब बात होती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला याद भी रहेगा। कैसे हैं आदिल भाई, कैसा दिन शुरू हुआ और वीकेंड की क्या तैयारियां।
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है
2: माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे। सबसे पहले तो गर्मियां है भाई, ठंडा और मशरूबात के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ठंडी चीजें खाना पीना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जब आप मशगूल होते हैं वीकेंड पे तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, क्योंकि जितने भी लोग अपना वीकेंड मना रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ भी होता है। मैं सभी को ये कहूँगा, जो भी अपने फराइज अदा कर रहे हैं, जो भी गाड़ी चला रहे होते हैं, जो भी डिलीवरी के लिए होते हैं, सारे ही लोगों का जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सभी के वीकेंड को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए। सही बता रहा हूँ मैं भाई, आप लोगों को सलाम है, हेड्स ऑफ है। आदिल भाई तो चलिए 3 कदम हो जाए फिर।
3: जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।
2: क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या ही कहने है, आसान आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए मोबाइल से कॉल करते हैं या रोटी बनाते हैं।
3: मोबाइल से कॉल करते हैं।
2: कॉल करते हैं। समंदर का पानी मीठा होता है या खारा।
3: समंदर का पानी नमकीन होता है।
2: समुंदर का पानी नमकीन, हाँ मतलब खारा कह सकते हैं, चलिए वो भी आप जवाब दे सकते थे, वो भी बिल्कुल सही है। अगर कल के बाद परसों आता है तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा।
3: आज से दो दिन बाद चौथ होगा।
2: यस यस यस यस यस यस यस यस बिल्कुल सही यार, आज तो भाई लोग एकदम, मतलब होता है ना कि पेपर आता रहता है फिर एग्जाम में एकदम शार्प हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आज सारे जवाब सही आ रहे हैं भाई। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है मगर जवाब सही आ जाता है भाई। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ये इस तरीके से मतलब जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। आज से दो दिन बाद क्या परसों ही है भाई, कल के बाद परसों है, आज से दो दिन बाद परसों है। बिल्कुल सही अदिल भाई, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया यार। और इसी तरीके से जुड़ते भी रहिए, तशरीफ लाते भी रहिए, और जैसे कि मैंने अर्ज किया अपना बहुत सारा ख्याल रखिए भाई, बहुत सारा है ना।
3: अच्छा मुझे भाई बताइएगा बीच में कब जा रहे हैं आप?
2: मैं बीच में कब जा रहा हूँ?
3: आपसे मुलाकात करनी है।
2: अरे इंशाल्लाह ताला आप मुलाकात तो कभी भी हो जाएगी, और जैसे कि मैंने अर्ज किया अगर बीच पर मुलाकात करनी है तो अभी फोन रखते ही, खैर अभी तो सुनते रहिए हमें, मगर जैसी टाइम मिले तो सुहाना सफर कतर डालिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बीचेस भी दिखेंगे, सर्वर भी दिखेगा, FM 107 की तमाम वीडियोस भी आपके सामने आ जाएंगी। एक बार करके खोल के देखिएगा तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद डिसाइड करिएगा कौन से बीच पे जाना चाहते हैं, तो साथ चलेंगे, ठीक है? सुहाना सफर कतर जी।
3: और उस पे आपके आने की टाइमिंग भी आ जाएगी जब आपने आना होगा,
2: वो सब आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है?
3: ओके
2: अदिल भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैप्पी वीकेंड भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय।
3: अपना सरवर भाई, मेरे दो भाई हैं उनको भी सलाम कह दे जरा।
2: अरे बिल्कुल, नाम बताइए।
3: एक हमजा भाई है और एक शानी है।
2: शानी हमजा भाई और शानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उससे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि अदील भाई जैसा भाई, आपका दोस्त आपका भाई है, इससे ज्यादा प्यारी बात आपकी जिंदगी में क्या हो सकती है यार। बहुत बहुत शुक्रिया शानी भाई, हमजा भाई, अदील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और जुड़ते रहिए। तीन कदम अब खिलवाना हमजा भाई से भी और शानी भाई से भी, ठीक है अदील भाई? ओके बाय, हैप्पी वीकेंड भाई, अल्लाह हाफिज,
3: थैंक यू,
2: वेलकम। ओके साहब, तो ये थे हमारे साथ अदील भाई, शानी भाई एंड कौन था, हमजा भाई। और इतने में सोचते मैंने कॉल जो है अपने हाथों से ही ड्रॉप कर दी, वेरी सॉरी। दूसरी कॉल लेते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाय
2: हाय हाय,
4: हमारी कॉलें काट रहे हैं सरवर भाई, देख ले।
2: और उसके बाद ये हुआ कि तेरी याद भी गई, क्या बात है, क्या ही कहने भाई। हमारे साथ इस वक्त, अब मैं नाम बताऊंगा आप खुद ही बता दीजिए यार, बेहतर है। जमील भाई,
4: फजील फजील भाई कैसे हैं? फजील भाई भैया जमील अहमद।
2: अरे मैंने बोला यार, मैंने अभी बोला, मैंने कहा जमील भाई अपना नाम बता दीजिए, आपने सुना नहीं शायद खुशी में, फिर ठीक है।
4: 11 बजे से सर भाई मैं ट्राई में लगा हुआ था, लेकिन जब आपको कॉल करने लगूं तो कोई कॉल आ जाए या उतर जाऊं।
2: अहलन व सहलन, और मैं आपको बगैर बात करे जाने नहीं देता इस वीकेंड, आपको कॉल जरूर करता भाई मेरे। तो पहले तो ये बताइए जमील भाई, वीकेंड आते आते क्या माहौल बन जाता है और किस तरीके का वीकेंड गुजारना पसंद करते हैं? घर पे रह के एंजॉय करते हैं या फिर मेरी तरह दोस्त?
4: मैं सच बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं मेरी बात से शायद इत्तेफाक ना करें।
2: अच्छा,
4: मेरी फितरत में तो वर्कोहॉलिक होना है, तो आई हेट वीकेंड, वल्लाह आई हेट वीकेंड। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी कंट्री में हमें माइग्रेट करवा दिया, महाजिर होकर आ गए, कि बैक टू बैक वर्क रहता है। तो और जुम्मे वाले दिन के लिए ना एक खास बात, जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम फुरकान हमीद पे थोड़ी सी रिसर्च करनी शुरू करी, डिटेल में पढ़ना शुरू करा, तो एक आयत मैंने पढ़ी माँ कि अजान के वक्त अपने कामों को तर्क कर दो, रोक दो, और नमाज के बाद अल्लाह का फजल जमीन में तलाश करो। और नाम निकल गया इसमें, और सुभान अल्लाह, वल्ला सोचने और देखने वालों के लिए इसमें इतनी निशानियां। अगर जुम्मा नमाज के बाद आप अल्लाह का फजल तलाश करने निकले तो आप रोजी से माला माल है उसकी रहमतों से, उसकी नेमतों से। तो वो मेरी फितरत एक बन गई है। तो वर्किंग डेज से ज्यादा मैं ये फ्राइडे को अपना काम कर रहा होता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत अच्छा काम चल रहा होता है, अल्लाह की रहमत है।
2: बहुत अच्छी बात है, और वाकई आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां भी पैदा करे, और अल्लाह ताला इसी तरीके से रिस्क के जो दरवाजे हैं उससे मालामाल करता भी रहे और दरवाजे खोलता भी रहे। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी अच्छी बात। तो चलिए आ जाते हैं अब तीन के दम की तरफ। जमील भाई रेडी?
4: मैं रेडी।
2: आसान पूछ लूं थोड़ा सा?
4: अरे आप मुश्किल भी पूछे तो हमें क्या
2: कर मेरा क्या लेके जाओगे?
4: मैं जाता हूँ यार, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, बस यही होगा हार जाएंगे। खाली अल्लाह ताला ने लिखा, हारना तो हार
2: जाए ये होनी चाहिए स्प्रिट। चलिए साहब, तो क्या हम कानों से सुनते हैं?
4: बिल्कुल।
2: क्या पानी पिया जाता है?
4: बिल्कुल।
2: वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा साफ करो उतनी ही काली होती चली जाती है?
4: कोयला?
2: नहीं मतलब इसमें थोड़ा सा अगर कोयला जला हुआ है देन, और सोचिए।
4: रात?
2: रात? रात को हम कैसे साफ करेंगे?
4: राख
2: के नीचे फिर राख है, वो तो ग्रे है, एशेस ऑल अराउंड, एश ग्रे। आसान है यार, बहुत आसान है यार, हमने बड़ी जिंदगी, मैंने आपने बड़ी जिंदगी गुजारी उसके साथ। एक टाइम ऐसा था कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आइटम है वो।
4: इतनी ज्यादा साफ करो उतनी ज्यादा काली हो जाती। क्या चीज आ गई भाई? ट्यूब? ट्यूब टायर की ट्यूब?
2: नो। अच्छा चलिए दूसरा सवाल पूछता हूँ, जब तक शायद इसका जवाब आपको मिल जाए कहीं ना कहीं से, उम्मीद करता हूँ। अगर एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं और उनका नाम जनवरी फरवरी मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? तो ये बताइए बिल्ली का नाम क्या है?
4: बिल्ली का नाम क्या है?
2: अब ये मेरा सवाल है, पहले तो मैंने आपको सवाल बताया और अब फिर सवाल किया मैंने आपसे।
4: ठीक है, बच्चों का नाम है जनवरी फरवरी मार्च
2: जी,
4: तो बिल्ली का नाम क्या है
2: जी? बताइए
4: जी,
2: बताइए।

0: एक बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे ये काम फंसा रहे बिल्लियों
1: थोड़ा सा तो सोचो यार,
0: मैंने अभी के बाद तो
1: मैंने आपको जवाब दिया है अभी यार, और कितनी हिंट दूं, मैंने अभी सवाल में ही है आपको जवाब दिया है।
0: एक बिल्ली है,
1: अब बार बार मैंने तो कर दिया सवाल, अब मैं बार बार क्लियर नहीं करूंगा, कैच तो वही है।
0: बिल्ली, बिल्ली का नाम है एक, एक बिल्ली है,
1: करीब है आप,
0: एक बिल्ली है,
1: करीब है, करीब है जमील भाई,
0: बिल्ली है, एक बिल्ली का बच्चे, एक बिल्ली यार ये बहुत सफर भाई।
1: चलिए कोई बात नहीं, अच्छे क्लू दिए मैंने आपको, बट मैं रखना चाहता हूँ, मैं जवाब ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कोई और आएगा
0: नहीं,
1: तो
0: रखे,
1: आप
0: रखे।
1: भी सुनिएगा, और अगर वो बता पाते तो अच्छी बात है, ठीक है,
0: लाजमी सुनूंगा मैं, अपना सफर 6-7 किलोमीटर आगे ले जाऊंगा, अगले यूटर्न से यूटर्न करूंगा, लेकिन सुनूंगा जरूर जवाब।
1: अहलन वसहलन, मोहब्बत है यार।
0: एक और चीज, बीचेस का पूछ रहे थे
1: जी,
0: तो मेरी एक एडवाइस है कि एक बीच है थाकिरा बीच,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा,
1: बिल्कुल
0: यार वहाँ जरूर जाइएगा,
1: बिल्कुल
0: कभी,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने वहाँ शूट भी किया है,
0: ज्यादा मजा,
1: हमने वहाँ शूट भी किया है। मैं वही अभी अर्ज कर रहा था कि जितने लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करनी है, और जाहिर बात है जब बीच पे जाते हैं हम खान पकान भी करते हैं, तो उसके हवाले से ये सारा अगर पैकेज आप देखना चाहते हैं तो FM 107 के जो वीडियो है सुहाना सफर के वो जरूर देखिएगा,
0: बिल्कुल देखे, मैंने देखे सर,
1: हाँ, तो आपको मुख्तलिफ बीचेस मिल जाएंगे, और जो आपने बताया ज़कीरा भी, ज़िक्रीद भी है, बहुत सारे बीचेस हैं भाई ऑल अराउंड सदर, माशाल्लाह सुकून ही सुकून,
0: जो सीनरीज है वहाँ पे वो छोटे छोटे,
1: बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, और पानी इतना क्लियर है कि जिसका कोई जवाब नहीं भाई, क्या
0: ब्लू ब्लू
1: बिल्कुल ब्लू है, पानी पानी
0: हाउस बने हुए वहाँ पर बड़े प्यारे से,
1: बिल्कुल,
0: तो पब्लिक वहाँ जरूर जाए।
1: चलिए साहब ये देखिए, हाँ बस ये है कि बच्चों को अवॉइड करा जाए, क्योंकि काफी बीचेस ऐसे हैं जो बॉयज या कहना चाहिए बैचलर्स अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाली बॉयज नहीं, गर्ल्स भी अगर अकेली जा रही हैं, इट्स ऑल सेफ अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कतर में, बट फैमिलीज और बच्चे है ना, बच्चों स्पेशली बच्चों को अवॉइड करा जाए, बस ये है,
0: अवॉइड किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बाकी एडल्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्या कहने भाई, बहुत बहुत खूब, और बहुत अच्छा लगता है जब भी कॉल करते हैं जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो
0: मच, थैंक यू,
1: अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ऑलराइट देन भाई, अब तो गाना बनता है यार, वीकेंड है, और थोड़ी वीकेंड की वाइब्स को अप करते हुए, पुरानी यादें ताजा करते हुए, आई वाह, तो भाई इस वक्त सन एंड साउंड पे सर्व मिर्जा आपके साथ है, ओनली ऑन FM 107, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक उदित नारायण की आवाज में, मैं यूं गया और यूं वापस आया, दिल से पूरा देसी भाई।

क्या कह रहे भाई, क्या ही गाना, श्रेया घोषाल और शान। चलिए साहब, ये तो हुई गाने की बात। अब आपको मालूम है जख्मों पे नमक छिड़कना किसको कहते हैं? मेरे साथ ऑल द वे इस वक्त जने कहां कहां घूमती हुई आरजे सफा जुड़ चुकी हैं और पीछे से मैसेजेस भेज रही हैं मुझे, जो तफरी इस वक्त कर रही हैं, जो एंजॉयमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, उन सारी चीजों से मुझे चढ़ा भी रही हैं। उनको यहाँ होना था, ये बराबर वाले माइक पे, बराबर वाली गद्दी पे, मगर भाई अब क्या करें, दुनिया जमाना गरीबी को ही दबाया जा रहा है भाई। तो आरजे सफा यहाँ पे आपको सब याद भी कर रहे हैं और मैं भी कहता हूँ कि जल्द से जल्द आए, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। अकेला कब तक मैं परेशान होता रहूं? तो भाई यहाँ पर खूब सारे कॉल भी और खूब सारे मैसेजेस भी, क्या करूं मैं भाई, लोग मोहब्बत नवाजिश करम।

0: क्या कह रही हैं आनिया? अच्छा, सूक वाकिफ को जा रही है और मुझे बुला रही है, राइट?
1: जी
0: जी जी सर। अभी आता हूँ बेटा, अब्बा से कहना बस पैसे भर के रखें, सूक वाकिफ में कबाब खाऊंगा आगे। आओ, आता हूँ प्यारी प्यारी हानिया। हानू, क्या बात है, माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत ही प्यारी आवाज भी हानिया की और बहुत ही प्यारी हानिया खुद भी। तो अब्बा, आपने नाम नहीं बताया अपना, मैं भूल गया।
1: जी जी, अबरार।
0: ओके अबरार भाई, एलन वसैलन, कैसे हैं अबरार भाई, खैरियत से? ओके, अब मैं क्या कहूँ। सही है। तो अबरार भाई, गेम खेलेंगे तीन कदम जल्दी से?
1: जी, खेलेंगे, गेम खेलेंगे।
0: ऑलराइट देन, चलिए तो हो जाइए रेडी। ओके, हम क्या, हम कानों से सुनते हैं?
1: जी जी जी, जरूर कानों से ही सुनते हैं।
0: क्या पानी पिया जाता है?
1: जी, पानी पिया जाता है।
0: वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा साफ करो उतनी ही काली होती चली जाती है?
1: मुंह। जितना भी धो काला ही रहता है।
0: ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई, अल्लाह ना करे किसी का मुंह काला हो, किसी का दिल काला हो, खुदा ना खास्ता। ये कोई एक चीज है भाई पर्टिकुलरली, आपने तो इस वक्त मुझे परेशानी में डाल दिया अबरार भाई। नहीं, ये कोई एक चीज है बाकायदा, और जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, पता नहीं कौन थे हमारे साथ, रमेश भाई थे या औसाफ भाई थे, मैं भूल गया, कि ये बड़ा इससे हमारा ताल्लुक रहा है, एक बड़ा अरसा हमने और इसने साथ में गुजारा, इस चीज ने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा वक्त। नो, बाल अगर अब मेरे जैसे सफेद हो गए तो मैं तो अगर डाई लगाया हुआ हूँ और इनको साफ करूंगा तो ये तो सफेद निकलेंगे अंदर से, जितना साफ करूंगा काले घर से निकलेंगे। आंसर ही तो नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं, ताकि दूसरों को भी फंसाता रहूं। चलिए कोई दूसरा सवाल करता हूँ आपसे, ठीक है? ओके। अगर एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं और उनके नाम जनवरी, फरवरी और मार्च हैं, बिल्ली का नाम क्या है? तो ये बताइए कि बिल्ली का नाम क्या है?
1: ईयर।
0: क्या है?
1: ईयर। ईयर
0: ईयर। अच्छा, ईयर मतलब साल। नो,
1: ना,
0: मैंने आपको अभी बताया, मैंने अपने सवाल में ही आपको जवाब दिया है, अब इससे ज्यादा हिंट क्या दूं, इससे पहले भी यही है।
1: दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली,
0: ना ना, नो नो नो, करीब हैं आप,
1: और एक बार रिपीट कर सकते हैं
0: तो आप पकड़ लेंगे फिर उसमें तो अच्छी तरीके से। अगर एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं, उसके साथ उनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च हैं, बिल्ली का नाम क्या है? तो अब ये बताइए कि बिल्ली का नाम क्या है? यार हानिया जवाब दे रही है अबरार भाई।
1: हानिया खाना बोलती
0: है। आज हार गया। अच्छा, एक और चलिए। अगर तीन बिल्लियां तीन चूहों को 3 मिनट में खाती हैं या पकड़ती हैं, तो 100 बिल्लियां 100 चूहों को कितनी देर में पकड़ेंगी?
1: 100 मिनट में।
0: ना, बिल्कुल गलत जवाब ये भी। आपकी जीरो नहीं है, मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ यहाँ पे बहकाने का लोगों को।
1: नहीं तो मेरे को निकाल देंगे से।
0: Oh my God, very sorry. ऐसी बात नहीं है यार अबरार भाई, ये है बहुत आसान, ये बहुत नहीं, ये डिफिकल्ट है ही नहीं, इसी के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है, और मैं जवाब दूंगा जरूर इंशाल्लाह, हो सकता है कोई और भी दे दे। अबरार भाई, आपकी मोहब्बत है, ऐसा मत करिएगा कि अगली बार तशरीफ ना लाए आपके, यार बहुत ही खराब सवाल पूछता है, मैं नहीं जा रहा। आइएगा जरूर इंशाल्लाह, वैसे अगले हफ्ते हम दूसरा गेम खेलेंगे। हानिया को ढेर सारा प्यार और खूब सारी दुआएं भी, अल्लाह ताला खुश रखे, आपकी आंखों की ठंडक बनाए, नसीब अच्छे करे, और इसी तरह आप इनकी खुशियां देखते रहे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड अबरार भाई, हैप्पी वीकेंड। ओके देन, ये थे अबरार भाई हमारे साथ। यार अब कुछ मैसेजेस ले लेता हूँ, वरना यहाँ से भी बातें सुनने को मिलेंगी। ओके, आरजे सफा इस वक्त हमारे साथ।

0: जुड़ी हुई हैं। आज सफा बेहतर ये था कि आप यहाँ आ जाती हैं, अगर आप रेडियो के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं थोड़ा वक्त यहाँ पे आगे गुजार जाइए, इससे अच्छी बात क्या है। मगर मुझे ही नहीं मालूम कि ये कतर में हैं या नहीं, ये बता भी नहीं रही। जरा सा गुंजाइश भी रखी ना उन्होंने कि मैं ऐसा वाकई ना हो कि बुला लूं इनको। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, 6 महीने से ऑन नहीं किया है, क्यों यार? अच्छा सही, जमील अहमद हो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि टीवी भी नहीं खोला इन्होंने तो। ओ भाई यार ऐसा क्यों? और रमेश भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहते हैं सरवर जी क्या कहते हैं कांगे मैसेज, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे किया इन्होंने मॉर्निंग में ही था, माय बैड कि मैं इसको आफ्टरनून तक घसीट लाया आपके मैसेज को। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, आज हमारी भतीजी का भी बर्थडे है, समर गौर मेरे ख्याल में है, गौर और गौर, एनी हाउ समर का है बर्थडे। और चाचू मोहम्मद मुशीर आलम साहब विश कर रहे हैं हमारी भतीजी ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भाई समर को अ वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और हमारी और पूरी टीम की जानिब से ये समर के लिए खासम खास दिन, और उन सभी के लिए जिनका आज खासम खास दिन है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हैप्पी बर्थडे समर। तो यहाँ पर और मैसेजेस, सरूर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज सुनकर जान में जान आ जाती है। सवालों का जवाब तो दे दिए, आइए तो सही। वाशिम है हमारे साथ, यार अच्छा नाम लाए वाशिम भाई, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम, या मुझे याद नहीं आ रहा। और बड़ी प्यारी फोटो, क्या डीपी लगाई है मेरे भाई ने, और पीछे पूरा नक्शा दिख रहा है भाई, कौन सा नक्शा है, गल्फ का है या इंडिया पाकिस्तान का है, पूरा मैप लगा के बैठे हुए पीछे, ऑफिस का फोटो लग रहा है भाई के। अस्सलाम वालेकुम सरवर, कैसे हैं आप सर? गाड़ी में बैठा तो सर, तो मैं कह रहा था कि आपका हाल पूछ लूं। माय भाई, और सर मैं यहाँ खाना ये कहना चाह रहा था, खाना ही याद रहता है मुझे, सॉरी यार, कि लाहौर कैसा है घूमने के लिए गर्मी में? सर अभी तक मेरे SMS का जवाब नहीं मिला, आई एम वेरी सॉरी, मैंने देर में पढ़ा मैसेज। मेरे भाई अरबाज खान सलमान खान के छोटे भाई हैं ये, यकीन जानिए खूबसूरत ये सलमान खान की तरह ही है, इनकी जो DP देख रहा हूँ मैं अरबाज भाई की। अरबाज भाई लाहौर इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊँगा तो घूम के बताऊँगा कि कैसा है और कैसा रहा, क्योंकि अभी तकरीबन 22 साल या 23 साल तो मैंने लाहौर देखा नहीं है यार, वेरी सॉरी। अस्सलामुअलैकुम सर भाई, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, और आपके सुनने वालों को सलाम, हम आपको दावत देते हैं हमारे साथ कभी बिरयानी खाने का मौका बनाए, मोहम्मद कलीम वाकरा से। यार क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं, और ये तो मैं मजाक करता रहता हूँ, आपने सीरियसली ले लिया कलीम भाई। खैर बहरहाल इंशाल्लाह ताला काम ये करिएगा कि लोकेशन शेयर करिएगा और किस दिन आना है ये बता दिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा, इफ यू इंसिस्ट देन ओनली इट्स फाइन। इस्माइल भाई हमारे साथ, सलाम सरवर भाई, यार वो मेरा प्राइस का क्या हुआ, नादिया के शो में 500 कतरियाल जीता हूँ, अब बैक टू बैक 2 सॉन्ग प्ले करिए जरा, पूछना है। अच्छा ये तो मैंने मैसेज यही पढ़ दिया यार इस्माइल, नादिया भाग चुकी हैं, सफा भाग चुकी हैं, तो इन्होंने जो भी आप लोगों से वादे करें, देखिए मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मजाक का पार्ट भाई सभी को मिल रहा है, और इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएगी, उम्मीद उम्मीद उम्मीद कायम है, और इसका जवाब भी जल्दी आ जाएगा यहाँ पर। अब एक भाई चैंपियन को जोड़ लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
1: आप सुन रहे हैं?
0: अरे गलत गलत चला, सॉरी, आप सुन रहे हैं? हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: सर, क्या हुआ हमारी छुट्टी का?
0: हेलो,
2: हाँ सर,
0: हेलो
2: कौन बोल रहा
0: है? हेलो अस्सलाम वालेकुम,
2: क्या हुआ?
0: अरे कौन, हेलो भाई आवाज नहीं आ रही साफ, हेलो हेलो भैया हेलो, अरे अरे बोलते क्यों नहीं है भाई, कौन है यहाँ, हमें सता रहे हैं क्या है?
2: और सुनाने का कोशिश तो किया लेकिन फंसे नहीं आप
0: भाई, यार साइज देखा मेरा, मैं कहीं नहीं फंस सकता। रमेश भाई हमारे साथ हैं, अहलन व सहलन, हैप्पी वीकेंड रमेश भाई।
3: हैप्पी वीकेंड सर आपको भी,
0: हाउ आर यू टुडे?
3: I'm fine sir, how are you?
0: माशाल्लाह I'm very good, बेहतरीन, खूबसूरत, एकदम चकाचक। तो अब ऐसे वक्त में तशरीफ आई है आपकी कि तीन का दम जारी और सारी है, तो
3: बिल्कुल शुरू कर दीजिए।
0: आज तैयारी करके आए पूरी क्या एकदम?
3: नहीं जो भी सवाल पूछना है पूछिए, मुश्किल नहीं, तीन का दम ही तो निकालना है।
0: ये बात भी सही है। ओके बिल्कुल ताजा ताजा पूछता हूँ एकदम अभी चूल्हे पे से उतारा हुआ, ठीक है? बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
3: बच्चे

0: अरे कौन है भाई साथ में, इतने बात कर रहे हैं कौन है? नहीं नहीं, ये साथ में आवाज किसकी आ रही है पीछे से?
1: नहीं नहीं, ये हमारे साथ बैठे हुए लोग गाड़ी में।
0: कहाँ के हैं, झारखंड के हैं या पटना के हैं?
1: सब आपके पड़ोसी सर, अलीगढ़ के।
0: अच्छा, अलीगढ़ के पड़ोसी? कहाँ के, कौन सी जगह के?
1: अलीगढ़ सर।
0: अलीगढ़ के ही है?
1: आजमगढ़ के।
0: ओके ओके, चलिए साहब, सभी जो आजमगढ़ के होते हैं वो लकब में आजमी कहलाते हैं, तो सभी आजमी भाइयों को मेरा सलाम। ओके, कमिंग बैक टू थीम का दम, बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
1: स्कूल।
0: स्कूल शर्ट पहनते हैं या खाते हैं?
1: ऑफिशियली सर पहन के आए होंगे आप भी, हम भी।
0: तो क्या करते हैं बताइए तो सही, जवाब तो देना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, आप शर्ट पहन रहे, चलिए वेरी गुड। एक टेबल पर 5 मक्खियां बैठी थी, आपने एक को मार दिया, कितनी बची?
1: एक टेबल पे 5 मक्खियां बैठी थी, एक मार दिया, कितनी बची? 4।
0: गलत जवाब एज यूजुअल।
1: 5 बचेगा।
0: अरे क्यों बचेगा, मैं बताता हूँ जवाब दूँ? चलो इसका जवाब दे ही देता हूँ, है दे दूँ? अभी तक मैंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल किसी ने, बल्कि एक किसी ने 3 का दम पूरा किया था, मैं तो नाम भी भूल गया बेचारों का एक्साइटमेंट में।
1: कोई दूसरा सवाल पूछ लीजिए, मुश्किल नहीं।
0: अच्छा दूसरा पूछ लूँ, चलिए वही जो मैं आज घुमाए चला जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना साफ करो उतनी काली होती चली जाती है?
1: काजल।
0: बिल्कुल भी नहीं, काजल तो साफ करोगे तो फिर मंजूरी का नहीं बन जाते लोग, मतलब सॉरी टू से, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उसी हीरोइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने किसी लेडीज की बात नहीं करी है सर सुनने, मैं सिर्फ विद्या बालन की ही बात कर रहा हूँ, उन्होंने मूवी के आखिर में अपना काजल साफ किया था, तो वो देखिए क्या बन गई थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, है रमेश भाई? काजल नहीं है, काजल नहीं,
1: कोई दूसरा,
0: गाजर।
1: कोई दूसरा सवाल
0: पूछिए। ये दूसरा नहीं, तीसरा होगा, पूछ लेता हूँ इफ यू इंसिस्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी खालिस है, मतलब बिल्कुल ही आपकी है, बट आपसे ज्यादा पूरी जिंदगी दूसरे इस्तेमाल करते हैं?
1: नाम।
0: ओह, पढ़ के आए थे ये वाला, इंतजार कर रहे थे। भाई मैं सभी को बता दूं कि रमेश भाई ने सही जवाब दे दिया यार, इट्स नॉट दैट मुश्किल, क्योंकि
1: आप जब पूछे ना शुरू में इसको, तब भी मैं मन में ही बोल रहा था कि भाई साहब बताओ, भाई साहब नाम बता दो, भाई साहब नाम बता दो।
0: चलिए यार, ये तो कमाल कर दिया रमेश भाई, आपसे ज्यादा मैं खुश हुआ, आपने कम से कम जवाब तो दिया आज तीनों का, वेरी नाइस। वीकेंड के क्या प्लान है?
1: बस सर रूम में ही कुछ सोच रहे हैं बनाने के लिए, बकरे का पाया हुआ है उसी को बनाए।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है यार,
1: सूप खिलाते हैं आपको।
0: हाँ क्या कहने भाई, बिल्कुल नहीं, मैं आऊंगा, बस जरा पलंग का पाया मजबूत रखिएगा, क्योंकि आके बैठूंगा कहाँ, ये मसला हो जाता है जरा, है ना, बाकी तो आपको बताइए। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड बड़े भाई, हैप्पी वीकेंड रमेश भाई, थैंक यू। तो ये थे रमेश भाई हमारे प्यारे प्यारे यहाँ पर, और उनको खूब सता लिया मैंने, कुछ मैसेजेस, और अगर वक्त है, बिल्कुल है, गाना नहीं लगाता मैं फिर। कौन है, जूते साफ करो तो और काले होते जाते हैं। चलिए अब तो वैसे ये जवाब नहीं है इसमें भी, क्योंकि अब वो सिर्फ काली ही चीज है भाई जो और काली होती चली जाती, अब जूते वाइट है अगर देन, अगर आप उसको साफ करेंगे देन और वाइट होते चले जाएंगे, ब्राउन है तो और ब्राउन होते चले जाएंगे, सो देयर इज अ कैच। ओके बढ़ते हैं आगे, नसीम भाई क्या कहते हैं, दादी अम्मा को सलाम बोलो। हैं किसको, कौन, मेरे ख्याल में सफा से मुतालिक है आपका ये मैसेज, दादी अगर कह रहे हैं तो। सरवर भाई आपके पास इतना एनर्जी किधर से लाते हो भाई, आपको सुनकर मेरा एनर्जी डबल हो जाता है, रजा मेरा भाई, मेरा भाई रजा आपके इंतजार में और आपकी चाह में, चाह में, यू नो चाह, मैं नहीं खेलूंगा इतने कंफ्यूज्ड क्वेश्चन के सर के ऊपर से जा रहे हैं। यूसुफ भाई कहते हैं, यूसुफ भाई यकीन जानो बहुत आसान है, अब देखो उन्होंने बताया ना अभी कितना आसान था यार, उसका जवाब था नाम, इट्स सो इजी। ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपके सुनने वालों को भी सलाम, हम आपको दावत देते हैं। अच्छा ये मैसेज तो मैंने पढ़ दिया, दूसरा मैसेज, ओ ओ हो, मेरा भाई कैसा, इन पे पैसा ही पैसा, कैसे खोलूं नाम, मैसेजेस आए चले जा रहे हैं। मोहम्मद

0: अली मुल्ला सीरियसली ले गए भाई और मेरा भाई, कहते हैं ये मेरी लोकेशन है, आप टाइम बताएं। ओ हो कलीम भाई दिल जीत लिया यार, मोहब्बत नवाजिश। अरे कहाँ थे ये आसिफ भाई, कहाँ थे भाई सुबह से। कहते हैं जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हालचाल, तबीयत पानी कैसी है, लोकेशन। खेल गए भाई, कहते हैं आसिफ भाई हमारे साथ, क्या सॉन्ग लगा दिया भाई, लव यू हो गया भाईजान। ओके ओ वेरी गुड, कौन है इन्होंने सही जवाब दिया, हमजा है मेरे ख्याल में। यस हमजा, ये सही जवाब दिया आपने जो सवाल अभी मैंने पूछा था, बिल्कुल सही। ऑनलाइन ढूंढ लिया क्या भाई, ऐसा नहीं करना, चीटिंग नहीं करना कोई भी। ओ यस बिल्कुल यार, सही जवाब देने वाले भी हैं। अलोन बॉय हैं हमारे साथ, क्यों भाई क्यों इतने अलोन, नाम क्या है आपका, आरिफ है शायद, आरिफ सही जवाब है आपका भी। कहते हैं कोयला जितना साफ करो उतना ब्लैक होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत है। रोटी बनाने वाला तवा उसको अगर ज्यादा घिस देते हैं नीचे से लोहा निकल आता है मेरे भाई। नहीं जासिम भाई, जासिम रैन है हमारे साथ, आतिफ है हमारे साथ, कहते हैं कोयला, कोयला कोयले से बोले आतिफ भाई कितना काला, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सा इंसान सा प्रोमो है, प्रोमोस चीटिंग नहीं की भाई, इसका सा माइंड में था, अब फ्री हो जवाब दे दिया। यार क्या है यार, मेरे समझ में नहीं आया यार हमजा भाई, मैं पहचान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। मुमताज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कभी मुझे भी मौका दो भाई। अरे एलन व सहलन ये लिए, अगर आप हैं लाइन पे तो अब दोनों लाइन में से मैंने इस वक्त एक उठा लिया, अगर मुमताज भाई होंगे तो अच्छी बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कौन है हमारे साथ,
1: क्या करूं सरवर भाई, फिर से शुक्राने की नमाज पढूं, इतना फाइनली कॉल उठा लिया आपने।
0: अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है मेरा भाई,
1: भाई आप तो सुर बांधे हुए मैसेज पढ़े जा रहे हो
0: यार। मैंने कहा कि उनको भी नाराज ना कर दूं, और क्योंकि हमारे भाई हमारे साथ मैसेजेस में भी जुड़ते हैं, तो चलिए रेडी है फिर खेलने के लिए।
1: जी इंशाल्लाह।
0: ओके कौन सा सवाल निकालूं, आप तो सब सवालों के जवाब इस वक्त ढूंढ के आए होंगे मुझे लगता है ना। जब ही हंस रहे मुझे और
1: नहीं, नहीं, नहीं, आप सोच रहे बहुत अच्छा सोच रहे, नया ही पूछेगा पुराना नहीं पूछेगा।
0: हाँ इसी बारे मैंने, क्योंकि आप अभी एकदम आखिर में आए ना तो सारे सवालों के जवाब शायद आप कहीं ना कहीं से निकाल के लाए होंगे, ऐसे ही है सही है,
1: जरूरी नहीं है।
0: जरूरी नहीं है। चलिए साहब ठीक है, तो ऐसे ओके शुरू करते हैं, रेडी है
1: जी, रेडी।
0: बच्चे स्कूल जाते हैं ऑफिस,
1: बच्चे तो स्कूल जाते हैं,
0: शर्ट पहनते हैं या खाते हैं,
1: सरवर भाई मैं तो पहनता
0: हूं। ओके ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग काटते हैं पीसते हैं बांटते भी हैं मगर खा नहीं पाते,
1: काटते हैं पीसते हैं बांटते भी हैं
0: जी मगर खा नहीं पाते। ये अगर मेरी टीम अगर कोई सुन रही है इस वक्त तो वो जवाब दे सकती है, या नाजिया भी इसका जवाब दे सकती थी एक्चुअली,
1: वो क्या मिक्सर मशीन।
0: अच्छा लगा मुझे कि आप जवाब नहीं दे पाए, बहुत अच्छा लगा।
1: बच्चे की आपने जान ले ली, इतना हार्ड पूछ दिया।
0: अच्छा अच्छा दूसरा जो अभी इस वक्त ट्रेंडिंग में है जिसके सही जवाब मैसेजेस में आ गए, ऐसी वो कौन सी चीज है जो जितना साफ करो उतनी काली होती चली जाती है।
1: ये हुई ना बात,
0: ब्लैकबोर्ड। मेरा भाई तैयारी करके आया था, मैंने कहा चलो यार जो इस वक्त ऑन एयर चल रहे हैं वो बता देता हूँ, बट यार इट्स सो इजी, अगर देखो चीटिंग नहीं करी है किसी ने, अगर नेट चेक नहीं किया है तो बड़े अच्छा सवाल था ये, और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इट्स ब्लैक बोर्ड। मैंने बताया ना हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा वाबस्तगी रही है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही है ये चीज भाई, जिंदगी गुजार दी एक।
1: हाँ नहीं सरवर भाई असल में क्या है ना, ये सवाल बच्चे लोग से पूछते तो जल्दी जवाब दे देते, बड़े लोग भूल चुके हैं ऑलरेडी।
0: जब भी तो ऐसी चीजें हरकतें जब भी तो करता हूँ मैं ऐसी, ताकि याद ना आए जल्दी से जल्दी। चलिए साहब बहुत ही खूब और बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा खेले भी आप, क्या कहने, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज भी हमारे, अल्लाह हाफिज। ओके देन तीन का दम जारी और सारी, क्या कहते हैं एक गाना तो सुन लो यार, छोटा सा गाना, जरा मैं पानी पी लूं, ऐसे भी क्या बात है, ओए ओए भी हो जाए इस बहाने।

ओए का 2.0 सुनिए। अरमान मलिक, अदिति सिंह शर्मा और सरवर मिर्जा, बाकी आप लोग तो सब साथ हैं ही हैं भाई। हैप्पी वीकेंड।

यार मुझसे रुका नहीं गया, इतने फनी जवाब आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आओ मैं बता ही देता हूँ क्योंकि अब जाने का भी वक्त करीब हो रहा है। तो ये सुनिए, जो हमने सवाल किया था ना कि जितनी जो चीज जितनी साफ करो उतनी काली होती चली जाती है, भाई कह रहे बिल्ली। अरे मेरा भाई कैसा, इसमें पैसा ही पैसा भाई। बिल्ली है, जितना साफ करो उतनी काली होती चली जाती है। क्या बात है यार, ये बात तो सही है आपकी, मगर अगर वो काली बिल्ली है और आप कह रहे हैं वो बिल्ली है तो जितना साफ करो उसके बाल उड़ जाएंगे, उसके बाद तो उसकी खाल आ जाएगी नीचे, जो या तो गुलाबी होगी या सफेद। क्या बात है भाई। खलील है हमारे साथ, कहते हैं ब्लैक कलर। खैर इसका जवाब तो अब आम हो ही गया, ब्लैक शू कौन है ये अरजाद, नाम तो लेता चलूं आप लोगों के मैसेज। उस्मान है हमारे साथ, उस्मान ये जितने लोग मैसेज कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला संडे में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, वादा करवा लिया मैंने आपसे। काले रंग को जितना ही साफ करो उतना ही काला होता चला जाता है। जहीर है हमारे साथ, ओके कहते हैं कार टायर सर, नाउ डेज देयर व्हाइट बोर्ड इन स्कूल्स नॉट ब्लैक। हाँ यार, तो मैं कब कह रहा हूँ, मैंने व्हाइट वाले का तो जिक्र ही नहीं किया ना। अबू तमीम थे ये।

All right then, बिल्कुल इस वक्त सन और आपकी साउंड के दरमियान मैं कहीं सर्वर लगा हुआ हूँ और कुछ मैसेजेस और माजरत, क्योंकि अब कॉल का टाइम नहीं रहा क्योंकि मुझे लेनी है इजाज़त भी। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं? आपकी एनर्जी का जवाब नहीं और आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई खत्म हुआ शो मैं बाकी हूँ, कहते मेरा भाई आसिफ भाई बॉम्बे वाले स्टाइल में, आज आपसे बात नहीं हो पाई, आई एम वेरी सॉरी। यस, कौन है यार ये? जैस खान यार, जैस तो यार अपना ही आदमी है भाई। जैस अब तो बैठना पड़ेगा साथ में, जवाब सही है आपका। मैं आम नहीं करूंगा इसको मैं सेव करूंगा, क्योंकि मैं बताना नहीं चाह रहा, सेव करूंगा, सेव नहीं यार। बिल्कुल सही जैस भाई, आपका जवाब सही है उस वाले सवाल का। और ओके, यहाँ पर एक वॉइस नोट था, मैं सुन नहीं पाया, थे कौन? मोहम्मद तला थे। तला भाई वेरी सॉरी, अब वक्त भी नहीं रहा कि मैं इसको सुन लेता, इंशाल्लाह ताला बाद में सुन के अगर टाइम मिला, वादा नहीं है, तो ज़रूर शेयर करूँगा। भाई मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, आप लोग जुड़े और उम्मीद यही थी कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह ताला यही दुआ है, जो भी मशगूल हैं, जो भी काम कर रहे हैं उनका भी वीकेंड अच्छा हो, जो घर पे हैं इंशाल्लाह ताला उन सब का वीकेंड अच्छा हो। फिलहाल आज के लिए मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूं, और इसी नोट के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, माफ़ कर देना है, गुस्सा गर्मी कोई हो गई है तो छोड़ देना है, गुस्से पे काबू पाने की कोशिश हम सब ने करनी है, मैं भी कर रहा हूं, जब गुस्सा आता है तो भूल जाते हैं, बट इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जिस दिन काम कर लिया तो उस दिन वारे नहीं आ रहे हैं, यकीन जानिए बहुत ही जरूरी है, इसको मत भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107। इंशाल्लाह ताला अब आपसे

संडे में मुलाकात होगी। दिल से बोलिए, ये आपको बोलना था दिल से, आगे क्या? I'm very sorry, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ 11 या 14 मिस कॉल्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारा नंबर है ना 666-2107, इस पर हम सिर्फ मैसेज लेते हैं। अगर आप कॉल करते हैं तो ये कॉल हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कॉल करने के लिए नंबर हमारा 4434377 है। फिलहाल सर्वमिना ये जो धुन है ना, ये सुनने के लिए बैठा था मैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एफएम 107। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और ये स्पोर्ट्स राउंड अप का प्रोग्राम है। सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट है और लाइव टेलीकास्ट मीन्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ एफएम 107। और ये स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम हर हफ्ते को होता है, हफ्तावार प्रोग्राम है जहाँ पे स्पोर्ट्स के अपडेट्स दिए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ें, जो भी मैचेस, जो भी टूर्नामेंट्स, इवेंट्स होने जा रहे हैं और हो चुके हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल, टेनिस या ओलंपिक्स, जो कुछ भी हो रहा है इस स्पोर्ट्स की दुनिया में, सब कुछ मिलेगा यहाँ आपके इस फेवरेट शो में। और हर खेल का हर पहलू सिर्फ एंड सिर्फ आप लोगों के लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ूंगा और आप लोग जिसका जवाब देंगे ऑन 666-22-107 पर, सो दैट आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस आधे घंटे में। ये सवाल, आज का सवाल नोट कर लीजिए कि ये सवाल वर्ल्ड कप से है। वर्ल्ड कप फुटबॉल आप लोगों को पता है कि अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है, 11 जून से शुरू होने जा रहा है। और आज का सवाल ये है कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, ये दोनों मारूफ खिलाड़ी हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा इन दोनों खिलाड़ियों ने कुल कितने वर्ल्ड कप्स में हिस्सा ले चुके हैं। मेरा सवाल बहुत साफ और सीधा है कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों ही लेजेंड्स हैं आज के मॉडर्न लेजेंड्स कह लीजिए। पिछले 20 साल अगर देखें, दो दिहाई में ये दोनों खिलाड़ियों ने हर जनरेशन को मुतासिर किया है और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप्स में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि कुल कितने वर्ल्ड कप्स में हिस्सा ले चुके हैं। फटाफट मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 666-22-107 पर विथ योर नेम और आप बता दीजिएगा कि नंबर कितने वर्ल्ड कप्स ये दोनों खिलाड़ियों ने खेल चुके हैं। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप स्पोर्ट्स हाईलाइट ऑफ द वीक। और कतर तैयार है, कतर की फुटबॉल टीम तैयार है और ये तैयारियां हैं 2026 वर्ल्ड कप के लिए। और बस लगभग एक ही हफ्ता रह गया है जिसमें नेक्स्ट वीक जुमेरात को ये वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है इन कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए में। सो दोस्तों, कतर की टीम के जो हेड कोच हैं खुलेन लोपतगी ने टीम अनाउंस कर दिया है। 26 मेंबर वाला ये जो स्क्वाड वाला जो टीम है, ये बेसिकली ऑफिशियल रेगुलेशंस के मुताबिक है। ओनली 26 प्लेयर्स आर अलाउड इन ऑल द कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग। याद रखिएगा, 48 टीमें इस मर्तबा, इस वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा हमें देखने को मिलेगा, 48 टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक तीनों ममालिक में, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनाकिद होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक इंडियन एंगल में जोड़ना चाहूँगा, इंडियन एंगल टू द वर्ल्ड कप ऑफ कतर्स जो कैंपेन है उसमें इंडिया बॉर्न एक लड़का है, इंडियन फैमिली बेसिकली कतर में ही मुकीम है, तहसीन मोहम्मद जमशेद, ये लड़का यहाँ पैदा होता है और इनकी पैदाइश यहीं पर ही है और इनके पेरेंट्स जो हैं केरला के कन्नूर शहर से आके यहाँ पे बसते हैं 20 साल पहले, 1996 की बात करूँ तो जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इस लड़का जो है यहाँ पे बड़ा होता है और फुटबॉल का एक पैशन जो है उनमें दिख,

देखने को मिलता है. एंड फाइनली इनके जो पेरेंट्स हैं इस लड़के को फुटबॉल प्रोग्राम में डाल देते हैं, और उसके बाद ये लड़का आज जाके निकला है एक कतरी नेशनल प्लेयर कह लीजिए, और कतरी नेशनल टीम में यही लड़का कतर के लिए रिप्रेजेंट करेगा. एंड इट्स अ मेगा मेगा अचीवमेंट फॉर ऑल दोज फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं खेलों में स्पोर्ट्स में डाला है. सो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर द इंडियन कम्युनिटी इन कतर, और कतर के लिए भी एक अच्छी बात यह है कि कतर टीम में हमारी इंडियन टीम यानी इंडियन कंट्री से कोई एक लड़का जो है जो खिलाड़ी है वो कतर को रिप्रेजेंट करेगा. बिग नेम एंड बिग थिंग फॉर द कतर नेशनल फुटबॉल टीम इन द वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है. कतर विल प्ले देयर फर्स्ट गेम ऑन 13 जून अगेंस्ट स्विट्जरलैंड. अच्छा, अब फीफा ने जो दूसरा वर्ल्ड कप है उसके बारे में बता दूं. अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहा है नवंबर में. ये पिछले साल हुआ था, आप लोगों को याद होगा. ये वर्ल्ड कप जो है अंडर 17 वर्ल्ड कप है, और वो भी फीफा के यू नो अम्ब्रेला में है. तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है उसका जो डेट्स हैं वो डेट्स जो है फीफा ने ऐलान कर दिया है कि 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा. दोहा में मतलब एस्पायर एकेडमी के जो ग्राउंड्स हैं ना, आप लोगों ने पिछले साल आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, और वहीं पर ही आप लोगों को दोबारा जाना है. और कुल 48 टीमें कौमी टीम में हिस्सा लेंगी. याद रखिएगा, अगेन ये इसमें बढ़ोतरी है, यू नो ज़्यादा तादाद में टीमों को शामिल करने की कोशिश है फ्रॉम द फीफा पॉइंट ऑफ व्यू. सो 48 टीमें शामिल होंगे, और 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेज़बान कतर का सामना इजिप्ट से होगा. एक बात और भी बता दूं कि कतर है तो कतर की टीम के बारे में, मीन्स कतर की जो पार्टिसिपेटिंग ग्रुप है उस ग्रुप में और कौन कौन सी टीमें उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं. उसमें पनामा है, उसमें ग्रीस है, उसमें इजिप्ट है, और फोर्थ टीम डेफिनेटली इज द होस्ट कतर. सो कतर इज प्लेइंग इजिप्ट इन ग्रुप ए ऑन 22 नवंबर. ये अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों से मैंने शेयर किया है. अच्छा, क्वेश्चन जो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ न्यूज़ में, कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुल कितने वर्ल्ड कप्स में हिस्सा ले चुके हैं. आई रिपीट, लियोनेल मेसी रोनाल्डो ने कुल कितने वर्ल्ड कप्स में हिस्सा ले चुके हैं आपको मुझे बताना है. और ये नंबर जो है FM 107 का जो व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, अपना नाम ज़रूर भेजिएगा. नाम से थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, और यू नो थोड़ा सा बता भी दूंगा कि आप लोगों ने ये जवाब सही जवाब दिया है. दोस्तों, मूविंग ऑन टू अनदर गल्फ का फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये बेसिकली क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट. अरब गल्फ का फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है कि क्लब चैंपियंस लीग, अब जैसे यूरोप में चैंपियंस लीग है, AFC का भी चैंपियंस लीग है, यानी एशिया में भी चैंपियंस लीग फुटबॉल क्लबों का जो चैंपियंस लीग है, अब ये गल्फ का यानी अरब गल्फ का गल्फ में इस खत्ते में GCC में भी चैंपियंस लीग एक फुटबॉल टूर्नामेंट है. और इसका 2026-2027 के तीसरे एडिशन की जो ड्रॉ सेरेमनी है वो 9 सितंबर को होगी, और ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से 30 अप्रैल 2027 तक स्केड्यूल है. तो दोस्तों, फुटबॉल का जो एक मैं देख रहा हूँ कि जो लाइनअप ऑफ स्केड्यूल्स है वो काफ़ी बिजी है. तो आपको देखिए, वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप जो सीनियर वर्ल्ड कप है वो हमें टीवी में बैठ के देखना है. और मुझे अभी तक तो कुछ खबर हमारे पास है नहीं कि कोई सूक वाकिफ में कोई स्क्रीन लगाया जाए या एस्पायर जोन में या एस्पायर पार्क में या कटारा में, कोई इस तरह का अभी तक कोई हमारे पास मैसेजेस या कोई इस तरह का न्यूज़ हमारे पास नहीं है. हो सकता है कि दे विल स्टार्ट डूइंग बिकॉज कतर इज़ प्लेइंग और इज़ वेरी वेरी बिग थिंग. सो जैसे मैंने कहा कि कतर वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेन जो इवेंट है वो तो है जो नेक्स्ट वीक से शुरू हो, उसके बाद मुसलसल कुछ ना कुछ फुटबॉल इवेंट्स हैं जैसे कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, और उससे पहले ये अरब गल्फ का फुटबॉल का जो इवेंट है ये चैंपियंस लीग का इवेंट है, और उसमें क्लब्स मौजूदा क्लब्स जो हैं वो खेलेंगे. सो ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ इवेंट, देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स कमिंग अप. और एक आखिरी न्यूज़ जो हेडलाइंस जो न्यूज़ है वो है एस्पायर डोम में 2026 ट्रैक रेसेस का आगाज होने जा रहा है, और जिसमें कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद कर रही हैं. ये इवेंट का पहला राउंड जुमा यानी कल होगा, और जबकि बाकी राउंड जो है 12, 19 और 26 जून को हर हफ्ते मुनाकिद किए जाएंगे. तो एस्पायर डोम में आप लोग जा सकते हैं 2026 ट्रैक रेसेस. इस ट्रैक रेसेस में आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन टॉक अबाउट मच मोर. अच्छा, क्रिकेट जो सर्किट है उसमें पहुंचने से पहले वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ. आज का सवाल ये है कि मेसी और रोनाल्डो ने कितने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं अपने करियर में.

आपको बताना है मुझे मोहम्मद अमीन को ऑन स्पोर्ट्स राउंड अप 666-22-107 पर। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम, दोबारा इस्तकबाल है स्पोर्ट्स राउंड अप शो में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। स्पोर्ट्स कैसा मतलब यू नो चीज है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स इज गुड फॉर एवरीथिंग, स्पोर्ट्स गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माइंड और फॉर एवरीथिंग। अपना बॉडी या माइंड को थोड़ा डी स्ट्रेस करनी है तो कोई अच्छा सा मैच देख लीजिए या मैच खेल लीजिए। मैं हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ, स्पोर्ट्स को हमेशा प्रमोट करते आया हूँ, सालों साल प्रमोट करते आया हूँ थ्रू माई राइटअप्स और थ्रू माई यू नो अभी तो रेडियो के जरिए मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि हर स्पोर्ट्स में आप लोग हिस्सा लीजिए। जीते हारे इसका कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेशन इज़ द की टू सक्सेस, पार्टिसिपेशन इज़ द की टू योर मेंटल वेलबींग। सो व्हाट आई फील इज़ दैट स्पोर्ट्स को अपनाना चाहिए, हर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखनी चाहिए। और इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोट किया कि असद एरिया में, असद के जो स्टेडियम है, असद स्टेडियम के बाहर हर शाम शतरंज लगाए जाते हैं एंड इट्स अ ग्रुप चेस, यू नो। और ये कतर चेस एसोसिएशन में यू नो कोई एक साहब हैं जो इसका इनिशिएटिव लेते हैं और हर शाम को वहाँ लोग आते हैं, छोटे बड़े बूढ़े हर कोई वहाँ पे मौजूद होते हैं चेस खेलने के लिए। देखिए, दीज आर द थिंग्स, लोग अपना टाइम निकालना नहीं चाहते कि मैं थोड़ा फारिग हो जाऊँ और स्पोर्ट्स में अपना थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा अपने आप को दे दूँ, थोड़ा मोबाइल से हट जाऊँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट जाऊँ। तो ये चेस का जो मुझे कॉन्सेप्ट है मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, आज भी मैं बहुत लाइक करता हूँ इस चीज़ को। आई सी दैट एंथुजियाज्म अमंग द लोकल पीपल और हर तरह के लोग पहुँचते हैं। जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे, बूढ़े भी हैं और मिड एज के लोग भी हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ये जो स्टेडियम है, जो अलसद फुटबॉल स्टेडियम है, उसके जस्ट साइड में आप लोग देखेंगे जहाँ पे कुछ

कॉफी शॉप्स वगैरह हैं उसके सामने ही देखेंगे आप लोग टेबल जो है टेबल हैं और बहुत सारे टेबल्स लगे हुए रहते हैं और उसमें चेस खेली जाती है एंड चेस इज अ गुड थिंग इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेंटल वेलबींग मैं कहूँगा इट्स अ मैथमेटिक्स इसको आप लोग मतलब बच्चों को खिलवाइए और आप भी पार्टिसिपेट करें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को एनहेंस करें यहाँ चलते हैं क्रिकेट सर्किट पर और क्रिकेट में एक खबर जो है वो है आज पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है और ये मैच जो है थर्ड वन डे इंटरनेशनल ऑफ द लास्ट मैच इनफैक्ट ऑफ द थ्री मैच सीरीज का और इस मैच में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा ढाई बजे दोहा टाइम ढाई बजे मैच शुरू होने हैं लेकिन अभी लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के जो माहौल है जो मौसम का जो नज़ारा है वो है कि बारिश है बारिश यहाँ पे दोहा में नहीं है लेकिन लाहौर में बारिश हमें देखने को मिला तो अभी ये मैच कितने बजे शुरू होगा एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है लेकिन ढाई बजे ऑफिशियल टाइम है और सीरीज जो है एक एक की बराबरी पर है और पिछले दिनों पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई क्रिकेट की तारीख में एक रिकॉर्ड कायम किया है फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट में एक रिकॉर्ड कायम किया और वो तीसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इनिंग्स की पहले ही गेंद पर विकेट हासिल किया और उन्होंने ये पिछले मंगल को दूसरे ओडीआई में एलेक्स कैरी को आउट करके ये कारनामा अंजाम दिया और इससे पहले यानी शाहीन शाह अफरीदी से पहले वसीम अकरम और वकार यूनुस ने ये मकाम हासिल कर सके थे एंड दैट इज़ व्हाट सो ग्रेट अबाउट दिस अचीवमेंट बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी को हम हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ये कब जो है ये मैच जितवाएगा और ये कुछ करके दिखाएगा फाइनली एक रिकॉर्ड किया अपने लिए रिकॉर्ड हालांकि वो मैच पाकिस्तान को इस मैच में हार मिली है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में पाकिस्तान को हार मिली थी और ये बता दूं कि आज ये मैच है ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि ये अगर पाकिस्तान जीत जाए तो दे विल विन द सीरीज एंड डेफिनेटली ऑन द रैंकिंग्स ओडीआई रैंकिंग में दे विल इम्प्रूव देयर रैंकिंग्स वहीं विराट कोहली की 42 गेंदों पर अनबीटन 75 रन्स की शानदार इनिंग्स ने बैंगलोर को आईपीएल फाइनल में गुजरात के खिलाफ 5 विकेट से फतेह दिलाई और कोहली की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत बैंगलोर ने अपना आईपीएल टाइटल कामयाबी से डिफेंड किया और टूर्नामेंट की दूसरी चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली ये भी बंदा बड़ा कमाल का है मैंने 75 रन्स और क्या धुआंधार बल्लेबाजी करता है आज भी विराट कोहली को कहते हैं कि ये जो मास्टर ब्लास्टर है अगर अपने आप को नो क्रिकेट से हटा ले यानी रिटायर होने का ऐलान कर दे तो मज़ा ही नहीं आएगा क्रिकेट देखने में एंड इनफैक्ट बात सही है कोहली इज वन द परफेक्ट बैट्समैन जो कि थ्री फॉर्मेट्स में इक्वली सक्सेसफुल हैं इसलिए कि आई मीन ही इज़ डेफिनेटली पिछले 20 सालों में अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन विराट कोहली अच्छा दोस्तों रुआंडा और केनिया ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालिफायर 2027 के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है कांग्रेचुलेशंस टू बोथ दिस अफ्रीकन कंट्रीज और दोनों टीमों ने गाबोरोन में खेले गए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब रीजनल अफ्रीका क्वालिफायर ए में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड देखते हैं आगे क्या होता है अब नाउ मूविंग ऑन टू रीजनल एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स में और लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अमेरिका में अर्जेंटीना के पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम से अलग ट्रेनिंग की वो अभी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवरी के मरहाइल से गुजर रहे हैं बताता चलूं कि ये शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप है इंजरी प्रोन है कोच कैलोनी कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो पहले मैच में खेल पाएंगे या नहीं पाएंगे इट्स ऑल अ क्वेश्चन मार्क अभी सवाल काफ़ी हैं कि वो फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे बट बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि मेसी अर्जेंटीना में है एंड मेसी इज लीडिंग अर्जेंटीना फॉर अ रिकॉर्ड टाइम और यही सवाल आप लोगों से पूछा था कि मेसी और रोनाल्डो कितने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं टोटल कुल मिलाकर कितने मूविंग ऑन टू यूएफए चैंपियंस लीग कतर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पीएसजी ने आर्सेनल को टाई ब्रेकर में हरा कर मुसलसल दूसरी मरतबा ये चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किया मैंने ये कतर क्यों कहा बिकॉज इट्स अ कतर ओन्ड क्लब पेरिस सेंट जर्मेन मैं भी पढ़ रहा था जब कतर ने इस क्लब को ओन किया था 2017-16 में तब इस क्लब की रेटिंग बहुत नीचे की तरफ थी और आज इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है ये आप लोग सर्च कर सकते हैं द वैल्यूएशन मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ दिस क्लब इट्स ट्रेमेंडसली हाई ऑन द मार्केट ऑफ यूरोपियन फुटबॉल मूविंग ऑन टू फ्रेंच ओपन में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने राफेल जोदार को आसानी से शिकस्त देकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल की तरफ कदम बढ़ाया एंड और दूसरी तरफ अगर वीमेंस की बात करूं तो मार्था कोस्योक और मीरा आंद्रीवा वीमेंस इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आमने सामने होंगे लेकिन अपडेट के मुताबिक

Martha Kostyuk. Already she has reached her maiden final at the French Open. और वहीं world number one Sabalenka tournament से बाहर हो गई हैं. और इसके साथ साथ यानी men's जो star player हैं आज की date में legend है. Star तो छोटे level पे होते हैं. Legend जो हैं Djokovic, Novak Djokovic इस tournament से बाहर हो गए हैं. एंड इसी के साथ जोकोविच का जो 25th ग्रैंड स्लैम का जो रिकॉर्ड है आज भी वो कर नहीं पा रहे हैं. कोशिश में लगे हुए हैं. हो सकता है कि विंबलडन में कोशिश कर लें या यूएस ओपन में कोशिश कर लें. कोशिश जारी है. प्रीमियर लीग क्लब फुलहम एफसी ने ऐलान किया है कि हेड कोच मार्को सिल्वा 5 साल तक टीम की क्यादत करने के बाद इस सीजन से पहले क्लब छोड़ देंगे. और क्लब के मालिक जो हैं ओनर जो हैं शाहिद खान ने अपने बयान में कहा है कि मार्को सिल्वा का दौर फुलहम के लिए एक कामयाब पार्टनरशिप रहा है लेकिन फुटबॉल में तब्दीली एक लाजमी हिस्सा है. सो ही वेंट फॉर अ चेंज. टेनिस के अजीम खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने तकरीबन 4 साल के बाद अपनी वापसी की तस्दीक कर दी है. कमाल है. 44 ईयर ओल्ड आज भी कहते हैं कि आज मैं टेनिस कोर्ट से बाहर हूँ. मैं बोर हो रही हूँ तो आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस. और देखिए 44 ईयर की एक खातून वो टेनिस खेलना चाहती हैं. सेरेना 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स की मालिक हैं और आखिरी उन्होंने जो प्रोफेशनल मैच खेला था 2002 यूएस ओपन के तीसरे राउंड में खेला था. और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में 15 से 21 जून तक FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप 2026 की मेजबानी करेगा. टूर्नामेंट में पुल ए में अगर पुल ए की बात करूँ इंडिया जापान अमरीका और उरुग्वे शामिल हैं जबकि पुल बी में चिले फ्रांस कोरिया और न्यूजीलैंड की टीमें एक्शन में नजर आएंगी. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. जो आज का सवाल मैंने पूछा था कि मेसी और रोनाल्डो ने कुल कितने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं. तो दोस्तों कितने वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं उसमें कई जवाब आ चुके हैं. एंड आई फील कि सभी लोगों ने मोर ऑर लेस हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स. एंड All, you know, thank you and congratulations जिन्होंने भी सारे जवाब सही दिए हैं. एक जवाब जो है आई थिंक उन्होंने कहा है कि पाँच आई मीन आई सॉ ऑन वन मैसेज पाँच और नहीं छः. उन्होंने छः लिखा है इंग्लिश में लिखा है कि 6 and 6. तो 6 and 6 का मतलब है कि छः खेलने जा रहे हैं. तो टोटल उन्होंने पाँच दे हैव प्लेड टुगेदर आई मीन प्लेड अलॉन्ग साइड. सो 5 वर्ल्ड कप्स रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप्स मेसी ये दोनों ने 2006 से खेलते हुए टोटल 5 वर्ल्ड कप्स दे हैव ऑलरेडी प्लेड एंड 6th इंतजार कर रहे हैं एंड 6th में दे विल मेक अ रिकॉर्ड. और इसके साथ एक मेक्सिको का भी एक प्लेयर है जिसका नाम है ओचोआ. मेक्सिको का इस प्लेयर ने भी मेक्सिकन ये प्लेयर ने भी 5 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं और ये उनका 6ठा वर्ल्ड कप होने जा रहा है. वो भी एक रिकॉर्ड है. लेकिन मेसी और रोनाल्डो दे आर द लेजेंड्स बिग नेम और बिग स्टार्स. और यू नो आई से बेस्ट विशेस टू बोथ दीज ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स इन द लास्ट 20 ईयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. तो आप लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप को एंजॉय करिए. अगले इतवार को आप लोगों से मुलाकात होगी और ट्यूसडे को भी मुलाकात होगी और थर्सडे को आई विल बी बैक ऑन द स्पोर्ट्स राउंड अप शो. टिल देन एंजॉय FM 107. कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी.

0: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: 107 Time Check.
1: हैप्पी वाला वीकेंड है आप सभी को. अस्सलाम वालेकुम. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे टाइम हुआ है 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर.
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107. दिल से दी
1: वेलकम वंस अगेन. अस्सलाम वालेकुम. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. एस्केप रूम की शुरुआत हो चुकी है. वीकेंड स्पेशल. तो आज एस्केप रूम में कहां कैद होना पसंद करेंगे आप? एनी गेसेस? वैसे कल ज्यादातर मुझे लोगों ने समंदर का जवाब दिया था कि अमिता आज शायद आप कोई समंदर वाली बात करने वाली हैं. आप बताओ आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? कहीं म्यूजियम में जाने वाले हैं, स्पेस में जाने वाले हैं, डेजर्ट में तो हम जा चुके हैं, समंदर में जाने वाले हैं, आसमान की सैर करने वाले हैं, या किसी हवेली में कैद है? हम हैं कहाँ आज जहाँ से हमको एस्केप करना है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107. एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं कि आज का एपिसोड किस जगह के नाम होने वाला है, किस जगह पर हम आज कैद होने वाले हैं और हमें सारे क्लूज, सारे पजल्स सॉल्व करने हैं ताकि हम आज एस्केप रूम के लकी विनर बन सके. सो थिंक अबाउट इट. 666-22-107 इज आर नंबर. उस पर मैसेज करें और अभी के लिए अपने मूड को थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि आगे हमें बहुत सारा दिमाग इस्तेमाल करना है. सो मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कौन सा गाना है? Shilpa Rao and Sachet Tandon. Oof, what a start. Enjoy the song. Stay tuned to FM 107. Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके फरमीता, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है द शो एस्केप रूम में। और इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त मिडनाइट है। हाँ जी, बात हो रही है एस्केप रूम की और यहाँ पर वक्त आधी रात का है। हाँ, सोचें अब शहर के शोर शराबे से दूर सब कुछ शांत हो रहा है और आप कहाँ हैं? आप इस वक्त शहर के मशहूर म्यूज़ियम के जो ग्राउंड है ना, उसमें खड़े हैं। हाँ, इस मशहूर म्यूज़ियम के कॉरिडोर्स में आज कुछ अजीब हो रहा है। पिक्चर दिस कि आप जो है वो एक ग्रैंड गैलरी में खड़े हैं अकेले, ठीक है, और यहाँ की जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी फ्लिकर हो रही हैं, मतलब बंद चालू हो रही है, और अचानक से बूम, एक मेजर सिक्योरिटी ग्लिच। और क्या हुआ उसके बाद, सारे स्टील शटर्स नीचे गिर गए हैं, एवरी एग्जिट इज सील्ड, बैकअप पार फेल हो रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बाहर निकलने के लिए आपको किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है, आज आपको चाहिए ज्योमेट्री की समझ और आर्ट की परख। तो बताइए, क्या आपके पास वो जीनियस दिमाग है जो दीवारों के राज सॉल्व कर सकता है, या फिर आप हमेशा के लिए इस म्यूज़ियम का एक साइलेंट एग्जिबिट बनकर रह जाएंगे? वेल, ये तो अब पता चलेगा जैसे जैसे क्लूज आपके सामने आएंगे। तो जनाब, अलार्म सारे साइलेंट हैं पर खतरा रियल है। हम एक मशहूर म्यूज़ियम के ग्राउंड्स में खड़े हैं। टू ट्रिगर द फर्स्ट सिस्टम ओवरराइड, आपको अपने कदमों के नीचे देखना है। देखो देखो देखो ज़रा, फोकस ऑन द ज्योमेट्री। क्लू आपके लिए ये रहा, मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसके 8 पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुने, मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसके 8 पॉइंट्स हैं। I'm a symbol of balance and the heavens. मैं यहाँ फ्लोर्स पर भी हूँ और सीलिंग्स पर भी, बताओ मैं क्या हूँ? ये जो सिंबल है ये थोड़ा स्टार जैसा दिखता है, पर कैसा स्टार है ये आपको मुझे बताना है। फिर से सुने ध्यान से, मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसके 8 पॉइंट्स हैं। आई एम अ सिंबल ऑफ बैलेंस इन द हेवंस। मैं यहाँ फ्लोर्स पर भी हूँ और सीलिंग्स पर भी, बताऊँ मैं क्या हूँ? कम ऑन, फर्स्ट क्लू आपके सामने है, इसे सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे मैसेज करें अपने नाम के साथ 666-22107, 666-22107 पर, क्योंकि इस वक्त हम एक मशहूर म्यूजियम के अंदर कैद हैं। और अगर यहाँ से नहीं निकले तो फिर समझ लीजिए क्या होगा, सारे दरवाजे बंद हैं, हमें इस सिस्टम को फिर से ओवरराइड करना है, यहाँ से निकलना है, ठीक है? तो थिंक अबाउट इट, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी 666-22107 पर अपने नाम के साथ। और अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुक करते हैं ताकि आप सोचें समझें और जवाब दें। एक बार फिर से आपके लिए क्लू दोहरा देती हूँ, मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसके 8 पॉइंट्स हैं। आई एम अ सिंबल ऑफ बैलेंस इन द हेवंस। मैं यहाँ फ्लोर्स पर भी हूँ और सीलिंग्स पर भी, बताओ मैं क्या हूँ? अब आपको सोचना है और जवाब देना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ईज्ड आउट भी होना है। तो लेट्स एंजॉय दीज सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. तो भाई एस्केप रूम का आज का सफर बड़ा कमाल का है. आज हम हमारे कतर के बड़े ही मशहूर एक म्यूजियम के अंदर कैद हैं. अब कैद हो गए हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ और सारे जो स्टील के दरवाजे हैं वो सब सील हो चुके हैं. अब हमारा निकलना वहाँ से नामुमकिन है, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए हमको ज्योमेट्री और थोड़ी सी आर्ट से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करना है. यस, तो पहला क्लू सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया कि मैं एक ऐसा शेप हूँ जिसके 8 पॉइंट्स हैं. आई एम अ सिंबल ऑफ बैलेंस एंड द हेवंस. और मैं यहाँ फ्लोर्स पर भी हूँ, सीलिंग्स पर भी हूँ, तो मैं क्या हूँ? वेल, सही जवाब क्या है? इट्स एन 8 पॉइंटेड स्टार, इट्स एन ऑक्टोग्राम. एंड जिन्होंने भी सही जवाब दिया, भाई कमाल कर दिया आपने. आइए ज़रा उनके नाम ले लेते हैं जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिया. उनका नाम है अनवर, शाहिद, आरिफ, मोहम्मद यूसुफ एंड सर फराज. तो ज़ोरदार तालियां हो जाए आपके लिए. अभी भी हमें जवाब आ रहे हैं, क्या बात है. सही जवाब है ऑक्टोग्राम, 8 पॉइंटेड स्टार. वेरी गुड, वेल डन. तो जैसे ही आपने सही जवाब दिया, आपने सिस्टम को बाईपास कर दिया है और अब एलिवेटर्स काम कर रहे हैं. बट वेट, मेन सिक्योरिटी तक पहुंचने के लिए, मतलब मेन सिक्योरिटी का जो हब है वहां तक पहुंचने के लिए आपको उस मास्टरपीस को पहचानना होगा जो आपको इस वक्त बना दिए हुए है. चलिए एक हिंट देती हूँ क्लू देने से पहले कि ये हमारे कतर का बहुत ही मशहूर मास्टरपीस है और उसके लिए ही ये कहा जाता है. तो आपको गैस करना है कि किस चीज़ की बात हो रही है. जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है, जनाब ये आपका क्लू नंबर 2 है, ठीक है. जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मैं एक पर्दे वाली खातून या यूँ कहें वेल्ड वुमन की तरह लगती हूँ. मैं पानी पर बैठी हूँ पर मैं कोई बोट नहीं हूँ. सोचिए सोचिए क्या है ये मास्टरपीस, हमारे कतर का बड़ा ही फेमस मास्टरपीस है जिसका जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बस नाम लेना है. ये हमारा क्लू नंबर 2 है. एक बार फिर से दोहरा देती हूँ. जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मैं एक पर्दे वाली खातून या यूँ कहें वेल्ड वुमन की तरह लगती हूँ. मैं पानी पर बैठी हूँ पर मैं कोई बोट नहीं हूँ. यस, बताएं जवाब जल्दी जल्दी 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ जवाब दीजिए. एंड लेट्स सी कि कौन इस सेकंड क्लू को सॉल्व कर पाता है और एग्जिट के और थोड़े नज़दीक पहुंच पाता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपके जवाबों के लिए. और अभी के लिए दलजीत दोसांझ की एंट्री हो चुकी. भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, चलिए सुन लेते हैं इनको. एफएम 107

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवाइस करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। वेलकम वेलकम वेलकम, FM 107 सुन रहे हैं आप और हमारे एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे टाइम हुआ है दोपहर के 2:02। मेक अ विश क्योंकि दो दो एक लाइन में आ चुके हैं।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, एस्केप रूम का माहौल बड़ा ही गंभीर चल रहा है क्योंकि हम आज एक बड़े ही मशहूर म्यूजियम के अंदर कैद हैं। एक टेक्निकल ग्लिच हुआ, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद हो गए और हमारा निकलना नामुमकिन सा हो गया। और निकलने के लिए हमें 3 क्लूज दिए जाएंगे जिसको हमें सॉल्व करके बाहर निकलना है। पहला क्लू जब मैंने आपको दिया तो उसका जवाब था ऑक्टोग्राम और 8 पॉइंटेड स्टार जिसे हम कहते हैं, और जैसे ही आपने ये कहा तो एलिवेटर्स वगैरह सब शुरू हो गए। लेकिन आपको जो मेन सिक्योरिटी हब है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये दूसरा क्लू सॉल्व करना था। अब दूसरा क्लू ये है कि जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो मैं एक पर्दे वाली खातून या वेल्ड विमन की तरह लगती हूँ। मैं पानी पर बैठी हूँ पर मैं कोई बोट नहीं हूँ। मैं क्या हूँ बेसिकली? सो अब ये सोचने की बात है। और मैंने आपको एक हिंट दी थी कि ये हमारे कतर का एक मशहूर मास्टरपीस है। तो हर कोई अपने अपने जवाब दे रहा है। ज़्यादातर लोग वर्ल्ड कप 2022 के क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन सही जवाब जिन्होंने दिया है उनके नाम है अनवर, आरिफ, मोहम्मद, अशफाक, निदा। और सही जवाब है कि हमारे कतर की जो मशहूर बिल्डिंग है MIA, यस, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, यस, उस बिल्डिंग कि मैंने बात की थी, उसका क्लू दिया था कि गैस कीजिए, नाम बताइए ये मास्टरपीस कौन सा है जिसे आर्किटेक्ट IM पाइन ने बनाया है एंड सच में क्या कमाल किया है। तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए जोरदार तालियां तालियां तालियां तालियां भाई तालियां, क्या बात है। आप सबने दूसरा क्लू भी सॉल्व कर लिया और अब कॉर्निश की ताज़ा हवा बस कुछ ही दूरी पर है। बट वेट, फाइनल कोड कोई नंबर नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि आप सब ने सेकंड क्लू सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़े, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस म्यूज़ियम से बाहर निकलना, वरना हम खुद इस एग्जिबिशन का पार्ट बन जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि हम हमेशा के लिए इस म्यूज़ियम के अंदर कैद हो जाएं, है कि नहीं? सही है ना? तो चलिए अब आखिरी क्लू की तरफ चलते हैं। फिर से दोहराती हूँ, ये क्लू जो है ये फाइनल कोड कोई नंबर नहीं है, इट्स एन आर्ट फॉर्म। समझ रहे हैं आप? अब चलिए मैं ये भी बताती हूँ, इट्स एन आर्ट फॉर्म जो कि विजुअल आर्ट ऑफ डेकोरेटिव एंड एक्सप्रेसिव हैंडराइटिंग का है। अब इससे बड़ा हिंट एक्चुअली कोई नहीं हो सकता। और क्लू आपके लिए है, मैं वो स्याही हूँ जो सिल्क की तरह बहती है। मैं लफ्ज़ों को आर्ट में और इबादत को तस्वीरों में बदल देती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? सोचिए क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अगर आप कॉर्निश की ताज़ा हवा खाना चाहते हैं और अपने आप को इस म्यूज़ियम की दीवारों से आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तीसरा क्लू आपको सॉल्व करना ही होगा। एक बार फिर से सुनिए, मैं वो स्याही हूँ जो सिल्क की तरह बहती है। मैं लफ्ज़ों को आर्ट में और इबादत को तस्वीरों में बदल देती हूँ। मैं क्या हूँ? हाँ, जहन में आपके जवाब आ रहा है। अब जल्दी से अपने हाथों के ज़रिए मैसेज कीजिए। 666-22-107 इज़ आर नंबर, 666-22-107 इस पर मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ एंड लेट्स सी कि आज ये जो क्लू नंबर 3 है कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। और अभी थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स करना ज़रूरी है। अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव आपके लिए एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस लेकर आए हैं, इंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और एक बार फिर से आपको दोहराना देती हूँ कि भाई आज हम एक मशहूर म्यूजियम के ग्राउंड्स में कैद हो चुके हैं, यहाँ से बाहर निकलना है, 3 क्लू सॉल्व करने हैं। देखिए, पहला क्लू हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था ताकि एलिवेटर्स वगैरह चल पड़े और उसके बाद हम आगे बढ़ें, दूसरा क्लू सॉल्व करें और फिर जो मेन सिक्योरिटी हब है वहाँ तक पहुँच जाए। तो पहले का जो जवाब था वो था ऑक्टोग्राम 8 पॉइंटेड स्टार, दूसरे का जवाब है MIA बिल्डिंग इटसेल्फ, और तीसरा क्लू मैंने आपको दिया कि मैं वो स्याही हूँ जो सिल्क की तरह बहती है, मैं लफ्ज़ों को आर्ट में और इबादत को तस्वीरों में बदल देती हूँ, मैं क्या हूँ? जवाब मुझे आ रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा अभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही कमाल का ये विजुअल आर्ट है, ठीक है, विजुअल आर्ट ऑफ डेकोरेटिव एंड एक्सप्रेसिव हैंडराइटिंग का है। अब सोचिए कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ, कौन सी वो चीज़ है? मैं वो स्याही हूँ जो सिल्क की तरह बहती है, मैं लफ्ज़ों को आर्ट में और इबादत को तस्वीरों में बदल देती हूँ, मैं क्या हूँ? कम ऑन, थिंक। 666-22107 इज आर नंबर, 666-22107। हमको बाहर निकलना है भाई म्यूजियम से, वीकेंड है वीकेंड, वरना फिर कैसे बाहर घूम पाएंगे, कैसे वीकेंड एंजॉय करेंगे, कैसे शॉपिंग करेंगे? कम ऑन, ये आखिरी क्लू सॉल्व कीजिए और फिर कॉर्निश की ताजी तरीन हवा उफ महसूस कीजिए। मतलब अभी तक मुझे काफी सारे जवाब आए, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है उनके नाम है अनवर, आरिफ, शैला, मोहम्मद, रिजवान, निदा, अली एंड देन मोहम्मद यूसुफ खान एंड देन प्रिंसन। हाय प्रिंसन, आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रिंसन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो ये सारे हमारे लिसनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है। इसके अलावा भी हमें जवाब मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सही गेस नहीं कर पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, और ये आखिरी मौका है ये आखिरी क्लू सॉल्व करने का, ताकि आप पूरा सिस्टम ओवरराइड सक्सेसफुली कर पाएं और यहां से निकल पाएं। थोड़ी वीकेंड वाइब को भी एंजॉय कर लेते हैं म्यूजिक के साथ, है, एंजॉय करें। और बस मैं अभी जुप से वापस आती हूं और देखते हैं कि आज का लकी विनर कौन होता है। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन। बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है हमारे एस्केप रूम का। ये हमारा खासम खास शो जहाँ पर हमको अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है एंड लिटरली मतलब आज हम एक बड़े मशहूर म्यूज़ियम के दीवारों के बीच कैद हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 क्लू सॉल्व करने थे। पहले को आपने सॉल्व किया, ऑक्टोग्राम 8 पॉइंटेड स्टार आया। दूसरे को सॉल्व किया, एम आई की बिल्डिंग आई। एंड तीसरा जो क्लू है जो मैंने आपको दिया, जो था कि मैं वो स्याही हूँ जो सिल्क की तरह बहती है, मैं लफ्ज़ों को आर्ट में और इबादत को तस्वीरों में बदल देती हूँ, मैं क्या हूँ?

सही जवाब है कैलीग्राफी. हाँ जी, ये बड़ा ही कमाल का विजुअल आर्ट ऑफ डेकोरेटिव एंड एक्सप्रेसिंग हैंड राइटिंग है. और जैसे ही आपने ये जवाब दिया, आप कॉर्निश की ताजी हवा महसूस कर सकते हैं. क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी मुबारका आप सभी को, कमाल कर दिया. लेकिन आज का लकी विनर तो कोई एक ही होगा. कौन है आज का लकी विनर जिसे ग्रेट शाउट आउट मिलने वाला है? उनका नाम है अनवर. मुबारका अनवर, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो भाई साहब. हाँ, कमाल कर दिया, वाह क्या बात है. इतना दिमाग तेज कैसे आपने कर लिया, हर एक क्लू को यूं चुटकियों में सॉल्व किया और सबसे पहला जवाब इनका जुक करके आ जाता था. तो जनाब, इस म्यूजियम से आप बाहर निकल चुके हैं, सारा सिस्टम ओवरराइड सक्सेसफुली हो चुका है और आज आप सुकून से बाहर जाकर फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं, अपना वीकेंड एंजॉय करने वाले हैं, तो कुछ भी मिस नहीं होने वाला है. तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हाँ ज़रूर मुझसे शेयर करना. स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया उन सारे हमारे लिसनर्स का जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहे. 666-2107 पर आपने हमें मैसेजेस किए, भले ही जवाब गलत हुए, कुछ डिफरेंट हुए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया. संडे को फिर दोपहर 1:30 बजे एक नए एपिसोड के साथ एपिसोड लेकर, एक बड़ा ही इंट्रीगिंग कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए. सोचूंगी वीकेंड में क्या हो सकता है. तो एस्केप रूम सुनना ना भूलिएगा. फिलहाल के लिए हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाओ, अपनी आरजे मीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ लो, मैसेज वैसेज कर दिया करो. और इसी बात पर कहूंगी खूब सारा ख्याल रखो. और जाते जाते हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे ना, चलते चलते थोड़ा सा ब्लास्ट तो होना ही चाहिए कमाल के गानों का. एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और फन सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होती हैं। भाई तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज पर, हमारी फेवरेट, मेरी

0: एसी को मैं टेम्परेचर 22-24 तक ना लेकर जाऊंगा, 16 पे रखूंगा और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाऊंगा। देखिए ये सिचुएशन ना बहुत फेमिलियर लग रही है कि नहीं? मुझे पता है हर घर में ऐसा होता है। हम सब कंफर्ट के चक्कर में एसी को अननेसेसरली लो टेम्परेचर पर चला देते हैं बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब थोड़ा सेंसिबल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एसी का टेम्परेचर बहुत लो सेट करते हैं ना, तो कंप्रेसर ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है ताकि रूम को उस टेम्परेचर तक ले आए। वो उसका काम है ये। इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 18 और 24 डिग्री के कंफर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो इतना नोटिसेबल नहीं होता जितना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में डिफरेंस होता है। देखिए अब सवाल ये है कि 24 से 26 डिग्री ही क्यों? ये रेंज साइंटिफिकली कंफर्टेबल मानी जाती है इंडोर कूलिंग के लिए, स्पेशली वार्म क्लाइमेट्स जैसे कि कतर में। इस टेम्परेचर पर रूम कूल भी रहता है और एसी पर अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता, यानी कंफर्ट भी और एफिशिएंसी भी। मैं बोल-बोल के थक गई हूँ, मेरे को ये बात मानता नहीं है। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो मैं बात बता रही हूँ 24 से 26 के बीच की, ये इको स्विच कैसे करता है। देखिए सबसे पहला फायदा ये है कि ये एनर्जी सेव करता है। सीधी सी बात है, हर एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से एसी की एनर्जी कंजम्पशन रफली 3-5% तक कम हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आप 20 से 25 पर शिफ्ट करते हैं तो आप सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रिड्यूस होगा। कतर जैसी जगह पर जहां एसी ऑलमोस्ट साल भर यूज होता है, एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है। तीसरा फायदा है एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट इंपैक्ट क्यों भूल जाते हो? देखें कम एनर्जी यूज का मतलब है कम फ्यूल कंजम्पशन एट पावर प्लांट्स और कम कार्बन इमिशंस। चौथा फायदा है एसी की लाइफ भी तो अच्छी रहती है ना। जब एसी कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रन नहीं करता तो उसकी एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बेटर होते हैं। अच्छा होता ये कि अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना आपको, ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को ठंड लग रही होती है, कोई स्वेटर पहन लेता है मेरी तरह, और कोई सीक्रेटली टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है सर्वर भाई की तरह, और फिर एक साइलेंट टेम्परेचर वॉर चलती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है एक बैलेंस टेम्परेचर, 24 या 25 का टेम्परेचर जहां सब कंफर्टेबल रह सके। देखिए अगर घर का एग्जांपल भी लेना तो भाई, अगर आप रात को एसी 18 पर चलाकर सोते हैं ना, तो आधी रात को या तो आप उठकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर ब्लैंकेट यूज करते हैं, यानी आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कूलिंग जनरेट कर रहे हैं। फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं। अगर आप स्टार्ट से ही 25 या 26 पर टेम्परेचर एसी का रखें तो रूम नेचुरली कंफर्टेबल ही रहेगा। तो भाई करना ये है, अगर आपको टिप्स दूं तो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करें। अगर आप 18 या 20 के आदि हैं तो सीधा 25 पर ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिग्री करके इंक्रीज करें। फैन यूज करें ना, सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैंस जो होते हैं उनको यूज कर लें, एयर सर्कुलेशन बेटर होती है उससे और आपको ज्यादा कूलिंग भी फील होती है विदाउट लोअरिंग द टेम्परेचर। तीसरी चीज है कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स यूज करें, काम के हैं ये, सिर्फ सजावट के नहीं है। दिन के वक्त डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, रूम को नेचुरली ठंडा रखने के लिए यूज करें। एसी सर्विसिंग रेगुलर करें। देखें क्लीन फिल्टर्स और प्रॉपर मेंटेनेंस एसी को एफिशिएंटली काम करने में मदद देते हैं। पांचवा टिप ये है कि टाइमर या स्लीप मोड यूज करें ना, ऐसे तो रिमोट में वो अवेलेबल नहीं है, किसी काम का है। रात को टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जो एनर्जी सेविंग को भी हेल्प करता है। तो भाई साथियों आज का चैलेंज ये है कि आज रात से अपना एसी टेम्परेचर चेक करें, अगर वो 20 से नीचे है तो उसे थोड़ा इंक्रीज करें और एक हफ्ते तक इस हैबिट को फॉलो करें। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता लेकिन आपका एनर्जी यूज बेटर हो जाता है। तो साथियों स्मार्ट लिविंग का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता बल्कि बैलेंस्ड कंफर्ट होता है, जहां हम अपनी नीड्स को भी पूरा करें और रिसोर्सेज का भी ख्याल रखें। एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करना एक छोटी सी सेटिंग है लेकिन इसका इम्पैक्ट, बाबू इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश और आज हम बात करेंगे सुबह की दुआओं के बारे में। दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के नाम से और उसकी फजीलत के साथ हो तो पूरा दिन बरकतों और खुशियों भरा गुजरता है। सुबह के अज़कार और दुआएं हमें हर तरह की बुराइयों, परेशानियों, हसद और नुकसान से महफूज रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट लेते हैं लेकिन पूरे दिन की हिफाजत और बरकत का जरिया बन जाते हैं। आजकल की बिजी रूटीन में हम अक्सर ये छोटी सी आदत छोड़ देते हैं जबकि यह हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। रोज़ सुबह उठकर थोड़ा वक्त निकाल कर सुबह की दुआएं और अज़कार ज़रूर पढ़ा करें। आप खुद महसूस करेंगे कि दिन कितना पीसफुल गुजरता है। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि वाई क्लियर नेशनल गोल्स क्रिएट लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी। देखिए, क्लियर नेशनल गोल्स मुल्क के लिए एक रोड मैप की तरह होते हैं। जब ये मालूम हो कि कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना है तो डेवलपमेंट रैंडम या फिर टेम्परेरी नहीं रहते बल्कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म होते हैं। जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 क्लियर टारगेट सेट करता है। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हेल्दी सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और, तो अगर गोल क्लियर है, मान लीजिए कोई भी गोल आपने सेट किया वो क्लियर है, और जैसे कतर ने एक गोल सेट किया और वो काफ़ी क्लियर है कि इकोनॉमी ऑयल पर कम डिपेंड करेगी, तो पॉलिसीज, एजुकेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और करने के प्लान्स भी हैं। कतर में रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनोवेशन हब इसी क्लियर गोल की मिसाल है। देखिए, क्लियर गोल्स की वजह से पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की प्लानिंग मुल्क को शॉक से बचाती है, जैसे ऑयल प्राइसेस गिरने पर भी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इसीलिए क्लियर नेशनल गोल्स लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी पैदा करते हैं जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे। तो अब आप तो समझे कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक क्लियर गोल्स का होना और किस तरह से क्लियर गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं। बस जाते जाते एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पैदा होती है जब तरक्की सिर्फ पैसे तक महदूद ना हो बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाए। कतर का नेशनल विजन 2030 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्स क्लियर हैं और हम सब का मुस्तकबिल जो है वो स्टेबल और महफूज बन सके, इस डायरेक्शन में कतर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह।

0: तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
0: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदूस, नाम ही काफ़ी है। हसन अल हैदूस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अलसद यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम को ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अलसद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफी दिलाने में मदद की। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूं, यानी कतर स्टार्स लीग के बारे में, बल्कि बाहर के जो AFC चैंपियंस लीग मैचेस होते हैं, AFC चैंपियंस लीग के विनर भी रहे और इसके साथ साथ कई ऐसे एमएफ कप टाइटल्स भी उन्होंने हासिल किए विद अलसद क्लब। और बहुत लॉयल फुटबॉलर रहे हैं, कोई क्लब चेंज नहीं किया इस दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि क्लब चेंज कर लेते हैं फुटबॉलर, लेकिन हसन अल हैदूस हैज़ बीन अ परमानेंट फिक्स्चर ऑफ अलसद फुटबॉल क्लब सिंस द टाइम ही स्टार्टेड विद द अलसद फुटबॉल एकेडमी। नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर हसन अल हैदूस ने कतर को 2019 AFC एशियन कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली दफ़ा था जब कतर ने एशिया कप का टाइटल जीता और ये कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। टूर्नामेंट में उनकी लीडरशिप और अटैकिंग फुटबॉल ने पूरी एशिया में कतर का नाम रोशन किया। और इसके बाद 3 साल के बाद 2019 के बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी कतर की कप्तानी की, जो अरब दुनिया का पहला वर्ल्ड कप था, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर कतर, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर हसन अल हैदूस। और ये भी बता दूं कि कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे सक्सेसफुल और नंबर ऑफ मैचेस खेलने वाले अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं हसन अल हैदूस, सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले फॉर कतर। हसन अपनी स्पीड, पासिंग और गेम कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन नए फुटबॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है और कतर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल कतर नेशनल टीम से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुलाया गया, वापस बुलाया गया, क्योंकि कतर टीम नीडेड हसन अल हैदूस। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जहाँ कतर विल ओपन द कैंपेन ऑन 13 जून इन USA, मेक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है एंड कतर का पहला गेम है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में। सो हो सकता है कि इस मैच में हम हसन अल हैदूस को दोबारा हम देखें एंड दोबारा सक्सेसफुली वी कैन सी द कतर नेशनल टीम। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हसन अल हैदूस कतर की कप्तानी करेगा और इसके साथ साथ 13 जून को जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, उसमें ही विल लीड विद अप्लॉम्ब। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 आवर या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज।
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में

0: बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम जरा सोचिए, एक जुमला है बिस्मिल्लाह। इस जुमले को कहने में शायद एक या दो सेकंड लगते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहने में भी सिर्फ चंद लम्हे, यानी पूरी सुन्नत अदा करने में शायद तीन या चार सेकंड ही लगते होंगे। इतना मुख्तसर अमल, लेकिन इसकी बरकत भी बहुत बड़ी है। आज हमारी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, हम घर में दाखिल होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है, जहन में कुछ काम होते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम खामोशी से घर में दाखिल हो जाते हैं, ना अल्लाह का नाम, ना सलाम, ना घर वालों से मोहब्बत भरा कलाम। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निहायत खूबसूरत तरीका सिखाया कि जब घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम लो और सलाम करो। सामने किराम, यह अमल पूरे घर के माहौल को बदल देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज न तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह है और न खाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल हो तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने किराम, जरा सोच कर देखिए, हम कितने बार अपने घरों में बेसुकूनी, गुस्सा, झगड़े या अजीब बेबरकती महसूस करते हैं और कभी कभी हम बड़े बड़े असबाब तलाश करते हैं, हालांकि बरकत का दरवाजा तो उन छोटी सुन्नतों में छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहना गोया ये ऐलान है कि ए अल्लाह, ये घर तेरे नाम से आबाद है। अस्सलामु अलैकुम कहना गोया घर वालों के लिए दुआ है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो, सुकून हो। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक. एफएम 107 की घड़ी में फिलहाल 4:01. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी. उठा लो भाई, उठा लो ये झोले, उठा लो. इसमें जो भी आपके पास दिख रहे हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी झोले के अंदर, लेकिन अगर आपकी अपने मर्जी के फेवरेट गाने हैं तो उन गानों को उठा लो अब. लेकिन ऐसे भी नहीं कि आंख बंद करी, झोले में हाथ डाला और जो गाने हाथ में लगे वो

आपने टाइप करके भेज दिया, ला ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपको अपनी मर्जी के गाने मुझसे प्ले करवाने होते हैं, लेकिन हर बार एक थीम होती है उसकी, है ना। तो अब ऐसा ना हो कि यार आपने जो गाने कहे वो प्ले कर दे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो एक थीम होनी चाहिए, एक ऐसा गाना या एक ऐसी थीम जो अगले गाने से भी थोड़ी कनेक्ट हो, फिर उसके अगले गाने से थोड़ी कनेक्ट हो, तो मज़ा आने लगेगा। अब ऐसा ना हो कि एक जो है ABCD कह रहा है, अगला आदमी छोटा बड़ा छोटी बड़ी कह रहा है, कोई कह रहा है कि भैया XYZ, कोई कह रहा है अलिफ बे, तो ये चीज़ ना हो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हम किसी गाने को प्ले करें तो एक रिदम हो उन गानों का, और गानों के साथ साथ जो अगला गाना हो उनका भी रिदम हो, उसका अगला गाना वो भी रिदम वाला हो। इसलिए ज़रूरी है कि एक थीम होनी चाहिए। तो झोले से आज आपको लॉन्ग ड्राइव के, सफ़र के, ड्राइविंग करने वाले जो गाने आपको दिख रहे हैं वो झोले से निकालना है और मुझे देना है हमारे व्हाट्सअप नंबर 666-22-107 पे, 666-22-107, क्योंकि आज है थर्सडे का दिन, और थर्सडे का दिन है तो यार कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्लान किया होगा, कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा होगा, कोई अपने दोस्तों के घर जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब किताब हो रहा है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि यार गाना भी अगर ऐसा ही हो जाए, कोई माहौल बनाने वाला, सफ़र वाला, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। सो इसलिए जो सबसे पहला गाना है वो आपके अपनी मर्जी से यहाँ पर प्ले होगा। जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, 666-22-107 पे बताइए कि लॉन्ग ड्राइव वाला, सफ़र करने वाला, वो वाला अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाला, लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, गाड़ी चला रहे हैं सुकून से, है ना। अभी तो नहीं हो रही होगी सनसेट, अभी तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे आप, थोड़ा सनसेट होने लगेगा, आपकी आंखों में चुभेगा नहीं, खूबसूरत सा माहौल लगेगा ऐसा। और फिर अगर कोई बगल में बैठा हो जिनसे आप समझ रहे हैं, हाँ मतलब प्यार मोहब्बत में हैं, जिनके आपके परिवार, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके साथ अगर ये सफ़र वाला गाना सुन लिया मज़ा नहीं आ जाएगा। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए, हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखिए 666-22-107। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। हाँ तो देखो, मुझे लगता है कि देखो ये आ भी गया, मैं कहने ही वाला था। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं उनसे, और ख़ास तौर पे कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में किसी चीज़ से कनेक्ट ही करते हैं। जैसे हिमेश जब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे ना, उस वक्त Taken 3 गाने आए थे, Taken 3 बहुत गेम चलता था, और जब हिमेश बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे उस वक्त मैं Taken 3 गेम बहुत ज़्यादा खेला करता था, तो उनके जितने भी गाने थे मैं गेम से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो जब भी वो गेम खेलूं या फिर कभी रिमोट लेकर सामने बैठूं या वो गाने प्ले हो रहे हो, तो मुझे अपने वही दिन याद आ जाता है कि गर्मी में कहीं पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर गेम हो रहा है, वो कॉइन वाला गेम हुआ करता था Taken 3, तो वो याद आ जाता है। ऐसे ही सफ़र का एक गाना है जो लकी अली ने गाया है, तमाशा मूवी का ट्रैक है, जिसका नाम है सफ़रनामा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये ट्रैक है, और वैसे भी तमाशा जो मूवी है वो बहुत ही लाजवाब थी, और घूमते फिरते हुए ये गाना अगर प्ले हो जाए तो दिल खुश हो जाता है। तो सबसे पहला सॉन्ग जिस भाई ने रिक्वेस्ट की है, कॉल्ड सफ़रनामा बाय लकी अली, कुछ दिन पहले आए भी थे कतर जब इन्होंने परफॉर्म भी किया, और ये सफ़रनामा गाना ये मैं प्ले करने वाला हूँ सबसे पहला। और रिक्वेस्ट करने वाले भाई, इनका नाम है, यार मैंने नाम देख लिया, अब्दुल, इनका नाम है, ओके अब्दुल भाई ने सफ़रनामा लिख भी दिया था, और मुझे पता था कि जब भी सफ़र के बारे में हम बात करेंगे, लॉन्ग ड्राइव के बारे में बात करेंगे, एक दो घंटे की अगर ड्राइव है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये गाना कोई ना कोई मुझसे ज़रूर कहेगा। सो सफ़रनामा फॉर अब्दुल भाई, लकी अली की आवाज़ में, तमाशा मूवी का ट्रैक जो 2015 में आई थी मूवी। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप, आपके मर्जी के गाने अगर आपको सुनने हैं तो झोले से सफ़र के, लॉन्ग ड्राइव के, ड्राइविंग करते हुए जो गाना सुनने में अच्छा लगता है वो गाने आज हम प्ले कर रहे हैं। आज की थीम है ड्राइविंग की, लॉन्ग ड्राइविंग की। एक गाना वो भी आएगा मुझे लगता है, लॉन्ग ड्राइव

0: क्या बात है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पहाड़ों पे ये गाना अगर ना चले तो हो ही नहीं सकता भाई। कोई बाइक राइडर हो, कोई ट्रेवलर में बैठा हो, कोई किसी बस में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, ये गाना वो जरूर प्ले करते हैं, कॉल्ड सफरनामा। वेल ये ट्रैक सुना आपने लगी अली की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल, लेकिन पहाड़ों पे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हां जी हबीबी, 4:11 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अभी से लेकर 5 बजे तक आपके गाने मैं लगाता रहूंगा। और तीन और गाने की रिक्वेस्ट जल्दी से प्ले कर देते हैं। एक भाई है, उन्होंने कहा सूरज डूबा, ये गाना उन्होंने लिख दिया, और सही में ये गाना लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि मौसम ऐसा है एकदम जैसे अगर आप शीशा बंद करके कार चला रहे हैं, हल्का ठंडा ठंडा माहौल महसूस हो रहा, और सूरज जैसे ऐसे डूबेगा तकरीबन 5:30 के आसपास तो और खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन 4:30 के आसपास भी यही माहौल रहता है, मैं मान सकता हूँ, है ना। तो अभी का जो फील है वो यही गाने देंगे। एक जो भाई हैं, इनका नाम है क्या, मैं देख लेता हूँ ज़रा, हाय लिखा हुआ है इन्होंने, सुफियान इनका नाम है, इन्होंने कहा सूरज डूबा है ये गाना प्ले कर दो। बिल्कुल आपका ये गाना मैं प्ले कर देता हूँ। फिर उसके अलावा डूरज डूबा है सूरज डूबा है, ये बिलाल है, बिलाल ने भी कहा है इसी गाने को प्ले करने के लिए। तो दो लोगों की ख्वाहिश है कि सूरज डूबा है प्ले कर दो। उसके बाद प्लीज़ प्ले दिल चाहता है, ठीक है, ये भी एक ऐसा ट्रैक है जो लॉन्ग ड्राइव पे

इस सफर करने जो जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि वो बीच की तरफ जा रहे हो, तो उनके लिए ये गाना है। उसके अलावा गुरमीत सिंह कालेर ने कहा है दिल चाहता है प्ले करने के लिए, तो ये प्ले कर देता हूँ। और एक और गाना है, थोड़ा लंबा ट्रैक है, मैं इसे छोटा ज़रूर कर दूंगा। ये कहा है अजहर हुसैनी सैयद ने, और इनके फेवरेट गाने में से एक गाना है सूरज हुआ मध्यम। आए हाय हाय यार, एक बात तो कहना पड़ेगा, आप लोगों की चॉइस है एकदम रगड़ी हुई, मतलब होता है ना एकदम पिक किया हुआ, जैसे जो असली वाले चोर होते हैं ना, वो जब जेब में हाथ डालते हैं तो वो नोट छूकर बता देते हैं कि ये 500 का हमें हटाओ, 10 का ये हटा दो, ये वाला हटा दो, ये 500 का, ये 1000 का, ये 2000 का है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और उस तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम पता है पिन पॉइंट कि ये वाला पकड़ो, ये वाला सबसे अच्छा गाना है, ये उठा के फजील को दे दो झोलों में से, है ना। और मैं भी अब क्या ही बताऊँ, लेकिन ये मैंने एक दोस्त से सुना कि भाई वो उनको पता चल जाता था, वो अब्बा के पैंट में जब भी हाथ डालते थे तो उनको सिक्के से पता चल जाता था कि ये 2 का सिक्का है, क्योंकि एक वक्त पे सिक्का जो 2 का आता था उसमें किनारे साइड में कट्स लगे होते थे, तो उसको छूता था वो 2 के सिक्के, उनको पता चल जाता था, वो 1 रुपये नहीं 2 रुपये उठाता था। और 5 के सिक्के थोड़े मोटे हुआ करते थे, उसको छूता था फिर कहता था कि हाँ ठीक है ये वाले। तो मुझे वो बता रहा था कि अगर कभी पैसे तुम्हें ज़रूरत पड़े तो अम्मी की जेब से ऐसे लिया जाता है या पापा की जेब से ऐसे लिया जाता है। मैंने कहा ये लेना नहीं है बाबू, ये चोरी है। सो हाथ काट दिए जाएंगे, समझ में आया। तो मैंने उसकी इस बात को सुना, और सिर्फ सुना, ठीक है। लेकिन ये मुझे पहली बार क्रिएटिविटी समझ में आई कि अरे जब हाथ मार ही रहे हो तो ऐसी जगह हाथ मारो कि समझ में आए, ऐसी जगह थोड़ी हाथ मारा जाता है कि उसका कोई काम ही नहीं है। फिर तो उनने मुझे बताया कि पैंट के अंदर हाथ डालो तो फिर अगर 2 के सिक्के हैं तो वो अलग होते हैं, 5 के सिक्के अलग होते हैं, 10 का सिक्का उस वक्त नहीं था, और फिर 98 के सिक्का तो वहीं छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अजहर हुसैनी ने जो गाना बताया वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है, ये बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा। तो 3 गाने आ रहे हैं, उनमें से एक भाई ने जो कहा है वो, उनका नाम है सूफियान, उन्होंने कहा है सूरज डूबा है ये गाना प्ले करने को। फिर बिलाल ने कहा है सूरज डूबा है, इनके ख्वाहिश पे, गुरमीत की ख्वाहिश पे है दिल चाहता है, और सूरज हुआ मध्यम अजहर की आवाज़ में। तो सबसे पहले सूरज डूबा है ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज़, अदिति सिंह साथ में, अमाल मलिक भी, वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल। सुनिए इस गाने को दिल से, देसी।

0: ये जो अगला गाना आ रहा ना ये भी बड़ा लाजवाब है, ये बिल्कुल आपके लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी हबीबी, दिल से देसी। 4:28 हमारे स्टूडियो वीडियो में, ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी मर्जी के गाने प्ले होंगे, और अभी ये तीन गाने आपके लिए प्ले किए। पहला तो है सूरज हुआ मध्यम, ये सबसे आखिर में प्ले किया, बीच में दिल चाहता है और फिर सूरज डूबा है, अरिजीत सिंह, अदिति सिंह शर्मा और अमाल मलिक की आवाज में। और अब वक्त है कि बाकी लोगों की रिक्वेस्ट भी सुनी जाए। सो एक भाई कह रहे हैं काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। भाई कल कहाँ थे आप? कल नुसरत साहब, फतेह अली साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, राहत फतेह अली खान साहब के बारे में, तो उनके गाने कल आपने डिमांड नहीं करे मोहसिन अली साहब। अब कह रहे हैं कि अगर आज हो जाता है काली काली जुल्फों पे, अब आज काली नहीं, आज आप देख लो सॉल्ट एंड पेपर जुल्फे फिलहाल, और इसको बर्दाश्त कर लो। लेकिन जिस दिन मोहब्बत प्यार के गाने होंगे है ना, तो उस दिन ये गाने जो है आपके लिए प्ले कर देंगे। लेकिन आज की थीम है, हर रोज़ की तरह आज की थीम है, और आज की थीम है अगर आप लंबे सफ़र पर कहीं जा रहे हैं, आप बीच की तरफ कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों के घर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, अपने दोस्तों या फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज है थर्सडे। सो थर्सडे के दिन तो बनता है एक ऐसा गाना या एक ऐसा ट्रैक जो आपके सफर को और भी लाजवाब बना दे, सफर ना कराए, है ना। तो ऐसे दो लोग और है, सॉरी तीन लोग हैं, तो खोखर इनका नाम है, पता नहीं ये यही नाम है या फिर इन्होंने लिख दिया है। इन्होंने कहा है कि इनको सुनना है हम किस गली जा रहे हैं बाय आतिफ असलम, और ये कितना सटीक सॉन्ग है। बिल्कुल आप जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और मैप आपको कहीं और ले जाता है, तो आपकी जबान से यही निकलता है।
2: ओ

और ये अक्सर होता है जब आप अपने दोस्त के घर जा रहे होते हैं पहली बार और आपको पता नहीं है उसने एप्लीकेशन पे आपको मैप की लोकेशन भेज दी है, लेकिन आप दूसरी गली चले जाते हैं और फिर आपके जबान से निकलता है

और कई बार ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ या आपके दोस्त आपके साथ बैठे रहते हैं, वो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं और चले जाते हैं, तो जबान से यही निकलता है उन दोस्तों के जो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं। अपना कोई ठिकाना नहीं है। हाँ ये है कि थर्सडे का दिन है तो कोई भी टेंशन नहीं है, पहुंच जाएंगे देर सवेरी सही, यार काहे की जल्दी है। तो ये गाना आतिफ असलम का हम किस गली जा रहे हैं, सबसे पहले ये प्ले करेंगे और उसके बाद जो गाना है वो पहाड़ों की कसम शान खान की आवाज़ में है। एंड दिस वन इज एक्चुअली यूनिक सॉन्ग जो मैंने कभी नहीं सुना, अरशद आज़ाद ने कहा है इस गाने को प्ले करने के लिए। और क्या होता है, गाना प्ले करने से पहले हमें सुनना पड़ता है कि ये थीम पर बेस्ड है कि नहीं। और पहाड़ों की कसम, ये गाना सफर जब आप कर रहे हो और आप पहाड़ों की तरफ से आए हैं या कभी भी आप पहाड़ों में घूमने गए हैं, तो आपको इस गाने को सुनने के बाद लगेगा कि सच में पहाड़ों पर जाने का दोबारा से वक्त आ गया है। उसका रीजन है कि यहाँ पर गर्मी हो रही,

0: और इसी सुकून के बारे में ये गाना भी है, पहाड़ों की कसम भाई शान खान। अरशद आजाद ने कहा है इस गाने को प्ले करने के लिए, बिल्कुल आपके लिए प्ले करता हूँ। और फिर एक और गाना था वो किधर गया, अब भी इधर था। हाँ इनका नाम था, पहले नाम देख लेता हूँ, मैंने तो निकाल के रखा था। हाँ ये वाला है, ये है जब तक है जाम मूवी का ट्रैक जो 2012 में आई थी, रब्बी ने गाना गाया था एंड दिस सॉन्ग इज छल्ला। इसका म्यूजिक सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा ये गाना क्या है। अरे ये वाला नहीं, ये वाला, आहा जो गिटार है ना बहुत ही लाजवाब है यार, उसको सुनने में भी दिल जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन ये तीसरे नंबर पे गाना आएगा आपके लिए, तो सबसे पहला गाना जो है वो है हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, इन्होंने नाम तो नहीं बताया है, बस होकर लिखा हुआ है इनके प्रोफाइल पे, तो मैंने यही पढ़ दिया। उसके बाद जो दूसरा गाना प्ले होगा वो है पहाड़ों की कसम बाय अरशद आज़ाद, और फिर जो तीसरा गाना है वो है छल्ला, और इनका नाम है सादिक। सादिक ने कहा है छल्ला गाना प्ले करने को, रब्बी ने इस गाने को गाया। So, ये तीन बैक टू बैक ट्रैक आपके लिए आ रहे हैं FM 107 पे। और अगर आप गेम खेलना चाहते हैं विच इज पहचान कौन, क्योंकि इस तीन गानों के बाद मैं जब वापस आऊंगा तो आपके लिए एक बेहतरीन सा गेम लेकर आऊंगा जिसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सी चीज है, सिर्फ आपको गाना पहचानना है। अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो यस लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे, बस इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए 666-22-107 पे, 666-22-107। ठीक है, पर जैसे ही आप यस लिखेंगे हम आपको कॉल करेंगे और आपको गेम खिलाएंगे जहां पर आपको हमारे प्ले किए गए गाने को बताना है कि असल में गाने का नाम क्या है। वो बीच के कोई लिरिक्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभार डायलॉग भी लेकर आएंगे, लेकिन आज तो सिर्फ हम म्यूजिक पर ही जा रहे हैं और आपको गेस करना होगा वो गाने का नाम क्या है। अगर खेलना चाहते हैं तो यस 666-22-107 पर लिखकर भेजें। फिलहाल
1: कलंदर मस्त कलंदर
0: इस गाने को थोड़ी देर में सुनेंगे लेकिन फिलहाल वो अलग अलग हो गया था आतिफ असलम की आवाज में, फजील के साथ हैं आप दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: ब्यूटीफुल सा ट्रैक सुना आपने FM 107 पे, और एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का ये खास शो आपके लिए द रिक्वेस्ट शो।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: तो भाई जाते जाते और भी बेहतरीन गाने आपके लिए प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है कि आखिरी के कुछ मिनटों में ये गेम आपसे खेल लिया जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और पहले हम लोग खेला भी करते थे इसे, लेकिन अब जो है ये जो गेम है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट खेलते हैं, मज़ा आता है। क्योंकि जो गाने के शौकीन हैं वो लगातार कहते रहते थे कि यार ये वाला गाना या ये वाला गेम फिर से लेकर आओ जिसमें हिंट वगैरह भी होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा मज़ा आता था लोगों को। सो हमने सोचा क्यों नहीं इसको इंक्लूड कर देते हैं आखिरी के 15 मिनट या 10 मिनट के लिए। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है मेरे को, बिलाल।
2: जी,
0: कैसे हैं बिलाल साहब? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चार दिन मैंने हिम्मत जुटाई है क्योंकि मैंने यूसुफ भाई को देखा, आपने क्या यूसुफ भाई के साथ किया,
0: अरे
2: तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी, बट मैंने कहा ट्राई करते हैं।
0: भाई ऐसा लग रहा है अभी अभी कि मैं जेल का कोई जेलर हूँ, कह रहे आपने उनके साथ इतना बुरा किया। डंडा तो इंसान डंडे से मारता, आपने तो कड़वे तेल में डुबा डुबा के तेल लगा के डंडों से मारा है भाई। ऐसा जेलर एलर में मुझे लग रहा मैं डीसीपी ईसीपी हूँ यार।
2: नहीं नहीं, सोबत कैसा है ना वजीर भाई, दरअसल आप इतना अच्छा काकी के साथ रहे हैं तो वो कैसे आप बर्दाश्त करेंगे किसी दूसरे की जीत की खुशी।
0: अरे भाई मैं एक लफ्ज आ रहा है मेरे जबान पे, अक्सर मेरे अब्बा इस्तेमाल करते थे। लेकिन
2: बस बोलिए, लिख के बता दीजिएगा।
0: लेकिन उस मतलब मैं मुझे याद आ रहा है एक मूवी आई थी बहुत पुरानी लेकिन बहुत फ्लॉप हो गई थी, तो उस मूवी का नाम था डायन। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब काकी को आपने तो अपनी जबान में वही कह दिया है जो मूवी का नाम था। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं जो हाल किया है, जिन्होंने कल नहीं ट्यून इन किया होगा वो सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा क्या करते फजल भाई।
2: लेकिन यूसुफ भाई को आज भी आप कॉल कीजिएगा क्योंकि वो हैट्रिक पे है।
0: हैट्रिक पे? अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि बदला लिया जाए उनसे?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप मेरा हाल तो देखिए।
0: अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि वो दरअसल कभी कभार ऐसा हुआ भी है कि वैसे तो गाने की बहुत पहचान है लेकिन कभी कभी वो गाने सामने आ जाते हैं।
2: हाँ, हेरा फेरी वाला डिफिकल्ट था।
0: हाँ वो डिफिकल्ट था। अब सोचिए ये जो मेरे सामने गाना आया शान खान का जो है पहाड़ों की कसम, मुझे लगता है आज जो सुनने वाले हैं वो 80% 90% लोगों को पता ही नहीं होगा जो पहाड़ों में रहते।
2: तो वही सोच रहा था कि ये क्या हो गया फजील भाई, से कहीं गलती से प्ले हो गया है सॉन्ग, ये क्या एकदम क्या चल रहा था एकदम क्या?
0: नहीं नहीं, मैंने थोड़े लिरिक्स सुने तो अच्छे गाने लगे और मुझे याद आया कि यार अगर मैं सच में पहाड़ों के एरिया में होता और इसको अगर सुनना होता तो

0: अच्छा लगता, और अगर मैं डेजर्ट एरिया में तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ शायद मुझे जाना तो है पहाड़ों पे। अब बुला रही है,
1: सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है।
0: हाँ तो वही है ना कि अगर यही गाना मुझे कोई प्ले कर दे पहली बार हो कि पहचानू, तो कैसे पहचानूंगा मैं, है ना। वो
1: फिर आप अपने आप को पहचानेंगे क्या हम कितने पानी में है।
0: फिर तो मैं वो आला ही हो जाएगा हिसाब की, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ की है। क्या क्या कह रहे हो? मैं गजनी हो जाऊंगा
1: फिर आप बोल सकते हैं मैं कहाँ हूँ,
0: मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ।
1: वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया।
0: डॉक्टर कहेगा अब भी ठीक करके देता हूँ इसका दिमाग, अब भी ठीक करके देता हूँ। कब भी ठीक करके देगा। चले,
1: शादीशुदा लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, उनकी बीवियां ही उनका दिमाग ठीक कर देते हैं।
0: नहीं तो आप बीवी को डॉक्टर कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर
1: आप साइलेंट हो गए?
0: एक सेकंड की चुप्पी पकड़ ली। बट इसमें भी मैं दूसरी चीज पूछ रहा था, इसमें ये पूछ रहा था कि आप क्या कहने के कि बीवी की जरूरत में डॉक्टर की जरूरत होती है, यानी कि बीवी को अपने ऐसा डॉक्टर,
1: टेक्निकल फॉल्ट, इतना छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, वो पता होता है उनको कि कैसे ठीक करना है। वो कई दफा आईसाइट, वो जो लुक होती है ना, उसी से ही ठीक हो जाता है।
0: सही है, एक्सपीरियंस
1: जैसे आप कोई बात भूल जाएं, हाँ जब आप शादीशुदा हुई तो बोला मैंने कि आप कुछ भूल जाएं तो एक वो लुक से ही आपको याद आ जाता है कि आप क्या भूल गए थे। दो चीजें जो आपने नहीं भूली होती आपको, वो भी याद आ जाती
0: है। लंबी हो रही इस पर तो बात, इस पर दो घंटा चर्चा हो सकती है मेरे ख्याल से बिलाल साहब।
1: बिल्कुल ये तो ऐसा टॉपिक है कि हर आदमी अपना दुख बयान कर सकता है।
0: चलो भाई अच्छा है, फिलहाल हम एक गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, और जो बाहर से सुनने वाले हमारे यार दोस्त हैं वो भी इस गाने को पहचान कर बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि ये गाने का नाम असल में है क्या। बीच से प्ले कर रहा हूँ और ये गाना है आपके लिए बिलाल भाई, ये इतना ही है।
1: ये है सर जी पानी दा रंग वेख।
0: ओए होए क्या बात है यार, एक बार पानी दा किसने गाया है?
1: हम भी छोटे मोटे यूसुफ भाई है।
0: अपना भी बोल वाला है सोसाइटी में।
1: नहीं भाई उनका क्या, उनकी क्या बात है, आपने नजर लगा दिया उन्हें, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दूं मैं।
0: नहीं मैं
1: दूसरी कॉल उधर कीजिए।
0: मैं यूसुफ भाई को कहना भी चाहूंगा कि भाई उनकी मेमोरी कार्ड में बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं उनको सुनाऊंगा पहाड़ों की कसम। पहचानो
1: वो तो अब आया ना, अभी टेराबाइट तो अभी आई है ना, यूसुफ भाई की तो तब से चल रही है।
0: हाँ मेरा भाई उनका मुझे वो चाचा चौधरी वाला हिसाब याद आ जाता है कि चाचा चौधरी के पास इतना दिमाग था लोग उनको कंप्यूटर कहने लग गए थे, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के चाचा चौधरी यूसुफ भाई हैं।
1: बिल्कुल वो टॉप से आते हैं, ऊपर है वो, ऊपर हम अभी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
0: लेकिन अगर काकी होती तो चाचा चौधरी के लिए साबू भी होता है, तो काकी साबू हो जाती।
1: हाँ काकी वही है, वो ऊपर चढ़ने वाले को टांग से पकड़ के नीचे खींचती है,
0: मोटी बुद्धि,
1: ग्राउंडेड करती है, ग्राउंडेड।
0: और वो वाली मूवी क्या बता रहे थे आप, काकी की मूवी जो थी,
1: काकी की एक थी डाइंग भी थी और डाइंग भी थी। अब आपको है कि आपको एक थी बनाना है या फिर डाइंग बनाना है,
0: आपको पता है
1: वो वापस आएंगी तो फिर एक थी नहीं होगी, फिर वो डाइंग होगी।
0: अरे नहीं भाई बस
1: रिवेंज बिगन्स हो जाएगा फिर।
0: आपको पता है तो अगर ये सब काकी सुन रही होंगे ना, तो कल आपको एक मैसेज आएगा कि मट्टी डालने के लिए आ जाना।
1: सही और वो भी गरम मट्टी।
0: गरम मट्टी
1: की।
0: हाँ और 10 से 3:30 तक बताना, 3:30 तक बताना, क्योंकि लेबर तब 10 से 3:30 नहीं चाहिए। उसके बाद आना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कहा है कि 10:30 से 4:30
1: तक। तो फिर तो उनका दिल ठंडा नहीं होगा ना,
0: है
1: ठंडा तो नहीं होगा फिर, उनका दिल तो ठंडा नहीं होगा ना, वो तो गरम मट्टी डाल के ही उनका दिल होगा।
0: पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका दिल कब ठंडा होगा।
1: सही है।
0: चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही
1: थैंक यू भाई, हैप्पी वीकेंड
0: आपको भी, हैप्पी वीकेंड। बाकी के सॉन्ग प्ले कर रहे हैं आप हमें व्हाट्सएप पर बताइएगा, ठीक है
1: जी, थैंक यू।
0: ओके मेरा भाई, ओके थैंक यू। ओके तो ये तो हो गया बिलाल भाई के लिए, एक और सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ, इस सॉन्ग को पहचानिए। ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग कर रहे हैं और कॉल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप पर जवाब दे सकते हैं। एंड दिस सॉन्ग इज

तो आखिरी के जो दो सेकंड थे उसमें आपको पहचान में आ गया होगा कि ये गाना कौन सा है, इस गाने का नाम क्या है, वो बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे, 6622107। और इस सुबह का मैसेज आ भी गया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे इवनिंग एंड हैप्पी वीकेंड, चाचा चौधरी भी लिखा हुआ है। तेज दिमाग है भाई, देखो हमने तो अच्छे वाले में गा था। फिलहाल ये जवाब आया है मोहम्मद साहब का और इन्होंने मूवी का नाम बताया। मूवी का नाम तो आपने बिल्कुल सही बताया है मोहम्मद, लेकिन आपको बताना है गाने का नाम। गाना एक बार फिर से

अब जिसको इन दो सेकंड आखिरी के दो सेकंड नहीं पता चल पाए तो उसने या तो मूवी नहीं देखी या गाना ही नहीं सुना होगा, उनके लिए ये गाना पहाड़ों की कसम ही होगा। इमरान खान ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। उसके अलावा ये मैसेज है, सनम फिल्म का संजय सलमान मौसम सलाम किया, बहुत प्यार करते हैं को सनम, इस गाने को प्ले करने को कह रहे भाई, फ्रॉम लुम्बिनी। अरे ये गाना बहुत ज़्यादा पुराना है और अब तो वक्त भी चला गया कम, अच्छा इनका नाम है कम खान। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया है मेरा भाई, माजरत। उसके अलावा लिखा है, द सॉन्ग पहाड़ों की कसम वॉज ओरिजिनली रिटन कम्पोज्ड एंड संग बाय द लेट फोक आर्टिस्ट कमल महसूद, और महसूद ऑल्सो स्पेल्ड कमल महसूद। ओके, इन द 90s इट बिकम एन आइकॉनिक फोक एंथम इन द खैबर पख्तूनख्वा रीजन ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये नौमे भाई ने लिखा है, लिखा नहीं है, कॉपी पेस्ट किया मुझे लगता है, फिर लिंक भी भेजा है। पहाड़ों की कसम रेफर्स टू द हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट सॉन्ग तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। यार वैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैंने ये सॉन्ग सुना तो उसके बाद मुझे ये गाना असल में बड़ा ही लाजवाब लगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसे प्ले कर सकते हैं, और आज की थीम से कनेक्ट भी कर रहा था। अली है इनका नाम है, जम के मजा ले ले ले ले ले ले रे मजा ले, ये एग्जैक्टली सही आपने जवाब दिया लोगों ने। फिर हिशाम भाई ने भी सही जवाब दिया है, ले ले मजा ले, और मोहम्मद भाई ने कहा है ले ले मजा ले ये गाना है। एंड देन अगेन एक और है जवाब, तुफैल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, यूसुफ भाई ने कहा है बिल्कुल सही जवाब। यूसुफ भाई आप ऐसे नहीं मानूंगा मैं, आप जब कॉल पे गलत होंगे या सही होंगे तब मैं मानूंगा कि चाचा चौधरी एकदम सही जवाब दे रहे हैं बॉलीवुड के। फिर एक और ये मैसेज है बिलाल साहब का, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। फिर एक ऑडियो में है, ऑडियो तो हम नहीं सुन पाएंगे लेकिन सुनने के बाद गनी साहब आपको हम रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल, नहीं कल तो यार फ्राइडे है, थोड़ा हम भी अपने गले को आराम दे दें, आपसे मुलाकात हो गई इंशाल्लाह संडे को शाम 4 बजे इसी खास शो में एक नए थीम के साथ, आपके मर्जी के गाने होंगे, तो झोले में जितने भी गाने हैं उनको सेफ ऐसे ही रखिए, उनको कहीं पर भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं FM 107 पे शाम को 4 बजे लाने की ज़रूरत है, और जो आप कहेंगे वो गाना प्ले हो जाएगा, बस अकॉर्डिंग टू द थीम, थीम पर बेस्ड होना चाहिए, और मुझे ये यकीन है कि आपके झोले में ऐसे हजारों लाखों गाने पड़े। फिलहाल उदित नारायण हरिहन की आवाज़ में, कैलाश खेर की आवाज़ में।

चला चल। वैसे मैं चाहता था कि मेरे नाम से भी कोई गाना प्ले हो, लेकिन अगेन ये गाना रिक्वेस्ट किया है दी वन एंड ओनली हमारे बड़े ही पुराने सुनने वाले, काफी दिनों बाद उन्होंने मैसेज यहां पर किया है, नाम है सज्जाद। सज्जाद साहब आपके लिए ये गाना यूं ही चला चल। और फिर आज की थीम से रिलेटेड सुंदर FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बंटी एयरलाइंस में आपका स्वागत है मैं हूं आपका पायलट डंबलप्रीत सिंह हमारे जहाज के जो दो द्वार हैं वो दोनों काम नहीं करते हैं एक किवाड़ खुलता है लेकिन कूदने की कोई संभावना नहीं है आप लोग अपनी टिकट लेके बैठ जाएं कमर पेटी बांध लें ये जहाज काफी टर्बुलेंस होता हुआ जाएगा दोहा से दोहरा की दूरी है हम दो घंटे में पूरी करेंगे और इस दूरी के दौरान आपको जलपान की सेवा पूरी मिलती रहेगी टिंग टिंग ring

बढ़िया करके एंटरटेनमेंट रहना, किधर भी जाने नहीं देंगे। आप आ जाओ जी व्हाट्सएप पे 6662107 एंड अ वेरी हैवी वीकेंड। लेकिन आपके मैसेजेस के बिना वीकेंड अधूरा सा है। 6662107 नंबर है एंड बहुत कुछ है, बहुत बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, गप्पे लड़ाएंगे। कहानी बाय द वे, कहानी आज की एक हॉरर स्टोरी है आपके लिए। काफी समय बाद ये मौका मिला है।

0: तो ओपन माइंड करके सुनिएगा जो मैं कहानी सुनाऊंगा, उसके लिए पहले वार्निंग, फेयर वार्निंग, वो कहानी ऐसी नहीं कि आपको बिलीव करा रही कि ऐसा कुछ होता ही है, और वो कहानी ये भी नहीं कह रही कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. सो प्लीज़ ओपन माइंड से सुनिएगा एंड आई होप यू इन्जॉय द स्टोरी. बहुत मेहनत करी है भाई स्टोरी के लिए, बहुत मेहनत. जिसने मैसेज नहीं किया ना इस स्टोरी पर, भाई साहब मैं भाई साहब गाड़ी लेके आपका पीछा करूँगा पूरे दोहा में, ठीक है. 666-22107 नंबर है, 666-22107. आपके मैसेज कति जरूरी हैं. और शाम की शुरुआत दुआओं से, शाम के अधिकार, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी. 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिल रहे हैं. जाना अपने नहीं, बढ़िया जगह पर हो. कहाँ जाओगे, इधर ही रहो. हाँ, स्टैचू.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

0: मेरा भाई, ख्याल रखिए आप।
1: ओके
0: नदीम भाई, ओके नदीम भाई के बाद कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास। कादिर अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं, टुडे आई हर्ड इन द मॉर्निंग दैट मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग फॉर स्टोरी। महवेश नाजी आर वेरी मच कंफ्यूज दैट एवरीवन इज आस्किंग फॉर स्टोरीज, वेयर एज दे डोंट नो हाउ टू टेल द स्टोरीज। मुझे पता है सुबह तक हो रहा है मामला। यूसुफ भाई कह रहे हैं, सैटरडे से अभी तक थर्सडे तक तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो रिपीट हो, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा सैटरडे, क्योंकि सैटरडे मेरे ऑफिस में थोड़ा काम कम होता है, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद होते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा आराम होता है, और हाँ फातिमा घर पर होती है तो उसके साथ भी थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता है। अरे यूसुफ भाई दैट इज़ सो स्वीट यार, बहुत सारा प्यार फातिमा को, एक बार फिर से दुआएं उसके लिए हमेशा निकलती रहती हैं। सुल्तान भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, आई नीड टू रिपीट द मंडे बिकॉज आई रिसीव्ड द सैलरी ऑन दैट डे। अगले दिन रिपीट करने का फायदा नहीं होगा भाई, अगले दिन फिर उड़ा दोगे। अजहर हुसैन भाई बहुत सारा प्यार भाई को, एक मैसेज आया है प्लीज़, क्या है कबीर भाई, मन्नू भाई मेरे साथ हैं उनके लिए कुछ बोलिए प्लीज़, जिम ज्वाइन कर लिए हैं वो। अरे मन्नू भाई जिम ज्वाइन कर लिया क्या? ये मन्नू भाई मुझे लग नहीं रहे इनके लक्षण के एक हफ्ते से ज़्यादा जा पाएंगे। मन्नू भाई बॉडी वॉडी बनाते हैं क्या? मन्नू भाई का क्या सीन है ये बताओ पहले। मन्नू भाई रेगुलर जाने वाले तो मुझे लग नहीं रहे, यहीं से पता लग रहा है मुझे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वेलकम बैक टू द इवनिंग शो, थैंक यू सो मच। जाके बाय, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, भाई स्टूडियो में पूरा दिन रहते हो बस या शो के टाइम आते हो? भाई हम शो से 2 घंटे पहले आते हैं सबको तैयारी व्यारी करके, एंड उसके बाद हमारी भी शिफ्ट होती है 7 घंटे की, तो वो 7 घंटे की शिफ्ट पूरी करके जाते हैं। हर आरजे की 7 घंटे की शिफ्ट है, सो वी कंप्लीट आर शिफ्ट एंड देन वी गो। वो लगता है कि सर शो के टाइम पे आ गया होगा मुंह उठा के, ऐसा है नहीं। शहजादा सलीम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है, सुबह सब कबीर के बारे में ही मैसेज कर रहे होते हैं, अभी तक ये सिलसिला बंद नहीं हुआ क्या है उस्मान भाई? ये अभी भी चालू हो गया? अरे भाई सुबह हो क्या रहा है? मैं मैसेज पढ़ूंगा सुबह वाले, ये मुझे लग रहा, देखो पता मेरे पीछे लोग पड़ेंगे, उन्हें लगे ये करवा रहा है। मैं भाई ऐसा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कराया, आपने सुना कभी मैंने कहा किसी से करने के लिए, पर लोग अपने आप मैसेज करे जा रहे हैं सुबह को। एक भाई का मैसेज मैंने पढ़ा अभी भी सुबह सुबह, वो कह रहे हैं कहानी बहुत बढ़िया थी भेज दो। क्या कहाँ सुनी कहानी तुमने है? एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग के 7:02 मिस हो रहा है। हाँ वो 7:02 वाला मैं भी मिस करता हूँ भाई, अजहर भाई 7:02 कहने का मौका नहीं मिलता है। यूसुफ भाई कह रहे हैं इतनी प्यारी दुआएं, ऑफकोर्स भाई ऑफकोर्स। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सुबह सिर्फ SMS के लिए उठता हूँ, SMS करके वापस हो जाता हूँ। ये अरवाज भाई कह रहे हैं, भाई मैसेज डाल के सो जाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाओ अमर भाई। अब एक मैसेज है सुल्तान अहमद भाई का, वालेकुम अस्सलाम, इधर मैसेज है वेलकम बैक भाई, कम ऑन मॉर्निंग प्लीज़। अरे क्यों भाई, इतनी मुश्किल से अलार्म बंद किया है मकसूद भाई, वापस अलार्म लगवाने की दुआ कर रहे हो। अच्छा मैं कुछ देर में हॉरर स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, ये नॉर्मल स्टोरी से हटके होती है, बड़ा मुश्किल होता है इस स्टोरी को गैदर करना, है ना, तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके फिर सुनानी पड़ती है। तो प्लीज़ इस कहानी के लिए तो स्पेशली आपको मैसेज करने पड़ेंगे, मैं पहले ही आपसे मांग ले रहा हूँ, समझ रहे आप, शर्म मैंने छोड़ दी है। तो इस पे तो आपको मैसेज करने ही पड़ेंगे। बाकी मैसेज है, जिस भाई कह रहे हैं ये भी सही है जो स्टोरी के बारे में बता, हाँ ये क्यों मतलब सुबह सुबह लोग स्टोरी मांग रहे हैं, दोनों बहनें हमारी कंफ्यूज हो जाती होंगी। उन्हें लगता होगा ये कोई चाल चल रहा है, दुनिया की नज़र में ही सुबह सो रहा है लेकिन ये लोगों को भेज रहा है मैसेज करने के लिए। एक मैसेज है, अभी तो बेचारे लेडीज़ को समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैं अभी देख रहा हूँ तकरीबन 7-8 मैसेजेस है भाई। एक मैसेज, मैं सुबह के शो में आकर बोलूँगा 7:02। भाई किसी की समझ में नहीं आएगा, बोल के निकल जाएंगे। एक मैसेज है, क्या कह रहे हैं, 7:02 का क्या सीन है? देखो हर जगह अकल नहीं लगानी पड़ती मेरा भाई, ये कोई सीन नहीं है हुसैन भाई, आपके लिए होगा वो स्टूपिडिटी वाला, लेकिन हम एक स्टूपिडिटी ही कर रहे थे सुबह सुबह, ठीक है। जब घड़ी में 7:02 बजते थे तो मैं 7:02 बोल देता था, एंड दैट काइंड ऑफ रजिस्टर्ड। हर जगह अकल नहीं लगानी होती, एवरी मूवी इज़ नॉट क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर ना। जुल्कर्नैन साहब वालेकुम अस्सलाम, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, इस वीक मंगल का दिन आना चाहिए क्योंकि सैलरी आई थी। अरे भाई सब डूबे हुए हैं सैलरी की बातों में। मुझे आई रोट अ मैसेज एंड डिलीटेड बिफोर सेंडिंग एज आई ट्यून्ड इन। बहुत बढ़िया किया आपने। एक मैसेज है, मैं घर पहुंच गया हूं, प्लीज स्टोरी भेज देना। सुबह मांगना ना उस्मान भाई, सुबह मांगना। सुबह भेज देगी, मैं नाजिया को बोल दूंगा आपको स्टोरी भेज दे। वैसे भाई मैं कल की स्टोरी रिपीट करवाता, लाइव सुनने का अलग ही मजा है, बेस्ट स्टोरी थी भाई कल की, थैंक यू सो मच भाई, आई रियली एंजॉयड नरेटिंग दैट एज वेल। एंड अभी जो आने वाला संडे है, बहुत बढ़िया स्टोरी उसकी।

0: के लिए भी एक मैसेज है भाई कबीर भाई, 3 दिन से स्टोरी नहीं भेजा, सब खैरियत है? लेडीज की आवाज आ रही थी, कौन क्या कौन कब्जा कर लिया है आपकी जगह पर? अरे कब्जा उब्जा नहीं किया भाई ये तो समझ रहे हैं जमीनें लूटी जा रही है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, शो सफल हो गया है। तो आपने जितने मैसेज किए सुबह किए इसलिए आपको स्टोरी नहीं मिल पा रही है। एक मैसेज है, मेरा स्टूपिड क्वेश्चन से मतलब था, क्या मतलब था एक सेकंड, मेरा स्टूपिड क्वेश्चन मतलब था मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ प्लीज़ भाई नाराज़ नहीं होना हुसैन भाई, मुझे समझा दो, मैं लगता है बातों में ज़्यादा डूब गया। एक मैसेज, लव यू कबीर भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई को। अमरिक भाई मेरी शिकायत है भाई, आप आते वाते तो नहीं ना, एक बार भी आपने मैसेज किया हमें हैं, भूल गए आप, लास्ट बात हमारी दिसंबर में हुई है भाई, ठंड के बाद छुट्टी पर चले गए आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, टाइम आपने चेंज कर लिया, स्टोरी हम मिस कर रहे हैं, सो प्लीज़ सेंड द स्टोरी, आज की स्टोरी भी सेंड कर देना भाई। भाई भेज देंगे कोई गल नहीं। एक कॉल आ रही है उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या बोलती दिल्ली की पब्लिक,
0: क्या बोलते तकलीफ तो होने वनता है क्या हो रहा है आसिफ भाई?
1: भाई एक नंबर, फुल मजे में। क्या
0: फुल मजे में? क्या
1: बंटा कौन है जो तुम्हारे वो तकलीफ दे रहा है, नाम बताओ बस
0: भाई। कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं भाई, एकदम भला चंगा चल रहा है भाई सब कुछ एकदम।
1: पब्लिक का अभी तक भाई, पब्लिक का अभी तक कंफ्यूजन दूर ही नहीं हुआ भाई तुम्हारे को लेके, क्या करने का बताओ ये
0: भाई? पता नहीं भाई, कंफ्यूजन चलता रहने दो भाई, वहम अच्छी चीज है।
1: बंटा एक महीना होने आ गया बंटा को, मतलब अभी इधर शाम में पहुंच के पब्लिक अभी तक का सुबह ही में लटकी पड़ी है
0: बताओ जानबूझ के भी कर रहे हैं कुछ लोग जबरदस्ती छेड़ने के लिए।
1: अरे भाई इतना जानबूझ के परेशान करे ना, परेश रावल को भेज देने का लोगों के पास
0: मैं अभी सुबह के मैसेज पढ़ा था, 10 मैसेज कम से कम है आराम से जो कहानियां मांग रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, मुझे समझ नहीं आ रहा
1: है। नहीं मतलब भाई, मतलब FM ऑन नहीं करते मतलब लोग सुबह के टाइम पे, और खोटा आके तुम्हारे को मैसेज कर रहे हैं भाई, खोटा खोटा मैसेज कर रही पब्लिक है तुम्हारे को
0: एक बार कह रहे हैं भाई कब्जा कर लिया, ये हो गया वो हो गया, सब मैसेज आ रहे हैं एकदम बढ़िया लोगों को चाहिए मसाला रहने दो मसाला।
1: मतलब कब्जा हाँ। कर लिया मतलब क्या, मतलब कतर में भी ये सब काम शुरू हो गया क्या
0: कब्जे के प्लाट है, कब्जे के प्लाट। और आसिफ भाई
1: माफिया,
0: क्या घर पे जाने से पहले क्या खजूर कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, खजूर वजूर कुछ बढ़िया, क्या सीन है?
1: खजूर भाई मैं ना एक एक इधर हमारे 400 भाई है समझ गए ना भाई, वो खजूर का पेड़ लगाया, उसके मुद्दी ने 3 पेड़ लगाया था खजूर के, एक लेडीज और एक बच्चा और एक आदमी, तो उसमें अब तीनों पे ना उसने क्या किया, जाली वाली बांध दिया, खजूर वजूर आ गए उसके ऊपर। तो मैं उसको जाके क्या बोला, मैं बोला भाई तू मेरा दोस्त है ठीक है ना, एक खजूर जैसी खजूर पकेगा वैसी नहीं कोई डांडी दे तोड़ के, तो क्या बोलता भाई तुम हमसे ऐसा बात नहीं करो, तुम जाके मुदिर से बात करो
0: फायदा क्या हुआ बताओ इस कॉन्वर्सेशन का, क्या
1: फायदा नहीं हुआ भाई, मतलब देना चाहिए ना भाई, मतलब एक खजूर पक गया भाई, एक डंडी देते मैं लेके चल जाऊंगा घर पे फ्रेश फ्रेश माल, नहीं दे रहा भाई
0: देखो कितना खालीपन है आदमी, मतलब खजूर के ऊपर बात चल रही है
1: अरे ये तो बहुत दूर की बात है भाई। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कल एक बंदे को मैं बुलाया मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो दूसरा बंदा उसको मालूम हुआ कि मतलब आसिफ भाई के रूम में एक बंदा आया मिलने के लिए, तो वो दुकान से लेके आया जूस की बोतल बड़ी वाली, बोलता भाई तुम दोनों पियो मैं आता हूँ, वो बंदा एक घूट पिया और बाकी रख के चले गया, और मैं उसको उठा के फ्रिज में रख दिया,
0: फिर
1: और अभी अभी मैं ध्यान आया था अभी बैठ के पी रहा हूँ मैं
0: ये इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझे दी है आसिफ भाई, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा वीकेंड हो गया, चलो फिर मैं सामान लपेट के चला जाता हूँ, मेरे क्या काम है
1: बता दो, वरना खाली बातें बहुत है मेरे पास, मैं तो इतनी बात करूंगा पब्लिक परेशान हो जाएगी, बोले हटता ही नहीं है।
0: मेरी मेरी दुआ है आपकी जल्द शादी हो, मैं पूरी दुआ करूंगा भाई।
1: ये जुलुम ये मत करो भाई कबीर भाई, ये मत करो,
0: ला ये तो हो गया
1: भाई, अगर आप चाहते हो भाई जरा

0: नहीं समझ रहे हो।
1: मैं तो बहुत समझ चुका हूँ, ठीक है, तुम्हारी बारी है समझने की।
0: इंशाल्लाह भाई, मैं जाके ना भाई अभी इंगेज करने वाला हूँ मैं, इंशाल्लाह
1: भाई। पब्लिक दुआ करें आज से भाई एंगेजमेंट हो जाए।
0: बहुत आमीन। और क्या बोलते भाई पब्लिक?
1: पब्लिक भाई एकदम खुश है भाई, हॉरर स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अरे बहुत बेकार मूवी है।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ भाई,
0: तुम देख लिए?
1: जी भी मुका दी भाई तुमने फालतू की मूवी पे।
0: अरे छोड़ो यार भाई, मैं नहीं देखूंगा भाई। मैं
1: भाई बहुत घटिया मूवी, मत देखना भाई, बहुत सस्ते सीजीआई इफेक्ट है उसमें।
0: अरे यार छोड़ो, फिर नहीं कैंसिल कर दे। अरे
1: चलो मैं दूसरी मूवी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज कराएंगे मूवी, क्या दिक्कत है?
0: बता दो भाई अच्छी मूवी बता दो, मुझे रात में देखने का।
1: मैं भेजूंगा भाई, क्या दिक्कत है, मैं भेजता हूँ ना भाई, टेंशन नहीं।
0: ओके मेरा भाई, बहुत बहुत बहुत प्यार भाई तुमको।
1: आपको मेरा भाई बहुत सारा प्यार किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके भाई,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आसिफ भाई के बाद कुछ मैसेजेस है मेरे पास, कह रहे हैं आज तो आसिफ भाई फुल फ्री हैं। भाई आज आसिफ भाई के फ्रिज में रखा है जूस। भाई वीकेंड बन रहा था, मूवी बुराई करके खराब कर दिया आपने। भाई नहीं नहीं नहीं, मत देखना साइलेंट हिल, बहुत बकवास बनाई है। मैंने तो गेम खेला है ना भाई उसका, मैं उससे बढ़िया उस मूवी का रिव्यू मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। नहीं मेरी बात मान लिया करो, एक मामले में आपका भाई बढ़िया है मूवी के रिव्यूज में, ठीक सी बात है। एक मैसेज, कबीर आसिफ भाई आपसे नाम पूछना है, आपको परेशान कर रहा है बॉम्बे स्टाइल में। हाँ एक मैसेज है ये, हाँ तो वो चलता है भाई, कभी कभार चल जाता है। एक मैसेज है, जिस दिन शादी का फैसला किया था रिपीट डे और चेंज डिसीजन, जीशान शरीफ। जीशान भाई आपके नाम में शरीफ है, समझ रहे हैं आप, ये बातें शोभा नहीं देती। नदीम भाई कह रहे हैं आज आसिफ भाई, हाँ आज आसिफ भाई अलग जोन में है। एक मैसेज, प्लीज़ अपडेट मी भाई, मजाक एक नंबर का क्या बात है भाई, एक बात भूली गया, प्लीज़ अपडेट मी डेज एंड टाइम ऑफ द स्टोरीज। भाई स्टोरी आने वाली है 5 मिनट में, 5:40 तक हम कहानी शुरू कर देते हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कल मैं मसरूफ था, कल वाली स्टोरी आज वाली स्टोरी के साथ भेज देना। फराज भाई ने मैसेज किया है। खादिर अब्दुल हादी भाई कह रहे हैं, कबीर भाई आपका वो डायलॉग मैं नहीं बताऊंगा। एक और मैसेज है, डीबी भाई थैंक यू एंड सेंड मी स्टोरी, तो आना ही था मेरे पास। एक मैसेज है भाई, आज वाली थर्सडे वाली सेंड कर दो, आज तो थर्सडे ही है। एक मैसेज, सिर्फ नाम ही शरीफ होगा। जिशान भाई अरे मेरे तो अब्बा का नाम शराफत है, मुझसे ज़्यादा शरीफ तो कोई है ही नहीं, इनके तो नाम में शरीफ है, मेरे तो अब्बा का नाम शराफत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज भाई, आपको बहुत बड़ा, आप बहुत बड़े कलाकार हो लेकिन आप ज़ाया कर रहे हैं सब। अरे मुझे ताने क्यों, आज के दिन छोड़ दो मुझे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक लास्ट कॉल ले लूं फिर कहने की तरफ बढ़ता हूं। कहां गए कॉल? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई जान?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आपका नाम मेरा भाई
2: अरमान खान।
1: अरमान भाई, अरमान मान मान जागी तेरी वासी थी। अरमान भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अरमान भाई?
2: सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया
1: बढ़िया चल रहा
2: है। रोज का मामूल हो गया है कि ड्यूटी जाते वक्त आपका कहानी सुनते हुए जाता हूँ मैं। कल की कहानी बहुत अच्छी थी।
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार।
2: मैंने लास्ट लास्ट में जब मैं ड्यूटी पहुँच गया तो लास्ट का पोर्शन रह गया था, फिर मैंने मैसेज कर के आपसे कहानी मांगी और फिर जब मैं सुबह आया तो लास्ट का पोर्शन सुना
1: भाई। वही ना, मैं वो
2: स्टोरी बता ही नहीं सकते क्या है वो, है ना
1: भाई? ऐसी तो इसी बात के तो पैसे हैं भाई। इसी बात के वैसे भाई,
2: बड़े प्रैक्टिकल आदमी हो भाई।
1: एकदम भाई सीधी सीधी, ना किसी में सोचते हैं बिल्कुल। पर आज है कुछ अलग अलग मामला है, आज पब्लिक डिमांड पे हमने थर्सडे का दिन रखा हुआ है, पुराना रिचुअल हम फॉलो कर रहे हैं जहां पर एक हॉरर स्टोरी अगर अच्छी मिल जाती है तो सुना देते हैं, तो आज जरूर सुनिएगा भाई। ठीक है भाई,
2: क्यों में ही है, बस उसी का वेट कर रहे हैं।
1: डन है मेरा भाई, शुरू करता हूं फिर मैं। ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके तो एक कांगे मैसेज, ये अफजल उस्मानी भाई कह रहे हैं आसिफ भाई म्यूट हो जाएंगे भाई, वीकेंड बन रहा था मूवी। अच्छा ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है क्या? एपेक्स मूवी देख सकते हैं, हाँ एपेक्स मूवी देखी जा सकती है, वेरी गुड चॉइस सुभाष भाई, थैंक यू। ओके तो एक प्रोमो की बात, ठीक है कहानी शुरू करते हैं। एंड देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आएंगे, ये क्या वो क्या फलाना, लड़ने का आज मेरा मूड नहीं है, मत लड़ना है यार, कहानी अच्छी लगे तो बता देना, ना अच्छी लगे कोई गल नहीं, संडे को अच्छी लग जाएगी। बट आज हॉरर स्टोरी है, इट इज़ कमिंग अप इन अ वाइल। एक प्रोमो के बाद, किधर गया प्रोमो, छोटा वाला प्रोमो चलाता हूँ ताकि

देसी। अस्सलाम वालेकुम, गाने शुरू कराने के भाई ने बोला कि दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट के बाद शुरू कर देंगे। जब तक कि हमने हमारा इवनिंग का ये रैप सॉन्ग था, ये बनाया था, इसको हम सोच रहे हैं कि एक्सटेंड कर लिया जाए, एक प्रॉपर गाना शाना बना दिया जाए, तो वो बनाएंगे बट लिरिक्स चेंज कर देंगे उसके बाद में। मीनवाइल ये हमारा प्रोमो था, अगर आपको अच्छा लगे तो इस बारे में बता दीजिएगा, फिर इसके उस पार कहानी आपका इंतजार कर रही है। ये लो।

शाबाशी देगा क्यों दें शाबाशी, चलो शुरू करते हैं फिर। मीनवाइल क्रिटिसाइज वाले मैसेज नहीं आए मेरे पास, एक सेकंड। ये जो बचता है दो घंटे कैसे निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। भाई थैंक यू सो मच अब्दुल करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई आपका मैसेज अभी मैं वो रिप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा सबर, बस थोड़ा सा सबर। ओके प्रोमो की तारीफ करें फैसल भाई, थैंक यू। ओके सो ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ ओपन माइंड से सुनिएगा। ये जो कहानी है इसको जब मुझे मिली भी तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस की बात इसे इकट्ठा करके मैंने तैयार किया है आपको सुनाने के लिए एक नैरेटिव फॉर्म में, बिकॉज इस कहानी से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे विटनेसेस हैं, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो आई होप कि आपको अच्छे लगे, एंड शुरू करते हैं वीकेंड स्पेशल कहानी। पर सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग का बटन अपने हिस्से में भी दबा देता हूँ। सो इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। एंड आज का जो किस्सा है ये स्टोरी मैं आप पे छोड़ता हूँ, इट इज़ फ्रॉम योर स्पेक्ट्रम, आपको जैसी लगे यू डिसाइड बाद में, लेकिन अभी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो जो आज का ये किस्सा है ना, ये सुनाने के लिए आपको मैं लेट 90s में ले चलता हूं। सो ये किस्सा है 1998 का, मैकिन ड्राइव नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक छोटा सा टाउन है वहां पे जिसका नाम है हम्प्टी डू। अब नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, बट दैट्स द नेम ऑफ द टाउन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, हम्प्टी डू। ठीक है, रात का वक्त हो रहा था इस वक्त, और हम्प्टी डू में मैकिन ड्राइव पर एक घर है, सिंगल स्टोरी हाउस। और ये जो घर था ये एक 5 acres के लैंड पे, पूरी जमीन पे बना हुआ था, एक बिल्कुल आइसोलेशन टाइप ऑफ जगह थी जहां पे दूर दूर पड़ोसी हैं, कहने को पड़ोसी हैं मगर काफी दूर दूर बने हुए हैं घर। इस घर की जो वन स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं घर की, इसके इर्द गिर्द फेंस लगी हुई थी और एक ही एंट्रेंस था इस घर में दाखिल होने का, देयर वर नो मोर एंट्रेंस, इसके पीछे का दरवाजा है, साइड का दरवाजा नहीं, ओनली वन एंट्रेंस, जहां पर अगर आप जाएंगे सड़क पूरी की पूरी पक्की सड़क, फिर एक कच्ची सड़क आएगी और फिर एक पेबल्स से बनी हुई पूरी एक सड़क है, उस पर चल के आप जाएंगे ड्राइववे से क्रॉस करके और फिर आपके सामने इसका मेन गेट आएगा। इसके ऊपर जैसा देसी भाषा में कहते हैं टीन का है, लोहे का एक छपरा पड़ा हुआ था, मतलब छत जो थी वो बहुत ही अलग स्टाइल में बनी हुई थी, पक्की थी लेकिन उसमें फिर भी लोहा और टीन डला हुआ था, और छज्जा बना हुआ था घर के सामने, और उस छज्जे के नीचे मतलब एक तरीके की शेड, और नीचे उसका पोर्च था जहां पर सीढ़ी वीढ़ी बनी होती है और बैठने की जगह होती है, बालकनी सॉर्ट ऑफ, तो वो जगह वहां पर थी और वहां पर लोग जो थे बैठे हुए थे। यहां पर बैठने वाले 5 दोस्त थे और ये 5 जो है इस वक्त पार्टी के मूड में थे, इन्होंने नया नया ये घर लिया था, एंड माइंड यू ये लोग को ज्यादा रिच नहीं थे, दे वर वेरी नॉर्मल वेल टू डू पीपल, और ये घर उन्हें ठीक ठाक रकम में मिल गया था तो सोचा कि साथ में ही रह लेंगे, दे वर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑस्ट्रेलियन पीपल। तो ये जिनका घर था मेनली, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इसमें खर्च किया था, वो थे मैरिड कपल जिनका नाम था एंड्रयू और कर्स्टी एगस। एंड्रयू और कर्स्टी के अलावा एक और कपल था, डेव और मार्टिन जिल का, एंड इनका एक और दोस्त यहां पे मौजूद था जिसका नाम था मर्फी। एंड अंदर घर के एक 10 महीने की बच्ची थी जिसे सुला के आराम से बाहर पार्टी कर रहे थे, उसका नाम था जैस्मीन। बाहर बारिश हो रही थी, तेज बारिश, तूफानी बारिश, और ये छज्जे के नीचे एकदम छुपे हुए थे, बारिश को देख रहे थे, खाना पीना चल रहा था, बिल्कुल आराम से बातें चल रही थी, बिल्कुल अंधेरी रात और सिर्फ बिजली की चमक जब आ रही थी तभी इन्हें सड़क नजर आ रही थी, तभी इन्हें नजारा नजर आ रहा था, देवर इंजॉइंग दिस आइसोलेशन, ये अकेलापन। पर फिर कुछ अजीब सा होना शुरू हुआ, हुआ ये कि जब ये बैठे हुए थे बीच में टेबल लगाए हुए और एक दूसरे से बात कर रहे थे, इतने में एक पेबल, एक पत्थर, बड़ा सा मोटा सा पत्थर उड़ के इनकी तरफ आया और सीधा दीवार पे जाके लगा। इन 5 के बीच में एकदम मोमेंट ऑफ साइलेंस था,
कर्स्ट यू थी वो एकदम से चिल्लाई, एक दूसरी औरत भी चिल्लाई जो साथ में थी, बट समझ में नहीं आया कि कहां से आई। ये पांचों के पांचों अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे, आवाज दे रहे थे, पर बारिश की आवाज और इस तूफान की आवाज के बीच और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस बिजली की कड़कने की आवाजें थी। इतने में एक और पत्थर उड़ के आया इनकी तरफ और ये उसी डायरेक्शन में भागे जिस डायरेक्शन में इन्हें लगा कि पत्थर आया है, और लगातार चिल्ला रहे थे कौन है बाहर, कौन है बाहर, एंड कोई भी कहीं से ना दिख रहा था ना आवाज आ रही थी, मगर पत्थर लगातार आते रहे। इसके बाद 3-4 पत्थर और इनकी तरफ आए, किसी की चोट तो नहीं आई लेकिन चोट लगते लगते बची जरूर। ये पांचों के पांचों अंदर भागे एंड दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी पजल्ड, इन्हें लगा जैसे इनके इनके घर पे किसी ने हमला बोल दिया हो, कोई ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है। ये पांचों के पांचों बेहद कंफ्यूज्ड थे और बहुत पजल्ड थे। एक पत्थर जो था, क्योंकि दरवाजे ये बिल्कुल पास आके गिरा हुआ था, तो अंदर एक शख्स मर्फी उसने इस पत्थर को उठाया एंड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो पत्थर था, डिस्पाइट कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, ये पत्थर जो उसने उठाया ये अच्छा खासा वार्म था एंड पूरा ड्राई था। जब ये अंदर पहुंचे तो सीलिंग के पास से भी, अंदर घर के, जब आसमान भी नहीं है, अंदर छत है, वहां पे भी पत्थर के गिरने की आवाजें आ रही थी। इनके किचन के बिल्कुल पास में जहां इनका चूल्हा था, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जब आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इनका चूल्हा था, वहां पे भी नीचे पत्थर पड़े हुए थे, विच वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि पांचों बाहर थे, पांचों एक साथ थे, देर इज नो वे के कोई बाहर गया हो ड्राइव में और बाकायदा पत्थर जमा करके लाया हो और किचन में रखे हो और किसी ने देखा ना हो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही स्ट्रेंज डिटेल यही थी कि जो पत्थर के गिरने की आवाज थी और पत्थर जो उन्हें घर के अंदर और बाहर मिल रहे थे, दे वर रियली स्ट्रेंज, वार्म थे, गर्म थे, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल भी गर्म नहीं था और ड्राई थे। जब इन्हें हैच पे से, जो इनका वन स्टोरी बिल्डिंग थी, एक हैच था घर का हिस्सा जो था, जैसे जैसे मचान होता है, तो उसका हैच इन्होंने खोला क्योंकि वहां पे आवाजें ज्यादा आ रही थी, देखना चाहा कि वहां पे हो सकता है कुछ छुपा हुआ हो, कोई ऐसा जो घुसपैठिया हो, पर उन्होंने उसको खोला एंड वहां पर भी इन्हें मल्टीपल पेबल्स नजर आए, जो बहुत सारे पत्थर बाहर से इनकी तरफ आ रहे थे वही हैच में भी मौजूद थे। ये पांचों की पांचों जो बहुत देर कुछ देर पहले हंस खेल रहे थे, अभी पांचों बड़े कंफ्यूज थे। दे वर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट कि ये जस्ट भी क्या हुआ, लाइक इट डजंट मेक सेंस। पहले एक दूसरे से बात करते हुए समझना चाह रहे थे कि हो सकता है कि हम में से किसी ने मजाक किया हो, बट किसी का भी चेहरा ऐसा दिख नहीं रहा था कि किसी ने इतना बड़ा मजाक किया हो, बिकॉज कोई रीजन नहीं है, दे आर ग्रोन अप्स।

throughout the night, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इनको गिरते इनकी नजरों के सामने इधर से उधर जाते हुए नजर आए, जिसमें लेट नाइट वो जो बैटरी लैंप्स की होती है, वो टूल्स, ग्लासेस और सबसे वियर्ड किचन नाइफ। और रैंडम पॉइंट्स ऑफ नाइट जब सोने की कोशिश कर रहे थे और ये सब का गिरना और इधर से उधर होना, इट वॉज रियली रियली वियर्ड फॉर देम। जो जिस पे भुगतती है, जिस पे ये चीज हो रही होती है, वही जानता है। एंड दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये मूवीज में देखना और खुद के साथ हो जाने में बहुत ज्यादा फर्क है। इन्होंने सारे की सारी कमाई इस घर पे लगाई थी। जैसा मैंने कहा, दे वर लिटरली हार्ड वर्किंग ऑस्ट्रेलियंस, उन्हें तो कोई ऐसा तामझाम चाहिए भी नहीं जिंदगी में, मगर अभी भाग नहीं सकते। आने वाले कुछ दिनों तक ये चीजें और भी ज्यादा चलती रही। इनकी खुद की बिलोंगिंग्स, इनके कपड़े इधर के उधर पड़े होते थे। इनफैक्ट बड़ी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ एक सीडी प्लेयर, जस्ट इमेजिन 1998 एक सीडी प्लेयर की कीमत, वो तक टूटा हुआ मिला इन्हें, फ्लोर पे पड़ा हुआ था, पूरा बिखर चुका था। और ऑब्जेक्ट्स के इधर से उधर मूव होने और टकराने से इनके खिड़कियां, इनके कैबिनेट्स सब के सब टूटे हुए थे। एंड माइंड यू, इनके पास इतनी कमाई नहीं थी कि ये सब चीज को रिपेयर कराते बैठेंगे। फिर आया सैटरडे के दिन। ये बड़ी मुश्किल से एक दो घंटे जब सोने के बाद ये उठे, दे सॉ कि इनके घर के अंदर पत्थर ही पत्थर हैं, लाइक द होल मेन डोर, वहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर पत्थरों के पूरे ओलों की तरह बारिश हुई हो। एंड सबसे वियर्ड बात, मैट्रेसेस जो थी इनकी, जब ये बाहर ही चेक करने के लिए आए थे एंड दे वेंट बैक इनसाइड द रूम, सारी मैट्रेसेस कमरे की उल्टी पड़ी थी, पलटी हुई। एक बहुत अजीब सी चीज थी इनके कमरों से, व्हेन दे वेंट बैक, कुछ जल तो नहीं रहा था लेकिन एक बड़ी ही वियर्ड सी स्मेल थी। एक होती है बू जब आती है, जो वो जिसे हम खुशबू कहते हैं, बारिश के वक्त आती है ना खुशबू, अजीब सी सोंधी सोंधी सी। लेकिन जो अभी आ रही थी वो ऐसी आ रही थी जैसे आप एक थोड़ी सी गीली लकड़ी को अगर जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जो स्मोक उठता है, वो वाली जो स्मेल होती है, वो इन्हें घर के अंदर से आ रही थी। बट दे कुड नॉट फिगर आउट कि ये आ कहां से रही है, पर बहुत ज्यादा तेज थी। जिस भी कमरे में जा रहे थे, दे कुड फील कि यहां पर जैसे कुछ जलाया गया हो, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या है। एंड फिर अब इतना सारा कुछ हो चुका था तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं था। दे वर नॉट कूलिंग डाउन राइट नाउ, क्योंकि क्या करें, कोई सेंस नहीं बन रहा इन सब चीजों का, और नजरों के सामने हो रही है। किसी को बताएंगे तो लोग इन्हें सीधा पागल कह देंगे। आपस में ही लड़ाई होने लगी इन पांचों के बीच, मगर इन पांचों की लड़ाई तब बंद हुई जब ये पांचों इस घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे और दीवारों में से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई स्क्रीच कर रहा, बिल्कुल खींचता हुआ, जैसे लिटरली अगर आप एक लोहे का नकल लें और लोहे पर रगड़ते हुए जाएं, बिल्कुल वैसी आवाजें आ रही थी जैसे दीवार के अंदर से कोई बाहर की तरफ आने को तड़प रहा हो। वैसी आवाजें जब पांचों को एक साथ सुनाई दी तो पांचों की लड़ाई भी खत्म हो गई और जो इनका अभी तक वहम चल रहा था वो भी जैसे दूर हो गया। मगर इसके बाद नींद नहीं आनी थी। अब मदद मांगने की जरूरत थी। ये सब के सब इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते थे, सो दे ट्राई टू रीच, जहां भी जा सकते थे वहां गए। एंड बाय द वे, ये पांचों कोई रिलीजियस बंदे नहीं थे, बट स्टिल ये पहुंचे एक प्रीस्ट के पास। फादर स्टीवन नाम के थे वो, जो इनके घर पे आए। एंड जब वो आए तो उनकी नजरों के सामने उन्होंने किचन का नाइफ मिड एयर जाते हुए देखा, इनकी छाती के बिल्कुल पास से। And he could not believe, क्योंकि वो ये मान के आए थे कि ये पांचों की शक्ल देख के लग रहा है कि आपस में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और ये कोई बड़ा सा elaborate मजाक है, लेकिन he could not understand कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस हर कमरे में जाके कहा कि मैं हर कमरे को ब्लेस कर देता हूं और वहां से वो चले गए। उन्होंने लेटर

ये बताया कि जब वो इस घर में गए थे तो उन्हें कुछ ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ मिलेगा. जब मिला तो उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका करना क्या है. फिर एक और फादर आए, फादर टॉम इंग्लिश. वो चार बार यहाँ पे आके गए. ही वॉज द प्राइमरी विक्टिम एंड ऑल्सो द विटनेस. इस सिंगल स्टोरी घर के अंदर एक पिस्टल रखी हुई थी, इसकी कार्ट्रिज उड़ के इनकी तरफ आई. ही कुड नॉट एक्सप्लेन एंड बिलीव हिज ओन आईज. एंड द मोस्ट वियर्ड पार्ट, जब फादर टॉम इंग्लिश को लगा के ये चीज क्या है एंड ही स्टार्टेड डाउटिंग कि घर के ही किसी आदमी ने करी है, तो उन्होंने चुपके से बिना बताए इन लोगों को पुलिस को भी बुलाया ताकि इनको फ्रॉड घोषित कर सके. पुलिस में मार्क एंड एडम दो नाम के बंदे थे. ये दोनों के दोनों ऑफिसर्स यहां पर आए और उन्होंने फादर से पूछा, फादर क्या है? उन्होंने बताया कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, बार बार हमारे पास आ रहे हैं हेल्प के लिए, पर आई थिंक ये सब कुछ खुद कर रहे हैं. पर जब पुलिस वाला एक अंदर दाखिल हुआ एंड ही ट्राइड टू टॉक टू देम, तो उसके सामने एक मेडिसिन की पूरी बॉटल उड़ के जमीन पर गिरी. एंड जब वो बात कर रहा था, ही कुड अंडरस्टैंड कि कोई अपनी जगह से हिला नहीं है, तो ये हुआ कैसे? मार्क पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वहां से फौरन भागे. ही डिड नॉट स्टैंड इवन फॉर अ मिनट एंड भारा के खड़े हो गए. ही कुड नॉट एक्सप्लेन. वो डाउट करना भी चाहते हैं लोगों भी, बट ही कुड नॉट डू इट. इन अ मंथ और सो, जितने भी ग्लासेस थे, जितने भी कैबिनेट्स थे, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अंदर बर्बाद हो जाएगा इस घर में अगर उन्होंने और रुकने की कोशिश करी. मगर इनके पास चारा भी कोई नहीं था. बस एक रूम जो लग रहा था अभी तक सलामत है, जहाँ पे इनकी बेटी को ये रखते थे, 10 महीने की जैस्मिन, जो अभी ऑलमोस्ट 1 साल की हो चुकी थी, उस पर जब हमले होने लगे, जब उसके आस पास चीज़ें गिरने लगी, तब इनका डर बहुत बढ़ गया. एंड एज आई सेड कि ये लोगों पर है, आप पर है, यू वॉन्ट टू बिलीव, मगर फैक्ट ये है कि ये सब इस कहानी को रच के इनका फायदा कुछ भी नहीं था, सिर्फ नुकसान था. बिकॉज उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं हुआ करते थे. दीज वर वेरी हार्ड वर्किंग ऑजीज, ऑस्ट्रेलियंस थे. एंड वो शुरुआत में जो उनका उन्हें लग रहा था कि फैसिनेशन है, वो अब डर में बदल गया था. बिकॉज एक तो वो सोसाइटी के उस तबके से आते थे जहां पे उनकी कोई वैसे भी नहीं सुनेगा और कोई सुन भी नहीं रहा था. बट देन देयर वर वर्ड्स. कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रह के फिर कुछ अल्फाज थे और कुछ लफ्ज थे जो अलग अलग जगहों पे अपेयर होने लगे. टाइल्स पर, दीवारों पर, छत पर. वर्ड्स लाइक फायर, स्किन, कार, हेल्प, ट्रॉय. एंड द मोस्ट वियर्ड पार्ट इज, ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी बात करते हैं कोई इन्हें सुन रहा हो. बिकॉज ट्रॉय नाम का इन्हीं पांचों का एक दोस्त था जो चंद महीने पहले एक एक्सीडेंट में लिटरली जिंदा जल गया था. मगर देर इज नो चांस कि उसका नाम किसी और को पता हो इन पांचों के अलावा. बट दैट नेम अपेयर्ड इन साइड द हाउस एज इफ किसी ने इनकी बातों को सुना और अब इनके साथ कोई मैनिपुलेशन गेम खेल रहा हो. यहां पर एक टीचर भी आई थी, मतलब इन पांचों में से एक के टीचर थे, वो मिलने के लिए आए थे. बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव कि हो क्या रहा है. मगर जब वो आए एंड ही सॉ एवरीथिंग, ही कोलैप्स्ड एंड उनको लिटरली भर्ती करना पड़ा अस्पताल में. एंड ही डाइड इन 7 डेज. और वो पहले शख्स थे जिन्हें पूरी तरह से इस घर में दाखिल होने के बाद चोट पहुंची. इनफैक्ट उनकी जान चली गई. ये खबर अब ये घर तक कंटेन नहीं रह सकती थी और ये फैली, घर के बाहर तक गई. और आने वाले हफ्तों में मीडिया वाले इन पांचों को तंग करने लगे और लोकल लिचफील्ड टाइम्स का एक अखबार था जो बड़ा ही इंटरेस्टेड था इस केस में, इसको कवर करना चाहता था और वो यहां पर पहुंचा. 27 मार्च एडिटर जेक एडिस अपने 2 रिपोर्टर्स के साथ यहां पर पहुंचे और उन्हें भी आवाजें आ रही थी. बट टीवी वालों का, मीडिया वालों का लालच कुछ और था. दे वॉन्टेड टू गेट इट कवर्ड. वो चाहते थे कि उनके कैमरे में सब कुछ कैद हो जाए.
उन्होंने इसके लिए इन पांचों से कहा कि तुम पांचों के पांचों उस घर को कुछ दिनों के लिए हमें दे दो, हम तुम्हें $2,000 देते हैं। उन्हें लगा ये लोग अगर नौटंकी कर ही रहे हैं तो मान जाएंगे, मगर पांचों ने बावजूद इसके कि उनके पास लिटरली कमी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हमें आपके $2,000 नहीं चाहिए। और फिर मीडिया वालों ने कैमरेज लगाना शुरू किए, चार आदमी और आए, काफी जर्नलिस्ट आए, एक मैक्स नाम का जर्नलिस्ट यहां पर पहुंचा जिसने तो सीधा कह दिया ये सब नकली है, होक्स है, पर उसके सामने ऑब्जेक्ट्स वर फ्लाइंग फ्रॉम हियर देयर। सात कैमरा और पांच लोग इस घर में दाखिल हुए जहां पे ऑलरेडी लोगों के बैठने उठने की जगह नहीं थी, बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जब उस घर में आए थे कवर करने के लिए दे थॉट कि ये पांचों के पांचों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, बट पहली रात से लेकर अगले कुछ दिनों तक इनके साथ वो सब कुछ हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी बॉडीज पर निशान मिलते थे, एक के हाथ में इतना गहरा निशान था कि जैसे किसी ने लिटरली नाइफ लेके कट लगाया हो। एक बंदा जब सो रहा था तो उसके पैरों के पास में उसे नाइफ मिला, लिटरली पड़ा हुआ। एंड दीज थिंग्स वर हैपनिंग एवरी सिंगल डे, मगर ये लोग उसको कैमरे पे कैच करने के लिए लगे हुए थे। इन्हें लग रहा था कि घर वाले ही कर रहे हैं और हम कैमरे में कैच करने की कोशिश करेंगे, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। बेडिंग, मैट्रेसेस, हर रात हर दिन ऐसा लगता था कि किसी ने जलाए हों, एंड उनमें से बदबू भी ऐसी आती थी जैसे आग लगी हो, मगर उसको छूने पे कहीं से कहीं नहीं लगता था कि किसी ने जलाने की कोशिश भी की होगी। ये टीवी वाले फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, ये जब भी कैमरा बंद करते कुछ ना कुछ उनके सामने हो जाता, और अब तो क्लियर दिख रहा था कि पांचों का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर जब ये वीडियो ऑन करते तो कुछ भी नहीं होता। 100 घंटे की फिल्मिंग इन्होंने करी, सिर्फ एक चीज इन्होंने कैप्चर करी जो आप इंटरनेट पे जाके देख भी सकते हैं, उसमें एक बेबी बॉटल जो है वो ऊपर से उड़ के सामने वाले दरवाजे से बुरी तरह टकराई है। और ये जब कैप्चर हुआ कैमरे पे, दिस वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि किसी ने इसे वापस बनाने की कोशिश की, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इतनी ऊंचाई पर रखी हुई चीज और नीचे गिरे और उस स्पीड से गिरे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू डू इट। और ये इनको भी पता था, लेकिन ये घर में मदद करने की नियत से नहीं गए थे, ये उसे कैमरे पे कैप्चर करने की नियत से गए थे। बिफोर दे वर अबाउट टू लीव, इन सब के कैमरा लेंसेज वर ब्रोकन, प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयड, एंड द स्मेल ऑफ प्लास्टिक, नेल्स, ये सब इनको आने लगी थी। फ्रस्ट्रेटेड कैमरामैन और ये शो वाले अब घर वालों पे ही चढ़ने लगे थे कि तुम में से कौन है सामने आओ, मुझे बताओ, तुम सारे के सारे मेंटली अनस्टेबल हो, और उन्हें क्या क्या नहीं कहा। एंड 7 अप्रैल को एक गोस्ट बस्टर यहां पर आए, इन टीवी वालों के जाने के बाद उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग के मेंटेनेंस वाले को बुलाया थर्मल कैमरे के साथ। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, थर्मल कैमरे के बारे में पांचों को जो यहां रह रहे थे उन्हें नहीं बताया गया था। थर्मल कैमरास बेसिकली बता देते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो गिरा हुआ है, अगर किसी ने हाथ लगाया है उस पर, तो जहां पे हाथ लगाया होगा वहां पे हीट वो नजर आ जाएगी। थर्मल कैमरा यूज किए पांचों को बिना बताए, एंड ऑब्जेक्ट्स जो भी इनकी तरफ गिर रहे थे, चाकू था उसमें, नेल्स थे उसमें, ग्लासेस थे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को जब देखा तो सारे के सारे एक जगह से नहीं, पूरी तरह से तपे हुए थे उस थर्मल कैमरा में, एज इफ किसी ने उनकी तरफ इस ऑब्जेक्ट को पहले अवन में रखा, पूरी तरह से पकाया, निकाला और फिर इनकी तरफ फेंका हो। थर्मल कैमरे में ये नजर आ रहा था, और ये फेक करना नामुमकिन था, बिकॉज पहली बात तो इन पांचों को, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, इन्हें पता भी नहीं था कि थर्मल कैमराज ये लोग लेकर आए हैं, एंड थर्मल कैमराज कैसे वर्क करते हैं वो पता होना तो और भी दूर की बात है। दिस एडेड मिस्ट्री, मेंटेनेंस वाला जो पहले सिर्फ इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था, इस किस्से के साथ ही नेवर केम बैक, इनफैक्ट ही लेफ्ट द कंट्री, ही लेफ्ट हिज जॉब। इन पांचों में से एक लड़की थी, इसका नाम था क्रिस्टी, उस पे सब शक कर रहे थे। इनफैक्ट उस बिचारी को इतना परेशान कर दिया था टीवी वालों ने कि उसने एक दफा कॉल पे इनसे बोल दिया कि
तो आप लोग क्या बुलवाना चाहते हैं कि ये सब मैं कर रही हूं? हाँ मैं कर रही हूं, बस प्लीज लीव मी अलोन। उसकी रिकॉर्डिंग काट के टीवी पे चलाया गया, बाकायदा ये भूल गया कि देखो ये लड़की कर रही थी सब कुछ, और क्योंकि ये गरीब थे तो ये पलट के जवाब नहीं दे सकते, लड़ नहीं सकते। जबकि इस केस के 18 विटनेसेस थे, 18 विटनेसेस, आउट ऑफ देम टू वर डॉक्टर्स एंड देयर वाज 7 पुलिसमैन। यहां पर मौजूद हूं बहुत सारी पब्लिक आई, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल स्कॉलर्स ने यहां पर आने का फैसला किया। अप्रैल की 25 तारीख थी, दो लोग यहां पर आए एंड उन्हें भी लग रहा था कि क्रिस्टी नहीं किया है। इन पांचों ने घर से बाहर जाने का फैसला किया और कहीं कहीं चले गए, घर सिर्फ पैरानॉर्मल स्कॉलर्स के भरोसे छोड़ के। मगर ये सो कॉल्ड पैरानॉर्मल स्कॉलर्स वहां पे 20 मिनट से ज्यादा टिके भी नहीं। हुआ ये, जब ये वहां पे रुके थे तो रात का वक्त था और इन्होंने देखा कि सब पांचों जा चुके हैं, लेकिन घर के ठीक सामने ड्राइववे पर दो लोग हैं कोई, जो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हैं, और वो जमीन में खुदाई कर रहे हैं। इन्हें पहले लगा कोई होगा, इन्होंने आवाज दी, कौन है कौन है, और फिर उसके बाद वो काम ली, भागे भी नहीं, बहुत सुकून से वॉक करके वहां से चले गए। इन्होंने देखा कि ग्राउंड जो था वो अभी तक 8 इंच खोदा जा चुका था, पर उसके पीछे कोई रीजन नहीं था। जब ये पांचों वापस आए तो उनके घर के बाहर टंगे हुए जो बल्ब्स थे वो भी जमीन में पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। चाबी घर की जो वो छोड़ के गए थे स्कॉलर्स, सो कॉल्ड मैट्रेस के नीचे, वो तक पड़ी हुई थी। बुरा हाल था घर का, एक दिन सुकून से बिताना मुश्किल था, मगर इन पांचों के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि पांचों ने मिलकर बहुत मुश्किल से वन स्टोरी हाउस लिया था। एंड्रयू जो था पांचों में से, ही वॉज लूजिंग हिज माइंड। उसके पास डॉक्टर को दिखाने का खर्चा भी नहीं था, मगर वो इस कदर ही वॉज लूजिंग हिज माइंड दैट उसे दिखाना पड़ा डॉक्टर को, एंड डॉक्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड कि एंड्रयू के साथ हो क्या रहा है, बिकॉज उसकी जो कॉग्निटिव अबिलिटीज थी वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और ऑलरेडी इन पांचों पे एक्विजिशंस लग चुके थे कि ये पांचों खेल खेल रहे हैं, टीवी वालों ने ऑलरेडी इन्हें बदनाम कर दिया था। मगर टीवी वालों में से एक बंदा जानता था कि कोई भी अगर उनके बीच में 11 महीने का या 1 साल का बच्चा है तो उसे हार्म करने की कोई कोशिश करेगा ही नहीं, और वो भी वो लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। बट क्योंकि बॉस का प्रेशर था तो उसने इन पांचों के खिलाफ ये बना दिया कि पांचों के पांचों नकली हैं। जब उसे पूछा गया बाद में तो उसने बताया कि देयर इज नो रीजन कि कोई फायर, जो आग की स्मेल होती है, वो कैसे रिक्रिएट करेगा, हाउ डू यू फेक इट, और वो भी इस कदर कि पूरे घर में आपको ऐसी स्मेल आए कि कहीं आग लगी और कहीं ना लगी हो। देवर कॉल्ड लायर्स, पांचों को बहुत सोसाइटी ने अलग नजर से देखा, बट दे डिड नॉट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट, उन्हें किससे कोई फायदा नहीं हुआ। 2011 में कुछ लोगों को यकीन होना शुरू हुआ धीरे धीरे, जब इन टीवी रिपोर्टर्स ने सच उगलना शुरू किया कि उनके बॉस के कहने पे, क्योंकि उनके कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई। एंड्री और बाकी सब चुपचाप इस घर में सह रहे थे, क्योंकि कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। इस घर को छोड़ के वो कई रातें बाहर सड़क पे भी रहे 1 साल के बच्चे के साथ। दे वर लिविंग लाइक अ होमलेस पर्सन। और फिर जब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, बिना किसी को बताए बहुत सारा सामान अंदर छोड़ के दे सिंपली लेफ्ट। सबसे अजीब बात जो बिल्कुल लास्ट में डिस्कवर हुई वो ये थी कि जिनका ये घर था, प्रैक्टिकली जिन्होंने ये घर इन पांचों को दिया था, वो खुद इस घर में नहीं रह रहे थे और दो रोड लिटरली छोड़ के रह रहे थे। एक टीन के लेंटर डला हुआ था उस घर में, छोटे से घर में। वो चाहते तो उस घर में रह सकते थे, बट दे नेवर लिव्ड इन दिस हाउस, पर उन्होंने सस्ते अमाउंट पे ये घर दे रखा था। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो दे हैड नो
रीज़न। इनफैक्ट एक आयरिन विंटर्स नाम की एक औरत थी जो इस घर की साफ सफाई करने के लिए आई थी। जब ये केस बहुत बड़ा हो गया तो उसने बताया कि पहले दिन जब वो इस घर की साफ सफाई करने के लिए आई थी तो उसे बहुत ही वेयर्ड कोल्डनेस फील हुई थी इस घर की, एंड शी कुड नॉट एक्सप्लेन। उसने अपने पति को भी बुलाया था यहाँ पे कि तुम कुछ देर बैठ जाओ फिर हम काम करके निकल जाएंगे, लेकिन उसका पति 5 मिनट से ज्यादा अंदर रुक भी नहीं पाया और बाहर भाग गया। ये घर आज भी मौजूद है, आज भी अपनी जगह पर है, एंड आज भी लोग यहाँ पे पता नहीं क्यों जाना चाहते हैं। मेकिन ड्राइव एक जगह है एंड हम्प्टी डू हॉन्टिंग के नाम से ये कहानी आज भी मशहूर है ऑस्ट्रेलिया की। इस घर में क्या है, क्यों है, नोबडी नोस, मगर हम्प्टी डू पोल्टरगाइस के नाम से ये किस्सा आज भी बेहद मशहूर है। और सिर्फ मशहूर सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लोगों ने जो बताया वो मानना ही पड़ेगा आपको, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ पाना बहुत मुश्किल है कि अगर किसी को इतना बड़ा होक्स करना ही है तो वो कुछ कमा ही लेगा ना इससे, रात में निकल के बाहर क्यों रहेगा। बहुत सारी चीजें समझाना मुश्किल है और एक कहानी थोड़ी बिखरी हुई, थोड़ी टूटी सी है, लेकिन ये मशहूर बहुत है, हम्प्टी डू हॉन्टिंग। इस नाम से आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं एंड देर आर मैनी मैनी डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी मैनी विटनेसेस इस केस से जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज केसेज जहाँ पे मूवी भी बनने वाली है इस केस को लेके। माइक फ्लैनिगन नाम के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई भी, एंड ही हैज़ टेकन अप दिस केस, एंड एक मूवी बहुत जल्दी आने वाली है, प्री प्रोडक्शन में है अभी, जो इसी पे बनी हुई है हम्प्टी डू हॉन्टिंग के नाम से। एंड आई बिलीव देर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री इज़ वेल, एंड इस किस्से से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, प्लीज़ गो एंड चेक दैट। ये था आज का किस्सा। आपको कैसे लगा, इसमें क्या क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपकी थ्योरीज हैं, प्लीज़ बताएं, बिकॉज मैंने इसको पूरे खुले दिमाग से पढ़ा है, मैंने इनको पांचों को जज नहीं किया है, मैं खुद बहुत कन्फ्यूज था, मगर ये किस्सा मुझे काफ़ी लेजिट लगा। यू नो, अगर कोई किस्सा मानने वाला होगा तो शायद यही होगा। 666-22107 नंबर है, 666-22107। ये किस्सा अब आपके हवाले है, आपके कोर्ट में है, आपकी अदालत में है, फैसला आपका है। 666-22107 पर ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: Time check. भाई साहब 6:12 कहानी सुना दी है आपको। देखो मैं इस कहानी को और भी ज्यादा इसमें डिटेल्स हैं, मगर वो डिटेल्स कुछ जो आपके लिए जरूरी है वही मैंने बता दी है, बाकी आप खुद जाके इसे पढ़ सकते हैं। यू नो ना थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता है टाइम का, तो मैं इतना भी ज्यादा फैल नहीं सकता जितना मैंने सुनाया आपको, उसके बाद आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं हंटी टू हंटी के नाम से। बाकी आपके मैसेजेस के इंतजार में हूं मैं 6662107। भाई बहुत बढ़िया गाना आया, बहुत बढ़िया गाना, ये सुनो जब तक आपके मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? 6662107 पर कर्मा, ये आपने नहीं सुना होगा, ब्रिटिश शो
3: कर्मा। पहले सोचा क्या करूं मैं, क्या करूं, हर रैपर बन जाता हूं, बनना बहुत ही आसान है।

0: रैप करने वालों के लिए गाना कुर्मा। ऐ क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर, एफएम 107 पे कुछ मैसेजेस हैं, जरा मैं पढ़ देता हूं। कबीर भाई गुड इवनिंग, अप्रिशिएट योर स्टोरी, ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड। एक मैसेज है, हाँ जी क्या है, स्टोरी हमें भेजिएगा। आदमी ने काम बोल दिया इसलिए गुस्सा दिला दिया। अच्छा, ये कहानी सुनी इतनी अच्छी तरह से। एक आदमी ने काम बोला तो गाड़ी से उतर गया। अरे कोई बात नहीं वीर जी, मैं भेजता कहानी। एक मैसेज, कमाल की कहानी कबीर भाई, थैंक यू सो मच। ये फलक भाई का मैसेज है, फिर कह रहे मूवी बताओ हॉरर जिसे देखकर आँख खुली रहे। स्माइल 2 देख ली क्या आपने? इससे शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये बताओ, मुझे साइकोलॉजिकल चाहिए, स्लैशर मूवी चाहिए, कैसी वाली चाहिए? फरहत भाई कह रहे हैं कबीर भाई इंडिया में भी ऐसा होता है, अगर क्या है? अब अगर से घर खाली है तो कम किराए में देते क्यों हैं, हॉन्टेड रहता है। हाँ पता नहीं है, सीन हर जगह ही सिमिलर पैटर्न है। बिलाल भाई लिखते हैं भाई इट्स वेरी हॉरिफाइंग स्टोरी सुन के, क्या इतना ना लगे पर जिन पर हो रहा है वो के, हाँ जिस पर, वही मैंने बोला ना, इसलिए मैंने बोला जिस पर हो रहा है वही रिलेट कर सकता है। एक मैसेज भाई, पूरी स्टोरी सुन नहीं सका, माई गेस हमारे मोहल्ले के बच्चे के जिन होंगे, यू ऑलवेज डू रिमार्केबल जॉब, डोंट माइंड, जस्ट अ लिटिल एडवाइस, प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ ऐड अ लिटिल मोर वेट एंड डिटेल टू हॉरर सीन्स। मैं क्या ना, अगर भाई फिक्शन होती तो मैं डिटेल जरूर डाल देता, लेकिन रियल में इतनी ही डिटेल है बेचारों की ज़िंदगी में, तो इसलिए मिर्च मसाला डाला नहीं मैंने। जितना मिर्च मसाला उनके साथ हुआ उतना ही मैंने जिशान भाई दिखा दिया। सो दे डिड नॉट हैव मच मोर। एक मैसेज है, और वैसे भी अगर मैं जिशान भाई वो करता ना कि हवा चली एक साया खड़ा था तो फिर वो कोई है वो वाला सीन हो जाता। एक मैसेज आया, कुडंट हियर द स्टोरी, नो प्रॉब्लम, मैं भेजूंगा। हीरो भाई थैंक यू सो मच। अमर भाई कह रहे हैं वीकेंड बन गया, थैंक यू वीर जी। जकी भाई कह रहे हैं वेटेड इन द पार्किंग टू फिनिश द स्टोरी, सेंड मी यस्टरडे स्टोरी एज वेल, थैंक यू सो मच। मैसेज किया है हमारे आजम भाई ने, आजम भाई कह रहे हैं भाई मजा आ गया, एक नंबर, क्या बात है भाई। एक बात भूल ही गया, प्लीज एडमिट मी डेज ऑफ द टाइमिंग द स्टोरीज, स्टोरी इज लाइक गूज बम्स, फ्लैशिंग मटेरियल्स, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, अमेजिंग क्या, एंड अमेजिंग सस्पेंसिव, थैंक यू सो मच। सब बच गए भाई कह रहे भाई सब बच गए, संदीप कह रहे हैं एंड सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या पुलिस क्यों भाई मगर, मतलब पुलिस क्यों भाई मगर, मैं समझा नहीं, डिलीट भी कर दिया आपने। जीशान भाई का मैसेज भी पढ़ूंगा, जीशान भाई एक मिनट रुक जाओ, कह रहे हैं कबीर भाई बहुत दिनों बाद हॉरर स्टोरी सुनी, यूसुफ भाई मैसेज किया, जबरदस्त हमेशा की तरह अच्छी थी, वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर हॉरर सस्पेंस, और उस पर आपका एक्सप्लेनेशन। कबीर क्लाइमेक्स अब्रप्टली लगा और वो दो लोग क्या गड्ढा खोद रहे थे, किसी को नहीं पता, अब्रप्ट नहीं है, मैंने एंडिंग की ना उसकी, अभी भी वो घर जो है इट इज़ स्टिल अवेलेबल, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जान पहचान वाले हैं तो उनको भेजिए आप। अभी भी वो घर है, हम्प्टी डू टाउन में है, मैकिन ड्राइव करके एक जगह है, वहाँ पे अभी भी मौजूद है। इट्स अ वेरी फेमस, वेरी फेमस हाउस एंड वन ऑफ दोज प्लेसेस जिनके बारे में ये है कि लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं वहाँ जाके, वीडियो शीडियो बना रहे हैं, लोगों को भी तो चैन नहीं है भाई। इरशाद भाई लिखते हैं प्लीज सेंड मी स्टोरी, हार्ड टू बिलीव सच थिंग्स नाउ डेज बट ट्रूली नाइस स्टोरी। भाई हार्ड टू बिलीव इसलिए होता ना कि हम पे नहीं गुजरती भाई। दुआ करें नाउ साउंड एंड म्यूजिक इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। हाया खुरशी जी का मैसेज है, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। कहना लाइव सुनाने में सारा म्यूजिक मैं ऐड नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए दिक्कत होती है। अभी नेट पर सर्च किया तो ये मिली, क्या मिली एक सेकेंड, हम्प्टी डू इंसिडेंट, हाँ द डिस्टर्बिंग स्टोरी ऑफ हम्प्टी डू इंसिडेंट, ये बिल्कुल सही मिला है आपको। हम्प्टी डू पोल्टरगाइस्ट, यस यही है यूसुफ भाई, ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत बढ़िया स्टोरी, थैंक यू सो मच। पुलिस की भागी भाई क्यों सबको लगता है मजाक, पुलिस को नहीं भाई, क्या है ना कि इन चीज़ों में इंसान एक स्केप्टिकल सोच लेके जाता है ना, प्रैक्टिकल हो जाता है आदमी कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो नहीं मानता ये सब, बट देर आर थिंग्स, अब जब तक नहीं बीतती तो झूठ ही लगता है भाई, वही वाला सीन है। अब देखो मैं भी पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकता ना, मेरे साथ थोड़ी हुआ है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस कहानी में, जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा भाई ये तो काफ़ी बिलीवेबल सी चीज़ है। नुसरत मैंने मैसेज किया है, ये वाकई काबिल यकीन कहानी है, मैंने तो लोगों को भी गैर ज़रूरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन आखिर में वो हिम्मत और सब्र के साथ जिंदा रहे, ये कहानी अच्छी थी, थैंक यू सो मच बहन। यही वाला पार्ट है जो मुझे लगता है कि कहानी को लेजिट बनाता है। नसीम साहब गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, एक वैसे मैंने गुड मॉर्निंग पढ़ लिया आपका। स्टोरी तो काफ़ी कड़क है भाई, कम से कम स्टोरी एंड कर देते हैं, आप सभी सोच रहे हैं कि आखिर हैं अरे एंडी तो करी मैंने कहानी कमाल हो गया. एक मैसेज है, आई गॉट गूज बम्स. आई विल नेवर वांट दैट टू हैपन इन माय लाइफ. माइथोलॉजिकल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आर नॉट द थिंग्स दैट टू जज और फाइंडिंग द क्लू टू बिलीव. वन रिक्वेस्ट ब्रो, नेक्स्ट टाइम यूज बैकग्राउंड म्यूजिक टू मेक स्टोरी मोर अलाइव. आई होप योर प्रेजेंटेशन. भाई मैं लाइव सुना रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं मिक्सिंग जब करूँगा तो मैं बैकग्राउंड में हॉरर इफेक्ट यूज कर सकता हूँ. लाइव में बहुत मुश्किल होता है. पता नहीं आपको. अरे भाई मजाक नहीं है, भागना पड़ता है. है मजाक नहीं है, भागना पड़ता है. वही ना, भागना पड़ता है. याकूब भाई ने मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम याकूब भाई. एंड नेम की सबने मैसेज किया. ओके कबीर, कुछ लोग होते हैं जो यकीन नहीं करेंगे, बट ये हो सकता है. दुनिया में ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं. वही मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने ऊपर ऊपर है. इट्स अप टू यू. आप खुद जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में. तो मेरा तो काम था कि जितने जो मोटी डिटेल्स हैं उसकी मैं आपको बता दूं. बाकी आपके ऊपर आराम से आप देखें. इसके तो बहुत सारे वीडियोस हैं. इट्स अवेलेबल देयर एंड विद डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है. तो आराम से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में. बात रही इफेक्ट्स की, तो क्या है कि लाइव सुनाने में ना वो हर एक आवाज़ लगाना बड़ा मुश्किल होता है. सो आई कीप अ बैकग्राउंड स्कोर ताकि वो कम से कम एक स्कोर रहे साथ में. बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि बिल्कुल खिड़की विड़की हिलने डुलने की आवाज़ें भी लगा दूंगा मैं. बस सब अपना अपना परसेप्टिव है, परस्पेक्टिव है. क्या हो गया मुझे, जल्दी से कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
0: कैसे हैं विलज भाई? बताइए विलज भाई.
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार. तुम्हारी कहानी सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ वो लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं मैं समझ सकता हूँ. हाँ. सुनाने में आप म्यूजिक नहीं डाल सकते हो. हाँ. वो पूरा बॉलीवुड टाइप इफेक्ट नहीं आ रहा. हाँ. एग्री कर लिया मैंने. हाँ. लेकिन तुम्हारी कहानी बहुत बढ़िया थी.
0: थैंक यू.
1: और ये इसके इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है.
0: हाँ.
1: मैंने कभी बहुत बहुत मतलब एक साल के करीब करीब कभी तो देखा है मैंने. नाम याद नहीं था मुझे.
0: हम टी टू के नाम से.
1: और लोगों को एक्चुअली क्या होता है, हॉरर मूवी में ना एंडिंग चाहिए था. अरे ऐसा हो गया, लटक के मुंडी ऐसे मर गया, जीव निकल गई. नहीं ऐसा नहीं होता. असली हॉरर यही था. इसके पीछे म्यूजिक होता तो और भी लगता. बहुत बढ़िया.
0: थैंक यू सो मच विलेज भाई. भाई बहुत
1: हॉरर और ये क्या बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. इस पे एक सीरीज है, रियल सीरीज है, उसको शायद कभी तुमने देखा होगा, वो गौरव तिवारी. उसपे सीरीज आई हुई है. अगर आपको देखना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या होती है, उसमें कोई भी ऐसा म्यूजिक का खतरनाक यूज नहीं किया गया है, तो जाके देखिए. कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे है वो.
0: अरे ठीक है, डन. विमलेश भाई अजान का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह मेरे भाई फिर मैं बात करता हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी. थैंक यू सो मच भाई. बहुत प्यार, बहुत प्यार. तो अभी अजान का वक्त है, इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ देर मुलाकात होगी. जाइएगा नहीं एंड स्टे ट्यून्ड.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मैं जी हवा में हूँ ऑन एयर राइट नाउ एफएम 107 पे दोहा वाला कबीर 974631। गुड इवनिंग। मैं कुछ मैसेजेस पढ़ दूं जल्दी से। एक मैसेज है सुभाष भाई, कह रहे हैं कि आज की कहानी कॉन्जरिंग मूवी से सिमिलर थी, कुछ कुछ इंसिडेंट्स पर मजा आया। भाई आप कोई भी इस कहानी को भाई से अच्छा नरेट नहीं कर सकता। भाई को थैंक यू सो मच, 3 दिल भेज रहे हो भाई, एक शिफ्ट कर लेना। इनके बाद मैसेज है भाई, ड्यूटी की वजह से मिस हो गया, कोई गल नहीं, मैं भेजता भाई कहानी, कोई गल नहीं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एग्री कि साउंड इफेक्ट लगाना मुश्किल होता होगा भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिक्स नहीं है ना, लाइव सुनाने में वो आ नहीं पाता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। बाकी हैप्पी वीकेंड। कुछ और वॉइस नोट्स से मैं पढ़ लेता हूँ। मीनवाइल एक नवा नवा गाना है, नया तो नहीं रहा मगर एफएम 107 पर अभी तक आपने नहीं सुना, तो ये मैं सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, ढाणा न्योली वाला और खिया ढोल साइन कृष्णा दोनों साथ में। बाकी आप ट्रैफिक की अपडेट जरूर दीजिएगा, आई नो अभी जाम में है, तो 666-22-107 एंड ये डांडा भाई का गाना भाई क्या रैप किया है, गजब। आपके गाड़ी के स्पीकरों को फुल फील देता हुआ ये गाना वीकेंड पे 6:33 बूम शाकलाका।

हैप्पी वीकेंड, ऐसा लग रहा बर्थडे विश कर रहा हूँ मैं। कुछ मैसेजेस आए हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि कहानी कल वाली भी, देखो कल वाली की गारंटी नहीं दे सकता मैं, कल वाली तो मैं भेज चुका हूँ लेकिन आज वाली मिल जाएगी आपको, कल वाली नहीं मिली है तो आई विल ट्राई कि मैं हो सकता है आज दोनों कहानी एक साथ भेज दूँ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला, डोंट वरी यू विल गेट इट, कल वाली और आज वाली एक साथ मिला के भेजूंगा, कोई गाल नहीं। वैसे अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं? आई मिस यू इन द मॉर्निंग शो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार है, तो आपकी मोहब्बत है सलमान भाई। भाई आज कुछ दिन हैं इंटरनेशनली मार्क किए गए हैं कैलेंडर में, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कुछ अलग ही किस्म के दिन। तो आज एक दिन मनाया जाता है हग योर कैट डे, बिल्ली को गले लगाएं। तो अगर आपके घर में एक पैट है तो बिल्ली को जरूर विश कर दीजिएगा या बिलौटे को विश कर दीजिएगा हमारी तरफ से, हग योर कैट डे। आज है चीज डे, खाने वाली चीज की बात हो रही है, और इसके बाद है ओल्ड मेड्स डे, फिर है सेफ डे, सुरक्षित रहें, ड्राइव सेफली। इसके अलावा है शॉपिंग कार्ट डे, एंड इसके बाद है वर्ल्ड डे फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत अलग अलग किस्म के दिन है ना, बट आपका जो इजी है मनाना वो है हग योर कैट डे, जिनके पेट से जाके मना लेना भाई, बिलौटे को गले लगा लेना। बढ़िया करे फरद भाई कह रहे हैं भाई दोनों ने मोट डाल दिया भाई, बूम शाका लगाया ना, बढ़िया एकदम बढ़िया रैप किया है, जमा के बीट के साथ एकदम। तौकीर अहमद भट्ट साहब कहते हैं क्या है, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, क्या बाबा को बुलाकर भूत को भगा दें, इंडिया से इंपोर्ट कर लेते हैं। बाय द वे स्टोरी वाज ग्रेट एंड एक्सप्लेन्ड रियली वेल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो संडे की स्टोरी भी तैयार है भाई, संडे को आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बढ़िया वाला मौज करा देंगे आपको, तब भी फिक्र नहीं कोई। कहीं भी आप ट्रैफिक में फंसे तो बताइएगा, बाकी कहानी आपको कैसे लगी, इनके सामने सुनी है तो मैं और भी मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। बिकॉज जो मेन चीज़ें मुझे सुनने को मिली वो ये कि स्टोरी में साउंड इफेक्ट और चाहिए आपको। देखो क्या है कि साउंड इफेक्ट के लिए मैं आपका फीडबैक ले रहा हूँ और पॉजिटिवली टेकन, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि लाइव सुनाने में क्या होता है ना, मैं खिड़की वगैरह की साउंड सारी की सारी लगा नहीं सकता, बाकी जो है बाकी द बैकग्राउंड स्कोर विल बी देयर। जैसे कि ये वाला है ना, किधर गया ये वाला जो साउंड इफेक्ट है, जैसे ये मैं लगा सकता हूँ बैकग्राउंड, राइट, बट टू एड मोर साउंड इफेक्ट्स तो फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा उसके लिए, देन वो मिक्स करके सब कुछ सुनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा तामझाम लग जाता है। एक मैसेज है सर, दो दिन हम क्या करेंगे, अगर दो दिन आपकी छुट्टी है तो हम तो फिर ड्यूटी नहीं कर सकेंगे, क्या होगा फिर? भाजी दो दिन तो फिर वेट करना ही पड़ेगा, फ्राइडे को मुझे आना अलाउड नहीं है, सैटरडे को मेरी छुट्टी है, तो फिर ऐसा है कि दो दिन तो सब्र करना पड़ेगा, पर संडे को बहुत बढ़िया आएगी, बहुत बढ़िया कहानी आएगी, आपको मजे आ जाएंगे सुन के, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बाकी ट्रैफिक का हाल आप बता सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, एंड आप मैसेज भी कर सकते हैं, सॉरी कॉल भी कर सकते हैं 443-44-377 पर, 443-44-377 पर। एक मैसेज और आया

0: वालेकुम कबीर भाई, आप सुबह क्यों नहीं आते? अब चूंकि शाम में आते हैं इसलिए सुबह नहीं आते। एक जो मैसेज आया है, इतना समझना ही होगा भाई, इतना समझना ही होगा भाई। तो साउंड इफेक्ट लाइव शो में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा फोकस नैरेटिव पे ज़्यादा होता है। इसलिए मैं हॉरर स्टोरी ना एक ही दिन सुनाता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर दिन आपको कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए जो बिलीवेबल हो। जैसे कि मिलेश भाई ने भी कहा कि देखो, लोग कह रहे थे कहानी का एंड क्या है। अब ये वो वाली कॉन्जरिंग थोड़ी स्टोरी है कि सब कुछ एंड में ठीक हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। असली जिंदगी में एंडिंग नहीं होती है। एक मैसेज है, टेक केयर ब्रो, अंटिल वी मीट अगेन, एज यू से सब बहुत बहुत जरूरी। आप बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत बहुत जरूरी है। नजरत भाई, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं कबीर भाई, आपकी नरेशन से मुझे लगता है कि आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर आना चाहिए। बिल्कुल, I agree. इतने ताने पड़ चुके हैं तो अब मुझे इस पर काम करना ही पड़ेगा। दिशान भाई ने जो मुझे आवाज़ भेजी थी, माशाल्लाह इतनी स्वीट आवाज़ थी। ये आपकी बिटिया ही हैं, आई थिंक बेटी हैं आपकी, इनका नाम मैं अभी मैं जानता नहीं, अपने वॉइस नोट भेजा है तो मुझे बताइएगा। एंड छोटी सी आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में उन्होंने मुझसे बोला कि कबीर अंकल, आई लव द हॉरर स्टोरी, प्लीज़ ऑनरेट करें। बेटे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज, सब लोग एंड पर तांत्रिक चीज, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब लोगों को एंड क्या चाहिए हॉरर स्टोरी का, और एंड में क्या हुआ पता है, किवाड़ ऐसा उड़ता हुआ गया, उसके बाद घर में आग लग गई। तो एंड नहीं हो सकता ना, एंड मैंने सिंपल बताया इस कहानी का एंड ये कि घर भी अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, हम्टी डू हंटिंग के नाम से आप कहानी खुद सर्च कीजिएगा, लोग वहाँ से निकल चुके हैं, इट इज स्टिल वेकेंट। जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ जा जाके वीडियोस बनाते हैं, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं। मैसेज है, मैंने भी कहा था सर आपको कि क्या आप सोशल मीडिया पर वीडियोस कहानी बनाइए, करेंगे भाई बिल्कुल। आते आते सोशल मीडिया पर, आते आते सोशल मीडिया पर क्या भाई, सब मुझे स्टम्प सुना रहे, सब आना ही पड़ेगा, बहुत गुस्से में लग रहे हैं सबके सब। 666-22-107 नंबर है, एंड आई थिंक एक गाना जो है मैं वो सुनाना चाह रहा था आपको। आज ही हमारी जो पूरा डिपार्टमेंट है गानों का देखती हैं, आशी, उनका आयशा नाम है उसका, हम प्यार से आशी कहते हैं, हमारी बहुत लाडली है वो, तो उससे मैंने गाना डलवा दिया, ये वाला गाना भाई, वीकेंड की वाइब है, बढ़िया वाली वीकेंड की वाइब है, मज़ा आ जाएगा आपको, कुछ अनोखा ही किया है ये बंटाई ने।
1: आ गया मैं, हाँ जल्दी से कर दो।
0: 641 में दुआ वाला कभी रहे फोन से, भाई क्या म्यूजिक है, क्या म्यूजिक है इसका।
1: अगले दोस्त, एक महीना के गायब था, कौन बनाना है, किसको यहाँ चेक करना, बोल ये बोल के पलटे।

वो होता ना, वो हमारे जो देसी डीजे होते हैं बीच में चलता है ना, ऐसे गाने चलेंगे बीच में वो आती है आवाज, डीजे पवन सलाम वालेकुम, मैं डीजे कबीर। बहुत मजेदार मैसेज है, सुभाष भाई कह रहे हैं जिनको कहानी का एंडिंग चाहिए खुद जाके एक्सपीरियंस कर लो, एड्रेस मैं दे देता हूँ। एड्रेस मेरे पास है, मैं किन ड्राइव पे चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आराम से मिल जाएगा आपको, वहां जाके हम टी टू ढूंढ लेना जगह बढ़िया करके, उस घर में रहा करना और पता लग जाएगी एंडिंग क्या होती है। अच्छा नाजिम, मैंने मैसेज किया कल वाली स्टोरी जबरदस्त, थैंक यू सो मच बहन। अच्छा मैं कल वाली और आज वाली दोबारा भेजूंगा क्योंकि कल वाली स्टोरी बहुत सारों को मिली नहीं है, तो प्लीज अगर आपको पहली वाली मिली है तो इग्नोर, कल वाली और आज वाली तो आपको मिल जाएगी, डोंट यू वरी। ओके बाकी रिकमेंडेशंस आज फिर से दी जाएंगी, बहुत सारी सीरीज हैं जिन लोगों ने मिस कर दी है, सपने वर्सेस एवरीवन अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिए, देसी सीरीज है भाई, बहुत बढ़िया है, जो बॉलीवुड से नहीं हो रहा है वो अलग स्टूडियोज जो OTT पे डाल रहे हैं वो कमाल करके दिखा रहे हैं, एंड उनमें से एक सीरीज एक है सपने वर्सेज एवरीवन, और उसके बाद एपेक्स देख सकते हैं आप, ये दोनों देसी सीरीज हैं, प्लीज गो एंड वॉच इट। और आपको कुछ ज्यादा अनोखा, कुछ ज्यादा ही अलग देखना है तो ऑफकोर्स जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि आप फ्रॉम देख सकते हैं अगर आप यू नॉट फॉलोइंग इट, अभी लेटेस्ट सीजन आ चुका है 4 और ज्यादा बड़े वो भी नहीं है एपिसोड, छोटे छोटे हैं तो आप आराम से उनको फॉलो कर सकते हैं। एक मैसेज है आपसे, विनम्र निवेदन है कबीर भाई, बैक टू बैक गाने ना बजाएं, हम आपकी वॉइस सुनने आते हैं। मेरा भाई ये सुभाष भाई आपकी मोहब्बत है भाई, मैं इस मोहब्बत में 4 दिल भेज रहा हूँ आपको भाई, ये लो भाई एक्सेप्ट करो। मित्र सुभाष भाई हैप्पी वीकेंड आपको। एक मैसेज, आज की स्टोरी मिल जाएगी भाई, कोई टेंशन नहीं है। और अभी थिएटर्स में जो मूवीज लगी हुई उनमें से एक मूवी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक हॉरर के फैन हैं आपको एंडिंग चाहिए ना, क्लाइमेक्स मिलेगा आपको थिएटर में जाके, यू कैन वॉच पोजिशन, मैं बता रहा हूँ आपको। इस मूवी का रिव्यू किया था मैंने कुछ आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले, भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा आप क्या देख के उठे हैं। पोजीशन का जो फॉर्मेट है, पोजीशन जो मूवी का प्लॉट है बड़ा सिंपल है, उसमें एक लड़का है, वो एक लड़की को देखता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, और फिर वो सोचता है कि मैं कैसे इसको बताऊं, बता नहीं सकता, काफ़ी इंट्रोवर्ट होता है वो, तो उसे एक तरीका मिलता है एक विश मांगने का, ठीक है, वन विश विलो करके एक चीज़ होती है उसके हाथ में आती है, और वो सोचता है कि इससे मैं विश मांग लेता हूं, तो वो विश मांग लेता है कि ये जो है ये मेरे प्यार में पागल हो जाए, ये वो विश मांग लेता है, और भाई वो हो जाती है फिर प्यार में पागल, और ऐसी हो जाती है कि जिसकी हद नहीं। एन ऑब्सेशन इज अ क्रेजी क्रेजी मूवी, आई थिंक इतने सिंपल आइडिया पे एक बढ़िया पैरानॉर्मल मूवी बनाना ये कभी सोचा नहीं था मैंने, बट दिस इज समथिंग यूनिक। तो अगर आपने पोजीशन नहीं देखी, गो टू थिएटर्स दिस वीकेंड एंड यू कैन एब्सोल्युटली वॉच इट, आपको अच्छी लगेगी। मैसेज है फ्रॉम जबरदस्त है एक नंबर, आखिर क्या होगा, भाई सुभाष भाई को भेजो भाई दिल, हम आपके लिए कुछ, अरे भाई भाई फरद भाई, फरद भाई कैसी बात कर दी भाई, ये देखो अभी आपका जो है ना व्हाट्सएप लहू लुहान कर दूंगा मैं दिल से। भाई फरद भाई उनमें से जब मैसेज नहीं आया था तो मुझे सच में लगता कि फरद भाई का मैसेज क्यों नहीं आया, आई रिमेंबर मॉर्निंग में एक मरतबा फरद भाई का मैसेज नहीं आया था और मैं बात करते करते सोच रहा था, फिर इनके बारे में बात भी करी थी, भाई मैं पीठ पाछे बहुत तारीफ क्या करूँ मैं आपकी, मेरा भाई ठीक है। अच्छा एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैंने भी फ्रॉम देखी देखा है सीरीज पर मुझे समझ में नहीं आई। अब अच्छा मैं ट्रिक बता दूं, फ्रॉम सीरीज को समझने की ट्रिक बताऊं आपको, बहुत टाइम पहले एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था मैन इन येलो, ठीक है, सो मैन इन येलो के बहुत सारे पोर्शंस को लेकर फ्रॉम को बनाया गया। तो अगर आपने वो गलती से किताब नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट में भी वो किताब मौजूद है, सो इफ यू अंडरस्टैंड द बुक, सारे पार्ट्स नहीं है फॉर्म में पर अगर वो बुक समझ में आ गई तो आपको फ्रॉम की स्टोरी समझ में आ जाएगी। बहुत बेसिक कहानी, मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैंने रिवील कर दिया तो फ्रॉम का जो मजा है, जो चटपटापन है, वो खत्म हो जाएगा, सो आई डोंट वांट टू डू दैट, मगर इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच फ्रॉम प्लीज गो एंड वॉच इट। एक मैसेज है, मैं तो एब्सेंट हूँ 3-4 दिन से, सब का शो भी गया, शाम का भी गया हाथ से, आई एम बेयर हैंड बाय द वे। गुलरेज भाई टेंशन मत लो भाई, हमें ना कह रहा है भाई इंट्रो, सलाम भाई इंट्रो है, सलाम भाई इंट्रो क्या भाई वाला प्यार ऐसा ही होता है, आपके लिए हमारे दिल में अलग है भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच फरद भाई। डरा दिया आज आपने, यही तो मकसद था फराज भाई, मकसद हुआ पूरा, इसी के साथ मकसद ये भी पूरा हो गया कि आज का शो भी पूरा हो गया, अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी सीधा कल को, ठीक है, सॉरी
कल मतलब संडे को समझ गए ना, कल मतलब संडे समझ जाया करो, वो आदत है कहने की। तो इंशाल्लाह बीच में वीकेंड है तो सीधा संडे को मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। उस दिन की कहानी भी से तैयार है, आई विश मैं थोड़ा बहुत ही बता सकता लेकिन टीजर देके मामला खराब हो जाएगा, सो आई वुड नॉट स्पॉइल दैट। इस वीकेंड पे कुछ रिकमेंडेशन जो मैंने आपको दिए प्लीज़ जाके देखिएगा, अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो प्लीज़ भेजिएगा, बिकॉज मैं व्हाट्सएप अभी ऑपरेट करने वाला हूँ, आई विल बी सेंडिंग यू स्टोरीज कल और आज वाली, तो ज़रूर ज़रूर। साथ भी आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, वीकेंड को दबा के एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, बट फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप ना बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और फन सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होती हैं। भाई तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज पर, हमारी फेवरेट, मेरी फेवरेट चीज पर, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 पे सेट करना, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। चलिए एक रिलेटेबल सेंसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोहा की गर्मी माशाल्लाह हम सबको पता है, बाहर टेम्परेचर हाई है, आप घर या ऑफिस में एंटर करते हैं, सीधा रिमोट उठाते हैं और एसी को दे धनाधन 18 टेम्परेचर लगा, या जिसके पास 16 डिग्री है वो 16 डिग्री पर सेट कर देगा और फिर 10 मिनट बाद क्या कर रहे होते हैं, खुद ब्लैंकेट ढूंढ रहे होते हैं। ये नहीं कि एसी कम कर दूंगा, ना ना ना ना, एसी को मैं टेम्परेचर 22-24 तक ना लेकर जाऊंगा, 16 पे रखूंगा और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाऊंगा। देखिए ये सिचुएशन ना बहुत फेमिलियर लग रही है कि नहीं, मुझे पता है हर घर में ऐसा होता है। हम सब कम्फर्ट के चक्कर में एसी को अननेसेसरली लो टेम्परेचर पर चला देते।

0: का टेम्परेचर बहुत लो सेट करते हैं ना, तो कंप्रेसर ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है ताकि रूम को उस टेम्परेचर तक ले आए वो। उसका काम है ये। इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 18 और 24 डिग्री के कंफर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो इतना नोटिसेबल नहीं होता जितना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में डिफरेंस होता है। देखिए अब सवाल ये है कि 24 से 26 डिग्री ही क्यों? ये रेंज साइंटिफिकली कंफर्टेबल मानी जाती है इंडोर कूलिंग के लिए, स्पेशली वार्म क्लाइमेट्स जैसे कि कतर में। इस टेम्परेचर पर रूम कूल भी रहता है और एसी पर अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता, यानी कंफर्ट भी और एफिशिएंसी भी। मैं बोल-बोल के थक गई हूँ, मेरे को ये बात मानता नहीं है। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो मैं बात बता रही हूँ 24 से 26 के बीच की, ये इको स्विच कैसे करता है। देखिए सबसे पहला फायदा ये है कि एनर्जी सेव करता है। सीधी सी बात है, हर एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से एसी की एनर्जी कंजम्पशन रफली 3-5% तक कम हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आप 20 से 25 पर शिफ्ट करते हैं तो आप सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रिड्यूस होगा। कतर जैसी जगह पर जहां एसी ऑलमोस्ट साल भर यूज होता है, एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है। तीसरा फायदा है एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट इंपैक्ट क्यों भूल जाते हो? देखें कम एनर्जी यूज का मतलब है कम फ्यूल कंजम्पशन एट पावर प्लांट्स और कम कार्बन इमिशंस। चौथा फायदा है एसी की लाइफ भी तो अच्छी रहती है ना। जब एसी कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रन नहीं करता तो उसकी एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बेटर होते हैं। अच्छा होता ये कि अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना आपको, ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को ठंड लग रही होती है, कोई स्वेटर पहन लेता है मेरी तरह, और कोई सीक्रेटली टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है सर्वर भाई की तरह, और फिर एक साइलेंट टेम्परेचर वॉर चलती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है एक बैलेंस्ड टेम्परेचर, 24 या 25 का टेम्परेचर जहां सब कंफर्टेबल रह सके। देखिए अगर घर का एग्जांपल भी लेना तो भाई, अगर आप रात को एसी 18 पर चलाकर सोते हैं ना, तो आधी रात को या तो आप उठकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर ब्लैंकेट यूज करते हैं, यानी आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कूलिंग जनरेट कर रहे हैं। फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं। अगर आप स्टार्ट से ही 25 या 26 पर टेम्परेचर एसी का रखें तो रूम नेचुरली कंफर्टेबल ही रहेगा। तो भाई करना ये है, अगर आपको टिप्स दूं तो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करें। अगर आप 18 या 20 के आदि हैं तो सीधा 25 पर ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिग्री करके इंक्रीज करें। फैन यूज करें ना, सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैंस जो होते हैं उनको यूज कर लें, एयर सर्कुलेशन बेटर होती है उससे और आपको ज्यादा कूलिंग भी फील होती है विदाउट लोअरिंग द टेम्परेचर। तीसरी चीज है कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स यूज करें, काम के हैं ये, सिर्फ सजावट के नहीं है। दिन के वक्त डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, रूम को नेचुरली ठंडा रखने के लिए यूज करें। एसी सर्विसिंग रेगुलर करें। देखें क्लीन फिल्टर्स और प्रॉपर मेंटेनेंस एसी को एफिशिएंटली काम करने में मदद देते हैं। पांचवा टिप ये है कि टाइमर या स्लीप मोड यूज करें ना, ऐसी तो रिमोट में वो अवेलेबल नहीं है, किसी काम का है। रात को टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जो एनर्जी सेविंग को भी हेल्प करता है। तो भाई साथियों आज का चैलेंज ये है कि आज रात से अपना एसी टेम्परेचर चेक करें, अगर वो 20 से नीचे है तो उसे थोड़ा इंक्रीज करें और एक हफ्ते तक इस हैबिट को फॉलो करें। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता लेकिन आपका एनर्जी यूज बेटर हो जाता है। तो साथियों स्मार्ट लिविंग का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता बल्कि बैलेंस्ड कंफर्ट होता है, जहां हम अपनी नीड्स को भी पूरा करें और रिसोर्सेज का भी ख्याल रखें। एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करना एक छोटी सी सेटिंग है लेकिन इसका इम्पैक्ट, बाबू इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
1: One Step to 2030.
0: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि why clear national goals create lasting prosperity. देखिए, clear national goals मुल्क के लिए एक रोड मैप की तरह होते हैं. जब ये मालूम हो कि कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो डेवलपमेंट रैंडम या फिर टेम्परेरी नहीं रहते, बल्कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म होते हैं. जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 क्लियर टारगेट सेट करता है. स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हेल्दी सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और. तो अगर गोल क्लियर है, मान लीजिए कोई भी गोल आपने सेट किया वो क्लियर है, और जैसे कतर ने एक गोल सेट किया और वो काफ़ी क्लियर है कि इकोनॉमी ऑयल पर कम डिपेंड करेगी, तो पॉलिसीज, एजुकेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और करने के प्लान्स भी हैं. कतर में रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनोवेशन हब इसी क्लियर गोल की मिसाल है. देखिए, क्लियर गोल्स की वजह से पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं. इस तरह की प्लानिंग मुल्क को शॉक से बचाती है, जैसे ऑयल प्राइसेस गिरने पर भी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी. इसीलिए क्लियर नेशनल गोल्स लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी पैदा करते हैं, जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे. तो अब आप तो

एक क्लियर गोल्स का होना और किस तरह से क्लियर गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं. बस जाते जाते एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पैदा होती है जब तरक्की सिर्फ पैसे तक महदूद ना हो बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाए. कतर का नेशनल विजन 2030 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्स क्लियर हैं और हम सबका मुस्तकबिल जो है वो स्टेबल और महफूज बन सके. इस डायरेक्शन में कतर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, जरा सोचिए, एक जुमला है बिस्मिल्लाह। इस जुमले को कहने में शायद एक या दो सेकंड लगते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहने में भी सिर्फ चंद लम्हे, यानी पूरी सुन्नत अदा करने में शायद तीन या चार सेकंड ही लगते होंगे। इतना मुख्तसर अमल, लेकिन इसकी बरकत भी बहुत बड़ी है। आज हमारी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, हम घर में दाखिल होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है, जहन में कुछ काम होते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम खामोशी से घर में दाखिल हो जाते हैं, ना अल्लाह का नाम, ना सलाम, ना घर वालों से मोहब्बत भरा कलाम। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निहायत खूबसूरत तरीका सिखाया कि जब घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम लो और सलाम करो। सामने किराम, यह अमल पूरे घर के माहौल को बदल देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, आज न तुम्हारे लिए यहाँ रहने की जगह है और न खाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल हो तो शैतान कहता है, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम न ले तो शैतान कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी। सामने किराम, जरा सोच कर देखिए, हम कितने बार अपने घरों में बेसुकूनी, गुस्सा, झगड़े या अजीब बेबरकती महसूस करते हैं, और कभी कभी हम बड़े बड़े असबाब तलाश करते हैं, हालांकि बरकत का दरवाजा तो उन छोटी सुन्नतों में छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहना गोया ये ऐलान है कि ए अल्लाह, ये घर तेरे नाम से आबाद है। अस्सलामु अलैकुम कहना गोया घर वालों के लिए दुआ है कि तुम पर सलामती हो, रहमत हो, सुकून हो। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

आप खुद महसूस करेंगे कि दिन कितना पीसफुल गुजरता है। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बरागा FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदूस, नाम ही काफी है। हसन अल हैदूस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अलसद यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम को ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अलसद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफी दिलाने में मदद की। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूं, यानी कतर

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. दिल से देसी.
3: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज़ और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 आवर या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज़।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी। This

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदूस, नाम ही काफी है। हसन अल हैदूस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अल सद्द यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम

सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अलसद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफी दिलाने में मदद की। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूँ यानी कतर स्टार्स लीग के बारे में, बल्कि बाहर के जो AFC चैंपियंस लीग मैचेस होते हैं, AFC चैंपियंस लीग के विनर भी रहे, और इसके साथ साथ कई ऐसे एमएफ कप टाइटल्स भी उन्होंने हासिल किए विद अलसद क्लब। और बहुत लॉयल फुटबॉलर रहे हैं एंड कोई क्लब चेंज नहीं किया इस दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि क्लब चेंज कर लेते हैं फुटबॉलर्स, लेकिन हसन अल हैदूस हैज बीन अ परमानेंट फिक्स्चर ऑफ अलसद फुटबॉल क्लब सिंस द टाइम ही स्टार्टेड विद द अलसद फुटबॉल एकेडमी। नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर हसन अल हैदोस ने कतर को 2019 AFC एशियन कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली दफ़ा था जब कतर ने एशिया कप का टाइटल जीता, और ये कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। टूर्नामेंट में उनकी लीडरशिप और अटैकिंग फुटबॉल ने पूरी एशिया में कतर का नाम रोशन किया। और इसके बाद 3 साल के बाद 2019 के बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी कतर की कप्तानी की, जो अरब दुनिया का पहला वर्ल्ड कप था। मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर कतर, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर हसन अल हैदोस। और ये भी बता दूं कि कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे सक्सेसफुल और नंबर ऑफ मैचेस खेलने वाले अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं हसन अल हैदोस, सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले फॉर कतर। हसन अपनी स्पीड, पासिंग और गेम कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन नए फुटबॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है, और कतर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल कतर नेशनल टीम से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुलाया गया, वापस बुलाया गया, क्योंकि कतर टीम नीडेड हसन अल हैदोस। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जहाँ कतर विल ओपन द कैंपेन ऑन 13 जून इन USA, मेक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। एंड कतर का पहला गेम है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में, सो हो सकता है कि इस मैच में हम हसन अल हैदोस को दोबारा हम देखें, एंड दोबारा सक्सेसफुली वी कैन सी द कतर नेशनल टीम। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हसन अल हैदोस कतर की कप्तानी करेगा, और इसके साथ साथ 13 जून को जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, उसमें ही विल लीड विद अप्लॉम्ब। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज़ और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 घंटा या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज़।

वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और फन सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच, जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होती हैं। भाई तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज पर, हमारी फेवरेट, मेरी फेवरेट चीज पर, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 पे सेट करना, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। चलिए एक रिलेटेबल सेंसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोहा की गर्मी माशाल्लाह हम सबको पता है, बाहर टेम्परेचर हाई है, आप घर या ऑफिस में एंटर करते हैं, सीधा रिमोट उठाते हैं और एसी को दे धनाधन 18 टेम्परेचर लगाया, या जिसके पास 16 डिग्री है वो 16 डिग्री पर सेट कर देगा और फिर 10 मिनट बाद क्या कर रहे होते हैं, खुद ब्लैंकेट ढूंढ रहे होते हैं। ये नहीं कि एसी कम कर दूंगा, ना, एसी को मैं टेम्परेचर 22-24 तक ना लेकर जाऊंगा, 16 पे रखूंगा और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाऊंगा। देखिए ये सिचुएशन ना बहुत फेमिलियर लग रही है कि नहीं, मुझे पता है हर घर में ऐसा होता है। हम सब कम्फर्ट के चक्कर में एसी को अननेसेसरली लो टेम्परेचर पर चला देते हैं बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब थोड़ा सेंसिबल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एसी का टेम्परेचर बहुत लो सेट करते हैं ना, तो कंप्रेसर ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है ताकि रूम को उस टेम्परेचर तक ले आए, वो उसका काम है ये। इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 18 और 24 डिग्री के कंफर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो इतना नोटिसेबल नहीं होता जितना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में डिफरेंस होता है। देखिए अब सवाल ये है कि 24 से 26 डिग्री ही क्यों, ये रेंज साइंटिफिकली कंफर्टेबल मानी जाती है इंडोर कूलिंग के लिए, स्पेशली वार्म क्लाइमेट्स जैसे कि कतर में। इस टेम्परेचर पर रूम कूल भी रहता है और एसी पर अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता, यानी कंफर्ट भी और एफिशिएंसी भी। मैं बोल के थक गई हूँ, मेरे को ये बात मानता नहीं है। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो मैं बात बता रही हूँ 24 से 26 के बीच की, ये इको स्विच कैसे

एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है. तीसरा फायदा है एनवायरमेंट. भाई एनवायरमेंट इंपैक्ट क्यों भूल जाते हो? देखें, कम एनर्जी यूज का मतलब है कम फ्यूल कंजम्पशन एट पावर प्लांट्स और कम कार्बन इमिशंस. चौथा फायदा है एसी की लाइफ भी तो अच्छी रहती है ना. जब एसी कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रन नहीं करता तो उसकी एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बेटर होते हैं. अच्छा, होता ये कि अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना आपको, ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को ठंड लग रही होती है, कोई स्वेटर पहन लेता है मेरी तरह, और कोई सीक्रेटली टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है सर्वर भाई की तरह, और फिर एक साइलेंट टेम्परेचर वॉर चलती है. इसका सिंपल सॉल्यूशन है एक बैलेंस्ड टेम्परेचर, 24 या 25 का टेम्परेचर, जहां सब कंफर्टेबल रह सके. देखिए, अगर घर का एग्जांपल भी लेना तो भाई, अगर आप रात को एसी 18 पर चलाकर सोते हैं ना, तो आधी रात को या तो आप उठकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर ब्लैंकेट यूज करते हैं, यानी आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कूलिंग जनरेट कर रहे हैं. फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं. अगर आप स्टार्ट से ही 25 या 26 पर टेम्परेचर एसी का रखें तो रूम नेचुरली कंफर्टेबल ही रहेगा. तो भाई, करना ये है, अगर आपको टिप्स दूं तो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करें. अगर आप 18 या 20 के आदि हैं तो सीधा 25 पर ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिग्री करके इंक्रीज करें. फैन यूज करें ना, सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैंस जो होते हैं उनको यूज कर लें. एयर सर्कुलेशन बेटर होती है उससे और आपको ज्यादा कूलिंग भी फील होती है विदाउट लोअरिंग द टेम्परेचर. तीसरी चीज है कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स यूज करें. काम के हैं ये, सिर्फ सजावट के नहीं है. दिन के वक्त डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, रूम को नेचुरली ठंडा रखने के लिए यूज करें. एसी सर्विसिंग रेगुलर करें. देखें, क्लीन फिल्टर्स और प्रॉपर मेंटेनेंस एसी को एफिशिएंटली काम करने में मदद देते हैं. पांचवा टिप ये है कि टाइमर या स्लीप मोड यूज करें ना. ऐसी तो रिमोट में वो अवेलेबल नहीं है, किसी काम का है. रात को टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जो एनर्जी सेविंग को भी हेल्प करता है. तो भाई साथियों, आज का चैलेंज ये है कि आज रात से अपना एसी टेम्परेचर चेक करें. अगर वो 20 से नीचे है तो उसे थोड़ा इंक्रीज करें और एक हफ्ते तक इस हैबिट को फॉलो करें. आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन आपका एनर्जी यूज बेटर हो जाता है. तो साथियों, स्मार्ट लिविंग का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता बल्कि बैलेंस्ड कंफर्ट होता है, जहां हम अपनी नीड्स को भी पूरा करें और रिसोर्सेज का भी ख्याल रखें. एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करना एक छोटी सी सेटिंग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, बाबू इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. तो भाई, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर. मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर. मैं हूं आरजे मावश और आज हम बात करेंगे सुबह की दुआओं के बारे में. दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के नाम से और उसकी फजीलत के साथ हो तो पूरा दिन बरकतों और खुशियों भरा गुजरता है. सुबह के अज़कार और दुआएं हमें हर तरह की बुराइयों, परेशानियों, हसद और नुकसान से महफूज रखती हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है. ये सिर्फ 4 से 5 मिनट लेते हैं लेकिन पूरे दिन की हिफाजत और बरकत का जरिया बन जाते हैं. आजकल की बिजी रूटीन में हम अक्सर ये छोटी सी आदत छोड़ देते हैं जबकि यह हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है. रोज़ सुबह उठकर थोड़ा वक्त निकालकर सुबह की दुआएं और अज़कार ज़रूर पढ़ा करें. आप खुद महसूस करेंगे कि दिन कितना पीसफुल गुजरता है. ये था हमारा आज का पैगाम. आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर. मैं हूँ आरजे माविश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.

0: One step to 2030.
1: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
0: One Step to 2030.
1: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि why clear national goals create lasting prosperity. देखिए clear national goals मुल्क के लिए एक रोड मैप की तरह होते हैं. जब ये मालूम हो कि कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना है तो डेवलपमेंट रैंडम या फिर टेम्परेरी नहीं रहते बल्कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म होते हैं. जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 क्लियर टारगेट सेट करता है. स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हेल्दी सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और. तो अगर गोल क्लियर है, मान लीजिए कोई भी गोल आपने सेट किया वो क्लियर है, और जैसे कतर ने एक गोल सेट किया और वो काफ़ी क्लियर है कि इकोनॉमी ऑयल पर कम डिपेंड करेगी, तो पॉलिसीज, एजुकेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और करने के प्लान्स भी हैं. कतर में रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनोवेशन हब इसी क्लियर गोल की मिसाल है. देखिए क्लियर गोल्स की वजह से पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं. इस तरह की प्लानिंग मुल्क को शॉक से बचाती है, जैसे ऑयल प्राइसेस गिरने पर भी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी. इसीलिए क्लियर नेशनल गोल्स लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी पैदा करते हैं, जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे. तो अब आप तो समझे कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक क्लियर गोल्स का होना और किस तरह से क्लियर गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं. बस जाते जाते एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पैदा होती है जब तरक्की सिर्फ पैसे तक महदूद ना हो बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाए. कतर का नेशनल विजन 2030 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्स क्लियर हैं और हम सबका मुस्तकबिल जो है वो स्टेबल और महफूज बन सके, इस डायरेक्शन में कतर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
0: One step to 2030.
2: घर बैठे बैठे पैसे आ जाएं, कितनी अच्छी बात है ना. दिल खुश हो जाए, कोई काम ही ना करना पड़े ज्यादा, घर का काम भी हो जाए और जो छोटा मोटा काम है वर्क फ्रॉम होम से वो हो जाए और फिर पैसे भी आ जाए, ये कितना अच्छा है. लेकिन ये आपके साथ स्कैम भी हो सकता है. चलिए इस स्कैम के बारे में बात करते हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे. स्कैम अलर्ट, द डेंजर ऑफ द वन मंथ सैलरी, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड. ये क्या है? वी आर गोइंग टू टैकल अ स्कैम जो कि आजकल चल रहा है और रिसेंट मंथ में, रिसेंटली ये बहुत ज्यादा तेजी से लोगों के बीच आ रहा है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं. इस स्कीम में आपके पास एक कॉल आती है और कहा जाता है कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको हम जॉब देंगे, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अच्छी खासी सैलरी भी आपको दी जाएगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको काम के बारे में फिर बताया जाता है. क्योंकि आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर का काम भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे. लेकिन यही सबसे बड़ा खेल है, जहां आपके पास कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और वो पैसे अच्छे खासे अमाउंट होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 3 घंटा काम करना है, 6,000 रियाल मिलेंगे. ये एक सस्पिशियस कॉल होनी चाहिए आपके लिए, ये एक डेंजर स्कैम हो सकता है और अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो आपको एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, इमोशनली ड्रेन्ड हो जाएंगे आप. लेट मी टेल यू कि ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ चैलेंज है कि इसे किस तरह से सिक्योरिटी के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इसे कम किया जा सकता है. ये गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है. तो इस स्कैम में आपको एक जॉब मिलती है जहां पर आपको स्पेसिफिक काम करना होता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन महीने के एंड में जो आपको पैसे मिलते हैं, जितना आपको कहा जाता है, पैसे उतने नहीं लेकिन कम मिलते हैं. आपको लगता है इट्स ओके, अगर वर्क फ्रॉम होम में मैंने काम 3,000 का किया है या 6,000 का किया और 3,000 मेरे पास आ रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान है, अच्छी बात है ना, कुछ तो पैसे आ रहे हैं. लेकिन ये एक बहुत बड़े फ्रॉड की

निशानी है। यहाँ पर जो आप काम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में लेजिटिमेट होता है, वो एक्चुअल में काम होता है जिसे आप करते हैं और फिर महीने के आखिर में आपको सैलरी मिलती है। अगेन आप दूसरे महीने करते हैं, फिर हो जाता है कि अरे वो कंपनी में थोड़ा सा लॉस चल रहा है, ये सैलरी आपकी अगले महीने एक साथ आएगी। आपको लगता है इट्स ओके, 3000 रियाल आ चुकी है, इस महीने कर देते हैं, अगले महीने एक साथ डबल मिलेगी। फिर आप और काम करते हैं, लेकिन सैलरी नहीं आती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी के लिए सच में काम कर रहे हैं। वैसे स्कैमर्स आजकल बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह से आपको ट्रिक करना है। क्योंकि जब आपके पास ऑफर लेटर आया ईमेल पे, आपने ईमेल देखा, उस पे मोहर देखी, स्टैम्प देखा, सिग्नेचर देखी, आपने वेबसाइट भी देखी, आपको लगा ये सही है। लेकिन स्कैमर्स यही तो खेल रहे हैं। स्कैमर्स को पता है कि आप आजकल थोड़े से दिमागदार हो गए, तो वो वेबसाइट भी सही बनाते हैं। आप उस वेबसाइट के थ्रू कॉल करते हैं, आपकी कॉल उठाई जाती है, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, ईमेल्स के भी जवाब दिए जाते हैं। लेकिन पहले महीने की सैलरी के बाद लगातार आपको 5-6 महीना या 7 महीना काम करवाया जाता है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, आप बात करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी मेहनत के पैसे चाहिए, क्योंकि आपने एक्चुअल में काम किया है। लेकिन यहां पर होता है सबसे बड़ा नुकसान, आपका सारा काम पानी में हो जाता है, पानी में मिल जाता है, आपकी मेहनत चली जाती है। आपने बेहद काम करने के बाद 6 महीने के बाद आपको 1 रुपए भी नहीं मिलता, और अब जब आप ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे, आपके ईमेल और कॉल का कोई जवाब नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे कि एड्रेस पे जाएंगे, लेकिन वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने एक्चुअल में तो काम किया है, ऑनलाइन काम किया है, सही में किसी की मदद करी है, सही में किसी ने इनकम कमाई है आपकी मेहनत से, बट आपको उसका हर्जाना, आपको उसकी कमाई नहीं मिलेगी, उस मेहनत की कमाई नहीं मिलेगी। इसलिए ऑथेंटिसिटी, इस तरह के जॉब की चेक करना बेहद जरूरी है। वेबसाइट चेक करना और वो लेजिटिमेट है या नहीं, ये भी चेक करना बेहद जरूरी है। कॉल और कंफर्म योर ऑफर लेटर कि क्या ये बिल्कुल सही है, अब ये आपको दिमाग लगाना होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, उनका ऑफिस देखने की कोशिश करिए। ऑफिस अगर है, उस जगह अवेलेबल है, तो फिर आपके लिए कुछ इजी है कि कुछ तो है आपके हाथ में कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आप उस जगह ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिस भी नहीं है तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, आपको रुकना है, यही रुकना है, हो सकता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो। इसी तरह के स्कैम के बारे में मैं यानी कि फजील हर वक्त आपसे बात करता रहूंगा और आपको वक्त वक्त पे बताता रहूंगा कि किस तरह के बड़े स्कैम मार्केट में चल रहे हैं, और आप अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को इस तरह के स्कैम से सेव कर सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग फिट होंगे और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में जहां हम कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हसन अल हैदूस, नाम ही काफी है। हसन अल हैदूस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अजीम और कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल और कंसिस्टेंसी की वजह से कतर नेशनल टीम को कई यादगार कामयाबियां दिलाई हैं। थोड़ा सा उनके अगर बचपन की बात करूं, यानी अर्ली करियर के बारे में बात करूं, तो ये पता चलता है कि फुटबॉल करियर का आगाज उन्होंने अलसद यूथ एकेडमी से किया था और आगे जाकर उन्होंने सीनियर टीम

0: को ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट किया बल्कि कप्तानी भी करके अल सद क्लब को कई ऐसे ट्रॉफीज दिलाने में मदद की, और ना सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स की बात करूँ यानी कतर स्टार्स लीग के बारे में, बल्कि बाहर के जो AFC चैंपियंस लीग मैचेस होते हैं, AFC चैंपियंस लीग के विनर भी रहे, और इसके साथ साथ कई ऐसे एमएफ कप टाइटल्स भी उन्होंने हासिल की विथ असद क्लब। अब बहुत लॉयल फुटबॉलर रहे हैं एंड कोई क्लब चेंज नहीं किया इस दौरान। अक्सर हम देखते हैं कि क्लब चेंज कर लेते हैं फुटबॉलर्स, लेकिन हसन अल हैदूस हैज बीन अ परमानेंट फिक्स्चर ऑफ असद फुटबॉल क्लब सिंस द टाइम ही स्टार्टेड विद द असद फुटबॉल एकेडमी। नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर हसन अल हैदोस ने कतर को 2019 AFC एशियन कप जीतने में अहम किरदार अदा किया। ये पहली दफ़ा था जब कतर ने एशिया कप का टाइटल जीता, और ये कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। टूर्नामेंट में उनकी लीडरशिप और अटैकिंग फुटबॉल ने पूरी एशिया में कतर का नाम रोशन किया, और इसके बाद 3 साल के बाद 2019 के बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी कतर की कप्तानी की, जो अरब दुनिया का पहला वर्ल्ड कप था। मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर कतर, मेमोरेबल वर्ल्ड कप फॉर हसन अल हैदोस। और ये भी बता दूं कि कतर फुटबॉल की तारीख का सबसे सक्सेसफुल और नंबर ऑफ मैचेस खेलने वाले अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं हसन अल हैदोस, सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले फॉर कतर। हसन अपनी स्पीड, पासिंग और गेम कंट्रोल के लिए मशहूर हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन नए फुटबॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन है, और कतर स्पोर्ट्स हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल कतर नेशनल टीम से रिटायरमेंट के बाद उन्हें बुलाया गया, वापस बुलाया गया, क्योंकि कतर टीम नीडेड हसन अल हैदोस। तो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जहाँ कतर विल ओपन द कैंपेन ऑन 13 जून इन USA, मेक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों मुल्कों में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, एंड कतर का पहला गेम है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में। सो हो सकता है कि इस मैच में हम हसन अल हैदोस को दोबारा हम देखें, एंड दोबारा सक्सेसफुली वी कैन सी द कतर नेशनल टीम। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हसन अल हैदोस कतर की कप्तानी करेगा, और इसके साथ साथ 13 जून को जो मैच होने जा रहा है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, उसमें ही विल लीड विद अप्लॉम। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाईसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 घंटा या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह
4: हाफिज़।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और फन सा सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। जहां हम बात करते हैं छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होती हैं भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज पर, हमारी फेवरेट, मेरी फेवरेट चीज पर, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 पे सेट करना, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। चलिए एक रिलेटेबल सेंसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोहा की गर्मी माशाल्लाह हम सबको पता है, बाहर टेम्परेचर हाई है, आप घर या ऑफिस में एंटर करते हैं, सीधा रिमोट उठाते हैं और एसी को दे धनाधन 18 टेम्परेचर लगा, या जिसके पास 16 डिग्री है वो 16 डिग्री पर सेट कर देगा। और फिर 10 मिनट बाद क्या कर रहे होते हैं, खुद ब्लैंकेट ढूंढ रहे होते हैं, ये नहीं कि एसी कम कर दूंगा, ना, एसी को मैं टेम्परेचर 22-24 तक ना लेकर जाऊंगा, 16 पे रखूंगा और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाऊंगा। देखिए ये सिचुएशन ना बहुत फेमिलियर लग रही है कि नहीं, मुझे पता है हर घर में ऐसा होता है। हम सब कंफर्ट के चक्कर में एसी को अननेसेसरली लो टेम्परेचर पर चला देते हैं बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब थोड़ा सेंसिबल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एसी का टेम्परेचर बहुत लो सेट करते हैं ना, तो कंप्रेसर ज्यादा देर तक और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है ताकि रूम को उस टेम्परेचर तक ले आए, वो उसका काम है ये। इसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 18 और 24 डिग्री के कंफर्ट में जो डिफरेंस है ना, वो इतना नोटिसेबल नहीं होता जितना इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में डिफरेंस होता है। देखिए अब सवाल ये है कि 24 से 26 डिग्री ही क्यों, ये रेंज साइंटिफिकली कंफर्टेबल मानी जाती है इंडोर कूलिंग के लिए, स्पेशली वार्म क्लाइमेट्स जैसे कि कतर में। इस टेम्परेचर पर रूम कूल भी रहता है और एसी पर अननेसेसरी लोड भी नहीं पड़ता, यानी कंफर्ट भी और एफिशिएंसी भी। मैं बोल के थक गई हूँ, मेरे को ये बात मानता नहीं है। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो मैं बात बता रही हूँ 24 से 26 के बीच की, ये इको स्विच कैसे करता है। देखिए सबसे पहला फायदा ये है कि एनर्जी सेव करता है, सीधी सी बात है, हर एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से एसी की एनर्जी कंजम्पशन रफली 3-5% तक कम हो सकती है। जरा सोचिए अगर आप 20 से 25 पर शिफ्ट करते हैं तो आप सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रिड्यूस होगा। कतर जैसी जगह पर जहां एसी ऑलमोस्ट साल भर यूज होता है, एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है। तीसरा फायदा है एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट इंपैक्ट क्यों भूल जाते हो। देखें कम एनर्जी यूज का मतलब है कम फ्यूल कंजम्पशन एट पावर प्लांट्स और कम कार्बन इमिशंस। चौथा फायदा है एसी की लाइफ भी तो अच्छी रहती है ना, जब एसी कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रन नहीं करता तो उसकी एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बेटर होते हैं। अच्छा होता ये कि अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल दूं ना आपको, ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को ठंड लग रही होती है, कोई स्वेटर पहन लेता है मेरी तरह, और कोई सीक्रेटली टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है सर्वर भाई की तरह, और फिर एक साइलेंट टेम्परेचर वॉर चलती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है एक बैलेंस्ड टेम्परेचर, 24 या 25 का टेम्परेचर जहां सब कंफर्टेबल रह सके। देखिए अगर घर का एग्जांपल भी लेना तो भाई अगर आप रात को एसी 18 पर चलाकर सोते हैं ना, तो आधी रात को या तो आप उठकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर ब्लैंकेट यूज करते हैं, यानी आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा कूलिंग जनरेट कर रहे हैं, फिर उसे बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें भी यूज करनी पड़ती हैं। अगर आप स्टार्ट से ही 25 या 26 पर टेम्परेचर एसी का रखें तो रूम नेचुरली कंफर्टेबल ही रहेगा। तो भाई करना ये है, अगर आपको टिप्स दूं तो ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करें। अगर आप 18 या 20 के आदि हैं तो सीधा 25 पर ना जाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक डिग्री करके इंक्रीज करें। फैन यूज करें ना, सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैंस जो होते हैं उनको यूज कर लें, एयर सर्कुलेशन बेटर होती है उससे और आपको ज्यादा कूलिंग भी फील होती है विदाउट लोअरिंग द टेम्परेचर। तीसरी चीज है कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स यूज करें, काम के हैं ये, सिर्फ सजावट के नहीं है, दिन के वक्त डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए, रूम को नेचुरली ठंडा रखने के लिए यूज करें। एसी सर्विसिंग रेगुलर करें, देखें क्लीन फिल्टर्स और प्रॉपर मेंटेनेंस एसी को एफिशिएंटली काम करने में मदद देते हैं। पांचवा टिप ये है कि टाइमर या स्लीप मोड यूज करें ना, ऐसी तो रिमोट में वो अवेलेबल नहीं है, किसी काम का है,
रात को टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जो एनर्जी सेविंग

0: को भी हेल्प करता है। तो भाई साथियों, आज का चैलेंज ये है कि आज रात से अपना एसी टेम्परेचर चेक करें, अगर वो 20 से नीचे है तो उसे थोड़ा इंक्रीज करें और एक हफ्ते तक इस हैबिट को फॉलो करें। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन आपका एनर्जी यूज बेटर हो जाता है। तो साथियों, स्मार्ट लिविंग का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, बल्कि बैलेंस्ड कंफर्ट होता है, जहां हम अपनी नीड्स को भी पूरा करें और रिसोर्सेज का भी ख्याल रखें। एसी का टेम्परेचर एडजस्ट करना एक छोटी सी सेटिंग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, बाबू इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो भाई, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे माविश और आज हम बात करेंगे सुबह की दुआओं के बारे में। दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के नाम से और उसकी फजीलत के साथ हो तो पूरा दिन बरकतों और खुशियों भरा गुजरता है। सुबह के अस्कार और दुआएं हमें हर तरह की बुराइयों, परेशानियों, हसद और नुकसान से महफूज रखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अस्कार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट लेते हैं लेकिन पूरे दिन की हिफाजत और बरकत का जरिया बन जाते हैं। आजकल की बिजी रूटीन में हम अक्सर ये छोटी सी आदत छोड़ देते हैं जबकि यह हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। रोज़ सुबह उठकर थोड़ा वक्त निकाल कर सुबह की दुआएं और अस्कार ज़रूर पढ़ा करें। आप खुद महसूस करेंगे कि दिन कितना पीसफुल गुजरता है। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे माविश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
2: आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ कि why clear national goals create lasting prosperity. देखिए, क्लियर नेशनल गोल्स मुल्क के लिए एक रोड मैप की तरह होते हैं। जब ये मालूम हो कि कंट्री को किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो डेवलपमेंट रैंडम या फिर टेम्परेरी नहीं रहते, बल्कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म होते हैं। जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 क्लियर टारगेट सेट करता है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हेल्दी सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और, तो अगर गोल क्लियर है, मान लीजिए कोई भी गोल आपने सेट किया वो क्लियर है, और जैसे कतर ने एक गोल सेट किया और वो काफ़ी क्लियर है कि इकोनॉमी ऑयल पर कम डिपेंड करेगी, तो पॉलिसीज, एजुकेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और करने के प्लान्स भी हैं। कतर में रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनोवेशन हब इसी क्लियर गोल की मिसाल है। देखिए, क्लियर

0: गोल्स की वजह से पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की प्लानिंग मुल्क को शॉक से बचाती है, जैसे ऑयल प्राइसेस गिरने पर भी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इसीलिए क्लियर नेशनल गोल्स लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी पैदा करते हैं, जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे। तो अब आप तो समझे कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक क्लियर गोल्स का होना और किस तरह से क्लियर गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं। बस जाते जाते एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पैदा होती है जब तरक्की सिर्फ पैसे तक महदूद ना हो बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाए। कतर का नेशनल विजन 2030 इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्स क्लियर हैं और हम सब का मुस्तकबिल जो है वो स्टेबल और महफूज बन सके, इस डायरेक्शन में कतर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी.
1: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के अवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न यावा गोई होगी और न बदकिरदारी। और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के आजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे और वाकई बड़ा ही मुहसिन और रहीम है।

लें तो कहेंगे ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे। जिस दिन न इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी न कोई इनकी मदद को आएगा और उस वक्त के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक आजाब है मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो। तुम हमारी निगाह में हो, तुम जब उठो तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह किया करो और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त ही।

पेटों में अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है।